0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से।
1: ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है और हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि उसमें से सबसे रंग बिरंगी उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार नवरात्रि का त्योहार है। आज दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन माना गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन पर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माता ब्रह्मचारिणी ये शब्द ब्रह्म और चारिणी, ब्रह्मा का मतलब है तपस्या, इसीलिए उसको तपश्चारिणी भी कही जाती है और ये माँ उमा का दूसरा स्वरूप माना गया है। माँ तपश्चारिणी अर्थात कि जिन्होंने तप और खूब तपस्या करके अपने जीवन के अंदर शक्तियों को प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी प्रेम और वफादार का प्रतीक है। उनके एक हाथ में जप माला है तो दूसरे हाथ में कमंडल है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि वो नित्य जब परमात्मा की तपस्या में लगे रहे तो परमात्मा के प्रति अति प्रेम होने के कारण उन्होंने परमात्मा का यानी परमात्मा शिव का नाम अजपा जाप निरंतर अंदर में जपते रहे। और कमंडल, कमंडल का मतलब है कि जहाँ जीवन के अंदर जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करते हुए अपने जीवन में उसको उतारना। तो ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी माना जाता। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है जिसके अंदर अथाह शक्ति है, जिसके चेहरे पर भी खुशी आनंद प्रेम और एक ग्रेस झलकता है। वो अपने विशेष भक्त जो उनकी पूजा करते हैं वो उन भक्तों को भी आनंद और खुशी प्रदान करती है और उन्हें सदगति की ओर राह दिखाती है। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी का विशेष गायन और पूजन होता है आज के दूसरे दिन पर।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। युद्ध में सीमा पर जब कोई सामने वाले को मार गिराता है तो वह देश के लिए नायक बन जाता है, लेकिन जब कोई देश के भीतर किसी दूसरे को मार देता है तो उसे हत्यारा कहा जाता है। किसी को मारना वैसे तो अपराध है, लेकिन किसी न्यायालय के आदेश के अंतर्गत किसी को फांसी पर लटका देना जल्लाद की ड्यूटी कहलाती है। जब कोई देश के लिए अपनी जान दे देता है तो वह शहीद कहलाता है, लेकिन यदि कोई अपना जीवन आत्महत्या द्वारा समाप्त कर लेता है तो उसे कायर कहा जाता है। चोर भी चाकू का प्रयोग करता है और सर्जन भी चाकू का प्रयोग करता है। किसी भी कर्म में कोई पाप नहीं होता, पाप तो हमेशा उस कर्म के पीछे मौजूद आशय में होता है। यह बात समझ लेने से संबंधों में सहजता आ जाती है, फिर माफ कर देना उसके लिए सरल हो जाता है। यह समझ लोगों को स्थिति के अनुसार ढलने में सहायक होती है, और सबसे बड़ी बात है कि यह आपको अपने आसपास के लोगों को सही दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है। हमें सदा इस बात के प्रति सजग व सचेत रहने की जरूरत है कि हमारे आसपास का संसार तो हमारे कार्यों से ही हमें जानना जारी रखेगा। यही कारण है कि आपके कार्यों के माध्यम से प्राप्त परिणाम उस कार्य के पीछे के आपके आशय और इरादे से अधिक अंक हासिल कर लेते हैं। तभी तो यह जानते हुए भी कि लोग आपको प्रेम करते हैं, आप यह बात उनके मुंह से सुनना चाहते हैं, और यही कारण है कि उन लोगों के सामने भी हमें स्वयं को स्पष्ट करने की नौबत अक्सर आ जाती है, जिनके बारे में हम मानते हैं कि वे हमें स्वयं से बेहतर जानते हैं। संसार को इस दृष्टिकोण से देखते हुए भी कि किसी कार्य में कोई पाप नहीं होता, पाप तो उस कार्य के पीछे छुपे आशय व इरादे में होता है, हमें इस तथ्य के प्रति भी सजग रहना होगा कि संसार हमें हमारे कार्यों से ही जानता है, भले ही हमारा आशय हमारा इरादा कुछ भी हो। भगवान भले ही हमारे इरादों को जानते हों, लेकिन इंसान तो हमें हमारे कार्यों के आधार पर ही पुरस्कृत या दंडित करेगा। क्यों न हम इस लोक व परलोक दोनों में ही अच्छा होने और दोनों को ही जीत लेने की कोशिश करें। अच्छे इरादे से कार्य करना ही संपूर्ण मानव बनने का इकलौता साधन है। इसलिए सदा अपने इरादों को नेक रखें तो आपके कार्य भी महान होंगे और सबके नजरों में आपका

हमने ऐसे लोग देखे हैं जो बेहतरीन वक्ता रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ष बाद मंच से पहले जैसा प्रभाव डालने में उन्हें पसीने छूट गए, क्योंकि भरी सभा में भाषण देने का उनका अभ्यास छूट गया था। हमने कई ऐसी उच्च शिक्षित महिलाएं देखी हैं जिन्होंने गृहिणी बन जाने के बाद अपने आप को चार दीवारी में ऐसा कैद कर लिया कि वे अपने संवाद के धारा प्रवाह को खो बैठी। हमने ऐसे उत्कृष्ट गायकों को देखा है जो अपने गायन में उस स्तर को अब नहीं छू पाते जिसकी उनमें क्षमता है, क्योंकि उन्होंने रियाज करना बंद कर दिया है। ऐसा क्यों है कि मेरा बायां हाथ उतना सक्रिय नहीं है जितना कि दायां हाथ? सीधी बात है, क्योंकि मैं अपने दाएं हाथ का प्रयोग अधिक करती हूँ। आपकी वे मांसपेशियां सशक्त हो जाती हैं जिनका प्रयोग आप अधिक करते हैं, और जिनका प्रयोग आप नहीं करते वे शक्तिहीन हो जाती हैं। हृदय संबंधी अधिकांश समस्याएं इस बात का परिणाम होती हैं कि हृदय का प्रयोग उसकी अधिकतम क्षमता तक नहीं किया गया। जिस हृदय से काम लिया जाता है वह कर्मठ बना रहता है। यह बात शरीर के हर अंग पर लागू होती है। मानव शरीर अपना जीवन काल पूरा हो जाने के बाद देहांत हो जाने के लिए गढ़ा गया है, लेकिन हम ही इसमें जंग लगाकर इस जीवन के काल को जल्दी बुला लेते हैं। यदि आप इसका प्रयोग नहीं करते तो इसे गवा

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से।
1: ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है और हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि उसमें से सबसे रंग बिरंगी उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार नवरात्रि का त्योहार है। आज दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन माना गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन पर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माता ब्रह्मचारिणी ये शब्द ब्रह्म और चारिणी, ब्रह्मा का मतलब है तपस्या, इसीलिए उसको तपश्चारिणी भी कही जाती है और ये माँ उमा का दूसरा स्वरूप माना गया है। माँ तपश्चारिणी अर्थात कि जिन्होंने तप और खूब तपस्या करके अपने जीवन के अंदर शक्तियों को प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी प्रेम और वफादार का प्रतीक है। उनके एक हाथ में जप माला है तो दूसरे हाथ में कमंडल है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि वो नित्य जब परमात्मा की तपस्या में लगे रहे तो परमात्मा के प्रति अति प्रेम होने के कारण उन्होंने परमात्मा का यानी परमात्मा शिव का नाम अजपा जाप निरंतर अंदर में जपते रहे। और कमंडल, कमंडल का मतलब है कि जहाँ जीवन के अंदर जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करते हुए अपने जीवन में उसको उतारना। तो ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी माना जाता। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है जिसके अंदर अथाह शक्ति है, जिसके चेहरे पर भी खुशी आनंद प्रेम और एक ग्रेस झलकता है। वो अपने विशेष भक्त जो उनकी पूजा करते हैं वो उन भक्तों को भी आनंद और खुशी प्रदान करती है और उन्हें सदगति की ओर राह दिखाती है। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी का विशेष गायन और पूजन होता है आज के दूसरे दिन पर।

जिस धन का प्रयोग नहीं किया जाता उसकी कीमत घट जाती है, जिस प्रतिभा का प्रयोग नहीं किया जाता वह खत्म होने लगती है, जिस क्षमता का प्रयोग नहीं किया जाता वह कमजोर पड़ने लगती है, जिस मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता उसमें जंग लग जाता है, जिस ज्ञान का प्रयोग नहीं किया जाता वह एक भार समान हो जाता है, जिस चीज का प्रयोग नहीं किया जाता वह अनुपयुक्त हो जाती है। यहाँ हमें एक कथा याद आ रही है जिसमें अपनी यात्रा पर जाने से पहले एक मालिक अपने 3 नौकरों को बुलाता है और उन्हें कुछ मुद्राएं सौंप देता है। उसकी वापसी पर पहले नौकर ने बताया कि उसे दी गई 5 मुद्राओं में उसने 5 और जोड़ दी हैं। दूसरे ने बताया कि उसे दी गई 2 मुद्राओं में उसने 2 और जोड़ दी हैं।

मालिक प्रसन्न हुआ और बोला, तुम लोग इन कुछ मुद्राओं के प्रति निष्ठावान रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें और अधिक का प्रभारी बनाऊंगा। तीसरे नौकर ने आकर वह एक लौते मुद्रा भी मालिक को लौटा दी जो उसे दी गई थी। उसने उस मुद्रा का उपयोग ही नहीं किया। इस पर मालिक बोला, इससे यह मुद्रा वापस ले लो और उसे दे दो जिसके पास 10 मुद्राएं हैं। मैथ्यू में कहा गया है, जिसके पास कुछ है उसे और दिया जाएगा और इस तरह उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। जीवन का परम दुख आखिर में होने वाली मृत्यु पर नहीं है, बल्कि अपने जीते जी अपने भीतर संसाधन की संपदा का मर जाना है। हम सांस लेते हुए शव न बने, जो उपलब्ध है उसका प्रयोग करें, अन्यथा आप उसे गंवा देंगे।

एक आदमी जमीन से लगभग 100 फीट ऊपर अपनी मचान पर लटका रहता है। वह दिहाड़ी पर पुताई का काम करता है। जीवन यापन करने के लिए उसका यही विचार है। उसके एक सहकर्मी ने पुताई करने की अपनी कुशलता को कुछ और निखार लिया है, इसीलिए वह ठेके पर काम करता है। जीवन यापन का यह एक और विचार है। एक अन्य व्यक्ति ने गाड़ी चलाना सीखा और एक व्यापारिक घराने में बतौर ड्राइवर नौकरी कर ली। वहां वह 14 घंटे काम करता है और इससे उसे अपने गुजारे लायक वेतन मिल जाता है। जीवन यापन का यह उसका विचार है। ऐसे ही एक चतुर व्यक्ति ने एक कॉरपोरेट संस्थान में बतौर ड्राइवर नौकरी कर ली, जहां उसे वेतन के अलावा अन्य लाभ और सुविधाएं भी मिल रही हैं। जीवन यापन का यह एक अन्य विचार है। कोई भोजन बनाने के अपने कौशल से किसी घर में मासिक वेतन पर बतौर रसोइया नौकरी कर लेता है, जबकि ऐसा ही दूसरा व्यक्ति सड़क किनारे अपना ही ढाबा खोल लेता है और दैनिक लाभ कमाता है। जीवन यापन के ये दो भिन्न भिन्न विचार हैं। ध्यान दे कि इन सभी व्यक्तियों के पास जीवन यापन का एक एक विचार था, जिसके लिए किसी शिक्षा या पूंजी निवेश की कोई पूर्व अपेक्षा नहीं थी। जीवन यापन का आपका विचार सेल्समैन बनने का हो सकता है, तो किसी और का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, तीसरे का एक उद्यमी बनने का और चौथे का अपने पारिवारिक व्यापार से जुड़ जाने का। और ऐसे लोग भी हैं जो इस विचार में विश्वास रखते हैं कि इस संसार में जीवन यापन के लिए कोई अवसर है ही नहीं। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि विशाल से विशाल उद्योग भी कभी केवल एक विचार ही था। हर क्रांति और हर सामाजिक संगठन कभी केवल एक विचार ही थे। उस विचार से ज्यादा सशक्त कुछ नहीं होता जिसका सही समय आ गया हो। हालांकि वह विचार क्या लाखों लोगों का पेट भरेगा या आपके ही छोटे से पेट को भर पाएगा, वह विचार आपको मात्र 4 पैसे कमा कर देगा या आप पर करोड़ों की बरसात कर देगा, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वह विचार किस तरह की सोच वाले व्यक्ति के दिमाग में पैदा हुआ है और वह उस विचार का क्या करता है। निष्कर्ष यह है, आप और आपके विचार मिलकर आपका संसार बदल सकते हैं। तो हमेशा ऐसे श्रेष्ठ विचारों से संपन्न रहें और उन विचारों को कार्यान्वित करने का भी प्रयास करते रहें, तो निश्चित रूप से आप उस कार्य में सफल जरूर होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, रेडियो मधुबन का जो टैगलाइन है वो है सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। और हम अक्सर ये याद दिलाते हैं कि आप जब रेडियो सुन रहे हैं तो आप मुस्कुराइए। वैसे भी आप कभी लखनऊ जाएंगे तो आप इस बोर्ड को पढ़ेंगे कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। यानी व्यक्ति को मुस्कुराना अनिवार्य है या वो खुश रहे, इसके लिए चीज बताई जाती। व्यक्ति के खुशी के द्योतक के रूप में भी, सूचक के रूप में भी मुस्कुराहट को देखा जाता है। क्या हम हमेशा मुस्कुरा सकते हैं? अगर हम सुखी हैं, हम अंदर से खुश हैं, तो हम मुस्कुरा सकते हैं। जो व्यक्ति व्याधि में है, दुख में है, किसी प्रकार से परेशान है या किसी रोग ने उसे ग्रसित किया है, तो ऐसा व्यक्ति कष्ट में कैसे मुस्कुरा सकता है? उसके लिए जरूर मुश्किल होती है। अब हम ये सोचें कि क्या ये जो रोग आते हैं हमारे पास, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? प्रायः हम समझते हैं कि रोगों का निदान चिकित्सकों के पास, डॉक्टर्स के पास, हमारे चिकित्सा कर्मियों के पास है। वो बात तो सत्य है, मगर क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हम खुद अपने आप को रोगों से ग्रसित करने के लिए कर रहे हैं? पिछली बातचीत में हमने ये समझा था कि रोगों के कारण क्या हैं। हम बैक्टीरिया, वायरसेस इत्यादि कीटाणुओं को समझते हैं कि वो रोग को पैदा करने वाले हैं। उनके इन्फेक्शन हो जाने से, उनके संक्रमण होने से हमें रोग होते हैं। मगर ये भी बात समझ में आई थी कि सिर्फ ये जीवाणु या कीटाणु ही नहीं है, हमारे अपने शरीर का स्वास्थ्य यानी हमारी अपनी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। क्या ऐसे में हम रोगों से बच सकते हैं? क्या ऐसा काम तो हम नहीं कर रहे जिससे हम रोगों को न्योता दे रहे हैं? आइए आज ऐसे ही एक विषय पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पे उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो मैं यही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हम ये समझते हैं कि भाई व्यक्ति सुखी रहे, मुस्कुराता रहे, उसके लिए वो अनेक प्रयास करता है। हम कहते भी हैं कि भाई रोगों के कारण हमारे हाथ में नहीं है। हालांकि हम ये बात समझते हैं कि बहुत सारे कीटाणु, रोगाणु हमें रोगग्रस्त बनाते हैं, हमें अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। कभी हम देखते हैं कि भाई मौसम बदला तो बीमार हुए, कुछ और हुआ तो बीमार हुए। कभी कभार लोग ये भी कह देते हैं कि भाई बीमारी तो आती रहती है, इसमें हमारा हाथ कहाँ है, इसमें हमारा कंट्रोल क्या है। अब प्रश्न उठता है कि क्या वास्तविकता में रोगों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है? क्या रोग आना ये सब कुछ स्वाभाविक चीज है, या रोगी होने के पीछे यानी स्वयं को रोगग्रस्त करने के पीछे हमारा भी कोई हाथ है?
1: हम कल जैसे जब बात कर रहे थे कि हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उससे हम रोगी हो सकते हैं। जैसे बारिश के समय अगर हम छतरी लेके जाएं तो हम नहीं भीगेंगे, अगर हम नहीं भीगेंगे तो शायद बीमार न पड़ें। बारिश के समय हमें बाहर की चीजों को नहीं खाना चाहिए। आप गर्मी के समय, कहा जाता है गर्मी बहुत पड़ रही है, कृपया हाथ धोइए, सफाई से रहिए। बहुत बार बोला गया कि गन्ने का रस अगर आप सड़क पे पी रहे हैं तो मशीन साफ होनी चाहिए, जो गन्ना साफ होना चाहिए, मक्खियों उसके पर ना बैठे, ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो हम बहुत बड़ी जनसंख्या और बहुत सारी बीमारियां बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होती हैं जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। मगर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो यदि एक व्यक्ति को होती है तो उससे दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकती है, जो लंबे समय तक रहती हैं। और क्रॉनिक डिजीजेस में, जैसे हमने कहा कि कम्युनिकेबल डिजीज बैक्टीरिया जरूरत है कि हम गंदगी से बचें, हमें अगर कहीं चोट लग गई है तो हम उसका पट्टी करें, हम उस पर मरहम लगाएं, उसको खुले में ना रखें, ये सारी चीजें हमें करने की जरूरत पड़ती है। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत कुछ आपके अपनी जीवन शैली की वजह से आपको मिलती है, जैसे मोटापा। आप बहुत अच्छे से खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, आपका जो बिहेवियर है कि आप बहुत सिगरेट पी रहे हैं, आप बहुत शराब पी रहे हैं, या आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, आप बहुत पॉल्यूशन है आपके अगल बगल, बहुत वातावरण प्रदूषण है, तो ये सारी चीजें आपको बीमार कर सकती हैं, क्योंकि ये आपके सारे अंगों पे इसका धीरे धीरे असर पड़ने लगता है और इसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। इस समय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक ज्यादा बड़ा चैलेंज है डॉक्टर्स के लिए दैन कम्युनिकेबल डिजीज, और ये हमारे जो सबसे कॉमन सुने जाने वाली चार बीमारियां हैं वो इसमें आती हैं। पहला ओबेसिटी या मोटापा, दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर जो आपके हृदय की वजह से है, तीसरा डायबिटीज जो आपके पैंक्रियास के ठीक से काम करने की वजह से नहीं हो रहा है, और जो चौथा है वो अस्थमा जो आपके फेफड़ों की वजह से नहीं हो रहा। और इन सबको मिला के जो सबसे बड़ा राक्षस है बीमारियों का वो है मोटापा, क्योंकि वो सबको असर दे देता है, वो सारे जोड़ खराब कर देता है, वो सारे ऑर्गन्स को खराब कर देता है, वो हृदय को, मतलब सारे के सारे आपके अंदरूनी अंगों को मोटापा आपका नुकसान दे सकता है।
0: यानी मोटे रूप में ये बात समझ में आ रही है कि आपने बीमारियों को दो अलग अलग हिस्सों में बांट के रख दिया। पहले एक हिस्से में वो बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती हैं, संक्रामक बीमारियां हैं, संक्रमण हो सकता है जिससे वायरस बैक्टीरिया इत्यादि ये चीजों की वजह से ये चीजें बीमारियां हो रही हैं, और ये दूसरी प्रकार की बीमारियां हैं जो संक्रामक नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न फैलने वाली बीमारियां हैं ये एक बहुत बड़ा समस्या का रूप है, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, दूसरे बीमारियों के मुकाबले ये बीमारियां ज्यादा हैं। क्या मैं इस बात को सही समझ रहा हूं?
1: आप एकदम सही समझ रहे हैं भैया। आप देखिए सुपर स्पेशलिस्ट के नाम, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट, डीएम गैस्ट्रोएंटोलॉजिस्ट, एमसीएच न्यूरोसर्जरी, एमसीएच कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, एमसीएच गैस्ट्रोसर्जरी, एमसीएच नेफ्रोलॉजी, मतलब जितनी भी सुपर स्पेशलिटी जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर बनी है वो उसमें सबसे बड़ा रोल इन्हीं बीमारियों का है। और मैं, अगर मेरे श्रोतागण सुन रहे हैं तो सबसे बड़ी बीमारी मोटापा है। आप एक बड़ी सीधी बात समझिए कि अगर हम और आप दोनों सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, हम आज जो सूटकेस इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पहिया लगा हुआ है, व्हील्स लगी हुई है, यदि हमें वो सूटकेस उठाना पड़े तो हमें बहुत परेशानी होगी, और खासकर अगर वो हमें सूटकेस उठा के सीढ़ी चढ़नी पड़े तो बहुत परेशानी होगी। और हम लोग अमूमन एक 5 से 10 किलो का एक बैग भी अपने कंधे पर टांगते हैं, 15 किलो का सूटकेस, मतलब 25 किलो उठा के अगर हमको किसी रेलवे स्टेशन पे या बस अड्डे पे या एयरपोर्ट पे चलना पड़ता है तो हम थकने लगते हैं। सोचिए कि इतना वजन आपके शरीर के अंदर है, कितना ज्यादा प्रेशर अपने हृदय पे दे रहे हैं, कितना फेफड़ों सकते, कोई मोटे व्यक्ति के बगल में आप बैठ जाइए तो उसका मोटापा आपको नहीं मिल सकता, ये आपके पास नहीं आ सकती। तो इसीलिए मैं सबको ये बोलता हूं कि, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम लोग अपने भोजन से, एक्सरसाइज से एकदम ठीक कर सकते हैं, तो अपने आप को बचा के रखने की जरूरत है, और बचाने से ज्यादा कि अपने एक लाइफस्टाइल की जरूरत है जिससे हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हम ग्रसित ना हो सके। कुछ जेनेटिक्स है, कुछ लोगों के परिवार में वो चीजें चली आ रही हैं जो आज मेडिकल साइंस बोलता है कि जीन्स है या आपके ये अंदर आपके जो बनावट है उसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। मगर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं अगर हम अपने आप को ठीक रखें तो हमें वो परेशान नहीं करेंगी।
0: आपने बहुत ही मजेदार बात कही कि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है। यहां पर मैं दो चीजें कहूंगा। पहली तो बात यह है कि अगर आप एक मोटे व्यक्ति के बगल में बैठे हैं तो आप मोटे नहीं होंगे, उनके साथ रहने से आपको मोटापा नहीं मिल सकता। अक्सर मोटे लोग पतले लोगों को देख के कहते हैं, जब उनका बोझ ज्यादा हो गया होता है शरीर का, कहते हैं भाई मेरे से 5-10 किलो ले लो, मैं थोड़ा हल्का हो जाऊंगा। तो ये महसूस होता है कि मोटा व्यक्ति अपने शरीर के बोझ को महसूस करता है। दूसरी बात, जब आप मोटापे को एक बीमारी के रूप में कहते हैं तो प्रायः लोग ये कहते हैं, हम सुनते भी आए हैं कि भाई खाया पिया करो, लोग तो चाव से खिलाते हैं, ज्यादा खिलाते हैं, और कहते भी हैं कि भाई खाते पीते घर के लगने चाहिए, अगर तुम खाओगे नहीं तो क्या समझेंगे लोग, ये भी चीज सुनने को मिलता है। तो ऐसे में आप मोटापे को एक बीमारी कह रहे हैं, ये इसे हम कैसे समझें?
1: भैया एक बड़ा हास्यपद एग्जाम्पल अभी मेरे साथ हुआ। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब पूड़ी तो बड़ी हल्की होती है। तो मुझे हंसी आई, हमने कहा अरे आप ये कैसे कह सकते हैं, ये तो भाई घी और तेल में बन रहा है। बोले डॉक्टर साहब आपने ध्यान दिया है, पूड़ी तेल के ऊपर तैरती रहती है, तो तेल से हल्की हो गई ना, क्योंकि हमें सिखाया गया कि हल्की चीज ऊपर तैरती है, भारी चीज बैठ जाती है। मैं कुछ बोलने लायक नहीं रहा। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप तेल को अगर पानी के ऊपर डालेंगे तो जो तेल है वो भी पानी के ऊपर तैरता रहेगा।
0: बिल्कुल तैरता है।
1: तो सबसे भारी चीज क्या है? सबसे भारी चीज है पानी, और पूड़ी तो देखिए पानी से भी हल्की है। अब इस मानसिकता के व्यक्ति को आप क्या सिखाएंगे और आप क्या समझाएंगे? क्योंकि अच्छा, और मोटापा का जो व्यक्ति है अगर उसमें हार्मोनल चीजें को हटा दिया जाए तो 90% व्यक्ति सिर्फ अपनी जिह्वा के वजह से मोटे हैं, वो खा ज्यादा रहे हैं और उसको खर्च कम कर रहे हैं, इसीलिए वो मोटे होते चले जाते हैं और उनको सब तरह की परेशानी हो जाती है। त्वचा पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, हृदय की परेशानी हो जाती है, सांस फूलती रहती है, उनको सांस लेने में परेशानी होती है, जोड़ों में दर्द होता रहता है। और अच्छा, लोगों को लगता है मोटा व्यक्ति मजबूत है जबकि वो ज्यादा कमजोर रहता है, क्योंकि वो एक इतना भारी वजन अपने शरीर से उठा रहा है जो काम बहुत लंबे समय तक नहीं करना चाहता। हम आप जितने श्रोतागण हमारी बात सुन रहे हैं, अगर किसी ने भी 2-4-5 किलो वजन कम किया होगा तो उसे बड़ा अच्छा लगा होगा। वो बोलते ना, अरे थोड़ा वजन कम हुआ, हल्के लग रहे हैं। मैंने अपने अस्पताल में ये तक सुना है कि अरे 3-4 दिन बुखार हो गया, एकदम पड़े हुए थे, या 3-4 दिन दस्त हो गया, उठे हैं तो बड़ा शरीर हल्का लग रहा है, वजन कम हो गया। लोग सोचिए बीमारी के बाद भी इसको एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। तो अगर हम और आप मोटापा कंट्रोल कर लें, और हम ये देखिए ना, फिट हम सहज स्वास्थ्य की बात क्यों कर रहे हैं, और एक बोला जाता है मोटापा बीमारियों का घर है। तो इसीलिए प्लीज जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं वो अपने वजन और अपने भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखें।
0: ये बात समझ में आती है जब आप कहते हैं कि मोटापा रोगों का घर है। जब जवान व्यक्ति मोटा है तो उस समय पर तो लगता है कि भाई इसको तो क्या ही रोग होंगे, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि भाई ये तो हट्टा खट्टा इंसान है, ये तो चल फिर भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, ऐसा लगता है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि एक मोटा व्यक्ति जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसके शरीर में धीरे धीरे रोग आने लग जाएंगे?
1: अगर आप मोटे व्यक्ति हैं तो आपका भोजन जो है वो बहुत ही नेचुरोपैथी आयुर्वेद के हिसाब से कहा जाए तो आप भारी भोजन कर रहे होंगे, जिसमें बहुत सारा तेल, बहुत सारा मसाला और बहुत सारा तला हुआ भोजन होगा नॉर्मली। और अगर हम मॉडर्न इसको बात किया जाए तो इसमें बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक होगा, बहुत सारे फास्ट फूड होंगे। तो जब तक आपका शरीर यंग है, और यंग का मतलब 30-35 साल तक जब तक आप हैं, तब तक आपके शरीर में ऊर्जा बहुत होती है। भैया मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि वजन एक आदमी का एकाएक 25-26 साल के बाद बढ़ना शुरू होता है। बहुत सारे छोटे बच्चों का भी वजन बहुत ज्यादा रहता है, बट एकाएक क्योंकि जब लंबाई रुक जाती है तब आदमी का भोजन पता चला वही खा रहा तो चौड़ाई बढ़ने लगती है। दूसरा, जब आदमी कॉलेज वगैरह में रहता तो चल रहा होता, क्लास अटेंड कर रहा होता, ऊपर नीचे उसको मूव करना रहता है, और जो हम लोग के समय में कंप्यूटर और मोबाइल उतना नहीं था तो एक फोन अटेंड करने के लिए भी दौड़ के जाना पड़ता था। हम लोग बाहर क्रिकेट फुटबॉल और ये सारी मैदान भी बहुत थे भारत में। मैं ये भी बात बोलूंगा कि बहुत सारे गार्डन थे, मैदान थे, खुली हवा थी, प्रदूषण कम था, हम लोग खेल रहे थे, कूद रहे थे, इसलिए वजन जो था वो बढ़ ही नहीं पा रहा था, और हमें उतना खाने को भी नहीं मिलता था क्योंकि उस अवेलेबिलिटी उतनी नहीं थी। मगर अब जब आप जैसे ही 30-35 साल के होते हैं और आपका वजन बढ़ने लगता है और आप कोई भी एफर्ट नहीं करते उसको कम करने के लिए, तब आपका हृदय, आपके फेफड़े और आपकी पैंक्रियास धीरे धीरे जवाब देने लगते हैं। आपको ब्लड प्रेशर की समस्या, अस्थमा की समस्या और डायबिटीज की समस्या होने लगती है, और कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सारी चीजें होने लगती है। तो इसीलिए आपको जरूर अपने आप को देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या भोजन कर रहे हैं, और अपने आप को कैसे उस भोजन को पचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं।
0: मैं एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब। जब एक व्यक्ति मोटापे की हम बात करते हैं तो लोग फूले हुए नजर आए तब हम उन्हें मोटा कहें, या वो वजन कांटे पे अपने को तोले तब उनको मोटा कहें। एक व्यक्ति अपने आप को मोटा हूं ये वो कैसे समझे? कभी कभार लोग ये कह देते हैं कि भाई हमारे घर में तो सभी मोटे हैं, हमारे घर में तो हम खाते पीते घर के हैं, ये भी लोग समझ लेते हैं। तो ऐसे में अपने मोटापे के प्रति जागरूकता के लिए व्यक्ति क्या करे, कैसे वो मेजर करे कि हाँ मैं मोटा हूं?
1: अबे आप इंटरनेट बहुत सारे पैरामीटर्स आप देख सकते हैं कि आपकी वेट और आपकी हाइट के हिसाब से आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए, आपकी लंबाई और आपकी उम्र के हिसाब से आपका क्या आइडियल या क्या आपका बेस्ट वजन होना चाहिए, इसके आपको बहुत सारे टेबल्स मिल जाएंगे। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स भी एक बहुत कॉमन पैरामीटर है। ये माना जाता है कि अगर आपका बीएमआई 30 से थोड़ा सा ऊपर है तो आप क्लास 1 ओबेसिटी में आ जाएंगे, 35 के ऊपर है तो क्लास 2 में आ जाएंगे, और 40 के ऊपर है तो क्लास 3 में आ जाएंगे, और 50 के ऊपर है तो आप सीवियर मोटे माने जाएंगे। और जितने लोग हैं, मैं सबको बोलता हूं कि आप अगर शीशे के सामने खड़े हैं और आप सामने ना हो कि अगर आप मतलब 90 डिग्रीज पे शीशे पे खड़े हैं और आप अपना आप मोटापा है, आप शर्ट का बटन अगर बंद कर रहे हैं वो खींच रहा है पेट के पास, तो इसका मतलब कि आपका वजन जो है वो थोड़ा ज्यादा है। तो इसीलिए सबसे इजी तरीका है अपना वजन लीजिए, और आपकी उम्र और आपकी लंबाई के हिसाब से अगर वो आपका वजन ज्यादा है तो प्लीज अपना ख्याल रखना शुरू करिए।
0: आज बहुत ही सुंदर सी बात समझ में आई है कि मोटापा रोगों का घर है। आप खाते पीते घर के लोग नहीं हैं, अगर आप मोटे हैं तो आप रोगों के घर हैं। तो इसलिए अपने आप को देखें कि आपका वजन कितना है, आपकी उम्र और आपके हाइट के हिसाब से, आपकी लंबाई के हिसाब से आपका शारीरिक वजन कितना है, उस पर ध्यान दें। अपने आप को स्वास्थ्य का तोहफा खुद देना शुरू करें, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर के एक एक अंग जवाब देना शुरू करेंगे, और उन रोगों को आप आने से पहले ही रोक सकते हैं। अगर आप युवा हैं, अगर आप मोटे हैं और आप में कोई समस्या नहीं है तो अभी से सुधार शुरू करें, ताकि आप अपने आप को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन दे सकें और हमारे चिकित्सा कर्मियों पर, स्वास्थ्य जगत पर जो बोझ है उसको कम कर सकें। दोस्तों आज की चर्चा में यही विराम लेते हैं। बहुत ही सुंदर आज की चर्चा रही है। और भी प्रश्न हैं मगर समय इतना ही इजाजत देता है तो इसलिए यहां रुकते हैं। आज हमारे सभी के प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया, तो आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों आज के सहज स्वास्थ्य में बस इतना ही। स्वस्थ रहने के लिए अपने मोटापे को कम करें, स्वस्थ बने और स्वास्थ्य के इस तोहफे को अपने को पहले दें और अपने परिवार और अपने समाज को स्वस्थ बनाने की ओर एक कदम उठाएं। रेडियो मधुबन पर यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, उन स्किल्स को हम सीख रहे हैं। इस श्रृंखला में बात हो रही थी थॉट्स की, यानी कि हमारे ही विचार, जिन्हें अभी तक हमने ये समझा कि हर सिचुएशन पर डिपेंडेंट है और कभी भी आ जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, सजग हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं कि ये आते हैं तो कौन क्रिएट कर रहा है। बाहर से नहीं आ रहे, बल्कि वो सिचुएशन है जो हम याद करते हैं या हमारे सामने आ रही है, और फिर हम उन थॉट्स और फीलिंग्स को क्रिएट

0: आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ी थोड़ी सजग होनी शुरू हुई अपने शरीर के बारे में भी, बॉडी के बारे में भी और थॉट्स के बारे में। आगे क्या करें?
1: मूल बात तो ये समझने की है कि थॉट्स का महत्व क्या है। थोड़ा सा मैंने सोचा है कि विचारों पर विचार किया है ना, थॉट्स ऑन थॉट्स। हम सब ये तो जानते हैं कि एक दिन में हम 30,000 से 60,000 विचार करते हैं, परंतु आमतौर पर हम यह सोचते हैं कि भी विचार कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। परंतु सबसे पहली मुख्य बात तो यह है कि विचारों में भी जीवन है, थॉट्स ऑल्सो हैव अ लाइफ। तो इसलिए उसको कोई ऑर्डिनरी चीज हम ना समझे।
0: थॉट्स हैव अ लाइफ
1: आई फील, क्योंकि आत्मा से निकले विचार है। तो सोल इज एनर्जी, तो उसकी थोड़ी तो एनर्जी उसमें भी होगी। नहीं, एक सचमुच एक सटल एनर्जी है थॉट्स भी, और वो थॉट्स जैसे है वैसे ही वातावरण भी बनता है, और थॉट्स उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो आप सोच रहे हैं। उसी प्रकार के प्रकंपन वातावरण में फैलते हैं और फिर उस चीज को आप अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कहा गया है कि यू ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ योर डोमिनेंट थॉट्स। जो आप बार बार सोचते हो उसी दिशा में आप आगे बढ़ते हो।
0: तो मतलब हम बार बार कई बार डर रहे होते हैं तो वो हो भी सकता है?
1: बिल्कुल हो सकता है ना,
0: क्योंकि हम बार बार अगर आप थॉट्स ही तो क्रिएट कर रहे हैं ना, हमें डर है, फियर है, तो वो हम संभव भी करते हैं।
1: हाँ, वो सचमुच होता है। आज व्यक्ति बीमारी के बारे में सोचता है और वैसे बीमार होता है। ये भी माना गया है कि आज लोग एक्सीडेंट्स के बारे में जो बार बार सोचते हैं वो सचमुच एक्सीडेंट से मीट करते हैं। नहीं, उसी प्रकार का, क्योंकि थॉट्स आर रियल, वो वातावरण उस चीज को क्रिएट करते हैं। कहते हैं कि थॉट्स हैव अ मैग्नेटिक पावर, जैसे मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, ऐसे थॉट्स है वो परिस्थिति को अट्रैक्ट करते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात समझने की है,
0: तो पासा पलट दिया। आपने तो हमारे पर डाल दिया सारा कुछ।
1: नहीं, सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी बहुत ही जरूरी चीज है कि जो भी आपको फीलिंग्स होती है, अच्छी या बुरी, आप दुख की फीलिंग करते या सुख की फीलिंग करते, उसका फाउंडेशन आपके थॉट है। कई लोग कहते ऐसे मैं गुस्से में आ गया, ऐसे मैं डिप्रेस्ड हो गया। एटलीस्ट सबकॉन्शियसली तो थॉट था,
0: पर अब सब पता नहीं चलता। अगर आप मतलब बार बार हमने इस बारे में बात की है कि आप थॉट्स को देखो, थॉट्स के प्रति सजग रहो। अब जैसे अभी मैं क्या सोच रही हूँ वो तो मैं सजग हो जाऊंगी कि ठीक है मैं यहाँ प्रोग्राम में बैठी हूँ इसके बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन जैसे ही वो फीलिंग आई, वो जो बिल्कुल ठीक है कि जैसे डिप्रेशन आ जाता है, एकदम से हार्ट सिंक करने लगता है, दुख आ जाता है या गुस्सा चढ़ना शुरू होता है, उस वक्त ये तो समझ में नहीं आता कि हमने क्या सोचा था कि गुस्सा आया। गुस्सा होने के बाद हमें वो थॉट्स दिखने शुरू हो जाते हैं कि गुस्सा आया है, अब मुझे गुस्सा चढ़ रहा है और चढ़ता जा रहा है या कम होगा, वो मेरे थॉट्स पे डिपेंड कर रहा है।
1: लेकिन कम से कम ये भी कि जो आपको हार्ट जैसे सिंक होने की आपने बात कही, कई बार हो सकता है कि भी पता ही नहीं क्यों सिंक हो रहा है। लेकिन ये तो एक्सेप्ट करो कि भी कोई ना कोई विचार है, भले आज से 10 साल पहले जो घटना हो गई उसका कोई विचार है, एक अर्ध जागृत रूप में वो विचार आ रहा है, पर विचार जरूर है। वह जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उसको ढूंढ भी सकेंगे। तीसरी बात है कि विचार आपके कंट्रोल में है, जो हमने पहले भी इसकी चर्चा की कि भी हम उसको चूज करते हैं। जो आमतौर पर लोग कहते हैं विचार आ गए, ऐसी बात नहीं, वह हमारे कंट्रोल में है। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि एक एप्पल में कितने बीज आप गिन सकते हैं। मैं आपको एक एप्पल दूं, आप उसको कट कर लो, गिनती करो तो गिनती हो जाएंगे, परंतु एक बीज में कितने एप्पल गिन सकते हो?
0: नहीं, आई कांट, आई डोंट थिंक सो, नो वे। क्योंकि एक बीज से अगर कितने सारे एप्पल्स हुए तो उन एप्पल्स के भी तो कितने सारे बीज के हो सकते हैं,
1: वो भी और बात है आगे। तो लेकिन फिर भी एक बीज से हजारों एप्पल हो सकते हैं। ऐसे एक विचार भी बीज है, एक विचार आपके जीवन में बहुत आनंद भी ला सकता है, सुख भी ला सकता है, साथ साथ वही एक विचार आपको दुखी दुखी कर सकता है। न केवल आपको और हजारों लोगों को भी वह एक ही विचार दुखी कर सकता है,
0: खुशी भी दे सकता है,
1: हजारों को दे सकता है। हाँ। तो वह सीड है। मुख्य बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक विचार है वह सीड है। और एक जिस पर मैंने गहराई से सोचा कि भी विचार क्या करते हैं, जैसे जब नदी बहती है जमीन से तो है ना, वो अपनी जगह क्रिएट करती है, ग्रूव्स क्रिएट करती है वास्तव में। तो ऐसे विचार भी कॉस्मोस में एक सटल ग्रूव्स क्रिएट करते हैं।
0: और अच्छा, विचारों की नदी।

0: बहती जा रही है।
1: हाँ, बस विचारों की नदी है वो वातावरण के अंदर उस प्रकार से ग्रूव्स क्रिएट करते हैं, और फिर जो सारी कॉस्मोस में एनर्जी है, जैसा आपने ग्रूव क्रिएट किया उसी प्रकार की एनर्जी वहां पर फ्लो होगी।
0: अच्छा, आकर्षित हम उसको, हाँ,
1: उसको आकर्षित करेगी। तो नहीं, इतना महत्व, सबसे पहले अगर इस महत्व को हम समझ ले तो फिर आगे के स्टेप्स भी सहज होंगे।
0: ओके, शिवानी, विचारों का ये जो एक अननोइंगली हमने क्रिएट किया, कि जो अभी बताया डॉक्टर पटेल ने कि इट्स सो पावरफुल, मतलब वो, लेकिन अभी तक तो हम पता नहीं कितना कुछ पावरफुल क्रिएट कर चुके हैं। और जैसा कि बात ये हो रही है अगर कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं, जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा होने भी लगता है, तो मैं तो बहुत अच्छा भी सोचते हूँ, मैं तो बहुत कुछ सोचती हूँ, वो बहुत कुछ तो नहीं होता फिर।
2: अब इसको भी चेक करना है, मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे इस एग्जाम में पास होना ही है, वेरी गुड थॉट, फिर मैं सोचती हूँ हो जाऊंगी ना, लेकिन तैयारी है ना मेरी पूरी, लेकिन मैंने तो तैयारी कर ली है। लेकिन आजकल ना एग्जामिनर्स पे बहुत डिपेंड करता है, वो एग्जामिनर कैसा होगा, उसका मूड कैसा होगा, वो मेरी फेयर चेकिंग करेगा या नहीं करेगा, ऑल दीज आर ऑल्सो थॉट्स ना, नॉट दैट ओनली वन थॉट। नॉर्मली क्या होता है, हम कहते हैं मैंने पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया है, हाँ, कि मुझे ये करना है, ये चाहिए, हम वो नहीं सोचते कि उसके साथ साथ कई बार हमने बहुत सारे ऑर्डिनरी थॉट्स और कई बार तो थोड़े नेगेटिव फियर के थॉट्स भी क्रिएट कर लिए, तो वो भी तो एनर्जी है। सो दैट्स वाई समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू अचीव इवन इन द आउटर वर्ल्ड जो हम अचीव करना चाहते थे, बिकॉज एनर्जी बहुत सारी फ्लो की है। अगर आप कोई एक थॉट को ले लें और उस पर ही अपनी एनर्जी को फोकस करें, उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए।
0: अब एक ऐसे किस, सी इट कम्स एज अ फैमिली, सी थॉट्स विल ऑलवेज कम, एक थॉट थोड़ा रह पाएगा,
2: एक थॉट इन द सेंस आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट क्या, अगर आपने क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट किए सक्सेस की, जो भी आप कार्य करने वाले हैं उसमें सक्सेस, फिर सक्सेस के साथ फियर, फियर के साथ डाउट, डाउट के साथ एंग्जाइटी, ये सारी फैमिली नहीं आनी चाहिए ना, एक ही परिवार को चूज करो, एंड दैट परिवार शुड बी द पॉजिटिव सक्सेसफुल हैप्पी परिवार, चूज दैट, डोंट मिक्स द टू थिंग्स। एंड क्योंकि बहुत समय से आदत है ज्यादा नेगेटिव सोचने
0: की,
2: नहीं, व्हाट इज हैपनिंग, द रिस्क क्या है, सी पॉजिटिव थिंकिंग आज हम लोग अवेयर हो रहे हैं तो हम धीरे धीरे कल्टिवेट कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग सो कॉल्ड ऑटोमेटेड मोड में गई हुई है कि पता ही नहीं चल रहा आ रही है, तो हम ये नहीं रियलाइज करते कि हम एक पॉजिटिव थॉट तो एनवायरनमेंट में भेजते हैं, लेकिन कई बार उसके साथ जो नंबर ऑफ नेगेटिव थॉट्स है वो ज्यादा होती है वो पॉजिटिव थॉट से। सो आई हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरी थॉट दैट आई एम क्रिएटिंग। जैसे गिरीश भाई ने कहा, ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक चल रहा है, होगा या नहीं होगा, ठीक मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन क्या सचमुच ये हो जाएगा, देन व्हाट हैपेंड,
0: बट डाउट तो रहता ही है।
1: शिवानी ने बहुत अच्छा कहा कि वो एक थॉट है कि एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन डाउट, एंग्जाइटी, फियर, उसके बदले पॉजिटिव फैमिली क्या हो कि आई कैन डू इट, है ना, मेरे में वो क्षमता है।
0: लेकिन फिर मैं अपने आप को झूठ देखे, एक बात है, फिर मुझे कई बार लगता है कि मैं अपने आप को गलत फहमी में रख रहा हूँ कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा, लेकिन मुझे अवेयरनेस है कि ये सारी चीजें भी तो होती हैं, एग्जामिनर जो है ये मेरे पास नॉलेज, ये भी तो, जैसे आपने कहा कि नॉलेज से आप, जैसे आपको नॉलेज मिलती है आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। आई हैव द नॉलेज कि एग्जामिनर जो है वो सही तरीके से कई बार नहीं देखते हैं, एग्जामिनर जो है या बाकी सारी चीजों के बारे में भी नॉलेज जो नेगेटिव है। सो आज मैं अपने आप पे ये थॉट तो क्रिएट किया कि मैं पास हो जाऊं, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे मार्क्स आने, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद जो मेरे फियर्स हैं अगर मैं उनको, वो आते मतलब जो मैं क्रिएट करूं, तो वो नहीं क्रिएट करूं तो मैं अपने आप को धोखे में भी तो रख रहा हूं ना।
1: पॉसिबिलिटी थॉट है कि भी आप जो सोच रहे हो पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम अगर ये सोचे कि मैं अगर थॉट करूंगी कि मैं पास होने वाले हूँ, अच्छे अच्छे मार्क आने वाले, यहाँ तक मनोविज्ञान में मानने लगे कि आपका पेपर ऐसे ही एग्जामिनर के पास जाएगा, वो आपको अच्छे नंबर देगा।
2: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, जैसे उन्होंने कहा कि जो आप थॉट क्रिएट करेंगे वो वाइब्रेशन है, वो एनवायरमेंट में है, वो अट्रैक्ट करेगी उस सिचुएशन को आपकी तरफ। अभी पर्सनली आई टेल यू, एग्जाम तो नहीं आते अभी कोई ऐसे, लेकिन सपोज आई गो टू अ शॉपकीपर जहाँ सब्जी तोली जा रही है, कई बार कुछ लोग सब्जी अपने तुलवा रहे हैं लेकिन ये तो करते हैं चीटिंग, इनका वेट सिस्टम पता नहीं ठीक है कि नहीं है, ये पता नहीं अच्छी क्वालिटी की सब्जी दे रहा है कि नहीं, दैट पर्सन इज बाउंड टू चीट,
0: नो बट दे चीट, सी
2: नाउ जस्ट गो नेक्स्ट टाइम, एब्सोल्युटली क्लीन, एब्सोल्युटली, चाहे आप वो शॉपकीपर के पास हैं, चाहे आप टैक्सी में बैठे हैं, कोई आप ऑटो रिक्शा में, हम बैठते ही हैं ऑटो रिक्शा में, आजकल के तो ऑटो वाले सब ऐसे ही हैं, सब चीट करते हैं, किसी का मीटर भी ठीक नहीं हो, यू नो वी आर सो मच फिल्ड विद ऑल दिस नेगेटिव एनर्जी. वो आप यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ बैठा है, आप उसके प्रति ऐसी सारी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो उस तक पहुँचेगी, उसने चीट करना है. फिर अब आप बैठे एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस के साथ, बट डो मेक इट प्योर 100% क्लीन. ये समझ में आ गया कि जैसी थॉट मैं क्रिएट करूंगा, आई ग्रेविटेट दैट सिचुएशन टुवर्ड्स मी.
0: बट उसकी, मैं उसकी नेचर को बदल सकता हूँ. अगर
2: आई ग्रेविटेट दैट सिचुएशन टुवर्ड्स मी, मतलब लोगों की सोच और परिस्थितियां मेरी सोच के अनुसार मोल्ड होती जाएंगी ना. सिचुएशन नहीं तो है ही क्या, बिना लोगों के तो कोई सिचुएशन नहीं है.
0: अभी तो मैं एक तरफ ये कह रही थी कि लोग तो कभी चेंज नहीं होते, एक तरफ आपने बड़ी मुश्किल से हमें ये समझाया.
2: हम पहले ये सोच रहे थे कि लोग चेंज हो जाएं.
0: हाँ,
2: सो वी वर क्रिएटिंग अ नेगेटिव थॉट फॉर देम. अगर मैं आपके लिए ये सोचूं कि ये चेंज हो जाए, मतलब मैं आपके प्रति क्या सोच रही हूँ,
0: ये अच्छी नहीं है अभी.
2: सी व्हाट क्वालिटी एनर्जी इज दिस. तो जैसे ही मैंने आपको नेगेटिव भेजी, रिटर्न आपसे भी क्या आएगा, ये चेंज हो जाए.
0: हाँ, मैं तो कभी चेंज नहीं हूँ.
2: सी दैट इज द एनर्जी. तो अगर मैं आपके चेंज होने के बारे में ना सोचकर अपनी थॉट्स को थोड़ा सा प्योरिफाई करने लगूं, क्लीनिंग करने शुरू, तो मेरे से आपको कौन सी एनर्जी जाएगी? पॉजिटिव जाएगी. जैसे ही मेरे से आपको पॉजिटिव जाएगी, धीरे धीरे आपसे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, एंड आई विल थिंक यू हैव चेंज्ड, बट एक्चुअली यू हैव नॉट चेंज्ड, एक्चुअली फर्स्ट आई हैव चेंज्ड.
0: But then you see your change was able to change me.
2: Because it's vibration. जो एनर्जी ऐसे जाएगी वही एनर्जी ऐसे आएगी. हमें, मुझे जब अपनी थॉट्स की अवेयरनेस नहीं थी, जो हम शुरू से देख रहे हैं अवेयरनेस नहीं है, तो मुझे एनर्जी सिर्फ ऐसे आती हुई दिखाई दे रही थी. ये मेरे से कैसे बात करती है, ये मेरे से कैसे बिहेव करती है, ये इक्वेशन नहीं पता था कि ये उसी का रिटर्न है जो यहाँ से जा रहा है. यहाँ से आती हुई एनर्जी को हम नहीं चेंज कर सकते. हमारी सारी स्ट्रगल किस पे थी, आपने कहा मेहनत क्यों लग रही है, हम वो आते हुए तीर को चेंज करना चाहते थे, चेंज चेंज, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लो. नहीं, इस तरफ नहीं चेंज होगा. आई चेंज व्हाट आई सेंड, that I have to change, and very powerful. ये नहीं एक positive thought, उसके साथ 10-15 negative thought, then तो कौन से तीर फेंके, फिर वो ही वापस आएंगे, फिर कहेंगे मैंने तो अच्छा सोचा था उनके बारे में. चेक करना कितना अच्छा सोचा था और कितना कुछ और सोचा था.
1: इट विल कम. दो बातें इसके अंदर, एक तो है कि जब हमने टैक्सी की बात की ना, कि भी टैक्सी वाला, ऑटो वाला, आप अच्छी वाइब्रेशन दो तो जो टैक्सी वाला आपके पास आएगा ना, अच्छा ही होगा.
2: No, and I yes, absolutely, yeah. Personally experienced. I was staying in another city pehle, about 8 years back, we shifted to Delhi. Pata kya information milti hai yahan shift karne se pehle? Delhi mein na बहुत लोग चीट करते हैं. दिल्ली में जो बहन आपके घर काम करने आएगी वो भी ऐसे ही होगी. टैक्सी तो बहुत चीट करती है, ऑटो. फिल फिल फिल योर सेल्फ. 8 years आई हैवंट फाउंड एनी वन चीटिंग मी, सिंपली बिकॉज आप अपनी थॉट को चेंज करो. क्यों? वो हमारी तरह हैं वो लोग, लेकिन हम उनको इस तरह की एनर्जी देते हैं. वो वाइब्रेशन नेगेटिविटी हर एक के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारी है. आप जैसे ही स्टिम्युलस भी नेगेटिव भेजोगे तो उसकी नेगेटिविटी को आप ट्रिगर करोगे. लेकिन ज्ञान हमें ये समझाता है कि इनहेरेंटली हर एक बहुत प्योर और पॉजिटिव सोल है. अब आप उसके पास वो वाला तीर फेंको तो उसकी पॉजिटिविटी ट्रिगर होगी. ये चॉइस हमारे पास है, ये पावर भी हमारे पास है.
1: मतलब हम करके देखना चाहिए. मैंने अनुभव किया
2: बहुत वर्क
1: कई बार है. देखा एयरपोर्ट पे जाते हैं, देखा टैक्सी वाला सामान उतार के ट्रॉली तक रख देता है, उसकी ड्यूटी नहीं है वो.
0: इसका मतलब हमने ये किया कि मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि आप आंख मूंद के फिर जी रहे हो, कि आप देख ही नहीं रहे. कि आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन थिंग, कि आई नो सामने वाला करप्ट है, मतलब मुझे पता भी चल गया अगर, एंड आई हैव टू डील विद हिम. सपोज मैं कोई काम करवाने भी जा रही हूँ और सामने वाला करप्ट है, पता है, तब मैं क्या ये वाइब्रेशंस उसको दूँ कि नहीं आप प्योर हैं, आप सच्चे हैं, तो ये मैं अपने आप से झूठ नहीं कर रही.
1: पहले तो दो, उसमें कुछ तो चेंज आएगा.
2: मतलब इट विल हैपन,
1: इट विल हैपन, एट लीस्ट 2%.
2: बट हैव द फेथ इन योर सेल्फ फर्स्ट. ये नहीं कि अच्छा मैं बोल तो रही हूँ ये प्योर है, लेकिन वैसे तो ये करप्ट है.
0: हाँ,
2: तो फिर क्या, फिर कौन सी थॉट क्रिएट.
0: एक तरफ है फैक्ट, एक तरफ है मेरी सोच.
2: हाँ,
1: अभी ये फैक्ट नहीं है. देखो, आपने कभी एक नदी में दो बार स्नान किया है?
0: हाँ, कभी सुबह और शाम.
1: एक्चुअली देखो, आपने जो दो बार स्नान किया सवेरे शाम, लेकिन नदी तो बह रही थी, पानी तो बदल गया था, बल नाम वो था परंतु पानी तो सेम नहीं था।
0: हाँ,
1: तो कहते आप एक नदी में दो बार स्नान नहीं कर सकते,
0: एक पानी में। हाँ, मतलब
1: नदी कहो।
0: हाँ,
1: तो ऐसे कहते आप एक व्यक्ति को दो बार नहीं मिलते हो,
0: व्यक्ति बदल गया।
1: हाँ, आज मैं आपको मिला हूँ, कल मिलूंगा तो यू आर डिफरेंट, आपके विचार बदल गए।
0: हाँ,
1: है ना, मेरे प्रति आपका दृष्टिकोण बदल गया। तो इस जो आपने वो कहा ना कि वो फैक्ट, इट इज नॉट अ फैक्ट,
0: पीपल चेंज।
1: हाँ, वो व्यक्ति को कल शायद ठीक है, भी दो दिन पहले वो करप्ट था, आज उसमें परिवर्तन आ गया। तो क्यों उसी नजरिए से देख रहे हो, उसके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन दो।
2: एक्चुअली कोई है, किसी में कोई थोड़ी सी कमजोरी है, जैसे करप्शन है कोई भी, हम सब उसी के ऊपर चिंतन कर करके उसको सभी लोग ये एनर्जी भेजेंगे कि ये तो करप्ट है, ये तो करप्ट है। तो जितनी उसके पास वो एनर्जी जाएगी, उनका वो संस्कार
0: स्ट्रॉन्ग
2: और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। दैट इज वेयर वी ऑल कैन एक्चुअली बी फोर्स विद ईच अदर हाउ टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। कि इसीलिए परमात्मा हमेशा कहते हर एक की विशेषताओं को देखो। दो बातें हैं, जितना आप कमजोरियों को देखेंगे, पहली बात तो वो कमजोरी आपकी बनती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम किसका चिंतन करते गए, ये तो ऐसे हैं, ये तो गुस्से वाले हैं, ये तो करप्ट है। तो मेरी अपनी कॉन्शियसनेस की लेवल क्या होती जा रही है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। उनको कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं, वही भेज रहे हैं। मेरा भी नुकसान, उनका भी नुकसान। विशेषताओं को देखो, विशेषता मेरी भी बनती जाएगी वो, और वो एनर्जी उन तक पहुंचेगी, उनकी विशेषता पक्की होती जाएगी।
0: तो शिवानी, आपने कहा कि विशेषताएं देखें हर एक की और नेगेटिविटीज ना देखें, लेकिन मेरे सामने है वो नेगेटिविटी, मैं चलिए एक्नॉलेज नहीं भी कर रहा, पर दिख तो रहा है, मैं उस पर फोकस नहीं भी कर रहा, बट क्या मैं उनको इग्नोर कर सकती हूँ?
1: नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे विचार करेंगे वहां तक पहुंचने, एक बात हमने समझ ली। दूसरी बात, वो व्यक्ति परिवर्तित भी हो रहा है। और तीसरी बात है कि उसे हम लेबल ना करें। आज जब बोलते हैं कि ये करप्ट है तो आप उसने लेबल लगा दिया, तो फिर सदैव के लिए बोले वैसा ही रहे। आप और सोच लिया, आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, आपने उन्हें लेबल लगा दिया कि ये स्मार्ट नहीं है, तो ऑलवेज उस तक वो वाइब्रेशन पहुंचे वैसा ही रहेगा। विशेष बच्चों के लिए कभी नहीं करो। आज अधिकतर माता पिता बच्चों को लेबल कर देते हैं कि छोटा वाला स्मार्ट है, बड़े वाला बुद्धू है, वो कभी ठीक काम से नहीं करता है। जैसा आपने सोचा वैसा ही होता है। इवन क्लासरूम में रिसर्च स्टडीज भी की गई है,
0: लेकिन वो तो कर ही रहा है ना वैसा।
1: नहीं, आप देखिए, रिसर्च स्टडी को आप समझिए तो भी आप कन्विंस हो जाएंगे इस बात के लिए कि एक क्लास में नए टीचर आए और सभी बच्चों के जो उनके मार्क्स थे पिछले क्लास के, उनको दिए गए, किसको भी, इसकी फर्स्ट ग्रेड है, इसकी सेकेंड, इसकी थर्ड है, ऐसे बच्चों को दिया। और फिर एक साल के बाद उनका परफॉर्मेंस देखा, तो ये पाया कि भी जिसको बताया था कि इसकी फर्स्ट ग्रेड है तो उसको फर्स्ट ग्रेड ही आई, कहा कि भी ये थर्ड ग्रेड का है उसकी करीब करीब थर्ड ग्रेड ही आई। और प्रैक्टिकली रिसर्चर्स ने क्या किया था, पूरा उल्टा कर दिया था। जिसकी फर्स्ट ग्रेड आई थी उसको कहा था इसकी थर्ड ग्रेड है, जिसकी थर्ड थी उसको फर्स्ट बना दिया था। तो इसका कंक्लूजन यह हुआ कि भाई टीचर का जो इंटरप्रिटेशन है, टीचर तो ये सोचा था कि ये लड़का स्मार्ट है, भले वो था बुद्धू।
0: ओ, और वो सोचता रहा और उसके थॉट्स ने, उसके पूरा लेबलिंग ने उसको फर्स्ट ही बना दिया।
1: न केवल लेबलिंग, लेकिन अप्रोच भी।
0: हाँ,
2: आपका पूरा थॉट, एटीट्यूड, बिहेवियर, बात करने का तरीका,
1: समझाने का तरीका,
2: कुछ भी वैसे चेंज हो जाएगा। हाँ, ना देखो, कोई आपको लगे ये तो बुद्धू है तो आपका थॉट कैसे चलेगा, इसको तो कितना भी समझाओ इसको तो समझ में नहीं आने वाला, ये तो बुद्धू। सो यू डोंट पुट इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड दैट एफर्ट। लेकिन एक आप स्टूडेंट को देख रहे हो कि ये तो फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट है, यू नो, यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट लुक ऑन योर फेस, योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी सब कुछ चेंज हो जाती है, और एनर्जी, थॉट एनर्जी तो
0: जाएगी। आपने कहा कि दूसरे की विशेषता देखोगे या कमजोरी देखोगे तो वो आप में आ जाएगी, यू सेड समथिंग लाइक दैट। How is that possible?
2: Because मैं चर्न कर रहे हो उस थॉट के ऊपर। सपोज आपके अंदर गुस्से का नेचर है, आपके गुस्सा करने के, एंड मैं बार बार ये थॉट क्रिएट करती हूँ, ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, तो गुस्से वाले हैं, इनको बात करने का तरीका भी नहीं आता। What kind of energy am I creating? See, अब ये एनर्जी क्रिएट करते करते मैं आपसे कैसे बात करूंगी, अब मैं भी आपको गुस्से से बात करूंगी, ऑटोमेटिकली वो होगा ही, इट विल बिकम, बिकॉज आई हैव बीन चर्निंग ऑन दैट नेचर ऑफ योर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कि ये गुस्से वाले हैं, चाहे इनसे कैसे भी प्यार से बात करो, ये तो ऐसे ही बात करते हैं, अगली बार तो ना मैंने बात ही नहीं करनी इनसे. ऑल दिस इज माई थॉट गोइंग ऑन, सिर्फ क्योंकि मैंने आपकी वो एक कमजोरी देख ली है. तो धीरे धीरे मेरा आपके प्रति सोचने का तरीका चेंज हो गया, फिर व्यवहार चेंज हो गया, फिर एक बार मैंने आपसे इस तरह से बात करना शुरू किया, धीरे धीरे वो मेरा संस्कार बनता गया, और धीरे धीरे मेरा संस्कार कैरी फॉरवर्ड होगा, वो सबके साथ ऐसा बनता जाएगा.
0: लेकिन मुझे आप गुस्सा करते हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो लेकिन वो मैं अपने अंदर कैसे इनकल्केट कर रहा हूँ?
2: क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना बाद में, नहीं अनोइंगली नहीं है, मैं कंटिन्यूसली आपकी उस आदत के बारे में सोचती हूँ, और मैं ये फील करती हूँ कि जो मैं फील कर रही हूँ उसके जिम्मेवार आप हो, और मैं आपके क्रोध के संस्कार पे चिंतन कर रही हूँ, तो मेरी एनर्जी कैसी क्रिएट हो रही है? दिस आई हैव टू अंडरस्टैंड ना, कि सपोज मैंने आपकी पेंसिल ली, क्रोध की आपकी पेंसिल ली, मैंने कहा ये पेंसिल टूटी हुई है, अब इससे मैंने डायग्राम बनाना शुरू कर दिया, तो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा? यहाँ पे एक डायग्राम ही बन रहा है ना, सारा दिन कंटिन्यूसली हम ग्रूव क्रिएट करते रहते हैं. कौन सी पेंसिल लेके क्रिएट किया था? ये गुस्से वाले हैं. वॉट एनर्जी वेन आई एम थिंकिंग लाइक दैट, हाउ एम आई गोइंग टू फील? एंड फिर ऑटोमेटिकली मेरा बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा? फिर मैं किसी और से आपके बारे में बात करूंगी तो कैसी एनर्जी क्रिएट करूंगी? तो गुस्सा तो आपका संस्कार था. ये ना जब हम किसी को बोलते हैं तो बहुत गुस्से वाले हैं, कैसे बोलते हैं?
0: तो
2: आपको पता है ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, ऐसे तो नहीं बोलते, आपको पता है ये बहुत गुस्से वाले,
0: रिजेक्ट करके बोल रहे
2: थे. नो नो, माय वे ऑफ टॉकिंग आल्सो बिकम्स लाइक दैट बिकॉज आई एम टॉकिंग नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज आई एम थिंकिंग नेगेटिव. तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म है, इट्स अ वेरी सटल वे, हमें अवेयरनेस भी नहीं होती कैसे वो हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारा संस्कार बनता जाता है. जो आपने अभी पूछा था ना कि कमजोरी है उनके अंदर, तो हम क्या करें? एक है अवेयरनेस कि किसी के अंदर ये कमजोरी है, इवन अगर आपको ये दिखाई दे रही है, डोंट कीप इट हियर. परमात्मा कहते हैं उसकी कमजोरी अपने चित्त पर मत ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे अवेयरनेस है आपके अंदर ये कमजोरी है, ओके, मैं आपको वो वाला शायद काम नहीं दूं थोड़े दिन या कुछ भी, आई टेक स्टेप्स, लेकिन मैं उसको अपने चित्त पर नहीं लूं, मतलब मैं उसके बारे में चिंतन ना करूं, ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड रखूं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको कौन सी एनर्जी भेजूं. तो अगर मेरे से आपको डिफरेंट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका वो संस्कार धीरे धीरे परिवर्तन होगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे गिरीश भाई ने कहा इन द फैमिली, यू नो एक व्यक्ति लेबल लगाता है कि ये तो बुद्धू है, बहुत जल्द बहुत लोग वही लेबल लगा देते हैं, सब लोग कहते हैं इससे तो वो हो ही नहीं सकता. अब वो एक और 8-10 लोगों से उसको वही एनर्जी मिल रही है, क्या होगा? वही संस्कार और पक्का होता जाएगा.
1: शिवानी बिन जो कहते हो ठीक है कि कोई नहीं, इम्पोर्टेंट चीज हो तो भले उसको कुछ समय वो काम नहीं दो, लेकिन पॉसिबल हो तो मैं तो कहता काम भी दो.
2: हम कई बार देते भी हैं तो हम कहते हैं देते हैं, फिर थोड़ा पहले थॉट होता है पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं, और अगर थोड़ा सा उसने 1% भी उसमें कुछ गलती कर दी, इमीडिएट थॉट मुझे पता था इसको तो देना ही नहीं चाहिए था, फिर मैं उसका और डैमेज कर देती हूँ. मुझे करना है तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से तैयार करके करना है कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग दिस हैबिट. उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस होगा थोड़ी देर, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर वो हैबिट कल्टिवेट कर देगी. हम एक बार करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट, फिर हम उनको 4 बार सुनाते हैं, मैंने आप पर पिछली बार विश्वास रखा था, क्या किया आपने, क्या रिजल्ट आपने उसका दिया? Then it just gets worse, and then we think कि हमने उस पर favor की, हमने उसको try किया, he is not worth it. फिर हम कहते हैं फायदा नहीं उस पर विश्वास, तो फिर वो बहुत सारी energies और भी negative हो जाती हैं. तो अपनी पूरी तैयारी करके फिर उनके ऊपर काम करना है, पहले काम अपने ऊपर करना.
1: एडिसन के लिए कहते हैं कि जब उन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया और उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जा रहे थे, तो अकेले पहली बार जब जा रहे थे तो जो व्यक्ति कैरी कर रहा था तो बल्ब गिर गया, तो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ था, बड़ा डेंजरस चीज थी. तो रात भर जाग करके एडिसन ने नया बल्ब तैयार किया, फिर सवेरे वो डेमोन्स्ट्रेशन होना था, तो फिर से उसको उस ट्रे में दिया कि तुम वहां तक ले. सबने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं सर, आपको नहीं मालूम है. कल शाम को तो इसने तोड़ दिया है बल्ब, फिर से तोड़ दिया. कहा नहीं नहीं यही बल्ब को ले जाएगा. उसने कहा कि देखो बल्ब फिर से भी टूट गया ना तो नया बन जाएगा, पर तो इसका दिल टूट गया तो नया नहीं बन सकता. तो इसलिए मैंने उसी को दिया।
2: सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना सामने वाले,
1: तो उसी को दिया कि तुम संभाल के ले जाओ।
0: बिल्कुल, और आज अपने ही विचारों से, उनकी शक्ति से हमें वाकिफ कराया आपने। अब इन स्किल्स को और आगे हम देखते जाएंगे। डॉक्टर पटेल, मिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच।
2: ओम शांति।
0: बहुत बार सुना था, और बड़े बड़े लोग बहुत सी बातें भी करते हैं कि थॉट में जो है वो बहुत पावर है, आपके अपने विचार जो हैं वो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ा है, बहुत सी किताबें, प्रैक्टिकली नहीं समझ पा रहे थे। अब जब छोटी छोटी तरह से ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो मैं सोचता हूँ, मतलब जाने अनजाने ही अभी तक ये हो रहा था कि कोई भी विचार आता था हम उसके साथ ही बहने लग जाते थे। एक थॉट आया, अभी तक हम कहते थे आया, अब सिस्टर शिवानी और डॉक्टर पटेल ने हमें बहुत क्लियर किया है, हमने क्रिएट किया वो एक थॉट, उसके साथ हमने बहुत सारा एक समा बांध दिया थॉट्स का ही, एक पूरी जर्नी की। देखना ये है कि हमने किस फैमिली के थॉट्स लिए, और परिवारों की हम बात करते हैं, ये परिवार अवेकनिंग का है, तो साथ ही अब चलिए विचारों के परिवार पर चलते हैं कि हमने वो पॉजिटिव थॉट्स के विचार क्रिएट किए, पॉजिटिव थॉट्स की फैमिली क्रिएट की या नेगेटिव थॉट्स की, ये हम देखते जाएंगे। थोड़े थोड़े अवेयर होते जाएंगे तो शायद हम उन स्किल्स को इनकलकेट करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। मन में कोई बात, कोई सवाल उठ रहा है, आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। लाइफ स्किल्स के इस श्रृंखला में आगे बहुत कुछ अभी बाकी है। मुलाकात होगी।

ओम शांति, मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर गलती एक सबक है, आत्म मंथन के माध्यम से उनसे सीखें और आगे बढ़ें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 8:15 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ नई किरण इस कार्यक्रम में। और गरबा की धूम कल से शुरू हो गई है 11 अक्टूबर से ही, और एक नया चैप्टर जो है फिर से शुरू हो गया है। निश्चित तौर पे एक तरफ देश में जो है गरबा रास का आनंद लेने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है देश में दिल्ली में कुछ प्रोटेस्ट भी चल रहा है। तो एक तरफ खुशी एक तरफ गम, तो पता नहीं चल रहा है कि कभी खुशी कभी गम वाला जो सिचुएशन अब है इसे कैसे दूर करें। तो चलिए, 12 अक्टूबर 2026 एक नया दिन हमारे बीच आया, गरबा का दूसरा दिन, नवरात्रि का दूसरा दिन है, और आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और शक्ति की कृपा आप पर बनी रहे और ढेर सारी खुशियां आपको मिलें इस नवरात्रि पर। ऐसी शुभ आशा के साथ आइए कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ। और मैं चाहूँगा कि आप, अगर आप उठ गए हैं और आप अपने काम पे लग गए हैं, तो एक बार छोटा सा ब्रेक ले लीजिए और इस भोर पर माँ अम्बे को याद कीजिए। और माँ अम्बे को जहाँ से शक्ति मिले वो कहते हैं शिव से, तो उस निराकार शिव को याद करते हुए अपने अंदर शक्ति भरे और माँ का आशीष पाकर अपने जीवन को उनके शक्तियों से संपन्न करें। तो आइए ऐसी शुभ भावना के साथ शुरू करते हैं आज का दिन। और मैं चाहूँगा कि इस खूबसूरत भजन के साथ आप भी कुछ पल के लिए अपने मन के विचारों को टटोलिए, झटकिए और फिर से एक नई शुरुआत कीजिए। आप एक शक्तिशाली आत्मा है, इसे महसूस करते हुए इस अनुभव को कीजिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 8:22 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। 12 अक्टूबर की बातें हो रही है। जी हाँ, आज विशेष दिन है और माँ अम्बे मैया की नौ शक्तियों का दूसरा स्वरूप आज आप जो है याद कर रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमें अच्छा लगता है। और नवरात्रि में नव दुर्गा की स्वरूपों को हम याद करते हैं और बड़े धूमधाम से जो है ये दिन मनाते हैं। आज माँ ब्रह्मचारिणी का सुंदर दिन है, जो सफ़ेद वस्त्र धारिणी बताया जाता है। जैसे कल विशेष रूप से घट स्थापना का दिन था और माँ शैलपुत्री को याद किया, जिनका रंग ऑरेंज था। आज सफ़ेद कपड़ों में बहुत सारे लोग जो है गरबा खेलने आएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की याद में इस शक्ति स्वरूपा को, माँ दुर्गा से निकली हुई ये दूसरी शक्ति का हम आज अनुभव करेंगे। कल हम माँ चंद्रघंटा को याद करेंगे। कल का हमारा कलर रहेगा लाल, रेड कलर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बताते रहेंगे कि किस तरह के ड्रेसेस आपको पहनने हैं, कौन से दिन कौन सा कलर। तो आज हम लोग वाइट कपड़े पहनकर माँ ब्रह्मचारिणी को याद करेंगे, दिव्य शक्ति दुर्गा मैया से आशीष लेकर। तो चलिए बात करते हैं, आज विजय मर्चेंट जी का जन्मदिन है, इनके बारे में थोड़ी बातें आपसे शेयर करूंगा। ये मुंबई महाराष्ट्र के डॉन ब्रैडमैन के ज़माने के महान क्रिकेट खिलाड़ी थे। जितने आज सचिन तेंदुलकर है उतना ही उनका ही वास्तविक नाम विजय सिंह माधव जी ठाकर से था। यदि उनके प्रथम श्रेणी के आंकड़ों पर नज़र डालें तो वो डॉन ब्रैडमैन के बाद अगले नंबर पर आते हैं। इनका इन मैचों में औसत 71.64 रहा था। तो विजय सिंह विजय मर्चेंट के नाम से पॉपुलर हुए और इन्होंने जो क्रिकेट में अपना जो काम किया है उसे आज भी लोग याद करते हैं। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और विजय मर्चेंट, ये सारे लोग जो है एक कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने ज़्यादा रन बनाए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक और सुंदर गीत और नवरात्रि के इस खूबसूरत समय को यादगार बनाएंगे माँ ब्रह्मचारिणी जी को याद करते हुए। और उनका विस्तार मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अगर हम किस तरह से माँ को याद करें या उनकी पूजा अर्चना करें, तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता है ये दूसरे दिन नवरात्रि का माँ को याद किया जाता है। ट्रेडिशनल जो साड़ी है वाइट, उनको याद किया जाता है, सफ़ेद साड़ी में उनको दिखाया जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि माँ को बड़े प्यार से अगर याद करते हैं आज के दिन, तो इनका विशेष मंत्र भी हम जो है अलग अलग तरीके से करते रहते हैं, लेकिन शाम के समय में मोस्टली माँ ब्रह्मचारिणी को याद करके और मिश्री का जो है प्रसाद वितरण किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सुंदर गीत आपको सुनाते हैं माँ माँ ब्रह्मचारिणी की आरती अभी आपको सुनाते हैं और आप भी आनंद लीजिए और शाम को वाइट कपड़ों में गरबा रास करने के लिए निकल सकते हैं। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए माँ ब्रह्मचारिणी की सुंदर आरती आपने सुना और चलिए इस आरती के साथ आपके दिन की शुरुआत हो गई है और माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी शुभ आशा के साथ आइए कार्यक्रम के इस पड़ाव में आगे बढ़ते हैं। 8:35 हो रहे हैं और आपको एक बीके कुसुम जी हमारे साथ है, उनके साथ बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर आपसे रूबरू होते हैं। सुनते रहो मस्कर।

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आज हमारे स्टूडियो में विशेष औरंगाबाद से बीके कुसुम बहन हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे हम लोग बातें करते हैं। तो आप सभी की तरफ से बीके कुसुम बहन का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया।
0: अच्छा, बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं?
1: जी, मेरा नाम कुसुम बहन है
0: जी।
1: मैं औरंगाबाद बंदास नगर में रहती हूँ, शीला दीदी जी के पास। मैं पिछले 16 साल से वहाँ सेवा करती हूँ और अभी भी वहाँ, वर्तमान समय में भी वहाँ दीदी जी के पास हूँ और माना सेवा चलती है वहाँ।
0: अच्छा अच्छा, किस तरह का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह के कार्य आप करते हैं?
1: ज़्यादा तो सभी है, जैसे कोर्सेस, क्लास,
0: अच्छा,
1: किचन में, अकाउंट का।
0: अच्छा, ऑलराउंड सेवा करते
1: जी,
0: हैं इसका मतलब। अच्छा, एक ये ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ आपका?
1: हमारे लौकिक में जो हमारे चाचा चाची हैं जो बहुत साल से हैं, माना अभी आसपास 30 साल से हैं, तो फिर उनको देखकर मैं, मुझे क्या है, इंस्पायर हुआ है।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए मैं वहाँ चाचा औरंगाबाद में आई हूँ। ऐसे हमारा लौकिक नांदेड़ है।
0: अच्छा,
1: और फिर हम चाचा जी के पास आए तो फिर वहाँ से ही कोर्स आदि हुआ है हमारा औरंगाबाद में, और फिर वहाँ से निकले हैं।
0: पढ़ाई वगैरह?
1: पढ़ाई हमारा ग्रेजुएशन हुआ है।
0: तो औरंगाबाद में हुआ या नांदेड़ में?
1: नहीं, औरंगाबाद में ग्रेजुएशन हुआ है, 12वीं तक नांदेड़ में हुआ है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी।
0: तो अभी चाचा वगैरह है?
1: हाँ जी, माना वो अभी भी ज्ञान में है,
0: वो
1: अभी
0: क्या
1: भी
0: करते
1: चलते
0: हैं
1: हैं।
0: वैसे?
1: चाचा जी ITI में लेक्चरर थे,
0: अच्छा,
1: अभी रिटायर है। और चाची जी भी टीचर थे, वो
0: अच्छा
1: भी
0: अच्छा
1: रिटायर है अभी।
0: तो आपको नहीं लगा ऐसे कि जॉब करके ब्रह्मा कुमारी से कभी कर सकते हैं? तो
1: नहीं, ऐसे नहीं लगा कि, क्योंकि ये जब हम ज्ञान लिया था तो उस समय हमारे दीदी जो N9 के जो मंगला दीदी थे, उन्होंने कहा कि नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है,
0: अच्छा
1: तो इसलिए फिर नौकरी का ख्याल भी नहीं आया है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी
0: नहीं तो फिर समाज के आपके लोग नहीं कुछ बोले आपको?
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये बड़े थे ना चाचा जी, तो इसलिए घर का कुछ ऐसा बंधन नहीं था।
0: ऑब्जेक्शन कुछ नहीं हुआ?
1: जी, ऐसा।
0: तो अच्छा, कोर्स वगैरह आप कराते हैं तो कई बार जो है चीज़ें थोड़ी सी, बहुत सारे ऐसे अलग अलग जिज्ञासु आते होंगे,
1: जी,
0: तो कोई एक यूनिक जिज्ञासु का अनुभव सुनाइए आप।
1: जी, ऐसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि
0: हाँ,
1: बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन वाले भी आते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: तो फिर अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है कि हेल्थ मेंटल काउंसलिंग का,
0: जी,
1: क्योंकि ऐसे आगे चलकर बहुत सारे डिप्रेशन वाले आने वाले हैं, तो इसलिए हमने अभी ये हमारे जो नॉलेज के हिसाब से हमने ये कोर्स ज्वाइन किया है।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए उनको भी क्या कर सकते हैं कि हम चलो डिप्रेशन में आते हैं तो उनको काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करना है, ये उनको माना थोड़ा सा नॉलेज हम भी दे सकते हैं कि काउंसलिंग का। तो इसलिए ऐसे तो बहुत सारे हैं कि
0: एक हाथ जो, हाँ, आउटडोर में वगैरह, बाहर सेंटर के बाहर भी आप एग्जीबिशंस वगैरह लगाते हैं क्या पहले की तरह?
1: नहीं, हम प्रदर्शनी वगैरह तो उसमें जाते हैं, जो हमारे नज़दीकी एक ओंकारेश्वर मंदिर है,
0: जी,
1: तो वहाँ हर साल शिवरात्रि को हमने व्यसन मुक्ति का भी लिया है वहाँ, और अभी भी प्रदर्शनी हर साल वहाँ लगती है।
0: उसका
1: और
0: कोई अनुभव सुनाइए प्रदर्शनी लगाते
1: हाँ,
0: वक्त
1: तो
0: में।
1: एक ऐसा भाई था जो व्यसन मुक्ति में, जो बहुत व्यसन में था वो,
0: अच्छा,
1: तो फिर माना रोज़ सिगरेट शराब आदि उसके माना अधीन हो गया था।
0: हाँ,
1: तो फिर जैसे हम ये जो उन्होंने ड्रामा देखा व्यसन मुक्ति का,
0: अच्छा,
1: तो फिर उनको माना ऐसे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो फिर एक बार सेंटर पर आए, उन्होंने उनका कोर्स मैंने ही कराया था,
0: अच्छा,
1: तो फिर उन्होंने कोर्स किया तो फिर वो नशा मुक्त हो गए, अभी उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। ऐसे माना ये बहुत सारे ऐसे फीडबैक भी उन्होंने दिए हैं।
0: अच्छा,
1: ऐसे और व्यसन मुक्ति के बहुत सारे प्रोग्राम भी हुए थे।
0: अच्छा, तो अभी जो मेंटल हेल्थ का जो आप कोर्सेस वगैरह करा रहे हैं, इसमें कैसे लोगों का रिस्पांस है, कितने लोग आते हैं?
1: नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी 2 सेमेस्टर हुए हैं, अभी 1 साल बाकी है।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो अभी चल रहा है।
0: इसमें आप क्या नया सीख रहे हैं, क्या नया लर्निंग हो रहा है?
1: माना वो क्या है कि अभी माना प्रॉब्लम ऐसे बढ़ रहे हैं समाज के अंदर,
0: जी,
1: तो फिर वो क्या है, ज़्यादा करके मेंटली प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इसलिए हर घर में एक आधा कोई ना कोई मिल ही रहा है, अब नॉर्मल होते हैं, तो उनको काउंसलिंग करने का ये माना संकल्प है कि उसको भी ठीक कर जाए मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन और दवा और दुआ दोनों भी चाहिए। दवा तो लेते हैं डिप्रेशन के लिए, पर उसके साथ साथ मेडिटेशन भी जरूरी है। तो दोनों का माना क्या है, इसलिए ये हेल्थ काउंसलिंग का हम कर रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं
1: जी।
0: और लोगों के प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं
1: जी,
0: तो बहुत ही अच्छा आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि मेंटल पीस के लिए म्यूजिक बहुत काम करता है
1: जी।
0: गीत संगीत, तो आपका पसंदीदा कोई गीत वगैरह है जिसको आप रोज सुनना पसंद करेंगे?
1: ऐसे तो नहीं, पर मुझे मेडिटेशन करते हैं तो म्यूजिक ही ऐसा माना नेचुरल म्यूजिक पसंद है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी।
0: और गीत संगीत, फिल्मी गीत, कोई भक्ति गीत, पहले भी आपको कुछ ऐसे लगता था कि
1: गीत ऐसे पुराने ओल्ड जो गीत है वो पसंद है?
0: कौन सा, एक आध कोई सुनाइए आप एक लाइन।
1: अजीब दासता है।
0: अच्छा, ये गीत आपको क्यों अच्छा लगता है?
1: नहीं, वो ऐसे ही माना जो सुनते हैं तो क्या होता है, मन शांत हो जाता है और अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा चलिए, बहुत अच्छा गीत आपने याद कराया है, अजीब दास्ता है ये। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग गीत सुनते होंगे, और जब ये गीत आप सुनते हैं तो शायद एक यात्रा की फीलिंग आती है। और ऐसे भी ट्रैवलिंग सबको पसंद है
1: जी।
0: क्योंकि आत्मा खुद एक ट्रैवलर है और
1: एक रूहानी यात्रा हमारी तो ऐसी ही यात्रा है रूहानी
0: जी जी जी। चलिए इस गीत का आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर कुसुम जी से बातें करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: धन्यवाद।

नमस्कार, मैं हूँ गौरी कुलकर्णी मुंबई से और मैं एक आर्टिस्ट और सिंगर हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बीके कुसुम जी से बातें हो रही, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि आज के समय में मेंटल डिप्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और इसको लेकर उन्होंने एक कोर्स जो है कर रहे हैं, जहां पर लोगों को मेंटल पीस के बारे में बताएंगे और उनको कुछ टेक्निक बताएंगे जिससे वो डिप्रेशन से मुक्त हो सके और अपने जीवन को सुख शांति से जी सके। और साथ ही साथ राजयोगा मेडिटेशन तो उन्होंने किया है, उनका खुद का अनुभव है, तो इनको एक तरह से लोगों को समझाने में, लोगों को काउंसलिंग करने में ये कोर्स उनका जो है बहुत ही हेल्पफुल करेगा। और चलिए बीके कुसुम जी, मैं चाहूँगा कि आप औरंगाबाद में हैं काफ़ी लंबे समय से, तो वहाँ का कुछ टूरिज्म के बारे में बताइए। वहाँ देखने लायक कभी मेरे जैसा कोई सिरोही से अगर आपके यहाँ आ जाए तो उसे क्या क्या देख सकता है, क्या क्या नई चीज़ें हैं वहाँ पर या ऐतिहासिक चीज़ें कुछ है तो बताइए
1: जी। औरंगाबाद में एलोरा और क्यूज़, एलोरा अजंता क्यूज बहुत फेमस है।
0: अच्छा।
1: और वहाँ 52 दरवाजे करके डोर करके है। हाँ। वो भी फेमस है। और बीबी का मकबरा करके,
0: अच्छा,
1: माना हिस्टोरिकल सब है वहाँ।
0: हाँ।
1: ऐसे तो इसलिए अभी तो औरंगाबाद इतना फेमस है कि सारा माना ऐतिहासिक है।
0: अच्छा,
1: तो दौलताबाद किला है वहाँ।
0: हाँ।
1: तो बहुत सारी चीजें है देखने जैसा है।
0: तो टूरिस्ट बहुत आते होंगे फिर।
1: जी बहुत टूरिस्ट भी आते हैं।
0: तो आप टूरिज्म, टूरिस्ट के लिए कुछ रखा है क्या अपने सेंटर पे कि वो भी आपके यहाँ विजिट करें?
1: नहीं अभी तो नहीं है, पर हमारा अभी जो चल रहा है म्यूजियम का रिट्रीट सेंटर है जो एलोरा क्यूज के पास ही है।
0: अरे वाह।
1: तो वहाँ अभी ये काम शुरू है।
0: अच्छा, काम तो, शुरू है
1: जी।
0: इन भविष्य में टूरिज्म के
1: वहाँ आकर माना एक ऐसा माना हम जो म्यूजियम बना रहे है वहाँ सेवा भी हो सकती है टूरिज्म जी की और आगे भी चलेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अच्छी बात आपने बताया। तो रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं, तो एक हाथ मेडिटेशन का या योग की अनुभूति का कोई ऐसा अनुभव आपके पास हो जो सुन के हमें भी लगे कि हम भी योग करें, ऐसा कुछ है तो बताइए।
1: जी मेडिटेशन करना है तो माना एक तो पॉइंट के ऊपर अपना कंसंट्रेट बढ़ाना है
0: जी,
1: कि ज़्यादा करके हम ज़्यादा कैसे है, हमारी एक एनर्जी है
0: जी
1: जो मस्तिष्क में है।
0: हाँ।
1: तो इस एनर्जी को हमें पास करना है तो पहले अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है।
0: हाँ।
1: तब मन शांत हो जाता है और मन शांत हो जाता है तो अपने विचार अपने आप स्टॉप हो जाते हैं
0: जी।
1: जो पॉजिटिव थिंकिंग हमें मिलती है तो उससे क्या होता है, मेडिटेशन की एनर्जी जो मिलती है तो जो इन्वायरमेंट है जो हमारा आजू बाजू का वो भी पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए मेडिटेशन की शक्ति बहुत सकारात्मक शक्ति है
0: जी। जी जी, चलिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए?
1: सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप भी जो परमात्मा जो है अभी निराकार है, तो सभी को भगवान को याद करना है जो निराकार स्वरूप में है और एक शक्तिशाली एनर्जी जो उनसे हमें मिलती है, तो वही है कि जो भी याद करते हैं तो परमात्मा को याद करना चाहिए। जी यही संदेश है।
0: चलिए बीके कुसुम जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और बहुत ही अच्छा अनुभव आपने साझा किया, और हमें खुशी हुई कि आपने औरंगाबाद के बारे में, वहाँ का टूरिज्म के बारे में आपने बताया, और 52 दरवाजा ये तो पहली बार मैंने सुना ऐसा नाम कि ऐसा भी कुछ होता है। अजंता एलोरा तो सुना था लेकिन 52 दरवाजा पहली बार सुना, अच्छा लगा हमें। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में आपको अगर कुसुम जी की कोई भी बात अच्छी लगी हो, दिल तक पहुंची हो, तो ज़रूर आप भी अपने जीवन में कुछ समय निकाल कर मेडिटेशन करें जिससे आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी। तो जब एनर्जी रिस्टोर हो जाती है तो आप रिफ्रेश फील करते हैं और फिर से नया काम शुरू कर सकते हैं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ ढेर सारी खुशियाँ, और कुसुम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है समाचारों का, सीधे दिल्ली चलते हैं समाचारों की तरफ। अभी सुनते रहो, मस्कराते रहो
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ, मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर दो दिन में दूसरे हुती हमले में एक व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। जिबूती तट के पास एक नाव पलटने से 147 लोगों की मौत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। श्री मोदी ने
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी बल दिया। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक नवाचार और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर युवा एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए होंगे। एक रिपोर्ट।
3: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए इस विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
4: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है जिसे 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
2: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
4: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि इस संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
5: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत बहुत ही वृहद स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राष्ट्रीय पटल पे अपना परचम लहरा रहा है। वहीं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
4: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री विस स्ट्रीटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 800-2-471-234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
6: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथियोपिया के नागरिक हैं। उन्हें उबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01123104 8101 23717 1717। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता। लोकसत्य की खबर है, युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील, बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही। उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता, 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे। हिंदुस्तान की खबर है, दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता है, 2 पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग बचाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने दी है। 100 की उम्र में भी अदालत में पैरवी, केरल के वकील मेनन कभी नहीं होना चाहते रिटायर, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज नाम। वकालत के लिए 8 दशक से कायम जुनून, राजस्थान पत्रिका ने प्रेरणा शीर्षक से ये खबर दी है। यूट्यूब पर समय बिताने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 4,000 लोगों पर कराया गया सर्वे।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1,300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हूती हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Hi, this is music composer Ricky Cage and you're listening to Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
9: Moments of peace, moments of a smile.
10: Sometimes a change of perspective is all we need.
9: Conversations that give a new direction.
11: Radio Madhuban, ab har pal muskurayega. Adhyatm aur manoranjan ka sangam. जहां अध्यात्म मिले मनोरंजन से, जहां ज्ञान मिले मुस्कान से। जो दिल को दें शांति और चेहरे पर मुस्कान। आध्यात्म और मनोरंजन का संगम, एक अनोखा कार्यक्रम।
9: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनिए, जुड़िए और मुस्कुराइए।

सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी हरदल अजीज आरजे अभिनव और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का, लिसनर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने इस खास शो अध्यात्म और मनोरंजन का संगम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ अध्यात्म और मनोरंजन का दूसरा एपिसोड। दोस्तों, ये एपिसोड भी हम सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, आज जिस आध्यात्मिक फिल्म को हमने इस शो के लिए सेलेक्ट किया है उसका नाम है नरसी भगत। ये फिल्म गुजरात के प्रसिद्ध संत कवि नरसी मेहता के जीवन पर आधारित एक भक्तिमय बायोपिक है जिसका निर्देशन विजय भट्ट ने किया था और यह फिल्म 1940 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के मुख्य नायक विष्णु पंत पगनिस और मुख्य नायिका दुर्गा खोटे थी। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर दिल अजीज आरजे अभिनव और आप सुन रहे हैं अध्यात्म और मनोरंजन का संगम रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, हमारा संवाद जारी है, इसलिए आप कहीं मत जाइए। बस हम यूं गए और यूं आए और आप इस गाने का आनंद लीजिए।

वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं हमारा खास शो अध्यात्म और मनोरंजन का संगम, और ये है रेडियो मधुवन 107.8 FM। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले ये तो हम जान ही लिए थे कि नरसी भगत फिल्म गुजरात के प्रसिद्ध संत कवि नरसिंह मेहता की लाइफ पे बेस्ड है। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी श्रोताओं को एक भजन सुनाने जा रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भजन क्यों सुनाने जा रहा। जी, मैं नहीं गाने जा रहा हूं, आपको भजन सुनवाने जा रहा हूं, क्योंकि इस भजन का संत कवि नरसिंह मेहता से गहरा ताल्लुक है। तो पहले आप ये भजन सुनिए, उसके बाद हम बातें करते हैं। तो सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे अभिनव। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं आपका दोस्त हर दिल अजीज आरजे अभिनव और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये भजन? दिल छू गया ना? मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है। दरअसल ये भजन नरसिंह मेहता गाया करते थे और ये उन्हीं का भजन है और ये भजन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी बहुत पसंद था। वो भी इसे हर रोज गाया करते थे। और यहाँ पे एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि गुजराती साहित्य में नरसिंह भगत का वही स्थान है जो हिंदी में सूरदास का है। जी, इस फिल्म में नरसिंह भगत के जीवन के कुछ खास हिस्सों को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। नरसिंह भगत को बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा है और वो उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं और भजन कीर्तन में ही उनका मन लगता है। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि एक भक्त जो है भगवान के प्रति कितना समर्पित हो सकता है, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास कि उसे कोई चिंता ही नहीं है, वो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। कोई भी संकट आए, कुछ भी हो जाए, उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान पे भरोसा है, भगवान में निश्चय है।

नरसी भगत बचपन से ही श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और युवा हो जाने के बाद भी ये अपना समय भक्ति भजन और कीर्तन में ही व्यतीत करते हैं। इनका मन घर के काम काज में बिल्कुल भी नहीं लगता है। इनके बड़े भाई ये सोचकर इनकी शादी करा देते हैं कि शादी के बाद जब इनकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो ये अपने आप घर के काम धाम करने लगेंगे। लेकिन शादी के बाद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये तभी भी घर के काम धाम में ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि पहले के ही तरह भक्ति भाव और भजन कीर्तन में ही अपना समय व्यतीत करते हैं, जिसके कारण इनकी भाभी इनसे बेहद नाराज रहती हैं और हर समय इनको भला बुरा कहती और कोसती रहती हैं। तंग आकर नरसी भगत घर बार छोड़कर जंगल चले जाते हैं और बिना कुछ खाए पिए 7 दिनों तक एक शिव मंदिर में भगवान शिव की आराधना करते हैं। और भगवान शिव तो है ही रहन दिल दोस्तों, फिर तो वो नरसी भगत की मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए श्री कृष्ण लीला का इन्हें साक्षात्कार करवाते हैं और इन्हें श्री कृष्ण जी द्वारा भक्त शिरोमणि का खिताब भी मिलता है। नरसी भगत का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो आनंद में झूम उठते हैं और श्री कृष्ण जी के ऊपर रचनाएं लिख लिख कर उस भजन को गा गा कर दुनिया को सुनाने लगते हैं। प्यारे लिसनर्स, हमारे गुफ्तगु आपके साथ जारी है। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्दी ही हाजिर होते हैं और आप सुन रहे हैं आध्यात्म और मनोरंजन का संगम रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मस्कुराते रहो।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना आरजे अभिनव, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। हाँ तो दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कैसे घर की कलह क्लेश से परेशान होकर नरसी भगत घर से निकल जाते हैं और एक शिव मंदिर में शरण लेते हैं, जहां पे उन्हें भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण लीला का साक्षात्कार होता है। दोस्तों, अगर व्यक्ति चाहे तो अपने घर को, अपने गृहस्थ आश्रम को भी स्वर्ग बना सकता है, अगर उसके आचरण, व्यवहार और विचार शुद्ध हो तो। नरसी भगत इसके उदाहरण है। दोस्तों, नरसी भगत घर गृहस्थ में रहते हुए एक संत हैं। इनके शुद्ध और सरल आचरण के कारण भगवत कृपा इन पर सदा बनी रहती है। एक दिन कुछ श्रद्धालु सज्जन लोग नरसी भगत के पास आकर कहते हैं, हम द्वारका जा रहे हैं, ये 500 रुपए आप रख लीजिए और हमें 500 का हुंडी लिखकर दे दीजिए, हम द्वारका जाकर वहां ले लेंगे। दोस्तों, नरसी मेहता की ये कहानी 15वीं शताब्दी की है और यहाँ जो हुंडी की बात की जा रही है, ये उस जमाने में डिमांड ड्राफ्ट की तरह प्रयोग किया जाता था। तो हम बात कर रहे थे कि कुछ सज्जन लोग नरसी भगत से 500 रुपए की हुंडी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे ही नरसी भगत को पता चलता है कि वे द्वारका जा रहे हैं, वो हाँ कर देते हैं और उन्हें कहते हैं, द्वारका पहुंचकर श्यामल शाह से हुंडी ले लेना। और वो इस तरह एक हुंडी लिखकर उन्हें थमा देते हैं। दोस्तों, हमारी चर्चा आपसे जारी है और आप सुन रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश आध्यात्म और मनोरंजन का संगम, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

वेलकम बैक, मैं हूं आपका दोस्त हरदिल अजीज, आपका अपना आरजे अभिनव, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कि कैसे कुछ श्रद्धालु लोग नरसी भगत से 500 रुपए की हुंडी लिखवाकर द्वारका रवाना हो जाते हैं, लेकिन द्वारका में उन्हें कोई श्यामल शाह नाम का व्यक्ति नहीं मिलता और इससे वो काफी निराश हो जाते हैं। और इधर नरसी भगत उन श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए 500 रुपए गरीबों में बांट देते हैं और राधे कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की भजन करने लगते हैं। और उधर द्वारका में परेशान श्रद्धालुओं से श्यामल शाह आकर मिलते हैं और उन्हें 500 रुपए देते हुए कहते हैं कि उन्हें नरसी भगत ने भेजा है। श्रद्धालु रुपए लेकर खुश हो जाते हैं। श्यामल शाह वहां से गायब हो जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। बस थोड़ी देर में मैं हाजिर होता हूं।

0: वेलकम बैक, सुस्वागतम। मैं हूं आपका दोस्त हरती लजीज आरजे अभिनव और आप सुन रहे हैं अध्यात्म और मनोरंजन का संगम रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। दोस्तों, चाहे कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, तपस्वी क्यों ना हो, लेकिन उसके भी जीवन में विघ्न आते हैं, उससे भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, लेकिन उसके अंदर ज्ञान होने के कारण वो विघ्न बाधाओं से घबराता नहीं है, बल्कि डटकर उनका सामना करता है। उसका भरोसा भगवान में कभी भी कम नहीं होता। कुछ स्थानीय लोग राज्य के धर्म अधिकारी के साथ मिलकर राजा के पास जाकर नरसी भगत पे कई तरह के इल्जाम लगाते हैं कि उनकी वजह से समाज में गलत संदेश जा रहा है, उनकी रचनाओं में अश्लीलता है, और यही नहीं, वो झूठी हुंडी लिखकर लोगों को धोखा दे रहे हैं, जो एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके सजा दिया जाए। राजा उनकी बातों में आकर नरसी मेहता को गिरफ्तार करवा लेता है। नरसी भगत राजा के सामने अपनी सफाई में कहते हैं कि वो अपनी रचनाओं में तो भगवान के ही गुणगान करते हैं, वो तो देखने का सबका अपना अपना नजरिया है, भगवान को याद करना कोई गुनाह तो नहीं है। राजा उन्हें बंदी गृह में डलवा देता है। एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, आपने भी इसे जरूर सुना होगा कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऐसा दर्शाया गया है फिल्म में कि मंदिर की किवाड़ अपने आप खुल गई और श्री कृष्ण जी की गले की माला आकर नरसी भगत के गले की हार बन जाती है, चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगती है और राजा शर्मिंदा होता है, उनसे क्षमा मांगता है और उन्हें पूरे सम्मान के साथ रिहा कर देता है। दोस्तों, तो ये थी हमारी आध्यात्म और मनोरंजन का संगम की दूसरी कड़ी। आशा है आपको पसंद जरूर आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह अध्यात्म और मनोरंजन से जुड़ी तीसरी कड़ी के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: Moments of peace, moments of a smile.
2: Sometimes a change of perspective is all we need.
1: Conversations that give a new direction.
3: Radio Madhuban, ab har pal muskurayega. आध्यात्म और मनोरंजन का संगम, जहां अध्यात्म

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर दर्द और बॉडी पेन है तो देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। और बच्चों को जैसा माहौल मिलेगा वो वैसे ही बनेंगे, तो इस पर चर्चा जरूर करेंगे। और आज बनाएंगे टमाटर पनीर पिज्जा, तो आप सभी तैयार हो ना बनाने के लिए, तो जरूर आप सीखेंगे और हम आपको सिखाएंगे। प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: अरे तू बाहर क्यों बैठा है? अंदर क्यों नहीं आया?
1: खा रहा हूँ ना।
0: अच्छा, नाम क्या है तेरा?
1: बबलू।
0: बबलू हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ता है तू?
1: पांचवी तक पढ़ता था, लेकिन अब छोड़ दिया।
0: क्यों?
1: माँ बहुत बीमार है ना, उठ ही नहीं सकती, मैं ही घर संभालता हूँ।
0: अच्छा एक बात बता, तू रहता कहाँ है?
1: यहाँ बिरवाड़कर चौल में, 1 घंटा दूर।
0: बिरवाड़कर चौल वो जुहू वाला क्या?
1: हाँ।
0: चल चल भाग, माँ इंतजार करी होगी, जा।
2: अरे बबलू देख, तेरे से कोई मिलने आया है।
3: ये बबलू है?
2: हाँ वही बबलू है।
3: अच्छा तू बबलू है?
1: आप कौन?
3: मैं डॉक्टर हूँ, बड़ी जान पहचान है तेरी। चल तेरी माँ को देखते हैं।

0: रुक, ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। ओए इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, जरूर सुनेंगे आप। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। पुनः दोहरा रही हूँ आज के विचार को कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। एक राजा की तीन लड़कियां थी, वह तीनों ही बहुत ही लाड़ प्यार से उनको पालना मिली थी। धीरे धीरे तीनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन भोजन करते समय राजा ने तीनों से पूछा कि आप किसके भाग्य का खा रही हो, किसके द्वारा आपको यह भाग्य वैभव आदि प्राप्त हो रहा है। प्रथम और द्वितीय लड़की ने कहा कि यह सब प्राप्तियां हमें आपके आधार पर ही हो रही है। लेकिन तीसरी लड़की ने उत्तर नहीं दिया। राजा ने उससे पुनः प्रश्न किया, तब उसने कहा कि मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ, मेरे भाग्य में जो सुख संतोष वैभव आदि है उन्हें ही मैं भोग रही हूँ। मेरे कर्म अच्छे हैं और मेरे जीवन में पुण्य कर्मों का फल जो निश्चित है वही मुझे प्राप्त हो रहा है, अर्थात मेरे भाग्य का फल ही मैं खा रही हूँ ना, कि अन्य किसी के भाग्य का। यह उत्तर सुनकर के राजा बड़े क्रोधित हुए। राजा ने कहा कि यदि आपकी प्राप्तियों में मेरा सहयोग नहीं है तो आपका इस राजभवन पर कोई अधिकार नहीं है, आपका विवाह एक गरीब व्यक्ति के साथ कराएंगे, तब आप क्या करेगी। लड़के ने उत्तर दिया कि मेरे भाग्य में वही है तो मैं उससे छूट नहीं सकती, यदि भाग्य श्रेष्ठ है तो झोपड़ी में भी खुशी से रह सकती हूँ। इस प्रकार का उत्तर सुनकर के राजा को और भी क्रोध बढ़ गया। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह एक गरीब बुढ़े व्यक्ति के साथ करवा दिया। लड़की ने राजभवन छोड़कर के जाते समय राजा से कहा कि पिताजी, मेरे मन में आपके प्रति बहुत सम्मान है, किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अपनी छोटी बेटी को नहीं भूलना। जिस गरीब बुढ़े व्यक्ति से राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह किया था, वास्तव में वह एक राजकुमार था। वह बहुत अच्छे व्यक्तित्व का धनी एवं धैर्यवान व्यक्ति था, परंतु शापग्रस्त होने के कारण गरीब और बुढ़ा हो गया था। कुछ समय बाद राजभवन में राजा का स्वास्थ्य बिगड़ना प्रारंभ हुआ। चिकित्सकों ने जंगल से एक बूटी ले आने की सलाह दी। छोटी लड़की के पति ने बहुत ही कष्ट उठा करके राजा को जंगल से वह बूटी ला करके दी, जिससे राजा का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया और छोटी लड़की का पति श्राप से मुक्त हो गया एवं राजा बन करके पुनः राजा ही करने लगा तथा छोटी लड़की रानी बन गई। राजा को अपनी गलती की अनुभूति हुई और उसने अपनी छोटी लड़की से क्षमा मांगी। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए सुन लेते पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। जी हाँ, अगर दर्द और बॉडी पेन हो तो क्या करेंगे? कितनी बार देखे, अभी तो दीपावली का काम चल रहा है, साफ सफाई करते हैं तो साफ सफाई करते करते बॉडी पेन होने लगता है, थकान आ जाती है, ऐसा लगता है कि अरे रे रे कब दीपावली का काम पूरा होगा। तो ऐसी स्थिति में आप है ना, रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पीजिए, सारी थकान भी दूर हो जाएगी, बॉडी पेन भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप रोज ही हल्दी वाला दूध पीजिए। जब तक भले आपको भाता हो चाहे नहीं भाता हो, चाहे आप पीते हो नहीं पीते हो, लेकिन जब तक आप ये जो दीपावली की साफ सफाइयाँ कर रहे हैं, भाई त्यौहार आते हैं तो त्योहारों के वेलकम, दीपावली तो ऐसा त्यौहार है कि उसके वेलकम करने के लिए पहले से हम अपने पूरे घर को चमका देते हैं। तो थकान तो आती है, स्वाभाविक है, भले हम माइयों से काम लेते हैं लेकिन माइया भी तो एक इंसान है ना, वो भी थक जाती है। तो सभी के लिए हल्दी वाला दूध बहुत ही फायदेमंद है। रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पी लीजिए, इससे बॉडी पेन ठीक हो जाएगा। अगला नुस्खा सुनेंगे आप ध्यान से, दांतों में सुराख हो तो क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, कपूर को महीन पीस करके दांतों पर उंगली से लगाइए, ठीक है, और उसे थोड़ा सा मलिए हल्के हल्के, सुराखों की आप अच्छी तरह मतलब साफ करिए पहले सुराख को, ठीक है, फिर मलिए उस पर, फिर सुराख के नीचे कपूर को कुछ समय तक दबा करके रख दीजिए, दांतों का दर्द निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर दांत में सुराख है तो कपूर को महीन पीस करके दांत पर उंगली से हल्के हल्के से आप मलिए लगा करके, ठीक है, और तो इस तरह सुराख अच्छी तरह साफ हो जाएगा। फिर सुराख में कपूर को कुछ समय तक दबाइए, ठीक है, दबा करके रख दीजिए, इससे दांतों का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको और भी अगला नुस्खा सुना रही हूँ। देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं, मीठा मीठा खाना पसंद करते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे, साल भर के, सवा साल के बच्चे, कोई कोई बच्चे इतना मीठा खाते हैं कि फिर कभी कभी उनको वो खरवा भी खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खरवा क्या होता है, तो गुदे की जगह पर ऐसी मीठी मीठी खुजली चलती है कि बच्चे चिल्लाते हैं, रोते हैं, और हम समझ ही नहीं पाते कि बच्चे को क्या हो रहा है, क्योंकि वो बोल तो नहीं सकता है ना, इसलिए हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन मीठा ज्यादा खाते हैं ना, तो इस तरह गुदे की जगह पर खुजली चलती है मीठी मीठी। तो बहुत ही सरल उपाय है इसके लिए कि आप केरोसिन का फोहा भर करके वहां पर लगा दीजिए, थोड़ा सा दबा करके, फोहे को नहीं लगाना है, वहां घिस करके फिर फोहे को हटा दीजिए, तो खुजली तुरंत ही बंद हो जाएगी। केरोसिन का फोहा भर करके गुदे पर और थोड़े से अंदर की साइड में लगा करके फोहे को निकाल दीजिए, केरोसिन लगा दीजिए, तो तुरंत ही खुजली ठीक हो जाएगी। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो धतूरे के पत्ते का रस निकाल करके उसे गर्म करके गुदा पर लगाइए, इससे भी जो चुन्नी काटते हैं ना, क्योंकि खुजली क्यों चलती है, मीठी मीठी खुजली क्यों चलती है, चुन्नट काटते हैं, है ना, मीठा ज्यादा खाया है तो चुन्नट काटते हैं, इसलिए मीठी मीठी खुजली चलती है। तो धतूरे का पत्तों का रस निकाल करके उसे गर्म करके गुदा पर लगा दीजिए, इससे भी बच्चों को आराम मिलेगा, ठीक है। और अगर पेट के केचुए और कीड़े हैं तो एक बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस और शहद बराबर मात्रा में मिला करके सुबह सुबह और दिन में और शाम को पीजिए। केचुए तथा कीड़े 4-5 दिन में मर करके बाहर निकल जाएंगे। देखिए बच्चों का है ना पेट भी बड़ा दर्द होता है, अब बोल नहीं पाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चों के क्या हो रहा है, तो इस तरह केचुए काटते हैं, कीड़े काटते, बच्चे चिल्लाते रहते हैं। तो एक बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस और शहद दोनों बराबर मात्रा में मिलाइए और सुबह दिन में और शाम को पीजिए, मतलब बच्चों को पिलाइए, ठीक है। बड़ों को काटते हो तो भी कर सकते हो आप, और बच्चों को इस तरह काटता है पेट दर्द करता है तो भी पिला सकते हो, तो इसे केचुआ कीड़े 4-5 दिन में मर करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत अच्छे हैं, आजमा सकते हो और अपने बच्चों का स्वास्थ्य, स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हो। चलिए प्रश्न पूछ लेती हूँ आज का, बहुत सुंदर प्रश्न है कि दात्री माता किस तरह का खाना खाए और अपने बच्चों को भी खिलाए। दात्री माता जिसके समझ लीजिए साल भर का बच्चा है, स्तनपान करता हो तो स्वयं किस तरह का भोजन करे और बच्चे को किस तरह का खिलाए, ये प्रश्न है, जवाब आपको देना है। नंबर हमारे है 9414-1514-15 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो।

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आप खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे कि भाई बच्चों को किस तरह का माहौल मिलना चाहिए। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि बहन जी।
1: जी जय माता दी, जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका।
2: बराबर स्वागत तो बराबर किया है, और दीपावली भी आ रही है
1: जी,
2: ऐसे मौके पे तो पटाखे छूट रहे हैं तो स्वागत तो होना ही चाहिए
1: जी। बोलिए आज के।
2: सबसे पहले तो आपको कहना चाहूँगा, आपने सुविचार भी बहुत सुंदर दिया आज का,
1: धन्यवाद,
2: इसके लिए थैंक्स तो बनता ही है, बहुत ही सुंदर सुविचार था
1: जी, थैंक यू।
2: और देखिए वो तो चलो विषय चला गया, अभी ये आपने बच्चों की बात रखी है ना, तो बचपन याद आ गया है बिल्कुल
1: जी।
2: देखिए घर में जैसा होता है ना, और आस पड़ोस में मतलब

0: कैसा माहौल होता है ना, वैसे बच्चे ग्रहण करते हैं।
1: जी
0: जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले ही एक बात बताई थी, बच्चों माता पिता और बच्चों की।
1: जी
0: तो मतलब जैसा आप अपने माता पिता के साथ में कर रहे हो, वो अपने बच्चे देख रहे हैं, तो वही सलूक अपने साथ में होने वाला।
1: जी
0: क्योंकि प्रभु ने भी यही कहा है कि देखिए जैसा तुम खुद आचरण करो, जैसा तुम अपने परिवार के साथ में सलूक करोगे ना, वैसा ही तुम्हारे साथ भी होने वाला है।
1: जी
0: तो इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि तुम अच्छा कर्म कीजिए और अच्छा किसी के साथ में सलूक कीजिए, ताकि आपके साथ में भी बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा सब।
1: जी
0: तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा देखिए सबसे पहला बच्चों की गुरु होती है माँ।
1: जी
0: सबसे पहली गुरु वो है।
1: जी।
0: तो घर में जो बच्चे सीखते हैं ना, वो ही सब कुछ करते हैं। जैसे कि एक बच्चा अपने स्कूल में जाके मतलब पढ़ने जाता था तो पेंसिल वगैरह चुराता था।
1: जी
0: तो उस समय उसकी माँ ने नहीं रोका, तो उसको बढ़ावा मिल गया।
1: जी
0: तो धीरे धीरे बड़ा होके वो बहुत बड़ी चोरियां करने लगा।
1: जी
0: तो उस समय उसको पुलिस ने पकड़ा और अंतिम इच्छा
1: फांसी पर
0: तो बोला
1: जी, फांसी की सजा दी गई उसको, तो उसने माँ को याद किया।
0: हाँ तो माँ का कान उस समय काटा, किसने काटा वो आप समझ सकते हो ना।
1: जी
0: क्योंकि उस समय उसकी माँ ने रोक दिया होता।
1: जी
0: तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता।
1: बिल्कुल बहुत सुंदर आभार आपका।
0: बस यही मैं कहना चाहता हूँ सभी को कि अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दीजिए, ताकि वो बड़ा होके आपका नाम रोशन कर सके।
1: जी जी
0: जी ये उसका बच्चा है।
1: जी बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर विषय है और बहुत ही अच्छे बात सुनने को मिली है कि देखिए प्रथम गुरु तो बच्चों की माई होती है, घर का माहौल अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप भी इस विषय में चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। बहुत ही सुंदर विषय है कि बच्चों को किस तरह का माहौल मिला, जैसा माहौल मिलेगा वैसे बच्चे बनेंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है, प्रश्न का भी जवाब जरूर दीजिएगा कि धात्री माता को किस तरह का खाना खाना चाहिए और अपने बच्चे को भी खिलाना चाहिए। हमारी बहनें सुन रही हैं तो भी जरूर जुड़े, भाई लोग जो अनुभवी है वो भी जरूर जवाब देवे। और विषय बहुत अच्छा है, उसमें आप चर्चा कर सकते हो कि किस तरह बच्चों को माहौल मिलना चाहिए। हेलो
2: हेलो नमस्कार उषा बहन जी, प्रणाम।
1: हाँ जी नमस्कार दयाराम जी, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिली।
2: हाँ काफी दिन हो चुके हैं बहन जी, जो पहले कार्यक्रम चलता था तब कॉल किया था, और अभी जो हमारे रेडियो मधुबन में कुछ तकनीकी वजह की प्रॉब्लम आई थी, उस वजह से कॉल भी नहीं लग रहा था, बात भी नहीं रही हो पाती थी, रेडियो मधुबन की कवरेज भी पूरी सही तरह से नहीं आ पा रहा था। तो 4-5 दिन से अब बिल्कुल सही रेगुलर आ रहा है, तो अब सुनाई अच्छी दे रहा है हमें।
1: क्या बात है, और
2: जी और सवाल भी बहुत ही अच्छा किया है, और बातें भी खुशनुमा जीवन की अच्छी की है। और रेडियो मधुबन में सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाई मेरे, उसको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और काफी दिनों के बाद रेडियो में आया हूँ, तो इसलिए मेरे भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ। बहन जी आपको प्रणाम, पूरे रेडियो मधुबन परिवार को।
1: थैंक यू भैया, आपको भी नमस्कार।
2: प्रश्न का जो आपने प्रश्न पूछा है, तो मैं मेरे हिसाब से उसका जवाब देता हूँ।
1: जरूर,
2: जो सही है गलत है वो तो आप ही
1: कोई नहीं
2: जानते हैं।
1: अरे नहीं, ये तो जनरल बात है।
2: महिलाएं जो धात्री बच्चे जो बच्चा सुनिए से जो ऊपरता होता है, उसको दूध पिलाने वाली महिलाओं को हरी पत्तेदार सब्जियों खानी चाहिए, और पीले फल भी खाने चाहिए, और घी और तेल में जो बनाई अच्छी सी पकवान जो वो भी खानी चाहिए, और बच्चे को बड़े प्यार से भी खिलानी चाहिए, तो ये सबसे बढ़िया है।
1: जी जी
2: और नमस्कार सभी श्रोताओं को फिर से।
1: विषय विषय में आप चर्चा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, किस तरह का माहौल मिलना चाहिए कि उनके ऊपर अच्छा असर पड़े, क्या कहेंगे आप?
2: बच्चों के साथ तो माता पिता और उनके घर में ऐसा कि प्यार से रहना चाहिए, बच्चों से प्यार देना चाहिए, बच्चों को अच्छी से अच्छी जानकारी देनी चाहिए। जैसे शाम का समय जो पहले माताएं होती थी, दादी होती थी, वो अच्छी अच्छी कहानी भी सुनाया करती थी, अच्छी अच्छी बातें भी, तो बच्चे उनके अच्छी वो समझ पाते थे, उनमें सोच भी अच्छी होती थी। तो अब तो क्या है, तो माता पिता जो बच्चों की तरफ को ज्यादातर तो ध्यान ही नहीं देती है, या ये मोबाइल इंटरनेट का युग आ गया है तो वो मोबाइल लेके बच्चे बैठ जाती है, तो नहीं तो वो भी कोई ऐसी ऐसी जानकारी उसे भी मिलती है नहीं ले पाती है, तो ज्यादातर तो गेम ही खेलती है या वीडियो देखती है। तो माता पिता को और किसी रिश्तेदार का कॉल भी फोन के अंदर आता है तो वो भी नहीं उठाती है, जैसे घंटी साइलेंट कर रख देती है बच्ची। तो ऐसे माता पिता होती है, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, अच्छी से अच्छी जानकारी दें, अच्छी कोई बातें बनाए, अच्छी कहानियों उनको सुनाए, और अपने घर में और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार है तो बच्चे अपने अच्छे बनेंगे, और सुदृढ़ और संस्कारी बच्चे है तो वो स्कूल में माता पिता का और टीचर का, अपने गांव का, सभी का नाम रोशन करेंगे और अच्छा बनेगा।
1: बहुत खूब आभार आपका नया राम जी, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है इस विषय को, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर विषय है, और बच्चों को किस तरह का माहौल देना चाहिए ये हमारे हाथ में है। हम चलो बच्चे नहीं हुए उसके पहले आप किसी भी तरह रह रहे हो, लेकिन बच्चे होने के बाद आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप पहले की तरह झगड़ा कर रहे हैं, चिल्ला कर बात कर रहे हैं, पड़ोस पड़ोस के साथ अगर झगड़ा कर रहे हैं, तो उसका असर तो बच्चे पर पड़ना ही है। हेलो
3: हेलो, गुड मॉर्निंग कंचन जी।
1: वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार कंचन भाई जी। तो आज का प्रश्न है कि धात्री माता किस तरह भोजन करे और अपने बच्चे को भी कराए। साल सवा साल का बच्चा है, माँ का दूध भी पीता है और ऊपर से भी उनको देना पड़ता है, तो वो धात्री माता किस तरह का भोजन करे और कैसे अपने बच्चे को भी कराए, प्रश्न है ये, फिर विषय बाद में बता।
3: हाँ जी, तो ये हरे शंकर जी का और प्रोटीन इसमें ज्यादा भोजन करे तो बच्चे को भी दूध का सेवन करे, ये सब करे तो बच्चे को भी इसमें से जो ये दूध तो माता का पिलाना ही चाहिए, बाहर का खुराक
1: जी,
3: लेकिन माता का दूध जरूरी है।
1: जी
3: तो ये,
1: अच्छा, और आज का विषय, आज का विषय ये है कि बच्चों को किस तरह का माहौल मिलना चाहिए कि बच्चे संस्कारिक बने।
3: बच्चों के तो माता पिता के संस्कार होंगे तो बच्चों में आएंगे बहन
1: जी। जी,
3: जो पूरी कमाई करके घर में लाएंगे तो बच्चे, बड़े बच्चे देखेंगे, उसको पता चल जाएगा कि ये कौन सी कमाई आई है। और दूसरी एक बात करूँ तो मोबाइल
1: जी,
3: मोबाइल का माता पिता ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो बच्चे भी जरूर करेंगे
1: जी।
3: ये एक आजकल का माहौल है तो इसमें खास माता पिता को ध्यान रखना है, और कैसी बात करनी है घर में, बच्चे न सुने, ऐसे ही कोई संस्कार इससे न आए, ऐसे हमें घर में रहना है
1: जी।
3: जी बहन जी,
1: चले बहुत बहुत आभार कंचन भाई आपका।
3: जी बहन जी, सभी दोस्तों का आपका
1: जी। तो देखिए, विषय बहुत ही अच्छा है कि बच्चों को किस तरह का माहौल देंगे। जरूरी नहीं कि घर का माहौल ही खराब हो, कितनी बार अड़ोस पड़ोस का माहौल भी खराब होता है। हमारे घर में अच्छा माहौल है, लेकिन अड़ोस पड़ोस में अगर माहौल खराब है तो उसका भी असर बच्चों पर पड़ता है ना, क्योंकि बच्चे तो बच्चों में ही खुश रहते हैं तो कंपनी ढूंढते हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं, और जब बच्चे जब उनके घर पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि झगड़े हो रहे तो भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे किसको कहते हैं, बच्चे तो महात्मा की उपाधि बच्चों को मिली हुई है, इनोसेंट होते हैं, उनके ऊपर जल्दी से असर होता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो घर पर भी आकर के, क्योंकि बात तो पूरी समझ नहीं पाता है, अधूरी बात करता है, तो माहौल सिर्फ अपने ही घर का नहीं, अड़ोस पड़ोस का भी अच्छा होना चाहिए। हेलो।
4: हाँ दीदी नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो आप?
4: बहुत अच्छे दीदी, बहुत अच्छी बातें भी सुन रहे हैं
1: जी।
4: और पहले तो मैं बताऊँ दीदी, जो आपने कर्मों का विचार दिया बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा लगा
1: जी, थैंक यू।
4: क्योंकि वो हम देखते हैं कई बार
1: जी,
4: इसी विषय पर जरूर एक बार चर्चा जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है
1: जी।
4: एक बार वो विषय जरूर लीजिए
1: जी,
4: अच्छा विचार वाला।
1: जरूर जरूर।
4: और आप दो बात बहुत अच्छी बताई आज, तो बच्चों की बात बताई गई, तो बच्चों के तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि बच्चे जैसे पड़ोस में कई बार दीदी क्या होता है कि पड़ोस के बच्चे इतना तूफानी, मैं बताऊँ हमारे मोहल्ले की बात कर रहा हूँ मैं
1: जी।
4: एक बच्चा इतना दीदी तूफानी, इतना तूफानी की बहुत हमारे, तो दूसरा बच्चा बहुत सीधा था, अच्छा था, लेकिन इसके साथ मिल गया तो आज वही भी ऐसा हो गया है
1: जी। जी
4: तो माँ बाप बोलते हैं तो कुछ समझते नहीं है, बस ऐसे करते बोलते रहते, छोटा सा बच्चा है फिर भी, तो जैसा माहौल वैसा बच्चा होता है। आज हम देखते हैं
1: जी,
4: कई परिवार ऐसा है कि अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे को हम अच्छे बच्चे के साथ रखेंगे तो ही अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बच्चा ऐसा हो तो इसके पास रहेगा तो वो भी ऐसा हो जाएगा
1: जी। जी। और आज के प्रश्न भी है कि धात्री माता को किस तरह का भोजन करना चाहिए और अपने बच्चे को भी कराना चाहिए?
4: तो धात्री माता को वो समझा नहीं देती, मैं करते
1: जैसे नन्हे बच्चे होते हैं ना, नन्हे बच्चे होते हैं वो माँ का फीड करते हैं, है ना, आठ महीने के साल भर के बच्चे माँ का दूध लेते हैं वो, तो माँ को किस तरह का भोजन करना चाहिए ऐसे समय में और अपने बच्चे को भी कराना चाहिए?
4: वो तो दीदी क्या है, भोजन में तो उसको जरूरत है, तो जो हमारे यहाँ दाल भात बोलते हैं, अच्छे खुराक जो हल्के खुराक
1: जी जी,
4: ज्यादा भारी खुराक खाना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे के लिए भारी पड़ता है,
1: जी जी,
4: हल्के खुराक खाए, लीला शाक भाजी खाए, दूध मात्रा में लेना भी जरूरी है क्योंकि दूध से भी बच्चा थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो बच्चों को भी दूध पिलाना जरूरी है। अभी तो क्या दीदी पाउडर आ गया है, मैंने बताया कई लोग को पाउडर पिलाते हैं बच्चों को, तो बच्चा इतना मोटा हो जाता है, मैं मेरे परिवार की बात करूं
1: जी,
4: तो इतना पहले दुबला पर किया था वो पाउडर का एक डब्बा उससे पिला दिया था, आज देखो तो इतना बॉडी का हो गया था, मैंने बोला तो इतना बारीक हो गया कि हमने पाउडर पिलाया
1: जी जी,
4: ऐसा पाउडर तो नहीं पिलाना चाहिए,
1: बिल्कुल बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए जी,
4: नहीं बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, इससे शरीर भारी हो गया है बहुत
1: जी,
4: तो कभी कभी माता ऐसे पिलाती है तो, लेकिन नहीं पिलाना चाहिए उसको, अच्छा दूध पहले तो दीदी क्या था, हम तो जब छोटे थे तो हम तो बकरी के दूध पीते थे,
1: बहुत अच्छा है बकरी का दूध तो सबसे बेस्ट है,
4: हमारे घर पे ही बकरियां थी जब हम छोटे थे, तब हमारा दो बकरियां थी, तो हम सभी भाई बहन बकरी का दूध पीते, बड़े हुए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बकरिया का दूध सभी वनस्पति के मिला हुआ आता है
1: जी,
4: तो वही अच्छा रहेगा, लेकिन आजकल वो नहीं है, आज तो बस जो आता है वही जो चिलाता है छेली रहता है वो खाते थे
1: जी जी,
4: बस लेकिन हल्का खोरा खाएंगे तो बच्चा भी अच्छा रहेगा और माता पिता भी, माँ भी अच्छी रहेगी
1: जी जी। बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत बहुत आभार जी। चलिए यहीं पर सुनेंगे एक गीत, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा जरूर करेंगे, जुड़िएगा, नंबर हमारे है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो, आज के विषय में आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हो, आइए सुनते हैं एक गीत।

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: बचपन में पैसा जरूर कम था, बचपन में पैसा जरूर कम था, पर यकीन मानो उस बचपन में दम था, पर यकीन मानो उस बचपन में दम था। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि जैसा माहौल होगा वैसे ही बच्चे उसमें ढलेंगे और उस अनुसार ही वो बनेंगे। क्या कहेंगे आप? आपका विचार क्या है, किस तरह का माहौल बच्चों को मिलना चाहिए? जुड़िएगा इस विषय में, चर्चा जरूर आप करिएगा। हम भी आपकी राय सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और इस सुंदर से विषय में आप भी अपनी चर्चा अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। बात चल रही थी माहौल की कि बच्चों को माहौल कैसा मिलना चाहिए। देखिए, घर की बात तो पहले ही होती है, और आप

0: सभी ने कही ही है कि भाई सबसे पहले तो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, उसके बाद बाहर का। लेकिन बच्चे क्या है, या तो अपने अड़ोस पड़ोस के साथ खेलेंगे या अपने रिश्तेदार जो काका ताऊ इनके बच्चों के साथ खेलेंगे। तो कितनी बार क्या है कि भले भाई भाई है लेकिन एक भाई के घर का माहौल अलग और दूसरे भाई के घर का माहौल अलग। अब बच्चे तो खेले बिना नहीं रहेंगे, झाए बिना नहीं रहेंगे, उसका भी असर पड़ता है। जैसे कुछ शिकायतें सुनने को मिलती है कि ताऊ के बच्चे हैं, अंकल के बच्चे हैं, अब वो आपस में खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, फिर उसको अकेला कर देते हैं कि जा तू यहाँ से, हमारे घर से जा। जैसे बच्चे जाते हैं अपने बड़े पापा के यहाँ पर, तो बड़ी मम्मी है बाहर निकाल देती है, गेट बंद कर देती है कि जाओ तुम यहाँ से, अभी नहीं आओ। बच्चे मैंने देखा है, बच्चों को रोते हुए भी देखा है। अब 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे क्या समझते हैं, वो तो अपने भाई बहनों के साथ खेलेंगे। लेकिन महिलाएं पुरुष इस तरह का व्यवहार भी करते हैं, नहीं आना है अभी, जाओ यहाँ से, भले बच्चा रो रहा है लेकिन फिर भी दरवाजा बंद कर देते हैं कि नहीं आना है, जाओ यहाँ से। तो वो बाल मन पर बहुत असर पड़ता है बच्चों का। वो रोते रोते भले अपने घर में आता है, भले उसके मम्मी पापा प्यार से उसको समझाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के कहीं ना कहीं अंदर से लग जाता है। फिर भी बच्चा तो बाल मन होता है ना, फिर जैसे जाने देते हैं तो खुश हो जाते हैं कि अरे वाह आज तो मुझे आने दिया घर में। क्योंकि अब एक भाई के एक ही बच्चा है, बड़े भाई के 2-3 बच्चे हैं, तो अब वो अकेला बच्चा क्या करेगा, अपने भाई बहनों के साथ ही खेलेगा ना, बड़े पापा के उधर ही जाएगा। तो इस तरह का माहौल भी बच्चों को मिलता है, इससे बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। और आजकल हर माता पिता यही चाहते कि एक बच्चा या फिर ज्यादा से ज्यादा 2, दूसरे का भी कम सोचते हैं। एक बच्चा हो गया बहुत हो गया, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, बहुत हो गया। लेकिन जब उनको कंपनी चाहिए तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बड़े जब हम बाहर जाते हैं तो हमको भी हमारे बरोबरी के चाहिए कि भाई हमारे को भी कोई कंपनी मिले तो अच्छा लगे। बच्चों का भी वही हाल है, बच्चे भी बच्चे के साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि पड़ोस में हो चाहे अपने ही परिवार में हो 2-3 बच्चे हैं लेकिन उस बच्चे को आने ही नहीं देते हैं, तो क्या मतलब उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसलिए माहौल अच्छा बना के रखना है, सिर्फ अपने बच्चे का ही नहीं सोचना है, हमारे अड़ोस पड़ोस के बच्चों का भी सोचना है कि अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे है वो भी है तो एक परमात्मा के ही संतान है ना, तो उनको भी प्यार दो और घर में उनको आने दो। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार शांति।
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। गोपाराम जी कैसे हो?
1: बहुत अच्छे विचार आपके सुन रहे हैं
0: जी।
1: घर बैठे वो गंगा आती है
0: जी,
1: वो वाली बात है। अलग अलग भाइयों की बहनों के सुझाव आते हैं, सुनते रहते हैं
0: जी जी जी।
1: और मेरे पास एक बहन आई थी थोड़े दिन पहले
0: जी,
1: वो कुछ ये कॉफी पीने की ऐसा कोई रखते है
0: जी,
1: वो लोग मालूम तो पड़ ही जाता है
0: जी।
1: फिर मैंने उनको कहा मैं बाबू तुम्हारे दालदर मेरे को दूर हो जाएंगे, अब पैसों की कमी नहीं रहेगी
0: जी।
1: तो उसने क्या जवाब दिया था, नहीं नहीं एक कॉफी के पीछे के 10 रुपए मिलते हैं।
0: अच्छा
1: एक अच्छा एक बात, दूसरी बार अभी मैं एक दुकान पर बैठा, एक स्कूल ड्रेस में लड़का 10वीं 11वीं का होगा
0: जी,
1: उसने पूछा कि भाई सिगरेट है अंदर?
0: ओहो
1: क्या पता था, व्यापारी ने मुझे देख के मना किया, वो जाना फिर वो तो गया। मैंने कहा मां साहब के लिए लेने आया क्या? नहीं नहीं ये तो क्या पीते है, और का मौका मिला तो वो पी भी लेते हैं क्या।
0: अरे
1: अब ऐसा माहौल भी बन रहा है
0: जी।
1: और दूसरा संस्कार का आपने बात बताई, तो बच्चों में क्या होता है कि 2 प्रकार के संस्कार होते हैं। अब उसके माता पिता के यहाँ का अलग संस्कार होते हैं और ननियाल मामा की माँ के अलग होते हैं
0: जी।
1: ये दोनों का तालमेल बिठा के फिर आगे बढ़ना पड़ता है। पहले ऋषि जो थे ना
0: जी,
1: वो ये विचार देने का ही काम करते थे, गाँव में घूमते और जगह जगह जा करके
0: जी।
1: आज भी कई कई है, ऐसी बात नहीं है
0: जी,
1: लेकिन ये बहुत कम हो गया है
0: जी।
1: वो माँ बाप कमाने में लगे कि बच्चा पढ़ रहा है मेरा और अच्छी स्कूल में एडमिशन लेगा, वो मालूम नहीं कि सिगरेट पी रहा है ना
0: जी,
1: और क्या क्या कर रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका ध्यान नहीं रखते है। थोड़ा हंसी मजाक जैसा भी बताऊँ आपको, एक भाई नया नया शादी करके आया, उसके घर वाली अड़ोस पड़ोस में झगड़ा करने लगी
0: जी।
1: लोग आके उसको बोलने लगे, अरे तुम्हारी घरवाली ऐसी क्या मेरे को झगड़ा करती है। तो उसने कहा भाई मेरे को क्यों बोल रहे हो, मेरी सासू जी के पास में जाओ न के।
0: अच्छा क्या बात है बहुत अच्छी बात है कि भाई मेरे को क्यों बोल रहे हो, सास ने शिक्षा संस्कार दी है बेटी को तो उनके पास जाओ। सही है, जब कुछ बातें हो जाती है तो माँ तक, चाहे बेटा बिगड़े चाहे बेटी बिगड़े, पिता के पास कोई नहीं भेजेंगे, माँ के पास ही भेजेंगे कि जाओ अपनी माँ के पास, जबकि माँ तो अच्छी शिक्षा संस्कार ही देती है अपनी बेटियों को चाहे अपने बेटों को, लेकिन फिर भी नाम माँ का आता है। और जब कोई अच्छे नंबर से पास होता है या फिर कोई अच्छा काम करता है तो उस समय पिता बड़े फक्र से कहते कि वाह मेरा नाम रोशन कर दिया, और बिगाड़ा है तो माँ का नाम कि तुम्हारा बेटा है तुम्हारी बेटी है तुम जानो, ऐसा भी होता है। खैर बात चल रही थी बच्चों के संस्कार की, तो ऐसे देखो एक घर की बात नहीं कह रही हूं मैं, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो चाहे परिवार वाले हो, बच्चे को आने नहीं देते हैं घर में, तो उसका भी बच्चों बाल मन पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए देखिए अपने बच्चे हैं वो ही पड़ोस के बच्चे हैं वो ही अपने परिवार के बच्चे हैं तो उनको भी आने दीजिए। जबकि देखिए आप दूसरा के घर में बच्चे जाएंगे ना तो बिल्कुल मस्ती नहीं करेंगे, वो चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने जो भाई बहन है अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चे उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि अरे वाह मेरे दोस्त है या मेरे भाई है, ये फीलिंग उनके अंदर आएगी। अपने घर में चाहे कितने भी मस्ती करती हो करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है माताएं परेशान हो जाती है, लेकिन दूसरों के घर में वो चुपचाप बैठे रहते हैं। हेलो
2: हेलो बहन जी परिवार के।
0: हाँ जी कंचन भाई।
2: ऑफलाइन ऑनलाइन?
0: ऑन एयर।
2: परिवार के जो बच्चे के वो साथ अपना बच्चा खेले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहन जी क्या है कि जो परिवार के बच्चे है न वो परिवार के पड़ोसी जी हर रोज झगड़ा करते हैं, ये संस्कार बच्चों में आया है
0: जी।
2: और बच्चे भी गालियां, ये बच्चा गालियां देना शुरू कर देता है
0: जी।
2: तो ये अभी मैं ही बताऊं, मेरे बेटे का बेटा था दिव्यांशु, तो ये हमारे यहाँ आया तो कुछ गालियां देने लगा, तो मैंने बोला कि ये कहाँ से सीखा
0: जी।
2: तो ये बोले, मेरी बेटी बोली कि भाई ये पड़ोस वाला एक है वो बच्चा वो रोज खेलने के लिए आता है इससे सीखा है
0: जी।
2: तो ये थोड़ी सावधानी रखने की थोड़ी जरूरत
0: है, बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सही बात है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है
0: जी जी, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। तो ऐसा भी होता है कि जब अपनी उम्र के बच्चे गाली गलौज करते हैं तो बच्चे सीखते ही हैं, इसलिए माताओं को पिताओं को चाहिए कि भाई अपने बच्चे को किस तरह का माहौल देवे। बहुत सारे देखो बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे कि माहौल अच्छा नहीं होता है ना तो माता पिता वो घर छोड़ करके दूसरे घर में भले किराए पर चले जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य देखते हुए वो लड़ाकू माहौल झगड़ा वाले माहौल में रहना पसंद नहीं करेंगे। वो यही सोचते कि हमारा तो जीवन बीत गया लेकिन हमारे बच्चों को ऐसा माहौल नहीं देंगे। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे माता पिता उस माहौल को छोड़ करके अच्छे माहौल में चले जाते हैं, चाहे भले वो किराए पर रहेंगे खुद का घर हो फिर भी वो छोड़कर चले जाएंगे, किराए पर चढ़ा देंगे या बेच देंगे। इसलिए देखिए बच्चों को माहौल देना बहुत जरूरी है, एक अच्छा माहौल मिलेगा तो बच्चा का मन स्वस्थ रहेगा, संस्कारिक बनेंगे और उनके ऊपर सकारात्मक असर पड़ेगा और वो बच्चे भविष्य में कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, आगे बढ़ेंगे और आपका नाम भी करेंगे। इसलिए माहौल अच्छा दीजिए, घर का भी अड़ोस पड़ोस का साथ का, उन किस तरह के बच्चों के साथ बच्चे रह रहे हैं ये भी ध्यान देना जरूरी है। संग का रंग जरूर लगता है, बड़े होने के बाद वो कहते ना कि जब घड़ा पक जाता है फिर उस पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन कच्चा घड़ा होता है तो उसको जिधर आप मोड़ेंगे उधर वो मुड़ जाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छा माहौल दीजिए और हमेशा घर का माहौल अच्छा बना के रखिए, यही खुशनुमा जीवन का राज है। और आइए सुनते हैं गीत, परंतु प्रश्न आज का है कि धात्री माता किस तरह का आहार लेवे और किस तरह का आहार अपने बच्चे को देवे। प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, नंबर हमारे है 94 14 15 14 15। और आइए सुनते हैं गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

बहुत गाने मैंने हिंदी में भी गाया था, लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, सिंहली, सुवरिया, सो मेनी लैंग्वेजेस मैंने गाई थी। मैं एस जानकी प्लेबैक सिंगर बोल रही हूँ। एफएम रेडियो नाम है मधुबन, इसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम्स आता है, आप जरूर सुनना चाहिए, प्रेम से सुनिए। आप सुनते रहना, मुस्कुराते रहना।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आशियाना के किचन में आज बनाएंगे टमाटर पनीर पिज्जा। भाई पिज्जा तो बच्चे बड़े पसंद करते हैं। खैर कहते हैं कि पिज्जा है, ब्रेड की कोई भी चीज है, वैसे बहुत कम खानी चाहिए, लेकिन कभी कभार खाने में कोई नुकसान नहीं। 6 महीने में 5 महीने में एक बार तो आप बना करके खा सकते हो और बच्चों को भी खिला सकते हो। और ऐसी चीजें तो बच्चे बड़े ही पसंद करते हैं। घर में नहीं मिलते तो फिर बच्चे लोग क्या करते हैं, बाहर जा करके खा लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम घर में ही बना करके खिला देवे, ताकि हमारे नजरों के सामने तो बच्चे रहे और हमें पता तो चले कि बच्चे कितना पसंद करते हैं या नहीं करते इन चीजों को। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर क्या है कि माताएं कंट्रोल करती है या बनाती नहीं है, कोई कोई को आता भी नहीं है बेचारे को, कैसे बनाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चे बाहर जा करके खा लेते हैं, जो स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो। लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ जाएंगे, 5 साल के 6 साल के बच्चे भी ये चीजें बहुत पसंद करते हैं। देखते हैं बाहर तो या फिर अड़ोस पड़ोस में तो जिद करते हैं कि हमें भी पिज्जा खाना है। तो पिज्जा भी तरह तरह के बनते हैं, लेकिन आपको क्या है, पौष्टिक पिज्जा बनाना सिखा रही हूँ टमाटर और पनीर का। ठीक है, तो जरूर बना करके खाइएगा और जरूर अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। माताएं अक्सर क्या है कंफ्यूज हो जाती है, हर एक के घर में तो ओवन नहीं होते ना, तो माताएं कैसे बनाएगी। फिर वो यही सोचती है कि कैसे बनाऊं, ओवन ही नहीं है घर में। तो बच्चे जिद करते तो यही कहते जाओ बाहर जाकर के खा लो। लेकिन अगर ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, बाटी का कुकर तो हर एक के घर में होता है ना। भाई राजस्थान है, राजस्थान में तो दाल बाटी का ज्यादा ही क्रेज है, तो कुकर तो घर घर में रहते हैं। बस उस कुकर में भी आप बना सकते हो, ओवन की जरूरत नहीं। ठीक है, और है अगर ओवन तो फिर ओवन में बनाइए, साधन है तो यूज करिए, नहीं है तो कंफ्यूज मत होइए। अगर बाटी का कुकर भी नहीं है तो छलना तो सभी के घर में रहता है ना, बस नीचे तवा और ऊपर छलना रख दो और जो भी आप जैसे बेकरी आइटम बनाते हो उसमें बना दीजिए। तो अब मैं आपको सामग्री बता रही हूँ टमाटर पनीर पिज्जा के, कि आप लीजिए 1 बड़ा चम्मच तेल, ठीक है, 2 बड़ा चम्मच लेना है मक्खन, 6 टमाटर ले लीजिए, 200 ग्राम पनीर ले लीजिए गोल गोल कतले में कटा हुआ, ठीक है, 1 बड़ा चम्मच सोया साग की नरम पत्तियां लेनी है, और फिर स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च या लाल मिर्च जो भी आपको पसंद है ले सकते हो। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, ध्यान दीजिएगा, अगर रिफाइंड तेल है तो वो लीजिए, नहीं तो कोई सा भी जो भी तेल आप घर में खाते हो ले लीजिए 1 बड़ा चम्मच। फिर 2 बड़े चम्मच ले लीजिए मक्खन, 6 टमाटर लेना है, 200 ग्राम पनीर लेना है और 1 बड़ा चम्मच सोया साग की नरम पत्तियां लेनी है। फिर स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च या फिर लाल मिर्च, वो आप पर छोड़ा है कि आप क्या पसंद करते हैं, काली मिर्च पसंद करते हैं लाल मिर्च। ठीक है, अब बनाने का तरीका भी मैं आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, ओवन गरम करिए, अगर ओवन है तो, नहीं है तो कुकर रख दीजिए गैस पर। फिर आप पहले पिज्जा का बेस, इसके ऊपर तेल चुपड़ करके 5 मिनट इसको आप कुकर में थोड़ा सा बेक करें, ओवन है तो ओवन में बेक करें, नहीं तो कुकर में, फिर निकाल दीजिए बेक करके। ठीक है, अब टमाटर और पनीर को बेस पर सजा करके ऊपर से पिघला हुआ मक्खन फैला दीजिए, सब के ऊपर ये नमक काली मिर्च सोया साग की पत्तियां को बुरक करके पिज्जा को इतनी देर तक आप बेक करें कि पनीर पर सुनहरापन आ जाए। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीका है, आप बाटी के कुकर में ये रख सकते हैं या छलने पर रख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई चिपके नहीं, और दूसरी बात है कि ये जले नहीं, आंच इस तरह आपको रखना है। ठीक है, ओवन में तो हमको पता होता है भाई 80 डिग्री में कर ले तो हो जाएगा, लेकिन गैस पर आप अगर आप बाटी के कुकर में या छलने में बना रहे हैं तो आंच हमेशा मध्यम रखिए और बीच बीच में देखते रहिए कि सुनहरा हुआ या नहीं, तैयार हुआ या नहीं, फिर इस तरह आप निकाल सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा तरीका है कुकर और छलने में बनाने का, लेकिन छलना डायरेक्ट नहीं रखना है गैस पर। ठीक है, नीचे तवा जरूर रखिएगा, तवा थोड़ा सा मोटा होता है ना, तो आग को इतना डायरेक्ट पहुंचाता नहीं है, नहीं तो फिर वो तो बनेंगे ही नहीं, जल जाएंगे। डायरेक्ट छलना रखेंगे तो डायरेक्ट आग पहुंचेगी तो वो जल जाएगा, और कुकर तो वैसे ही हाइट पर होता है, तो कुकर रखने के बाद तो कुछ भी रखने की जरूरत नहीं होती, स्लो कर दीजिए गैस को और आप डायरेक्ट इस तरह बेक कर सकते हो। ठीक है, फिर से दोहरा रही हूँ विधि, ध्यान दीजिएगा,
कि आपके पास कुकर है, छलना है, जो भी है रखिए गैस पर और गैस चालू करिए। अगर छलना रख रहे हैं तो नीचे तवा, फिर छलना रखिए, कुकर रख रहे हैं तो डायरेक्ट कुकर रखिए, ओवन है तो ओवन को गर्म करिए। पहले पिज्जा बेस पर आप तेल चुपड़िए और तेल चुपड़ करके 5 मिनट तक इसको बेक करिए, ठीक है। फिर निकाल करके आप टमाटर और पनीर को बेस पर सजा करके ऊपर से पिघला हुआ मक्खन फैला दीजिए। सब के ऊपर से आप नमक, काली मिर्च और सोया साग की पत्तियां भी बुरक करके पिज्जा को इतनी देर तक बेक करिए कि पनीर पर सुनहरापन आ जाए। इतनी देर आपको बेक करना है लेकिन जलाना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, टमाटर पनीर पिज्जा तैयार है। तो देर किस बात की, भोग लगा देते हैं भाई, बच्चे तो भाई इंतजार कर रहे हैं और कंट्रोल नहीं होता है। तो आइए लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप टमाटर पनीर पिज्जा रखिए और भी जो कुछ बनाया है आपने वो रखिए, और तुलसी पत्र रखिए, जल की स्वच्छ ग्लास भर के रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो। कौन से पिज्जा का? पनीर टमाटर पिज्जा का, ठीक है। और देखिए, आपको भी अगर रेसिपी आती है सात्विक रेसिपी तो जरूर आप भी दे सकते हो, और एक दिन पहले आप बता सकते हो कि रेसिपी आप देंगे, ठीक है। आइए सुनते हैं गीत, परंतु प्रश्न बड़ा अच्छा है कि धात्री माता किस तरह का भोजन करना चाहिए, धात्री माता को और अपने बच्चे को भी किस तरह का आहार देना चाहिए, जवाब जरूर देंगे। नंबर है 94-14-15-14-15 और सुनेंगे गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? नहीं ना?
3: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम काफी अच्छे रहे हैं, और बहुत ही सुंदर आपको विचार भी दिया है कर्मों के ऊपर, और नुस्खे भी बहुत अच्छे दिए हैं। छोटे बच्चों का अगर चुन्नट काटते हैं तो क्या करना चाहिए, तो बहुत अच्छे उपाय बताए हैं, जरूर आप करिएगा। और रेसिपी भी बहुत अच्छी आपको सिखाई है, पिज्जा पनीर टमाटर वाला पिज्जा जरूर बनाइएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बड़ी अच्छी हुई है कि बच्चों को माहौल अच्छा देंगे तो बच्चे संस्कारिक बनेंगे, और जरूरी भी है क्योंकि पहले के समय में तो तीन तीन चार चार बच्चे होते थे, पांच पांच छह छह बच्चे होते थे, तो चलो वो नहीं, वो कपूत निकला तो दूसरा सपूत निकल जाएगा, माता पिता निश्चिंत थे कि कोई न कोई तो हमारी सेवा कर ही लेंगे। लेकिन आज के समय को देखते हुए तो बच्चे एक या दो ही होते हैं, और पहले का और अभी के माहौल में बहुत फर्क है। पहले कैसा भी था लेकिन माहौल अच्छा मिलता था, आज हम कितने भी स्टैंडर्ड का जीवन जीते हैं फिर भी माहौल अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए बच्चों को अच्छा माहौल देवे तभी बच्चे संस्कारिक बनेंगे, ठीक है। और आज का प्रश्न यही था कि धात्री माता किस तरह का खाना खाए और बच्चों को भी खिलाए, तो जवाब दिया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, दयाराम जी लाखनी से, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई झोटाना से, और कुपाराम जी कोजरा से। किसी ने कहा कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो उससे खून बढ़ेगा और बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। फिर किसी ने कहा है कि भाई लगभग तो सभी ने यही कहा है कि हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाए। फिर किसी ने कहा कि भाई महिलाएं तो नहीं जा सकती है, पति ला करके देंगे तभी तो महिलाएं खा सकेगी, तो पतियों को चाहिए या जो भी सब्जी लेने जा रहे हैं उनको चाहिए कि वो कंजूसी ना करे और फल फ्रूट हरी पत्तेदार सब्जियां लाए। तो देखिए सभी का जवाब सही है, सभी के लिए मैं एक बार तालियां बजवाना चाहूंगी। तो बिल्कुल जरूरी है कि जो धात्री माता है, जो बच्चा स्तनपान कर रहा है और बच्चे को भी खुराक की आवश्यकता है, क्योंकि साल भर के बच्चे, 9 महीने 10 महीने के 12 महीने के बच्चे खाली माँ के दूध से अगर पेट नहीं भरता है तो उनको भी हल्का आहार देना पड़ता है, और अगर माँ के दूध से चल जाता है तो फिर तो ऊपर से कुछ नहीं देना चाहिए साल भर के बच्चों को, क्योंकि वो माँ के जो खुराक है, माँ का जो फिट करता है बच्चा, उस दूध में सारे ही पौष्टिक तत्व आ जाते हैं। इसलिए माँ को अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है धात्री माता को, कि वो हरी पत्तेदार सब्जियां खाए, थुल्ली खिचड़ी ज्यादा खाए, उसमें अच्छा सा घी डाल करके खाए, है ना, और थोड़ा सा नवसेका खाए, ठंडा होने के बाद नहीं खाए, नहीं तो सर्दी खांसी की तकलीफ होगी तो बच्चों पर भी असर होगा। और दूध जरूर पिए और फल फ्रूट भी खाते रहे, और अगर बच्चे फिर भी आपके दूध से बच्चों को पूरा नहीं पड़ता है तो बच्चों को भी आप, जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो उनके दांत तो नहीं है, तो आप उपमा अगर बना रही है तो उपमा में कुछ मत डालिए, खाली घी में सेक करके हल्का सा नमक और हल्दी डाल करके एकदम ढीला ढीला बनाइए, चाहे तो आप उसमें थोड़े से छाछ या नींबू डाल सकते हैं, और ढीला ढीला बना करके एकदम राबड़ी की तरह, राजस्थान में राबड़ी बोलते हैं, ऐसे ढीले ढीले राबड़ी की तरह बना करके बच्चों को चम्मच से खिलाइए तो आसानी से खा लेंगे और सूजी नुकसान भी नहीं करती है। फिर आप जैसे कि फ्रूट, बच्चों को फ्रूट के जूस पिला सकते हो थोड़ा बहुत। और अगर जैसे बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे केला है, तो केले को तो आप हाथ से मैश करके भी खिला सकते हो। ड्रैगन फ्रूट है, उसको भी आप मैश करके खिला सकते हो। तो जो मैश हो जाते हैं हाथ से, उसको आप हाथ से खिलाइए। और अगर बच्चे नहीं खा सकते, जैसे अनार के दाने नहीं खा सकते क्योंकि दांत नहीं है तो चबेंगे नहीं, तो उसका जूस पिला करके आप दे सकते हो। तो इस तरह धात्री माता को भी ध्यान रखना है और अपने बच्चे का भी खाने का पूरा ध्यान रखना है, संतुलित आहार खाना है, ना कि ऐसे भारी भारी भोजन, ऐसे समय में दाल बाटी या मक्की की रोटी, इस तरह भारी खाना नहीं खाना है, क्योंकि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, हो सकता है उनके पेट में दर्द शुरू हो जाए। ठीक है, और अब मैं आपको एक प्यारी सी बच्चों पर ही कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। कविता का शीर्षक है झूला। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नबको छूले। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नबको छूले। हे बहार सावन की आई, हे बहार सावन की आई, देखो शाम घटा नब छाई। अब फुहार पड़ती है भाई, अब फुहार पड़ती है भाई, ठंडी ठंडी अति सुखदाई। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर के नब को छूले। कुहुक कुहुक कर गाने वाली, कुहुक कुहुक कर गाने वाली, प्यारी कोयल काली काली, बड़ी सुरीली भोली भाली, गाती फिरती है मतवाली। हम सब भी गाकर झूले, पेंग बढ़ाकर नब को छूले। मोर बोलता है उपवन में, मोर बोलता है उपवन में, मस्त हो रहा है नर्तन में। चालक भी चातक भी बोला वन में, चातक भी बोला वन में, आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नब को छूले, पेंग बढ़ाकर नब को छू।

0: जब कबूतर को पता चलता है कि बिल्ली उसके पास आ गई है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है जैसे बिल्ली गायब हो गई है, पर ऐसा होता नहीं है बाबू। वैसे हम लोग कभी कभी यही तरीका अपनाते हैं, समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या इससे वो खत्म हो जाती है? घर ऑन एयर के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राठौड़ परिवार बड़ी मुश्किल से नाश्ते की टेबल पर बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर होती है एक नॉक। कौन पूछने पर गेट से जवाब आता है, पुलिस। अब यहाँ कबूतर है राठौड़ परिवार और बिल्ली है पुलिस। चलिए देखते हैं कि अब कबूतर करता क्या है।
1: बड़े भैया गेट मत खोलिए, मैंने सीरियल में देखा है, पुलिस एकदम से आती है अंदर और बिना कुछ बताए हथकड़ी लगाकर ले जाती है और फिर बहुत मारती है।
2: अरे अरे तो आप गेट मत खोलिए, आपको ले गए तो हमारा क्या होगा?
3: अरे पुलिस वालों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि किसी को भी ले जाएं, और मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैंने क्या किया है?
4: एक काम करते हैं, तुम लोग सब चुप हो जाओ, उनको लगेगा घर पे कोई नहीं है तो सब वापस चले जाएंगे।
5: माँ ऐसी थोड़ी होता है, आप
4: चुप कर किशन, जेल जाना है क्या?
6: माँ आप डरो मत, कुछ नहीं होगा। बड़े भैया आप बैठिए, भाभी घबरा रही है, मैं देखता हूँ और आप लोग जरा शांत हो जाइए।
7: भैया मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
6: ठीक है चलिए।
4: नहीं वीरेंद्र रुक, अरे रुक बेटा।
6: माँ आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा।
8: हम नजदीकी पुलिस थाने से आए हैं, हमें विजय की तलाश है।
7: आपका मतलब विजय दीनानाथ चौहान है?
8: आप पुलिस वाले से मजाक कर रहे हैं?
7: सॉरी सर, मैं नर्वस होता हूँ तो मजाक निकल जाता है।
8: ठीक है आप मेरी बात का ठीक से जवाब दीजिए, विजय कहाँ है?
6: जी विजय नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता।
8: देखिए हमें पता चला है यहीं रहता है, एक आरोपी को छुपाना कानूनन जुर्म है, इसलिए जल्दी बताइए विजय कहाँ है।
6: सर हम सच कह रहे हैं, यहाँ कोई विजय नहीं रहता।
8: देखिए हमारे पास प्रूफ है, विजय कुशवाहा आधार कार्ड डिटेल्स है, उसमें यहीं का एड्रेस दिया हुआ है।
9: अरे ये तो अपना विजय है।
8: हाँ पकड़े गए, मतलब हमसे झूठ बोल रहे थे, कौन विजय अब कहते हो अपना विजय?
6: नहीं नहीं सर, मतलब क्या है ना, ये हमारे परिवार का मेंबर नहीं है, ये तो हमसे पहले इस मकान में रहता था तो इसलिए ये एड्रेस पड़ा होगा, इसकी पोस्ट आती है कभी कभी यहाँ तो लेने आ जाता है बस।
8: कोई और आपके एड्रेस पे 5 साल से अपनी पोस्ट पार्सल मंगा रहा है, आपने कुछ नहीं कहा?
7: ये लोग यहाँ 5 साल से रह रहे हैं।
8: सर मुझे लगता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं।
6: नहीं सर हमें लगा वो तो हमारा दोस्त है।
10: सर हुआ क्या है ये तो बताइए।
8: देखिए विजय ने बड़ा बैंक फ्रॉड किया है।
0: कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में कोई नहीं फंसना चाहता, लेकिन अगर मुसीबत आ ही जाए तो फिर समझदारी ही तो काम आती है। आपका आईडी प्रूफ आपका प्रमाण है, ध्यान रखिए कि आपके नाम नंबर या एड्रेस का कोई और इस्तेमाल ना करे। अब पुलिस अपने विजय, मेरा मतलब है कि विजय को तो पकड़ ही लेगी बैंक में जो फ्रॉड किया है, लेकिन क्या राठौड़ परिवार की समस्या कम होगी? अब ये तो बाद में पता चलेगा।
11: मर्दों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, हमसे हंस खेल के बात करने वाला वो विजय फ्रॉड निकला।
12: रागिनी दीदी पहली बार सही बात बोली है आपने।
11: पहली बार तो क्या कहना चाहती है शांति, क्या मैं हमेशा गलत बात कहती हूँ?
10: भैया ये हमारी बहने ही है ना, कहीं मंदिर से तो उठा कर नहीं लाए थे इन दोनों को?
11: किशन तू तो पिटेगा मुझसे।
12: दीदी आपसे और मुझसे दोनों से।
11: रुक अभी बताती हूँ।
12: पकड़ो दीदी पकड़ो इसको, बहुत मजाक बनाता है हमारा।
10: अरे कोई बचाओ मुझे इन दोनों से, कोई छोड़ के आओ इनको वापस मंदिर में।
11: तुझे तो मंदिर में भी नहीं रखेंगे, रुक।
1: मारो दीदी, मारो मारो।
4: अरे क्या कर रहे हो तुम तीनों, बच्चों की तरह लड़ रहे हो।
13: थोड़ा लड़ने तो इन्हें अंबिका, बड़े होकर भी बचपन जी लेना चाहिए कभी कभी। घर की रौनक इस मीठी प्यार वाले झगड़े से ही तो है। और देखो ये लोग इस बहाने एक तो हो गए ना,
2: इसलिए तो मैं भी प्यार से झगड़ती हूँ ताकि आप लोग खुश रहें।
4: बड़ी बहू तू तो इतना खुश कर देती है कि खुशी के साथ मेरा बीपी भी बढ़ जाता है।
3: वैसे चंद्रावती तुम तो बचपन में बड़ी शांत थी, तुम्हारी माता जी ने बताया था मुझे, कहीं शादी के लिए झूठ तो नहीं कह दिया था।
2: मैं तो सच में बड़ी शांत थी, अपने छोटे भाई पर कभी हाथ नहीं उठाया मैंने। और ये आपकी बहनों को देख लीजिए।
10: बड़े भैया आप तो बहुत लकी हैं।
13: हाँ बिल्कुल, हमारी बड़ी बहू ने आते ही इस घर को संभाला, इस घर को एक करके रखा। जब इन दोनों की शादी हुई थी तो चंद्रावती 23 साल की थी और गजेंद्र 26 का, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी बहू पर ज्यादा थी। शादी होते ही एक लड़की से सब ऐसे उम्मीदें लगा लेते हैं जैसे एकदम से वो बदल जाए, अपनी उम्र से भी बड़ी होकर व्यवहार करने लगे और वही लड़के को छूट दे देते हैं, बस इसलिए कि वो एक लड़का है। इसलिए मैं तो सच में मानता हूँ मेरी बहू तो बहुत सयानी है।
2: थैंक यू पिताजी।
0: चलिए कोई तो समझा कि बहू भी एक आम लड़की ही तो है जिसे अपनी सहेलियों से बात करना पसंद है, जिसकी आंखों में अपने भी कुछ सपने हैं। उसी लड़की को शादी की रस्मों के बाद एकदम से सब जिम्मेदारियों से लाद दिया जाता है और कहीं चूक हो जाए तो उसे बुरी बहू का खिताब दे दिया जाता है। उसकी गलतियों पर ताने कसने की जगह प्यार से समझा कर गले लगाकर तो देखिए, देखिए कि कैसे वो बहू बेटी बन जाती है। हाँ वैसे बहू से याद आया कि राठौर परिवार की छोटी बहुरानी राजकुमारी जी नजर नहीं आ रही। ओहो, समझ गया, राजकुमारी जी किचन में है।
4: कुमारी ये क्या कर रही हो? अरे ये कढ़ाई जमीन पर क्यों गिरी हुई है और ये दो तरफ से मुड़ी हुई क्यों है?
14: मासा मैं तो आपने जो कहा था बस वही कर रही थी।
4: मैंने क्या कहा तुझे?
14: आपने तो कहा था मासा कि राजकुमारी हमें कढ़ाई की जरूरत नहीं है, जा इसे बदल कर कुकर ला।
4: तो तूने कढ़ाई को हथौड़े से तोड़ दिया?
14: हाँ मैं तो इसे कुकर बना रही थी मासा।
4: राजकुमारी बेटा मैंने कढ़ाई को दुकान से बदल कर लाने को कहा था।
14: ओ तभी मैं सोचूं कि मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ, फिर मासा ने मुझे कुकर बनाने को क्यों बोला? लेकिन फिर मैंने सोचा मासा ने बोला है कि कढ़ाई को बदल के कुकर ला तो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।
1: आपको क्या लगता है भाभी, इंजीनियर बर्तन बनाते हैं?
14: हाँ मतलब वो पास वाली दुकान पे जो छोटू है ना, वो इंजीनियर ही तो है, बर्तन ठीक करके देता है सारे वो।
1: भाभी वो उसके पापा की दुकान है और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है।
14: ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में शुरू में ही सिखा देते हैं बर्तन बनाना।
4: बेटा अच्छा हुआ तू इंजीनियर नहीं बनी, वरना सारे इंजीनियर दरिया में कूद जाते।
7: हमारी भाभी कितनी भोली है ना?
11: हाँ भोली भी है और भाली भी,
1: जैसी भी है हमारी है।
7: मैं बहुत लकी हूँ मासा कि इस परिवार का हिस्सा हूँ।
0: ऐसा आज्ञाकारी देखा है आपने कि कोई कढ़ाई को कुकर बनाने की कोशिश करने लगे। वैसे हर परिवार में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं और यही तो जिंदगी का मजा है। जैसे चाट होती है ना, थोड़ी खट्टी आहा, थोड़ी मीठी और थोड़ी तीखी, हर स्वाद होता है। ऐसे ही जिंदगी में हर कोई हमारे जैसा सोचने बोलने और करने लगे तो फिर बोरिंग ना हो जाएगी लाइफ। हाँ तो चलिए आप और हम लोगों में छुपी हुई खूबसूरती को देखते हैं और उन्हें सराहते भी हैं। आखिर अपने तो अपने होते हैं। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, आपका साथ निभाने और राठौड़ परिवार की कहानी सुनाने फिर आऊंगा अगले एपिसोड में। इंतजार कीजिएगा हमारा, क्योंकि भाई ये राठौड़ परिवार है, बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है यहाँ।
15: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के उपलक्ष में रेडियो मधुबन के सुनने वाले सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, यानी संगीत का कार्यक्रम, यानी दिल से कनेक्ट करने का एक साधन है ये कार्यक्रम, क्योंकि वो गीत जो हमें अपनी ही भावनाओं से मिलाते हैं, वो गीत जो जीवन को एक नया रूप दे देते हैं, वो पुराने नगमे हो या नए बने रैप सॉन्ग्स, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और आज बहुत कुछ एक साथ, यानी एक पैकेज में लेकर आ रहे हैं आपके लिए। बहुत सारे फ्लेवर्स आपको मिलने वाले हैं और हमारे साथ बहुत नन्हे नन्हे से दो प्यारे से कलाकार हैं, जिनकी मौसिकी, जिनका संगीत बहुत बड़ा है। हमारे साथ हैं साहिली और ऋत्विक, दोनों तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर गीत भी गाते हैं। और क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, सब कुछ आइए उनसे ही जानते हैं। साहिली, ऋत्विक, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। कैसे हो आप लोग?
2: परमानंद में।
1: हाँ, अरे वाह। तो अच्छा, तो हमारे लिसनर्स को थोड़ा अपने अपने बारे में बताओ क्या आप?
2: यस,
1: बताइए ऋत्विक, पहले ऋत्विक से शुरू करें।
2: मैं अम्बाला शहर से आया हूँ, हरियाणा के अंदर है। मेरे को सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, ड्राइंग, स्केच बनाना बहुत पसंद है, उनमें मैं माहिर भी हूँ।
1: वाह, क्या बात है। और साहिली, आप?
3: मैं भी अम्बाला से आई हूँ, हरियाणा में। मैं 8 साल की हूँ और मैं ऋत्विक से 1 महीना बड़ी भी हूँ, बड़ी बहन। और मेरे को म्यूजिक, डांस में इंटरेस्ट है और मैं पढ़ाई में मैथ्स और साइंस में ज्यादा मार्क्स लाती हूँ, बाकी सारी चीजों में अच्छे मार्क्स लाती हूँ, सिंपल।
1: ओके, तो आप दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो, है ना? कैसे रिलेटेड हो एक दूसरे से?
2: जैसे अब इसके जो पापा है वो मैं उनको बड़े पापा बुलाता हूँ, पर वो मेरे लगते हैं ताऊ।
1: ताऊ जी हैं आपके।
2: और जो मेरे पापा हैं वो इसके चाचा लगते हैं, पर ये उनको बुलाती है आशु पापा से।
1: क्या बुलाते हो?
3: आशु पापा।
1: अच्छा, अरे
2: वाह। मामा उनका।
1: ओके, तो आप दोनों एक साथ रहते हो?
3: एक घर में रहते हैं।
1: खूब मस्ती करते हो? करते हैं। अच्छा, कौन कौन रहता है आपके घर में, कौन कौन है?
2: हमारे एक जॉइंट फैमिली है, उसमें ताऊ, ताई, चाचा, चाची
3: और
2: दादू, दादी।
3: हम 4 बहन भाई हैं।
1: हाँ,
2: हमने अपना एक स्टूडियो भी खोलेंगे अभी हम,
3: उसका नाम होगा
2: साधक ग्रुप, क्योंकि एस से साइली, आर से ऋत्विक, डी से धनविक और के से केश।
1: वाओ, तो आप लोगों ने ये सोच के भी रखा हुआ है?
2: नहीं, अभी बस खोल देंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, सबसे बड़ा कौन है आप चारों में?
2: साहिली।
1: साहिली बड़ी है। हाँ, तो और बाकी वो, और फिर आप हो और फिर बाकी वो दोनों छोटे छोटे हैं, तो वो दोनों भी गाना गाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है?
2: हमने लाइन वाइज रखा हुआ है ना, एस से साहिली सबसे बड़ी, उससे छोटा मैं ऋत्विक, उससे छोटा धनविक मेरा छोटा भाई, उससे छोटी केशवी छोटी बहन।
1: तो धनविक और केशवी को भी पसंद है क्या गाना गाना, म्यूजिक?
3: केशवी तो वो बोल नहीं सकती, लेकिन
1: अच्छा, वो बहुत छोटी है,
2: बहुत अच्छा गा लेते हैं वो,
3: लेकिन वो कार गा लेती है।
1: अच्छा, सिखाते हो आप लोग उसको?
3: नहीं, वो उसका इंटरेस्ट है इन चीजों में।
1: अच्छा,
2: ऐसा नहीं कि वो रोते हुए आकार वगैरह, ऐसा नहीं, वो सिंपली जब भी हम उसको कहते हैं कुछ गा के दिखाओ तो वो ऐसे करती।
1: और कितनी बड़ी है वो, कितनी उम्र है उसकी?
2: उसकी 3 साल।
1: अच्छा,
2: बस हुई थी नवम्बर में।
1: तो सबसे छोटे आर्टिस्ट आपके घर में वही है?
2: वो हमसे भी बड़ी आर्टिस्ट है।
1: अरे वाह।
3: और जो धनविक हमारा छोटा भाई है ना, उसे साइंस
1: वैसे, लेकिन हाँ, केयरफुल रह के ध्यान से, है ना, करना चाहिए।
2: उसको आ गया ना, मैंने सिखाया था उसको, तो उसको अब आ गया। पहले तो मैं उसके साथ होता था ना जब सिखा रहा था, अब उसको आ गया,
3: वो सबसे पहले सीखा है। सबसे पहले सीखा वो साइकिलिंग.
1: अच्छा,
2: सबसे ज्यादा
3: हम दोनों
2: 4 ईयर्स की उम्र में और वो 3 साल की उम्र में सीखे.
1: अच्छा,
3: एक दिन में ही सीख गया था वो तो.
1: क्या बात है. स्पोर्ट्स भी वैसे बहुत अच्छी चीज है ना, स्पोर्ट्स में भी आगे जाना चाहिए, अच्छा खेलना चाहिए. पता है स्पोर्ट्स में ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें आप अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो.
2: उसमें जाएगा.
1: और आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें पसंद है ना. पर आप लोग सेम क्लास में सेम स्कूल में पढ़ते हो?
2: यस
3: यस.
1: है तो मजा आता होगा, साथ साथ जाते होगे, साथ साथ पढ़ते होगे.
2: यस
1: है ना. कभी झगड़ा नहीं होता?
2: बहुत कम.
1: बहुत कम
3: होता है.
1: ओके, तो अगर होता है तो क्या करते हो, एक दूसरे को कैसे मनाते हो फिर, अगर मान लो हो गया तो?
2: वो तो हम खुद ही मन जाते हैं आधे घंटे बाद.
1: हाँ, बस अपने आप. हाँ सहेली,
3: कभी मैं मना लेती हूँ इसे, कभी ये इसको मना लेता है. लेकिन इसे मनाना बहुत मुश्किल है.
2: इसे जाकर मना लेती हूँ.
1: क्या कर, मनाते कैसे हो, क्या करते हो?
2: जैसे मैंने इसको अपनी कोई टॉय दे दिया, बॉल दे दी, स्टिकर दे दिया.
3: जैसे कोई हमारा फेवरेट चीज और वो एक दूसरे के पास हो तो दे देते हैं.
1: ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, तो बड़े भी कर सकते हैं. स्टिकर आपको अच्छा लगते होंगे ना?
3: मेरे को स्टिकर अच्छे लगते हैं.
1: मुझे भी अच्छे लगते हैं.
2: मैं जैसे फंक्शन में जाता हूँ डांस वाले, तो मेरी अपने पर्सनल मेकअप सेट है, तो मैं उसमें से थोड़ा बहुत सामान निकाल के दे देता हूँ मेकअप का.
3: हमारी छोटी बहन को भी मेकअप में बहुत शौक है. छोटी उम्र में ही बहुत अच्छा मेकअप करती है.
2: जैसे अब शुरू में फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं,
3: उसको सारा पता है. वो पहले फाउंडेशन लगाती है, उसके बाद वो आईज का करती है, आईज का करो, उसके बाद वो लिप्स का.
2: और वो लगा भी बहुत अच्छा लेती है. जैसे अब छोटे बच्चे,
1: वो तो 3 साल की है ना, उसको भी मालूम है.
2: जैसे अब
3: वो हम फंक्शंस में जाते हैं ना, इसलिए जब मैं चली जाती हूँ ना तो वो पीछे से करवाती है.
2: जैसे अब छोटे बच्चे लिपस्टिक बाहर निकाल देते हैं, वो नहीं निकालती वो.
1: अच्छा, ओ क्या बात है. तो यानी आपसे सीख लिया होगा उसने. साइली से है ना?
3: मेरे से तो नहीं सीखा, लेकिन जो मेरी मम्मा है ना, वो ना मेकअप में बहुत अच्छा लगता है, मेकअप इसलिए.
1: अच्छा, अरे वाह. ओके, ये भी कला है ना, आर्ट है करना. और वही आगे जाके तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. अच्छा ये बताओ, बचपन में जैसे आप लोग तो बहुत छोटे छोटे से हो अभी, तो गाने का शौक कब से आया आप लोगों को?
2: हम जब 2 साल के थे, जब हम 2 साल के थे,
3: हमको लेके जाते थे तो वहाँ पे ना गाते थे, तो हम दादू को कहते थे दादू इसे क्या कहते हैं, तो दादू ने हमको बताया. उसके बाद हम 3 साल या फिर 4 साल से शुरू हो गए.
2: 2 साल से तब हम, जब हमारा पहला फंक्शन था वो था कन्हैया मित्तल के पास, तब सेकंड प्राइज आया था,
3: मेरा आया था
2: हनुमान चालीसा में, तब हम पूरी बोल लेते थे.
1: तो आप लोग 2 साल के थे तब? ओह, तब तो
2: नहीं,
1: बहुत
2: 2 साल से थोड़ा बड़ा,
1: थोड़े से बड़े थे, बहुत थोड़े बड़े हो गए थे. अच्छा, तो हनुमान चालीसा किसने सिखाई आपको?
2: हमारे बड़े पापा, ताऊ.
1: ताऊ जी ने, यानी आपके पापा ने. ओके, तो आपको ऐसा, जैसे आप तो हनुमान चालीसा गाते थे, फिर और गाने गाने लगे, तो कभी आपको लगने लगा कि ऐसा गाना सीखना कब शुरू किया आपने, कि मतलब ऐसा सुर होता है, ये ताल होती है?
3: ये हमने 4-3 साल में शुरू किया था.
1: अच्छा, 3 साल
2: में सिखा
3: दिया था.
2: हमें पता था कि सुर क्या होता है, ताल क्या होता है, इसका वो क्या होता है.
1: किसने सिखाया आपको ये?
3: दादू ने हमको करवाया. और फिर बाद में जो हमारे पहले सर आए थे, उसके बाद ढोलकी और हारमोनियम के लिए एक मैम आए थे, उसके बाद फिर से सर.
2: अब हमारे पास टोटल सर गिटार है,
3: ये
2: कीबोर्ड है, हारमोनियम है, ढोलकी है, अभी हम ऑक्टोपैड लेंगे साइली के लिए, बांसुरी है.
1: वाओ, ऑक्टोपैड भी और बांसुरी भी. बांसुरी कौन बजाता है?
2: बांसुरी दादू.
1: वाओ, क्या बात है.
2: अभी हम भी सीखेंगे, हमें आती है थोड़ी थोड़ी.
1: हाँ, ये तो बहुत अच्छा लगता है. तो दोस्तों चलिए, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन इन नन्हे कलाकारों की कला को सुनते हैं. बहुत सुंदर से एक गीत को सुनते हैं, लौट कर आएंगे कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड पर.

भूल गया, धर्म बचाने की खातिर अब हस्तिनापुर को चला गया। मैं माखन चोरी करता था, कभी न्यायाधीश बन गया। समय का चक्र अजीब था, मैं जीत के भी हार गया। धर्म बचाने वाले को दुनिया ने कपटी बता दिया।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: दोस्तों, ये रैप आपने सुना नन्ही सी 7 साल की साहिली और ऋत्विक की आवाज में, और सोचिए ये बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, कितना मजा आ रहा है इनसे बात करते हुए और ये एक्सप्लोर करते हुए कि इन्हें संगीत से इतना प्यार आखिर क्यों है। आइए इनसे और बातचीत करते हैं।
2: अच्छा, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आप लोग सब कुछ सीखना चाहते हो या कोई पर्टिकुलर है जो आपको लगता है कि
3: इसमें आधे से ज्यादा तो आते हैं?
2: आधे से ज्यादा आते हैं आपको?
3: बस बांसुरी और बस बांसुरी नहीं आती, और डफली भी हमारे पास, वो भी मैं अच्छी बजा लेता हूँ।
2: अच्छा, क्या बात है, वाओ, आप लोग तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हो, तो इसीलिए स्टूडियो बनाने वाले हो क्या?
3: हाँ,
2: उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट
3: तो
2: रखोगे?
3: जब हम 9 इयर्स के हो जाएंगे तब बन जाएगा।
2: क्या करोगे उसके अंदर?
3: हमारा रूम होगा रिकॉर्डिंग का, हम रिकॉर्डिंग करेंगे,
4: और साथ में हमारा छोटा भाई जो है ना स्पोर्ट्स में, वो थोड़ा बहुत कर लेता है, जैसे कि वो डांस बहुत,
3: जैसे अब हमारे पास हम कंप्यूटर लेंगे अच्छी क्वालिटी का, तो उसको रिकॉर्डिंग के लिए रखेंगे सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपने।
4: हमारा छोटा भाई रिकॉर्डिंग करेगा और ये बजाएगा, मैं और मेरी छोटी बहन गाएंगे, हमने ऐसा सोचा था।
2: मतलब सब मिल के करने वाले हो?
3: हाँ। गाएंगे भी सब, बजाएंगे भी सब।
4: हमारा छोटा भाई ज्यादा अच्छी वीडियोस बना लेता है, मतलब उसे ये भी पता है कि डिलीट कैसे करें।
2: अच्छा, वो कितना बड़ा है?
4: वो 5 इयर्स का है।
2: 5 इयर्स का, उतना कुछ आता है उसको इतनी कम उम्र में?
3: डिलीट तो हमें भी करना नहीं आता होगा, अब आ गया,
2: अब आ गया है,
4: अब आ गया है। वो गेम्स में भी बहुत अच्छे से करते हैं।
2: अच्छा,
4: गेम्स खेलते हैं ना।
2: अच्छा, अब चारों लोग जब साथ में होते हो तो क्या खेलते हो, क्या करते हो?
3: हम ज्यादातर तो
4: छोटी बहन की मान लेते हैं, क्योंकि वो फिर बाद में ना भाग जाती है, तो हम घर घर खेल लेते हैं।
3: सोने उठने वाला गेम घर बना लेते हैं।
2: सोने उठने वाला गेम क्या होता है?
3: मतलब जैसे हम सारे हट बना लिया, तो उसमें जैसे हम खाते हैं पीते हैं, बस
4: मेकअप करते हैं, फंक्शन में जाते हैं, स्कूल जाते हैं।
2: अच्छा,
4: पसंद है।
3: वैसे अगर वो नहीं होती, कहीं गई होती है, तो हम जैसे स्पोर्ट्स वाली गेम खेल लेते हैं, म्यूजिक कर लेते हैं।
2: स्पोर्ट्स वाली गेम कौन सी?
4: जैसे कि साइकिलिंग कर देते हैं।
2: अच्छा, ओके, घर के बाहर जाके फिर खेलते हो गए
4: वगैरह, रनिंग वगैरह।
3: हमारा बरामदा भी बड़ा है, तो हम उसमें ही खेल,
2: बरामदे में खेल लेते। आप तो चारों ही काफी एक साथ ही खेल लेते हो गए, है ना? अरे वाह,
3: केशवी बॉलिंग करवा देती है अच्छी।
2: अच्छा,
3: उसे बॉलिंग आती है, और जब उसका मन नहीं होता तब हम वही खेलते हैं
2: जो उसको पसंद है।
4: हाँ।
2: सबसे छोटी की बात सबसे ज्यादा मानी जाती है, यानी है ना?
3: हाँ। इसकी बात सब, साइली की बात सबसे कम मानी जाती है,
2: वो सबसे बड़ी है। हाँ।
3: मेरी उससे, मतलब मेरी थोड़ी ज्यादा धन की, उससे ज्यादा केशवी की सबसे ज्यादा।
2: जो सबसे
4: छोटे बहन भाई है ना, वो जवाब दे देते हैं, बड़ों के सामने भी जवाब दे देते हैं वो।
2: अच्छा,
4: ऐसे अगर हम
3: जो जिसकी मैं बात कर रहा था धर्मिक, वो उसके पास ऐसे ऐसे सवाल है, उसको उसके आंसर भी पता है, पर बड़े नहीं दे पाते।
2: ऐसे कौन से सवाल है?
3: बहुत है। एक बार उसको ना दादू ने कहा था ऐसे पैरों को हाथ लगाते हैं, उसने कहा क्यों
4: लड़के?
2: अच्छा
3: नहीं, फिर उसने कहा कि क्यों लगाने, फिर दादू ने कहा क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, तो उसने कहा सबसे बड़े तो बाबा होते हैं, फिर हम उनको क्यों लगाएं, फिर दादू चुप।
2: ओ, ऐसे ऐसे सवाल पूछता है वो तो
3: इससे भी खतरनाक, हमें याद नहीं अभी, पर बहुत ज्यादा
2: ऐसे पूछता है कि बड़ों को भी सोचना पड़ता है कि अब क्या जवाब दिया जाए इसका। भाई, इतने सारे क्वेश्चन तो होने चाहिए वैसे हमारे माइंड में, है ना? अपनी बात तो पूछना चाहिए, है ना? क्या लगता है आप लोग?
4: लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसका कोई आंसर नहीं दे सकता,
2: कोई आंसर ही नहीं दे सकता, इतना डिफिकल्ट होता है।
3: गूगल भी नहीं,
2: गूगल भी नहीं। आप लोग के पास होते हैं उसके सवालों के जवाब?
3: नहीं
2: नहीं,
4: उसके पास ही होते हैं।
2: उसके पास ही होते हैं, ये भी ठीक है, उसी से पूछ लिया करो कि भाई इसका जवाब क्या है, आप तुम ही बता दो, है ना?
4: वो बता भी देता कई बार।
2: अच्छा,
3: जब उसने इसको पता तो होता है, पर जब वो कहता है, जब वो थोड़ा गुस्से में रहता है, तो वो तब नहीं बताता,
2: तब नहीं बताता, बाद में बताएगा। अच्छा, जैसे आप लोगों ने
4: आज उसने हमको आंसर बताया था कि बाबा बड़े होते हैं तो हमको उसके उनके पैर छूने चाहिए, तो जो बड़े लोग होते हैं उनके पैर इसलिए नहीं छूने चाहिए क्योंकि वो बाबा से तो बड़े नहीं है।
2: अच्छा, उसने ये बताया था। ओके, लेकिन जैसे हमसे उस हमसे जो बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट करने का एक तरीका है दिखाने का।
4: उसने कहा था कि रिस्पेक्ट करने का तरीका हम उनको मतलब उनकी सेवा करके कर सकते हैं।
2: हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है।
4: बस
2: ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ों की सेवा करनी चाहिए। वेरी नाइस, मतलब वो बहुत अच्छा सोचता है ना, उसके पास
4: सोच बहुत
2: बहुत अच्छी है, और आप लोगों की भी, क्योंकि आप लोग भी इतना अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हो। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं एक और गीत की ओर, जो गाया है साइली और ऋत्विक ने। लौट कर आएंगे मधुबन अनप्लग्ड पर।

0: तो बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बनें, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: दोस्तों, इन बच्चों ने इतना प्यार से ईश्वर को याद किया कि सच में इनके सुर और इनके दिल की आवाज जरूर परमात्मा तक पहुंची होगी। वैसे ये नन्हे नन्हे कलाकार हैं, लेकिन इनकी बातें बड़ी बड़ी हैं। तो आइए इनसे और बातें करते हैं और सुनते हैं इनके संगीत का सफर।
5: अच्छा, जैसे गाना आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे गाने जो सुनाए, अब इनमें से कोई एक गाना लेते, जैसे रैप सॉन्ग आप लोगों ने गाया, तो उसमें क्या प्रैक्टिस कर, कैसे शुरू किया, प्रैक्टिस कैसे करी, उसके बारे में थोड़ा बताओ।
6: सुन के गाते,
5: लेकिन साथ में भी तो करना होता होगा, सिंग करके गाना एक दूसरे के साथ गाना।
6: वो हम क्रोकिल गा लेते।
5: क्या कर लेते हो?
6: क्रोके।
5: वो क्या होता है?
6: मतलब वो सिर्फ पीछे की ट्यून होती है, वो
7: उसमें बोलते नहीं है वो शब्द, वो हमको बोलने होते।
5: अच्छा, ओके ओके,
6: लिखा हुआ आ जाता, बस वो
7: पढ़ के गाओ।
5: पटकेगा तो प्रैक्टिस कैसे करते हो, मतलब साथ में शुरू करते हो गाना कि प्रैक्टिस अलग अलग करते हो फिर एक साथ गाते हो?
7: एक साथ शुरू करते
5: हो। तो एक दूसरे को करेक्ट कौन करता है कि अभी तुमने ये ठीक करा, ये इसको ऐसे करना, ऐसे कौन करता है?
6: ऐसे तो
7: दादू। एक बार बस मैंने से कहा था कि ये सेकंड बीट से स्टार्ट होएगा, उस सर ने हम मैंने सर को ज्यादा देखा था ना, तो उन्होंने सेकंड बीट से स्टार्ट किया था। और एक बार ही हुआ था कि इसने थोड़ी ट्यून ऑफ बीट वगैरह बहुत पहले की थी, थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा ही गलत कर दी थी, तो मैंने थोड़ा टोका था।
5: तो आप लोग एक दूसरे को भी करेक्ट कर लेते हो, मतलब जहाँ आपको लगता है?
7: कर लेते हैं।
5: तो किसी को बुरा तो नहीं लगता ऐसा?
7: नहीं, हम उसको ठीक कर लेते हैं।
5: ओके, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हम कोई भी आर्ट होती है तो उसमें बहुत अच्छा करने का स्कोप तो हमेशा ही रहता है, तो सीखते ही रहना होता है उसको। तो करेक्शन अगर कोई देता है तो बहुत अच्छी बात है ना हमारे लिए, और आप लोग तो ये जानते हो, कमाल है। तो आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो कितना समय लगता है आपको एक गाना तैयार करने में?
6: एक गाना तैयार करने में कई बार 4-5-6 दिन भी लग जाते हैं,
7: अगर ज्यादा लंबा हो तो।
6: वैसे आधे घंटे में भी कर लेते हैं।
5: ओके,
7: आधे घंटे में हम आधा गाना पूरा कम्प्लीट कर लेते हैं,
5: सीख लेते हो, लिरिक्स याद भी हो जाते हैं?
6: हो जाते हैं, दादू प्रिंट निकाल देते हैं उसकी, फिर हो जाते हैं।
5: फिर हो जाते
7: हैं। हो जाते हैं, थोड़े बहुत जो रह जाते हैं वो हम पढ़ लेते हैं।
5: ये भी अच्छा है। अच्छा, आप दोनों स्कूल जाते हो, स्कूल में क्या अच्छा लगता है करना?
7: स्कूल में गेम पीरियड भी होता है और ज्यादातर पढ़ाई में जो टीचर्स समझाते हैं वो भी अच्छा लगता है।
6: जैसे मेरे को रीडिंग में हिंदी वाले मैम है, वो बहुत अच्छा समझाते हैं, मतलब जैसे अब रीडिंग करवानी है तो वो बहुत अच्छी करवाते हैं, तो
7: वो तो कई बार कहानियां भी सुनाते हैं।
5: हाँ, कहानियां अच्छी लगती है आप दोनों को?
7: अच्छी लगती है।
5: ऋतिक को नहीं अच्छी लगती? मुझे
6: अच्छी लगती
5: है। अच्छा, ओके, तो अच्छा, तो मतलब स्कूल जाना अच्छा लगता है आप दोनों को?
7: बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे फ्रेंड्स भी होते हैं।
5: हाँ, ये बात तो करेक्ट है, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे स्कूल में, अच्छे लगता होगा ना रोज उनसे मिलना। ऋत्विक आपके दोस्त हैं?
6: मेरा एक ग्रुप है।

0: के बीच में जो हमारे क्लास के बॉयज हैं उसमें उनमें झगड़ा कभी नहीं होता।
1: अच्छा,
2: गर्ल्स में हो जाता है कई बार, लेकिन
0: गर्ल्स में हो जाता
1: है। क्यों?
2: अरे मैं उनके बीच में जाती ही नहीं, उनका अपना ही झगड़ा होता रहता, पता नहीं
0: किस बात पे। अच्छा, हम आ रहे बीच में किसी ने झगड़ा शुरू कर दिया तो कोई ना कोई चुप करवा ही देता है, क्योंकि पता है फिर टीम कट जानी है।
1: हाँ, और टीम इम्पोर्टेंट है ना,
0: इसलिए अगर कई बार मेरे को दिखता तो मैं भी करवा देता हूँ।
1: कैसे करवाते हो? मान लो झगड़ा हो गया
0: तो वो सबसे पहले तो बोलना ही शुरू करते हैं, पहले बोलना, तो मैं उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर देता हूँ। जैसे वो कहते हैं ये अच्छा है तो हाँ। मैं उनको मिक्स करके सही करवाता
1: कि दोनों ही अच्छा है करके, मतलब उन दोनों को अलग अलग पसंद आ रहा होता है कुछ, इसलिए झगड़ा होता है।
0: पसंद आ रहा होता है, मैं एक पेज लेता हूँ उसको दोनों के ड्रॉइंग में हल्का हल्का लेके एक ड्रॉइंग बना के दिखा देता हूँ, फिर वो पसंद कर।
1: दोनों की ड्रॉइंग मिक्स कर देते हो आप? और आप क्या बोल रहे थे?
2: जैसे कि मेरी फ्रेंड और मेरे में झगड़ा हो गया तो ना एक मैं बोलती हूँ उसे कि, जैसे कि वो फिर बाद में रूठ जाती है मेरे से, तो मैं उसे कहती हूँ मैं तेरे को अपनी जोमेट्री दे दूंगी, आज हम फ्रेंड बन जाते हैं, तो हम बन जाते हैं।
1: मतलब आप जल्दी जल्दी मना लेते हो?
0: एक बार
2: मेरे फ्रेंड्स जैसे कि जोमेट्री बॉक्स पसंद करती है और सब इरेजर्स को नेल आर्ट बना लेती है।
1: अच्छा,
0: एक बार
1: ये कैसे होता है इरेजर को नेल आर्ट? वाह।
0: एक बार ना इसकी फ्रेंड नाराज हो गई थी तो इसने मेरे को बताया था, इसने कहा था कि फिर तेरे को मेरी जैसी दोस्त नहीं मिलेगी, वो उसी वक्त फ्रेंड बन गए।
1: ये अच्छा है कि भाई मेरे जैसी मैं अच्छी दोस्त हूँ तुम्हारी, तो फिर तुम्हें ऐसी दोस्त नहीं मिलेगी दोबारा, याद दिलाना पड़ता है ना कभी कभी। ये भी सही बात है, अच्छे
2: दोस्त के नेल्स बना लेते हैं, उनको दिखाते हैं फिर दोस्त को। हाँ। उसके बाद उतार लेते हैं।
1: अच्छा, फिर वो वापस दोस्त बन जाते हैं। यानी आप लोग को स्कूल जाना दोनों को पसंद है,
2: है ना?
1: तो इसी बात पर एक और गीत हो जाए, बहुत सुंदर सा, प्यारा सा, प्यारी प्यारी आवाजों में।

0: नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के उपलक्ष्य में रेडियो मधुबन के सुनने वाले सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड और हमारे साथ बने हुए हैं नन्हे कलाकार साइली और ऋत्विक। बहुत सच्चाई से दिल से ये गाना गा रहे हैं और अभी से प्रैक्टिस करते हैं, म्यूजिक का सम्मान करते हैं, उसका मतलब समझते हैं। ये बड़ी बात है, यानी हमारा जो भविष्य है वो बहुत ही म्यूजिकल और सुरक्षित है। चलिए आइए और बातें करते हैं इन नन्हे कलाकारों से।
2: छुट्टियां जब होती हैं तब क्या करते हो?
3: तब हम दादू हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस कर देते। वैसे हमारी चल रही है म्यूजिक और डांस क्लास, पर दादू फिर जिमनास्टिक वगैरह लगवा देते हैं।
2: जिमनास्टिक भी सीखते हो आप दोनों?
3: सीख लेते हैं।
2: अच्छा,
3: हम पहले अलग से क्लासेस जाते थे, पर जब स्कूल शुरू होते हैं फिर छुड़वा देते हैं वो।
2: हाँ, मतलब छुट्टियों में सीखते।
4: छुट्टियों में दादू सेंटर पे योगा भी करवाते हैं।
3: सेंटर पे जैसे अभी सेंटर है कोई, उसमें कोर्स वगैरह सब कुछ
2: अच्छा
3: करवा देते हैं जब छुट्टियां होती है।
2: छुट्टी
3: उसके बाद स्कूल आ जाते हैं, फिर डांस वगैरह भी होता है।
2: डांस भी सीखते हो आप दोनों? कौन सा डांस सीखते हो?
4: कथक।
2: कथक सीखते हो आप दोनों? क्या बात है।
4: हरियाणवी भी आता है।
2: कथक तो मैंने भी सीखा है, पता है मुझे भी अच्छा लगता है। आप लोग के साथ अब मैं आप लोग को देख देख के करूंगी, फिर आप लोग का स्टूडियो बन जाएगा ना। फिर
4: हमारा चैनल भी है वैसे यूट्यूब पे।
2: हाँ, कौन सा चैनल है बताओ?
4: बजाज किड्स।
2: अच्छा, इस नाम से यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पे क्या होता है वहाँ पे आपके?
4: हम सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं,
3: डांस या ओल्ड वीडियोस।
2: अच्छा,
4: हमारी छोटी बहन
3: जैसे अब जो हम स्टूडियो की बात कर रहे थे वो हमारे नए मकान में होगा, उसमें 3 फ्लोर्स है। नीचे वाला तो सबके रूम वगैरह है, ऊपर वाले में हमारा है, रिकॉर्डिंग रूम, डांसिंग रूम, पेंटिंग रूम, सारा कुछ ऊपर वाले में। उससे ऊपर हमारा प्लेग्राउंड, जैसे अब स्विमिंग पूल की भी बात कर रहे थे, नेट वाला, क्रिकेट, ऐसे ऐसे,
2: मतलब जहाँ पे आप खेल सको।
4: ऊपर छत है, उसमें बनाएंगे।
2: अच्छा, ऊपर छत है तो उसमें भी तो थोड़ा सनलाइट आएगी, उसमें आप लोग खेलोगे, है ना?
3: ऊपर जैसे जिस साइड हम है वहाँ उस साइड ना थोड़ी अच्छा मौसम बना रहता है, मतलब इतनी धूप नहीं गिरती।
2: अच्छा, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे आप लोगों ने बताया ना बच्चों के प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते हो, अगर मान लो बड़ों में लड़ाई हो जाती है, वो उनको एक दूसरे की बात अच्छी लगती है, तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे एक दूसरे को मनाना चाहिए, कोई तरीका बताओ।
3: जैसे अब कई बातों पे झगड़ा होता है, मैं एक का बताता हूँ। हम जैसे अब लड़ाई हो गई, उसमें या तो जो कर रहा हो उस जिसने शुरुआत की हो वो सॉरी बोल दे, या टीचर को जाके बोल दे।
2: और अगर टीचर ना हो तो? वो दोनों है केवल।
4: और टीचर का हो तो हम ज्यादातर उन्हें बोल देते कि एक दूसरे को सॉरी बोल दो,
2: है ना?
3: या माफी मांगे।
2: मतलब माफी मांगने से झगड़ा ठीक हो जाता है ना। माफी मांग लेनी चाहिए बड़ों को भी, बड़े कभी कभी नहीं मांगते ना, फिर झगड़ा बड़ा हो जाता है।
3: अगर वो हमसे ज्यादा बड़े हैं तब हम नहीं जाते, तब उनके क्लासमेट उनको समझाते हैं, तब हम नहीं जाते,
2: तब आप नहीं जाते। ओके, चलो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। आप लोग को बहुत गाना, क्या आप लोग हमेशा गाते रहोगे बड़े हो जाओगे तब भी?
3: हमेशा? वैसे जब मैं बड़ा होऊंगा मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है।
2: एस्ट्रोनॉट बनना है आपको? वाह, बहुत सारी, तो उसमें तो बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है। लेकिन
3: नहीं, मैं पढ़ाई में तो आगे हूँ।
2: पढ़ाई भी अच्छी लगती है आपको ना? अच्छा करते हो आप, पढ़ाई में भी आगे हो, वेरी गुड। और आपको सहेली?
4: डॉक्टर बनता है बड़े होके।
2: डॉक्टर बनना है, ये तो डबल फायदा हो जाएगा फिर। जो आपके पास इलाज के लिए आएगा उसको बहुत सारा अच्छा गाना भी सुनने को मिलेगा और ट्रीटमेंट भी मिलेगा।
3: ये कह रही है मैं फ्री में करूँगी।
2: हाँ, ऐसा क्यों?
4: क्योंकि जो ज्यादा उनके जिनके पास पैसे नहीं होते वो भी करवा सकते हैं अपना।
2: ये भी सही बात है ना, उनकी हेल्प भी, जिनके पास नहीं है, किसी के पास कम है, तो उनकी भी सहायता।
3: जब ये छोटी
2: थी, बहुत अच्छी सोच है आपकी।
3: जब ये छोटी थी इसके पास ना डॉक्टर सेट था, तो ये घर में जितने भी सारे होते थे उन सबका चेकअप करती थी।
2: अच्छा, अच्छा लगता था आपको?
3: और जैसे रियल डॉक्टर करते हैं एकदम सेम वैसे।
2: इसीलिए उनको शुरू से डॉक्टर बनना है ना,
3: सबको पेशेंट बनना पड़ता था।
2: कौन पेशेंट बनता था?
3: पापा, मम्मा, मैं भी बनता था।
2: अच्छा,
3: तब छोटा भाई और बहन नहीं थे ना अभी, तब छोटे थे हम।
2: अभी वो लोग बनते हैं पेशेंट, छोटे भाई बहन?
3: अब तो नहीं। कोई भी किसी को भी डॉक्टर का शौक नहीं, अभी ये बस पढ़ाई पे जाना चाहते,
2: पढ़ाई पे जाना,
3: क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई,
4: डॉक्टर बनना
2: उसके लिए पढ़ाई होती है।
4: साइंस और मैथ में ज्यादा ध्यान दे रही हूँ।
2: अच्छा, एक चीज बताओ, चलो आपके घर में जो बड़े हैं उनकी एक कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लगती है? कोई भी।
4: अपनी मम्मा का नेचर अच्छा लगता है।
2: ओके।
4: और सब क्वालिटी अच्छी लगती है
2: सारी। एक जो आपको लगता है कि मैं भी वैसे ही बनूं, मैं भी वैसे करूं, ऐसा कुछ लगता है
3: कि जैसे अब कोई, जैसे अब आ गया कि कोई खाना मांगने वगैरह के लिए आ गया तो उसको दे देते हैं, जैसे अब गाय के लिए स्पेशल एक बड़ी रोटी बना के रखते थे वो उसको दे देते।
2: तो बहुत अच्छी बात है, तो हमको भी करना चाहिए ना जब हम बड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने बोली।
4: हम ऐसे या फिर छोटे से थे, थोड़े से छोटे थे, तो हम सोचते थे, हम ना वीडियोस देखते थे, तो उसमें ना लोग ना ज्यादातर गरीब लोगों की मदद करते थे, तो हम भी ऐसा ही सोच रहे थे।
2: वेरी गुड।
3: हम बड़े होके डॉक्टर और एस्ट्रोनॉट तो बनेंगे, पर साथ ही साथ एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम खोलें।
2: वृद्धाश्रम क्यों?
3: जो सड़क पे भीख वगैरह मांगते हैं उनको जो वगैरह दिलवाएंगे,
2: उनकी मदद करोगे आप, है ना? बहुत अच्छा ख्याल है आपका, एंड हम बहुत सारी विशेस करते हैं कि आप दोनों बहुत अच्छा अच्छा करो, जो आप सोचते हो वो जरूर जरूर कर पाओ। अच्छा, लास्ट में जाते जाते एक दूसरे की एक अच्छी बात बताओ। साथ साथ प्रैक्टिस
3: बहुत करती है।
2: अच्छा,
3: सहेली मेरी, जैसे अब मेरे को चोट लगी हुई है, ये मेरी सब बातें मानेगी, पानी लेके, खाना, मैं बेड पे होता हूँ ना तो
2: बहुत केयर करती है।
3: एक बार मैं साइकिल चलाते चलाते थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चला रहा था, गिर गया, पत्थर साइड में थे, तो बहुत बड़ी चोट आई थी, तो मैं रूम में था तो ये लाती थी, मम्मा भी ले आते थे पर ये
2: ये भी लाते थे। बहुत
3: गोड़ा पूरा ये छिल गया था, पूरा फ्रैक्चर फ्रैक्चर नहीं आया था, गोड़ा बड़ा आया था और ये यहाँ पे एल्बो पे थोड़ा बड़ा चोट आई थी।
2: अच्छा,
4: ये भी केयरिंग करता है मेरी, जैसे कि मेरे को, हम दोनों ना जैसे कि रनिंग कर रहे थे तो मेरा पैर फिसल गया, तो मेरे दोनों यहाँ पे चोट लगी और दोनों घोड़े छिल गए थे। तो हमारे घर में ना कोई आया हुआ था, तो मम्मा तो बाहर थे इसलिए उन्होंने वो फटाफट से आ नहीं पाया, और ये मेरे पास में ही था तो इसने मेरे को उठाया, बल्कि इसके चोट लगी हुई थी फिर भी इसने मेरे को उठा के अंदर ले गया था।
2: मतलब आप दोनों एक दूसरे की केयर करते हो, है ना? आप दोनों बहुत बहुत अच्छे से ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, एक दूसरे की हमेशा केयर करना, सबकी केयर करना, और हमारी बहुत सारी जो रेडियो मधुबन है यहाँ पे और जो लिसनर्स आपको सुनेंगे ना, सबकी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी गुड विशेस आप लोग के साथ हैं। तो खूब अच्छा अच्छा गाओ, हम लोग आपका यूट्यूब चैनल भी देखेंगे और आपके गाने सुनते रहेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें और इतने प्यारे प्यारे गाने सुनाने के लिए। थैंक यू साइली, थैंक यू रित्विक। अगली बार जब आओगे तो मिलोगे वापस हमसे? पक्का? प्रॉमिस?
4: प्रॉमिस।
2: तो चलो इस प्रॉमिस के साथ दोस्तों फिलहाल लेते हैं इजाजत। इन नन्हे कलाकारों को सुन के आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9914151415, यानी कि 9414151415। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते इन नन्हे कलाकारों यानी ऋत्विक और साइरी की आवाज में सुनते हैं बहुत खूबसूरत सा गाना, तेरी मर्जी।
4: रब्बा

आएंगी दर पर, सभी को तुझको है पढ़ना।

0: हो?
1: हाँ, कितना सुंदर है।
0: और उनको देख रहे हो?
1: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
0: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
2: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के उपलक्ष में रेडियो मधुबन के सुनने वाले सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आवाज री दुनिया रा हम सफर दोस्तों रेडियो मधुबन ने सुनने वाला सगला श्रोताओं ने केसी जिनगर्रा गणा गणा राम राम गणिक हम्मा ने जय माता दी। आप सुन रहे हो ब्रह्मा कुमारी रो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कराता रहो। श्रोता बंधुओं कार्यक्रम रे मायने आपो समाज रे माय फैलियोड़ी कुरुतियों वे है अन्य बारा में समाज रे लोगों की बात करो और समाज रे माय जागृति लावारी कोशिश करो और अन्य अलावा अपने समाज रे माय कई समाज सेवी वे है वनोर का तजुर्बा वे है वे भी अन्य कार्यक्रम में आपो वनोती इंटरव्यू लेन वनोरा अनुभव लेन आप तक पहुँचावारी कोशिश करो हो। जनती अपन खबर पड़े अपने समाज रा लोग समाज सेवी है वे का अच्छा कार्य करे है और वनोती अपने सीखवान मिले। अन्य अलावा एक टॉपिक है जितनी भी अपने समाज रे में जातियों हैं मतलब समाज को तो भारत देश में कई जातियों वे तो कई जातियों वे कण जाति में केरा रिवाज वे वन रिवाज रे बारा में भी आपो समाज रा बंधुओं की बात करो हो। जन्म ती लेन मरण तक आपो वनोती बात करें आप तक वनोरा समाज रा रीति रिवाज पहुँचा हो कि वनोरे समाज में केरी जागृति वाला कार्यक्रम वेरिया है का अच्छा विकास कर रिया है वे भी आप तक पहुंचे तो आपने भी सीखवान मले मोरे भी समाज में कोई एरी कुरुति वे कोई अशोभनीय कार्य वे तो वो मैं बदलवारी कोशिश करो हो। और एक टॉपिक वरे है कि अपने समाज में डोकरा मनक वे तो एक टॉपिक है तजुर्बा डोकरा मिनखोरा। अन टॉपिक में अपना जो समाज रा बुजुर्ग मानस वे है वनोरा जिंदगी रे पड़ाव वे जिंदगी में काका किदा जन्म ती लेन बचपन ती लेन आज तक रो सफर है वो भी आप तक पहुंचावारी कोशिश करे रेडियो मधुबन। रेडियो मधुबन एक एरो मंच है वटे सब समाज री जो जातियों है समाज में कुरुतियों है वन बारा में आपती बात करे है वन में बदलाव ला वास्ते आपने जागरूक करवा वास्ते रेडियो मधुबन एक कोशिश करे है। तो श्रोता बंधुओं आज प्रजापति कुंभकार सेवा समिति जिला सिरोही अनोरो ऑफिस है स्वरूप नगर भाटकड़ा सिरोही में आज तो पूरी कमेटी रा मेंबर आज रेडियो मधुबन पधारिया है तो आज आपो अनोती अनोरो समाज रे बारे में कुछ बातों कर रही हूँ अनोरो समाज में का अच्छा कार्य वेरिया है वन बारे में आपो बातों कर रही हूँ। मैं आपने बताना चाहूँ हूँ कि कुछ समय पहला अनोरो समाज रा एक सदस्य हैं हेमंत कुमार भाटी जी जो अनोर समाज रा रीति रिवाज रेडियो पर आपने बताया था वन परिपेक्ष में इस आज अनोर एक मीटिंग लेवो चाहूरियो और मीटिंग में आज अनोर समाज रा मुद्दा री बातों कर रही हूँ जो इंटरव्यू लीदो तो वन ने बाद में का समाज रे में इम्पेक्ट आया है का बदलाव आया है का ए बदलाव री कोशिश की दी है वे बातों आप तक पहुँचा रही कोशिश करेला आज समाज बंधु है सिरोही जिले रा तो अनोती मु आज आपरो पहला सबसे पहला परिचय करूला तो अपने मेहमान जतरा भी आज पधारिया है तो वन में प्रजापति कुंभकार सेवा समिति जिला सिरोही रा अध्यक्ष भी है तो सबसे पहला वनोरा आपती परिचय करूला आप बताओ आपरो नाम का है।
2: जय सरिया जी मारो नाम सा प्रजापति रघुनाथ चंदवाड़िया प्रजापति कुंभकार सेवा समिति जी सिरोही रो अध्यक्ष हूँ निवासी हूँ नोदिया गांव पिंडवाड़ा तहसील में हूँ सर।
1: ठीक है आप बताओ आप नोदिया में कतरा साल थे अटे रहे हो रिया।
2: मैं नोदिया में सर जन्म दी रहा हूँ सर।
1: अच्छा आपरे दादाजी अटे पहले आया है आपरे पिताजी आए थे।
2: हाँ सर सही।
1: अच्छा हाँ सर तो आपरे गांव में आपरे समाज रा कतरा घर है
2: और समाज रा वेला लगभग 20-25 घर।
1: 20-25
2: हाँ सर।
1: चलो ठीक है अध्यक्ष महोदय अपने अपना परिचय दी दो है एक दूसरा मेंबर है वनोती आप बात करो कमेटी मेंबर है तो वनो पाए जाऊं वनो नाम पूछूं भाई साहब आप रो नाम बत
3: मारो नाम चंपालाल है।
1: हाँ।
3: चंपालाल प्रजापत।
1: हाँ।
3: फुलेरा में रहूं पुपुचिरे डिस्ट्रिक्ट में और सेकंड ग्रेड अध्यापक पद निवृत्त हुआ हूँ सेवानिवृत्त हूँ।
1: हाँ। चंपालाल जी आप बताओ आप फुलेरा में कतरा साल ती अटे रेवरिया हो और थोड़ा आपरे परिवार बारे में परिचय का आपरे परिवार में कतरा मेंबर है।
3: अरे हमारा दादाजी आया था और लगभग 100 वर्ष हो गए अरे बस हमारा मैं 3 भाई यहाँ भी अपना।
1: हाँ।
3: परिवार है और धंधो मतलब हम बच्चा तो बारे है और मैं घरे मतलब वो खेती बाड़ी रहा धंधा है।
1: ठीक है, आप पधारे, आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में। एक समाजरा मेंबर और है अनोर साथ में आया है कमेटी में, तो उन्होंने अनोर परिचय कराऊ हूँ। आप नाम को ऐसा?
4: मारा नाम हंसराज प्रजापत है।
1: हाँ।
4: लुणियापुर रहवा वाला हूँ, सेवानिवृत्त रेलवे से हूँ, ड्राइवर से 71 साल ती रह रही हूँ।
1: आप बताओ, आप अट रेलवे नौकरी की दी मतलब अटैन अडिस मतलब जन्म वैन नौकरी लागी पढ़ाई लिखे इन वैन या बाद में ती आई आटे?
4: जन्म में 18 से मारा लुणियापुर आब रोड रहा, मारा पिताजी 12 ती आवेन वसिया। अब मारा 3 बच्चा है, 3 पढ़ाई करे, सब अपना अपना गुजारा करे दिया, सब बात शांति आनंद है, पढ़ाई कराई जरा आनंद है।
1: चलो ठीक है, और भी बातों कर रही हूँ अपने मेहमान थी। एक बीजा मेंबर है उन्होंती मुँह बात करना चाहूँ, परिचय लेना चाहूँ। तो भाई साहब आप अपना नाम बताओ।
5: चंदन जी छंदवाड़िया नाम है मारो।
1: हाँ जी।
5: नादिया गावरा रहवासी हो
1: जी। जी
5: ने मैं पूछता नहीं, बस 28 रहो। मारा दादाजी कई साल पहला गांव नौदिया रे में आया था
1: जी।
5: ने मैं नौदिया में रह गया। मोरे पिताजी पुश्तैनी धंधा मटकारो काम करता
1: जी,
5: पर उनने बाद में धीरे धीरे मटकारो काम लुप्त हुए तो गयो
1: जी।
5: और मैं खानदानी धंधो वोस ईटोरो जो काम तो वोस मैं पकड़ियो। ठीक है, ने अभी नौदिया में सो।
1: आप अबार ईटोरा भट्टा चलाओ?
5: हाँ, छोटा कजावा करो हो। हाँ, छोटा कजावा थे अपनो आजीवन हाल है।
1: आप बताओ आप पढ़ाई क्यों नहीं की थी?
5: पढ़ाई सिर्फ 8वीं तक कर सकिया, क्योंकि पिताजी री हालत अतरी ज्यादा पैसा कमावारी नहीं थी। मटकारा बिजनेस माते कितना पढ़ावे अण वास्ते, पर सेकंड छोटी उम्र रे मैं इस मोने कमावा बारे जानो पड़ियो। ने आ एक प्रीपार्टी थी मोरी समाज में, कोई ज्यादा कोई समाज में मोरे संबंधियों में कोई ज्यादा पढ़ता नहीं था, बस थोड़ा सा पढ़िया और बस कमावारी एक वे जाती के चलो अपने मामारा बच्चे कमावा गया पाओ पे जाओ बरा, तो हिसाब थी वहां पे कमावा लागे। हाँ, पर मारा बच्चा है तो मारी बच्ची है तो वह फर्स्ट ईयर है, बच्चो है वो फर्स्ट ईयर है, छोटो बच्चो है वो 10वीं में है। मैं चाह रही हूँ कि मेरा बच्चों बहुत ज्यादा ग्रेजुएट बने।
1: जरूर आपकी इच्छा पूरी हुई, आपका बच्चा ना पढ़ावला तो ग्रेजुएट बनी, वो शिक्षित बनी और वे सके आपका समाज रो नाम रोशन करे, पढ़े लिखे न कोई अधिकारी बने। इसमें शुभकामना आपने दे हूँ और आप रेडियो मधुबन स्वागत है। एक मेहमान और है हेमंत कुमार जी बाटी। तो हेमंत कुमार जी बाटी ये तो आबूरोडेज है और श्रोता बंधु आपने पहला उन्होंने जिंदगी रहा पढ़ा भी है बताया था और एक टॉपिक तो बाल विवाह वनों पर बात की दी थी। अन्य अलावा आज अनोती अनोरा ग्रुप कमेटी है तो कमेटी में अनोरा आज स्वागत करना चाहूँ। हेमंत जी आपरो रेडियो मधुबन में स्वागत है।
6: हाँ नमस्कार, मैं हेमंत कुमार बोल रही हूँ, लुणियापुरा में रहो हूँ ने मारे फादर नाम है दीपचंद जी प्रजापति। मैं करीब 100 साल थी 2800 मारा दादो साहब वालराई थी आया था ने रेलवे में फॉरमैन था वन टाइम ने मोरे फादर BSc ब्यावर्ती की दी थी 1965 में, पैसे टीचर लगा। मोरे ताऊजी था वे स्टेशन सुप्रिंटेंडेंट डाबू रोड थी रिटायर हुआ ने मोरे अंकल दलपत जी था वे एक्सियन थी रिटायर्ड हुआ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने है घटे पढ़ाई में से मोरे पुस्ते धंधो कोई एरो है नहीं, मैं पढ़ाई रे माते ज्यादा जोर दियो ने पढ़ाई रे हिसाब थी आगे बच्चों ने वही शिक्षा दे रही हूँ।
1: ठीक है धन्यवाद। तो श्रोता बंधुओं एक मेहमान और है अनोरा समिति रा वनौती में आपने परिचय कराऊ हूँ वरने बाद में टॉपिक ऊपर आओ हूँ। अनोरा जो समाज में है के जो इम्पेक्ट लाया जो अनुभव लाया है बदलाव लाया है वरने बारा में मुँह बात करूँगा कमेटी मेंबर लास्ट अनोती बात करूँ हूँ। भाई साहब आप कानूम है
7: पीराराम। हाँ। रग्गा जी प्रजापत चाडोली।
1: चाडोली में आप कतरा साल थी अटे रेवरिया हो?
7: चाडोली में लगभग 35 साल थी रेवरिया में।
1: वंती पहला आप कटे रहता?
7: वंती पहला केला पदर मोरे वीरो है मोरे दादाजी रे हाथरो वीरा माता रहता।
1: केला पदर कंठ कौन आयोडा?
7: केला पदर चाडोली थी 5 किलोमीटर।
1: अच्छा, तो आस पास में हो पर आप चाडोली मान पसे रिया। ठीक है चलो आपके परिवार के बारे में बताओ, आपके कतरा बच्चे हैं?
7: मारे 3 बच्चा है और 2 बच्ची है।
1: 2 बच्चियां हैं और 3 बच्चा है। आपने बेटी ना बनाई?
7: आप पढ़े रही है, मोटे बच्ची बनाई कॉलेज और नंदी छोटी बने रही है 12वीं में।
1: चलो ठीक है, आपरे पिताजी का काम करता आप का करो रिया?
7: मोरे पिताजी खेती बाड़ी रू करता और कारीगरी रू काम करता वन्ने पसी मुपड़ियो पढ़ाईयो मने नौकरी की दी वन्ने बाद में गल्लो व्यापार की दो।
1: तो श्रोता बंधु एक मेंबर और है कमेटी मेंबर उन्होंने भूले गियो तो वनोती मु परिचय लेना चाहूँ हूँ तो वनो नाम पूछो हूँ आप नाम कहीं ऐसा?
8: गोपाल प्रजापति।
1: गोपाल जी आप बताओ आप कटे रहो?
8: नोदिया गोम में रेवसा।
1: नादिया में कतरा साल ती रेव रिया हो?
8: जन्म थी मु बटी सो पिताजी बटी सी रिया मैं बटी सो।
1: जी ठीक है हमें आप बताओ आप वर्तमान में का काम करो रिया हो?
8: वर्तमान रे मायने मोरे जो पुस्तनी धंधो ईटो रो तो मैं बनी थोड़ा सा चेंज करी प्रो सीमेंटी ईटो रो है को मारे बिजनेस है
1: जी
8: उन्हें बनती जो अपना गुजारो वे रही है।
1: चलो आप बताओ आप सब पुस्तनी धंधो करो तो आपने जो नादिया गांव में पढ़ाई रो कोई सोत्र नहीं तो स्कूलों नहीं थी?
8: स्कूल तो नहीं थी मोरे मारे टाइम में तो दसवीं तक थी
1: जी।
8: बाकी फिर भी मारे पिताजी मैंने ग्यारहवीं तक पढ़ाए हो।
1: अच्छा।
8: ने ग्यारहवीं के बाद में है को कोई वन टाइम रे मैं ज्यादा पढ़वा रही और नहीं थी ने ग्यारहवीं करीन में बारी है को देसा वर्ग गयो तो बटा थी पास रिटर्न आवे ने अपना पुस्तनी धंधो ईटो रो वो चालू की दो बाकी थोड़ा सा चेंज करीन सीमेंट ईटो रो की दो।
1: चलो ठीक है श्रोता बंधुओं हमें एक छोटो सो ब्रेक ले हूँ ब्रेक रे बाद में उन्होंने समाज में जो बदलाव लाया है जो रेडियो मधुबन ऊपर जो कार्यक्रम किया था भाटी जी और बाद में समाज वाला जो परिवर्तन लाया है बातों में थोड़े से बातों करी है टॉपिक माते तो एक ब्रेक लेवा चाहूँ हूँ। ब्रेक ते पहला आप सबकी अपील है कि रेडियो मधुबन रे ऊपर कोई अपना अनुभव कोई अपना समाज रा रीति रिवाज बताना चाहे तो रेडियो रे नंबर माते जरूर मैसेज करजो। रेडियो रे नंबर है 9414151415। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: ब्रेक रे बाद में अपनो समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुन वाला सगड़ा श्रोताओं रा स्वागत है। ना अपने मेहमान जो प्रजापति कुंभकार सेवा समिति रा जो सदस्य आया है, अध्यक्ष महोदय भी आया है, तो सब रो स्वागत है और आप रो भी रेडियो मधुबन में स्वागत है। तो श्रोता बंधुओं, हमें अपने टॉपिक ऊपर आओ अनर समाज में का परिवर्तन लायो, का चेंज किया समाज में बदलाव लायो। तो सबसे पहला अध्यक्ष महोदय ने पूछू हूँ कि बाल विवाह वास्ते एक बड़ी समस्या है, शायद आपरे समाज में भी है, पहले हमारे बात हुई थी, तो आप बताओ अन्न वास्ते आप क्या करो रिया।
2: हाँ जी, जय श्री अजय। समाज में बाल विवाह की कुप्रथा घना लंबे समय थी मारे समाज में थी ने आज है। अणी रे वास्ते अणी चीज ने नाबूद करवा रे वास्ते मैं मारे संगठन रे माध्यम थी सामूहिक विवाह समारोह रा आयोजन किया और लगभग और तीसरा हुआ 500 नवम्बर में विवाह की शक्यता है न पूर्ण रूप से सफल हुआ है। अने वन में लोगों रे जो मतलब जो बाल विवाह करता था वे लोगों में बन विवाह डुगा है। अने जीव उम्र लायक बच्ची वे 18 साल रे के सीजन सेट वे मारे सामूहिक विवाह में नाम लगावे है। अने वनती वन में खूब न खूब मतलब फायदो वे रियो है, खर्च थी हर एक वाती। अने वो खर्च कम वेवा थी वे लोगों बच्चियों रे ने बच्चों रे शिक्षा रे में वे पिया लगाड़े रिया है, जिनकी अच्छो अच्छो प्रोग्रेस वे रियो है।
1: पहला बाल विवाह लोग क्यों करते?
2: पहला सा यू खरस रे वजह थी करता था।
1: हाँ।
2: एक बड़ी बच्ची वे 18 साल री उम्र हुई वन शादी करावे तो मैंने छोटी वे 15 साल 14 साल री वे तो हमें 20 साल बाद में पास वरी विवाह मोड़नो अने वन ऐसे वन वरी अतरो खरस करनो अंति बेहतर हो सके ओणो भले बाद में बो करे बाबा रे हाथी रहती पर ना हो खरस रे हिसाब थी समय रे हिसाब थी ने मन करो वाड़ा सा अतरा पहला पैसा ही नहीं था, धंधे ही नहीं था, माटी रो कोम तो सोवन हिसाब थी सा वो थोड़ी दिक्कत आती जनती आप प्रथा हालती थी। बाकी अब हमारी कोशिश है कि मैं चीज ने मैं खत्म करना चाहूँ।
1: आपरे जो आ कमिटी बनी है, कमिटी रे दौरान कोई एरो परिवार है जो विवाह की दो ने आप रोकावा गया हो?
2: ना सर, अजे तक तो सा ये समस्या आई नहीं है सा कि मोरे डेट निश्चित हुई कि भाई मोर नवर महीना 18 तारीख ने मोर सामूहिक विवाह समारोह है। वनने बाद में तो शायद कणी घरे शादी की दी नहीं है बेटा। वनती पहला जो कोई हुई ने मोरो आयोजन नहीं हुई तो वनी घरे शादी की दी वेला। बाकी आयोजन हुआ रे बाद में तो लगभग मोरा नाम है सामूहिक विवाह में नाम लगी जा रही है।
1: बाल विवाह कराओ तो आप उन्होंने का मतलब प्रोत्साहन दो वन वास्ते आप कमेटी का उन्होंने मतलब सुविधा दी है?
2: सवण में यू है कि उन्होंने सिर्फ मोर एक शुल्क राखी है मिनिमम बच्चा बच्ची रो सामूहिक विवाह में 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया भरे ने वनु रजिस्ट्रेशन रहे वनने बाद में वनने टोटल कोई खर्चो नहीं है। वनने जो वधू रहे जो मतलब विधणी रहे जो पडला वे वो पडला रो खर्चो मोरे कमेटी रो वे, खावा पीवा रो खर्चो कमेटी रो वे, टेंट व्यवस्था डेकोरेशन व्यवस्था सब कुछ मतलब व्यवस्था में करो अने मैं करो वही सब दानदाता रही सब भी करो। घना खरा लोग है समाज में वे के पडलू मारा तरफ थी, कोई के टेंट मारा तरफ थी, कोई के भोजन मारा तरफ थी, कोई के नाश्ता मारा तरफ थी, कोई के चाव मारा तरफ थी। सारा हिसाब जी सा है मतलब सामूहिक रूप थी समाज में सहयोग वे पो अने सा आप कौम है वो सामूहिक वे मेरे एकदम बड़ी अच्छा ढंग से सफल वे
1: है। अच्छी बात है, मतलब आप कहना है कि बाल विवाह रोकवा वास्ते आप एक कदम उठाया था समाज में कि भाई सामूहिक विवाह सम्मेलन करवा लगा जनती का वे के आप जो रजिस्ट्रेशन वे वो सरकार में भी अनु रजिस्ट्रेशन वे और जो भी बच्चों री शादी करे रिया है तो पाबंद वे जाए उम्र सही वननी शादी री नहीं वेला तो उन्हें रजिस्ट्रेशन भी नहीं वे आप शादी भी नहीं करे को तो अच्छो कदम है आप रो। तो अपने बीजा मेहमान है उन्होंने पूछू हूँ बाल विवाह करवाती का गंभीर परिणाम आवे?
3: बाल विवाह तो जो परिणाम तो मतलब अच्छो नहीं चाहो कारण के वो बच्चों छोटे हुए और छोटे बच्चों में का हज में मतलब कीगण मन पर ना था कीगण मर शादी हुई थी कीगण का वही का रीति रिवाज था मतलब उनको कोई उठा नहीं पड़ता उन्होंने वास्ते मतलब का उम्र हिसाब से लगन वे तो वन कम से कम तो जो शादी वे वन शादी हो जो रस्म वे वह रस्म तो बराबर वो जानकारी तो मिले न समाज में कणी रीति थी मतलब विवाह हुआ वन में का समस्या आई और का वन तो कीगण समाधान हुआ वो हर वन जानकारी मिले वास्ते मतलब बाल विवाह तो अच्छा नहीं हो।
1: आप बता आप रो बाल विवाह हो तो या हादो विवाह तो?
3: हाँ मर तो उम्र हिसाब से हुआ था।
1: अच्छा मतलब नॉर्मल उम्र में हुआ तो
3: 18 साल कन्या थी और 21-22 साल का मैं था।
1: वन टाइम आप पढ़ाई करता है या नौकरी लगा पाता?
3: नौकरी तो नहीं लगे थे, पढ़ाई करता।
1: बनता बनता रिश्ता हुआ शादी की थी?
3: हाँ बनता बनता रिश्ता हुआ था।
1: ठीक है, आप बताओ शादी तो चलो आपकी हो कि भाई नॉर्मल शादी हुई, आप हाटो हुआ तो या नॉर्मल हुआ तो?
3: ना मोरे कोई हाटो नहीं, मोरे मन कुटुंब में ये तीन पेड़ी होगी, तीन चौथी पेड़ी है, चौथी पेड़ी में आज द्वारा कोई हाटा साटा नहीं है।
1: चलो अच्छी बात है, ठीक है। श्रोता बंधुओं एक मेहमान और है, उन्होंने भी बात करो हूँ। आप बताओ बाल विवाह, भाई साहब बताया भाई के गंभीर परिणाम वे बाल विवाह का कारण, आप अपने बारे में क्या कहना चाहो? बाल विवाह जो करे माँ बाप उन्होंने आपका संदेश देना चाहो?
4: बाल विवाह माए बच्चा बच्ची ने कोई मालूम नहीं रहता कि मैं दूल्हा दुल्हन हुआ है नहीं हुआ, उम्र लायक हुई तो वन विवाह वही तो वह पहचान भाई कि आप हमें शादी कर ने अच्छा प्रेमण भाई ने समझती वह कौम करी है तक।
1: आप बताओ आप सेवानिवृत्त हुआ हो तो हमें समाज रे वास्ते और का का सोचियो है कि हम अच्छा कौम करूँ समाज में बदलाव ला रहा?
4: समाज थी मैं जुड़ियो रहो बराबर जदी थी अत छात्रावास हुआ इसराइल में जदी थी जुड़ियो रहो नाजे तक कटे भी बोला हुआ वटे में हाजिर हुआ टाइम थे जो भी काम वटा अध्यक्ष साहब कह वटे में जावाने तैयार रहो जो भी समस्या समाज में आवे वरना वास्ता पास से वटे मीटिंग में रखा कि आ समस्या है आ पूरी करनी है कन सब ती वे तो वह मीटिंग वाला बटे समस्या पूरी हल करे।
1: बेटियों ने बना वास्ते आप समाज रा लोगों ने क्या कहना चाहो? बीजा समाज हो बले रिया उन्होंने
4: बेटियों ने पढ़ावार वास्ते बहुत जरूरी है अन जमाना ने में बच्ची नहीं पढ़ी तो अनपढ़ रही तो बहुत पिछड़ी जाती थी बेकार वही परी न पढ़ी वही तो कटे भी आवाज आ में उन्हें सहूलियत रही कटे भी नाम बोर्ड माते रेलवे ट्रेन माते टिकट लेन पढ़े करे ट्रेन में बे है बसों में बे है गए।
1: ठीक है श्रोता बंधुओं एक मेहमान वरे है उन्होंने भी पूछू हूँ कि भाई के आप बताओ बाल विवाह और बालिका शिक्षा दोनों तालमेल की कने है कि बाल विवाह खत्म करवा वास्ते बालिकाओं ने शिक्षित करनी जोईजे या नहीं तो अन्य बारे में थोड़ी बात बताओ।
5: अच्छा बाल विवाह जैसे मोरे समाज रे में आधुनिक बहुत जूनी परंपरा है ने आ परंपरा खास कर गरीब जात व्यवहार हिसाब थी है। हमारी जाति खूब एक प्रकार थी गरीब मिट्टी रा कौम थी जुड़ी हो रही है ने वन वास्ते सब जना गरीब रे हिसाब थे। अब जैसे मोरे फैमिली रे माय में 10 भाई हो या पोस भाई हो या काका बावरा मलाय पर मोरो मोटो फैमिली है अगर मारे बच्चे एक 18-19 साल रे वो इन मैं वन शादी कराऊ तो पसे लारे लारे सब छोटे भले एक साल रे बच्ची क्यों नहीं वे वे सब जना भले 10 बच्ची भेरी वे 9 बच्ची भेरी वे सब ने अपनी एक शादी रे माए सब ने बुलाई ने कम खर्चा रे माए चलो एक खर्चा में ओपटे जाए बस वही खर्चा ने वसावारे खातिर अपनो बाल विवाह करता था ने वरने बाद में जब बच्ची बालिक वे जाती थी तब वरनो ओणो कर देता था। ठीक है लेकिन वह परंपरा जो आई थी 8-10 साल पहला मोरे खूब ज्यादा थी वरने बाद में बाल विवाह माते रोक लागी मोरे समाज रे माए अमुक समाज रा मेला वेवा लागा तो मैं जैसे समाज थी जुड़ियों रा जो पदाधिकारी जो भी मोरे था वे सब अन्न माते मतलब स्पीच देवा लागा कि भाई देखो अपने समाज रे माए बच्ची छोटी है तो उन्होंने शादी नहीं करनी है। हालांकि खुद मारे बाल विवाह भी हो रहे जब 6 क्लास में मैं पढ़ता था तब मारो शादी वेगी थी। ठीक है पर अबे मोने वर्णन ठा है कि मोरे शादी हुई तो मैंने आज बहुत कम कम अनुभव है। ठीक है अब शादी जो मेन जो उत्साह है वो तो मैंने मिलियो ही नहीं। ठीक है तो अन्य प्रकार थी बाल विवाह बिल्कुल गलत है ने अब 8-10 साल वेगी है मोरा बाल विवाह बिल्कुल खत्म है बिल्कुल नहीं है ने अब बेटी पढ़ाओ रे माए अतरो ज्यादा जोर आले रियो है कि लगभग मोरी समाज रे माए कोई भी अगर 10-12 साल की छोटी बच्ची ऐसी नहीं वे के जो पढ़ती नहीं वे अंती 10-12 साल की ऊपर जो उम्र वाली जो बच्चियां है तो वणों में आपने मले है क्या के कोई शायद 3 पढ़ें छोड़ी के पोस्ट पढ़ें छोड़ी बाकी अणती छोटी बच्ची लगभग सब पढ़ाई कर रही है ने अच्छी ग्रेजुएट बने रही है। आज मोरी बच्चियों अच्छी पढ़ाई माते ने अच्छे लेवल माते जावारी कोशिश कर रही है। पिंडवाड़ा रे माई एक बच्ची है वणी अच्छा राजस्थान लेवल रे माई 1 नंबर लाई तो 10वीं क्लास रे माई टॉपर आई थी तो अन्य प्रकार थी मोरी बच्चियों ने मैं खूब ज्यादा जोर दे रही हूँ ऐसे जो बच्चा है वणों में प्रोत्साहित भी कर रिया हो। आशा
1: कोई माँ बाप आज भी मतलब कहन के मुंह बच्ची ने नहीं बना मैं लू बच्ची ने अगर वह 10वीं तो 8वीं 10वीं तो गांव में बनी પણ એને કોલેજ બદની હોય તો મા બાપ કે હું તો બાને નહીં મેલું વટે તો કઈ તેની પરેશાની આવે છોરીઓ માહોલ ખરાબ હે તો અટીન અટીન ભાગ બી જાય છોરીઓ મતલબ કઈ મન કોણ ડર રહે કઈ ઘટના હોય કે બચ્ચી હતી તો મા બાપ વણીને બચ્ચીઓને નહીં મેલેરિયા હે તો આપણે ભી આપ સમાજ મેં સબ લોકોને આપકા કહેણો ચાહો અને બચ્ચીઓને આગે મેલવા વાસ્તે ભણવા વાસ્તે ડિગ્રી લેવા વાસ્તે
5: હા એરી ઘણી સારી સમસ્યા આવી રહી હે અણ પ્રકારથી મતલબ કોઈ એસા વિચારવાળી જો લોગ હે જો દૂસરી જાતિઓ રમાય કોઈ બચ્ચી કણી દૂસરી જાતિમાં જાય શાદી ભી કરે તો વે શંકા સબરે દિમાગ મેં હે ઠીક હે મોરી સમાજ રમાઈ હે તો વે ઓર બીજી વાત કે વણો ગામ રમાઈ છે જો કોઈ દસમી થી આગે સ્કૂલ ની હે તો વે વણ ખાતિર થી આગે થી બેઠા તો એસા પરિવાર થી મેં ખુદ જાઈન જુડો હો ખુદ જાઈન વણો રૂબરૂ વ્યો હો પ્લસ મોરે સમાજ રા મેલા રે મેં આવે તો વણો ને મેં સમજાવો હો ને લગભગ એ સમસ્યા અબાર લગભગ નીરા બરાબર ખતમ વે ગઈ હે ઘરે જઈને વણોને ગાઈડ કરે હે વણથી મોરે ખૂબ બડો પ્રભાવ પડ્યો
1: ચલો ઠીક હે ઓર ભી બાતો કરીયો એક મહેમાન ઓર હે વણોને પૂછના ચાહું આપ બતાઓ શિક્ષા થી વંચિત જો છાત્રાઓ હે લડકા લડકીઓ જો શિક્ષાથી વંચિત હે સમાજ મેં તો આપ વણોને પાછા મા બાપને સમજાય પાછા સ્કૂલ થી જોડવાનું કામ કરો
6: હા જો શિક્ષાથી વંચિત હે પેલા હતા અંતે બાકી આજકાલ ટાઈમ મેં તો બહુ નીરે બરાબર હે બાકી કોઈ વે તો મારે કમિટી જઈને વણો પરિવારને જઈને હજમાવે હે બાકી કોઈ કમિટી મારે સહયોગી કરે કે આજ થોડો કોઈ પ્રોબ્લેમ આવી રહી હે અને વાસ્તે વણો જઈને હજમાવે સ્કૂલ ભેજે
1: કઈ પરિવાર પૈસા કારણ કે વણર પાસે ખર્ચો નહીં હે ભણાવવા વાસ્તે પ્યા નહીં હે તો વે ભણાવતા નહીં બચ્ચીઓને ઓર બચ્ચોને તો આપણો જો કમિટી હે વણમાં સહયોગ કરે
6: હા મારે જો કમિટી હે વણવા વાસ્તે બિલકુલ સહયોગ કરે કોઈ ગરીબ પરિવાર વે તો વણ સહયોગ કરે પડાવનાર વાસ્તે વણ આગે રસ્તો બતારે ને સહયોગી કરે પૂરો
1: આપ વેપાર કરો હો તો વેપાર કરો તો દુકાન ઉપર કઈ તરહ ગ્રાહક ભી આવે ઠીક હે તો આપ કદી કોઈ ગ્રાહકને બેટીઓને પડાવવા વાસ્તે યા મોટિવેટ કરવા વાસ્તે કદી કોણ કોઈ વાત કીધી યા કોશિશ કરો
6: હા બિલકુલ કરો દુકાન માટે કોઈ પ્રકારે એરા ગ્રાહક ભી આવે મારે કોઈ દિક્કત આવે મન બોલે હે કે મારે એ સમસ્યા આવી કોઈ પડાઈ રે વાસ્તે તો મેં વણ સલાહ બતારો તો હવે મારું મને બિલકુલ મને
1: જરૂરી નહીં સમાજમાં જ બેટીઓને શિક્ષિત કરો બીજી સમાજમાં ભી કોઈ એરી એરી બેટીઓ હવે જો પઢનો ચાહે પર વણો સમાજ સક્ષમ નહીં હે આપણો સમાજ સક્ષમ હે તો કે આપ હોબલેન વણોરી સે હેલ્પ કરો
6: હા બિલકુલ વણન વાત બતારો તો વણન હેલ્પ ઈ કરો આગે વણન સુજાવ બતારો કે પે વટે જાવે થોરો તકલીફ દૂર ભઈ
1: ઠીક હે તો સોતા બંધુઓ હેમંત કુમારજી હે વે તો આપને પૂરા સમાજ રા રીતિ રિવાજ બતાયા હે ફિર ભી હેમંત જી થી પૂછું હું આપ બતાઓ બાલ વિવાહ ઓર શિક્ષા રો તાલમેલ ભાઈ સાહેબ ને પૂછી આપને પૂછું હું તો યા તો સમાજ મેં લોકો શિક્ષા ની કમી હે અંતિમ બાલ વિવાહ કરે હે વણોને જ્ઞાન ની હે કે બાલ વિવાહ થી કાકા કુપરિણામ આવે તો બાલ વિવાહ કુપરિણામ કાવે ઓર શિક્ષા થી જો તાલમેલ હે હે યા નહીં એના બારામાં થોડી સી આપ જાણકારી દો
7: બાલ વિવાહ સીધો સીધો વંતી તાલુક હે શિક્ષા થી શિક્ષા અગર બાલિકાઓ ની શિક્ષા અને અગર સમાજ રે માય શિક્ષા રો વિકાસ વહી તો અપના બાલ વિવાહ કરના હે કે નહીં કરના હે વણ બચ્ચો મેં સમજ આવી સમય હિસાબથી એ કામ કરી ને અગર મા બાપ બાલ વિવાહ કરનું ચાહી તો બચ્ચા જો હે વણને નકારી ને અણ હિસાબથી વો શિક્ષાથી સંભવ હે તો શિક્ષાથી એમનો બાલ વિવાહ રો બિલકુલ સીધો તાલુક હે તો મારો વોઇસ કહેણો હે કે બેટી પઢાઓ બેટી બચાવો બેટી બચાવો હોય શિક્ષા બાલ વિવાહ નહીં વે વોઇસ આપણે બેટી પઢાવો બેટી બચાવો બેટી પઢાવી હો તો આપણા બેટી આગળ વધી ને આપણું નામ રોશન કરી બસ મારો વોઇસ કહેણો હે ને જ્યાદાથી જ્યાદા બચ્ચોને શિક્ષિત કરો ઓર બીજોને આપ અણબારામાં આપણો અનુભવ દો ને શિક્ષાને સારું પ્રેરિત કરો
1: શ્રોતા બંધુ એક મહેમાન ઓર હે વણોને પૂછના ચાહું કે સમાજમાં આટા સાટા પ્રથા હર સમાજમાં વેરી શાયદ આપણે સમાજમાં ભી હે તો આટા સાટા પ્રથા જો કેન કે હાટામાં એક પરિવારથી બીજા પરિવારથી એક બેટી અટીને દેન વટીને લીએ तो कोई परिवार में छोटी बच्ची वे वनिन दे प्रिय वो बच्ची मोटी वे जरा वनो रिश्तो वे पैसे शादी करी ला तो एक तरह रो बाल विवाह के बीजे
8: नहीं आटा साटा तो इरो है कि जिन घर में एजुकेशन कम है उन्हें बनो रहे बच्चों ने कोई बच्चियां नहीं मिले रही तो आटा साटा से मन करे अगर एजुकेशन फुल है तो बनो रहे वास्ते होजवा जावा जरूरत नहीं पड़ती जैसे मारे भी बच्ची है तो एक तो लास्ट ईयर में है एमए करी रही है एक फर्स्ट ईयर में एक बच्चों है तो बीसीए लास्ट ईयर में है तो वनो रहे वास्ते परवारू कौम नहीं पड़े क्योंकि एजुकेशन है कोई भी बच्चन बच्ची दे दी ने मारी बच्चन में को एजुकेशन वाला छोरन दी दिए वास्ते हटा सटर तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है अगर अनपढ़ से तो वो तीवनों को इलाज भी नहीं है।

0: तो वो तो गलत है।
1: आपने समाज की कमेटी है साटा प्रतारो बहिष्कार करे या नहीं करे?
0: बिल्कुल करे। हाँ। अन्यवस्थित तो है को कि मेला करावे बीजा करावे को वणी में को के बच्चा बच्ची रहे को के पहचाने वे जावे पसी अणी बच्चियों ने को के प्रोत्साहन करवा रहे वास्ते को मरे हर साल छात्र सम्मान समारोह है को के करावे ही 11 12 वेरा है को छात्र सम्मान समारोह हुए वणी में जो पिंडवाड़ा की एक बच्ची है को के राज्य स्तर माते को फर्स्ट आई थी बोर्ड रे माई वणी ने सम्मानित की दी पसे वणी लैपटॉप दी दो पसे कोई टेबल ने मने बने पढ़वा रहे वास्ते जो भी सुविधा बने सोई थी वे समाज रे तरती पूरी की दी।
1: अच्छा प्रयास है समाज मतलब समाज री बेटी कोई जरूरत है वने पढ़ाई री और वने पढ़ी लिखी होशियार बेटी है वो आगे जानो चाहे तो आपरे समाज वने वास्ते सहयोग करे रही है। धन्यवाद आपरे समाज ने प्रजापति कुंभकार सेवा समिति जिला सिरोही वालों ने और अध्यक्ष महोदय ने भी धन्यवाद है कि अध्यक्ष महोदय एरो बढ़िया कार्यक्रम चलाया समाज में और समाज में बदलाव लावा की कोशिश करे रिया है।
0: हमारे बच्ची रे वास्ते 10वीं थी आगे बढ़वा रहे वास्ते को के आप जीव क्यों के भाई बारी मिलवा वास्ते बच्ची ने को के ओपे नहीं करे रिया तो हमारे में ये प्रॉब्लम आई थी तो वन टाइम में कहा कि दू मैं बी चार बीजी जाती और छोरियों ने को इकट्ठी करी सब ने को माहौल बना रही हो कि मारी बच्ची ने हाथी मिले ने ग्रुप बने पो तो 6-7 छोरियों में को ग्रुप बनावे ने वो को हीरो हिंदी में पढ़वा मिली तो वो भी फायदा हुआ न मारी को फायदा हुआ नी में बच्चियों ने को लास्ट एम ए फाइनल पहुंचा भी।
1: आभार गोपाल जी अपन ने जो बताई कि अनोर बेटी जब बनती थी और अनोर सामने समस्या दो बेटियों हैं तो उन्होंने समस्या आई कि बान की कन मिलनी तो कोशिश की थी कि हमें मेलू की कन तो एक का की दो भाई के अपने समाज रे आसपास में जो गांव में बीजी समाज री बेटियों है वन परिवार वालों ने समझाया कि भाई के 4-5 बेटियों मले एंड एक कमरों लेन आराम थी बारे जान सिरोही जेटे भी उच्च शिक्षा लेनी वे बटे ले है तो उन्होंने ग्रुप बना मेलिया एंड उन्होंने बेटियों री पढ़ाई करे अनोर बेटी रे फूटे 4 बेटियों वे शिक्षित हुई ऊंची पढ़ाई में गई तो अनोर समाज रो सम्मान अनोर वो अनोर समाज वाला मतलब उन्होंने मोटिवेट की दा तो अच्छी बात है। गोपाल जी आपने धन्यवाद है कि आप एरो प्रयास की दो। हमें श्रोता बंधुओं बातों तो खूब हुई है पर और मु करना चाहूँ हूँ तो अनोर समाज में का बदलाव आया थोड़ा सा वे भी और बातों कर लो मुँह पर छोटो सो ब्रेक ले हूँ। ब्रेक के बाद में फिर आपो अनोर समाज के बारे में बातों कर रही हूँ। आप सुन रहा हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के उपलक्ष्य में रेडियो मधुबन के सुनने वाले सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: ब्रेक के बाद में अपनो समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनने वाला सगला श्रोताओं का स्वागत है ना अपने मेहमान प्रजापति कुंभकार सेवा समिति रा अध्यक्ष महोदय है और साथ में कमेटी मेंबर है सब रो स्वागत है। ब्रेक के बाद में अपने मेहमान ती जो अध्यक्ष महोदय है प्रजापति समाज रा उनती मैं बात करना चाहूँ हूँ कि आप बताओ कि आप रे समाज रे में हेमंत जी पार्टी जो एक सदस्य है वे अपने आप रे समाज रा रीति रिवाज बताया था और वन में कुछ बातों रखी थी मुँह कुरुतियों रे बारे में तो कुछ कुरुति आप रे समाज में है तो उन्होंने का बदलाव लायो आप बताओ
2: जी। मोरे समाज रे में साटा प्रथा रे जो रिवाज तो मैंने बालिका शिक्षा अने बच्चों ने शिक्षा अने शिक्षा रे माध्यम थी हाथा प्रथा ने कम करवारी कोशिश की थी अने लगभग तो अने अंदर मतलब 50% तो कम भूप हाटा प्रथा ठीक कोशिश जारी है मोरी।
1: तो श्रोता बंधुओं अध्यक्ष महोदय कह रहा है कि भाई जो साटा प्रथा थी साटा प्रथा ने कम की कन करनी बच्चा और बच्ची ने दोनों ने शिक्षित करूं तो साटा प्रथा ऑटोमेटिक खत्म हुए क्यों कि बेटा और बेटी शिक्षित वेला तो अपना अपना जोड़ो होजवा वास्ते उन्होंने समस्या नहीं आवे एक बीजारे घरे रिश्ता ऑटोमेटिक आवे कौन बच्चों के रो जेरी मैंने शिक्षा लायकात है वरना माता अपना रिश्ता वेरिया है मतलब उन्होंने कहना है कि अन साक्षात्कार बाद में उन्होंने कोशिश की दी साटा प्रथा ने कम की दी। धन्यवाद है अध्यक्ष महोदय आपने और मैं आपने पूछना चाहूँ एक और कुरुति है गंगा जल प्रथा अन्य बारे में आप कम की दो या कम करवा की कोशिश करो रही अन्य बारे में
2: एक बाल विवाह है अन्य वास्ते तो मेरे जो समूह लग्न आयोजन करे रिया हूँ उनमें मन घनो करो फायदो मिले रियो है री अवरे मरती भो जो गंगा प्रसादी है पुष्कर प्रसादी है मने बात है उनमें मारे कोशिश हाली रही है अने मो एक अध्यक्ष विवाह नाते मतलब एक मारी एक धारणा है कि एक शपथ पत्र बनाऊ शपथ पत्र बनाए पर हर एक रेपाजी शपथ पत्र भरावे मैंने निशा साइन कराओ कि मैं मरती भोज नहीं करूंगा एक शपथ पत्र एक परिपाटी एक चालू करनी है हर एक घर घर हर एक व्यक्ति की साइन करावना है अंतिम मारो कोशिश है कि शायद अंतिम मन बदलाव रही शक्यता है बदलाव आके समाज रो मन साथ ही मिले रही है सब।
1: श्रोता बंधुओं रघुनाथ जी छिंदवाड़िया है जो प्रजापति कुंभकार समाज रा जिला अध्यक्ष है उन्होंने बात वेरी है और उन्होंने बात बताई एक बढ़िया कि बाल विवाह ने बंद करवा वास्ते सामूहिक विवाह सम्मेलन की दो है और सामूहिक विवाह करवाती उन्होंने बाल विवाह कम करवा वास्ते सफलता मिल रही है और यह सफल वे रहा है और सफल हुआ है और उन्होंने आयोजन रे बाद में आज तक कोई बाल विवाह समाज में नहीं करवा दी दो है तो अच्छी बात है। धन्यवाद आपका प्रयास अच्छा है। और दूसरी बात बताइए गंगा जल प्रथा और मृत्यु भोज ये बातों है आज भी उन्होंने समाज में व्याप्त है कुरुति आज ये संकल्प लीदो है एक एरिया है कि भाई मुँह आज सब एक संकल्प लो हूँ कि एक शपथ पत्र बनाऊला समाज रे में मीटिंग वे जरे भी मेला वे जरे वन शपथ पत्र में ये सब बातों रखूला और वन में लिखूला कि भाई आज तिमु मति बोझ समाज में नहीं करूला का तो एरो मतलब हर एक इंसान थी हर जाति का सदस्य थी भरावेला कोई इच्छुक है कोई नहीं है तो उन्होंने वन टाइम उन्होंने कतरी सफलता मिले मुँह भी उन्होंने शुभकामना दे हूँ कि आप जरूर अन्न कुरुति ने खत्म करवा वास्ते सफल वे वाला अच्छी बात है। तो रघुनाथ जी आप बताओ आज समाज में आपने खूब रेडियो मधुबन पे हर समाज वाला श्रोता बंधु होने रहा है आप समाज में आपका संदेश देना चाहूं
2: सर समाज में सर मोरा समाज में अने हर एक समाज रे में वो मारो वो संदेश है कि अभी डिजिटल इंडिया बने रही है समाज मतलब डिजिटल बनो सही है अन्य में हर एक रे में जीव समाज आगे बढ़ी रही है युग आगे बढ़ी रही है हिसाब से शिक्षा रे माई है बालिका शिक्षा में है मृत्यु भोज बनवेना सही जाए बाल विवाह बनवेवा सही जाए अन्न टंगी जो कुरीतियां है अन्न चीज ने खत्म करनी सही जाए अने नवा सिराती नवी पीढ़ी ने अपन याद करे के आगे मतलब बुढ़ा बुजुर्ग था जो अन्न टंगी अपरो काम करे गया है तो वे अपन याद करी ला नहीं तो हमेशा वे बोले जीव अपन पास बुढ़ा बोली ला अन्न वास्ते।
1: तो श्रोता बंधुओं अन्न समिति रा एक मेंबर है चंदन जी छिंदवाड़िया चंदन जी थी पूछू हूँ आप बताओ आप समाज रे में हमें और का विकास करना चाहो हो आगे री भूमिका समाज में का बदलाव लाना चाहो वन्ने बारे में बताओ।
3: हाँ सर बिल्कुल आज दिन तक मोरी मुहिम आलती थी कि कुरीतियों रे माते में प्रतिबंध लगा रो लगभग लगभग मैं कुरीतियों माते प्रबंध लगारिया पाया। जैसे आप बतायो गंगाजल प्रथा, गंगाजल प्रथा मोरे पहला दो रात्रि थी, चार टाइम मीठो भोजन घेती छूरमा वारो वो करना पड़तो तो। लेकिन अब लगभग वणी ने माते अंकुश करे पुरो ने वो कम की दो है, ने वो ही लगभग एक नाइट रो है। अब मोरी वाह प्रथा आ ले रही है कि वो भी बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, तो काफी हद तक में वण माते अमल की दब रहा है। बीजी बात जो कुरीति तो लगभग लगभग खत्म वेगी है, थोड़ी बहुत रही है तो समय रहे अधूरा वे जाई। बीजी बात जो शिक्षा जो आज जो आवना वाली जो पीढ़ी है, आवना वाली पीढ़ी ने जन प्रकार थी ओपी शिक्षित की दी है, ने वर्ण प्रकार जो शिक्षा वह खुद ले रिया है, तो मोरा खुद रो बच्चा मोने है जो मोरी कुरीतियों रे बारे में टोके के पापा जी अपनी यह समाज में कुरीति की आ ले रही है, ये नहीं वेणी जो थी, ने मोरा बच्चो टोके जी मोने फील्ड वे के वास्तव में बंद वेणी जो है। तो लगभग लगभग बंद वी पी ने हमें जो थोड़ी बहुत है तो मोर मुई माले रही है, तो मैं बंद करवा पूर्ण कोशिश कर रिया।
1: ठीक है, आज आपने रेडियो पर खूब लोग हुने रिया है, आप समाज रहा लोगों ने जो रेडियो श्रोता बंधु है उन्होंने आपका संदेश सुना।
3: हाँ, मैं आज मोने बड़ो खुशी री बात है कि मधुबन रेडियो रे मैं मोने इन्वाइट किया ने मोरी समाज री आज बात रखी, तो मैं आज बड़ा खुश हुआ। मैं सब समाज ने जय श्री देवी मारी केवल चाहो।
1: गोपाल जी हमारा समाज रा सदस्य है, उन्होंने पूछना चाहूं हूं कि समाज रे में बेटियों की कमी हुई है, तो एक जो हर समाज में साटा पड़ता है तो वरना बात हालती थी, पर साटा पड़ता है क्यों करनी पड़े? या तो समाज रे में बेटियों की कमी हुई है, कमी हुई तो समाज रा लोगों ने आपका संदेश देना चाहो कि कन्या भ्रूण हत्या कर रही है वह नहीं करे।
4: मैं तो कन्या भ्रूण रे माते तो रोक लागी भी है ने समझती है लागी भी है, कन्या भ्रूण हत्या हमें नहीं वेरी है, बाकी पहला बेटी तो अबार मैं तो रड़ी है।
1: बहुत समाज में आज भी यही है कि भाई बेटी आवेला तो के ओ तो भाटो आयो घर में का के न तो के न के न हो के बेटा री चात में बेटियों ने मारे, तो वे लोगों ने आपका कहना चाहो एरा माँ बाप ने कि आप संसार में बेटी ने लाओ, बेटी वगैरह कौम नहीं आले, बेटी वगैरह संसार नहीं आले, बेटी री वगैरह इन संसार में कोई उत्पत्ति नहीं है।
4: नहीं, आप प्रथा जो है नहीं आपकी युवा आप प्रथा वणी समाज में है जिनमें में दहेज देना पड़े, मोरे समाज में दहेज प्रथा है ही नहीं है, आदिकालती नहीं है, अन्य वास्ते मोरे समाज में आप प्रथा नहीं है।
1: वे माँ बाप ने आपका कहना चाहो जो कन्या भ्रूण हत्या कर रिया है तो मत करो, आपका संदेश देना।
4: कन्या भ्रूण हत्या तो जायज नहीं है, ने अन्य वास्ते दहेज प्रथा अगर बंद हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप प्रथा बंद हो जाएगी।
1: चलो ठीक है, आज आपने रेडियो पर खूब मनक होने रही, आपने केरो लागे रही, आज आप अपना विचार दीदा रेडियो पर, तो आपने केरो लाग
4: बहुत खुशी हुई सा आज आपने मिलवाती ने बहुत बढ़िया रही सा।
1: तो श्रोता बंधुओं एक सदस्य है चंपा लाल जी है, तो चंपा लाल जी से पूछना चाहू कि आज आप रेडियो मधुबन आया हो और आज अपने समाज कमेटी के साथ में आया हो, तो अपना विचार भी आप दीदा है, आप बताओ सेवानिवृत्ति के बाद में हमें आप समाज में का बदलाव लाना चाहो और का अच्छा का समाज में सहयोग देना चाहो वने बारे में बात।
5: मैं सेवानिवृत्त हुए मैंने मतलब 21 साल हुआ और सेवानिवृत्त बाद में मैं और संगठन जो बनी हुए है और संगठन ने पहला मौज पहला हुई है, बाकी अन्य में भरसक में सहयोग दी दो और सहयोग दी और संगठन मतलब आगे बढ़े रही है और अने में मतलब मैं खुद इसमें रात दारो इसमें अने संगठन ने वास्ते लागो रहा और समाज में जो बदलाव और आवे रही है वो हर रोज सहयोग दी आवे रही है, पर अने वास्ते पूरी कोशिश मोर हर रोज चालू है अंतिम मतलब समाज में बदलाव आवे आवेश और आवे रही।
1: समाज में दहेज री ओडावड़ी मची है, आज कई बेटियों दहेज री बलि चढ़ी है, तो दहेज नहीं देवा वास्ते आप रो का संदेश है।
5: बिल्कुल, दहेज तो बहुत एक मतलब अभिशाप है समाज में, एक बहुत मोटा अभिशाप है दहेज थी, तो मतलब कई गानों में आत्महत्या हो रही है और क्या करें, जब दहेज देवा नहीं तो मतलब वो कुंवारा रहते हैं अनिवास मतलब दहेज तो प्रथा बिल्कुल खत्म ही हुई है और अगर करे खत्म भई जरिए मतलब शिक्षा रो प्रचार ज्यादा भई और बच्चा बच्ची भई मतलब आपस में क्या नाम अच्छे एजुकेशन पढ़ाई करी तो अपना अनुभव भाई के वास्तव में देश बहुत खराब है और इस देश की मतलब जुड़े मारो संबंध वे जो है वो हमारा लायक है कि नहीं कि वो अंतिम माता विचार करी और जटे मतलब अच्छो लड़का हो या लड़की इनके आपस में जो संबंध एक दूसरे को पसंद आवे तो वो फिर देश की मतलब कोई परवाह नहीं करे और वो आदि संबंध वे है।
1: आज आपने रेडियो पर खूब मना खोबले रही आपने केरो लग रही है।
5: हाँ सर हाँ तो आपने धन्यवाद है और मैं तो सबने आयुष विनती है कि अपने देश पड़ता बिल्कुल क्या ना देश माते खत्म हुई हो जाए और खूब मतलब पढ़ाई करो।
1: एक मेंबर और है अंशराज जी है वनौती पूछू हूँ आज आपने रेडियो पर खूब मनक होने रिया है और आप बताओ समाज में बेटियों ने माँ बाप नहीं भणावता है तो उन्होंने भणा वास्ते आप संदेश का लास्ट संदेश
6: बेटियों ने पढ़ावार वास्ते माँ बाप को पूरा ध्यान देना चाहिए नहीं देते हुए तो ही हम जाकर उनको कहते हैं आप रे बच्चियों ने पढ़ाओ खूब ती खूब नहीं गांव गांव गांव गांव फरे ने उनकी कतरा पढ़िया ने कतरा नहीं पढ़िया एक लिस्ट बना रहे हम ऐसा विचार करा सब पूरे तहसील के अंदर आबू रोड तहसील में हम घूमेंगे फरे हेंगते ही एक एक गांव ते कतरा बच्चा पढ़िया ने कतरा नहीं पढ़िया वहाँ तहसील रे माए वह पूरी लिस्ट में सुपुर्द करेंगे सब बच्चों को इतने पढ़े इतने अनपढ़ इतने नहीं पढ़ रहे न कौन कतरा क्लास पढ़िया वह भी हटाए तहसील में रिपोर्ट दी है पूरी क्लास ने।
1: चलो ठीक है तो श्रोता बंधुओं लास्ट मेंबर अन कमेटी रहा है पीरा राम जी है। पीरा राम जी आप बताओ कि आज आपने रेडियो पर खूब मन खुनेरिया है आज समाज रे बारा में आपरे समाज रे बारा में अन शो में चर्चा वेरी है आपरे पहला जो शो वो तो समाज रे रीति रिवाज रो वरना फीडबैक आज ले रिया हो तो आपने केरो लाग रियो है।
7: मने बहुत बढ़िया लग रही है मोरे समाज रो जो कोई वातावरण हुई बेटी बेटी री वातावरण हुई बाल विवाह हुई पढ़ाई री हुई साटा सकबंड री हुई मोरे समाज में बहुत ही बढ़िया जो वो हाले रही है वो बहुत अच्छो भी रही है बाकी बीजू सब मोरे समाज में खूब प्रोग्रेस है हर बात थी।
1: तो श्रोता बंधुओं आज सिरोही जिला रा जो प्रजापति कुंभकार सेवा समिति रा अध्यक्ष महोदय है अपने साथ में सब सदस्यों ने लेना आया है सब आसपास रा गांव ते आया कोई नादिया ते आया कोई फुलेरा ते आया कोई झाड़ोली थी मतलब सब अलग अलग गांव ते आया है तो सब आज अपने समाज री बातों बतावाया है समाज में का बदलाव लाया है तो उन्होंने बताया है भाई कि बाल विवाह बिल्कुल बंद की दो है बालिकाओं ने शिक्षा वास्ते पूरो उन्होंने सहयोग वो है और अने अलावा मत्ती भोज और गंगा जल प्रथा वास्ते आज संकल्प लीदो है तो उन्होंने खूब खूब धन्यवाद है अध्यक्ष महोदय ने। अध्यक्ष महोदय रेडियो मधुबन जो इंटरव्यू लीदो है आपने समाज रो लीदो है आपने रेडियो पर मनक हुनेरिया है आपने केरो लाग रियो है और आप बताओ अपना अनुभव आज केरा रिया
2: हुकुम सा आज मधुबन में मोने जो मौको मिलियो है सा અને મને ઇન્વાઇટ કીધા છે અને મેં ઇન્ટરવ્યુ લીધો બંને વાસ્તે મને ખૂબ ખૂબ મેં આપરા આભારી હો મધુબનરા અને આપ સભી સમાજ બંધુ અને સબને જો મોરે શિક્ષા રે બારે મેં બાલ વિવાહ બારે મેં મૃત્યુ ભોજ બારે મેં આપ મોરે સમાજ તક આપ હરેક સમાજ વાળા અને ચીજને અમલ કરે તો બડી અચ્છી વાત હે ધન્યવાદ હે સા મધુબન ને।
1: ઠીક હે શ્રોતા બંધુઓ સમય દેખતા ખાતર અમે હું વિદાય લેના ચાહું હું વંતી પહેલા અને પૂરા સમાજના સદસ્યોને કમિટી મેમ્બરોને अध्यक्ष महोदय ने सब ने खूब खूब धन्यवाद है और हेमंत जी बाटी ने विशेषकर धन्यवाद है कि वे आज अन कमिटी ने बुला वास्ते अध्यक्ष महोदय ने और सब ने बुलाया है आज और आज अन मीटिंग रो जो सफल आयोजन हुआ है तो हेमंत जी ने धन्यवाद है और अध्यक्ष महोदय जो कुंभकार समिति रा अध्यक्ष है जिला अध्यक्ष उन्होंने खूब खूब धन्यवाद सबरो आभार है रेडियो मधुबन सबरो धन्यवाद प्रकट करे है और मुकेश जी जिनकर हमें अपनी वाणी ने विराम देव हूँ आप सुन रहा हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से।
1: ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है और हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि उसमें से सबसे रंग बिरंगी उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार नवरात्रि का त्योहार है। आज दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन माना गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन पर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माता ब्रह्मचारिणी, ये शब्द ब्रह्म और चारिणी, ब्रह्मा का मतलब है तपस्या, इसीलिए उसको तपश्चारिणी भी कही जाती है और ये माँ उमा का दूसरा स्वरूप माना गया है। माँ तपश्चारिणी अर्थात कि जिन्होंने तप और खूब तपस्या करके अपने जीवन के अंदर शक्तियों को प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी प्रेम और वफादार का प्रतीक है। उनके एक हाथ में जप माला है तो दूसरे हाथ में कमंडल है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि वो नित्य जब परमात्मा की तपस्या में लगे रहे तो परमात्मा के प्रति अति प्रेम होने के कारण उन्होंने परमात्मा का यानी परमात्मा शिव का नाम अजपा जाप निरंतर अंदर में जपते रहे। और कमंडल, कमंडल का मतलब है कि जहाँ जीवन के अंदर जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करते हुए अपने जीवन में उसको उतारना। तो ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी माना जाता। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है जिसके अंदर अथाह शक्ति है, जिसके चेहरे पर भी खुशी, आनंद, प्रेम और एक ग्रेस झलकता है। वो अपने विशेष भक्त जो उनकी पूजा करते हैं वो उन भक्तों को भी आनंद और खुशी प्रदान करती है और उन्हें सदगति की ओर राह दिखाती है। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी का विशेष गायन और पूजन होता है आज के दूसरे दिन पर।

0: है दोस्तों, आज मीना के स्कूल में बहुत मजा आने वाला है। वो हुआ यूँ कि मीना के स्कूल की दूसरी टीचर बहन जी एक दो दिन की छुट्टियों पे गई हुई हैं, इसलिए स्कूल के सारे बच्चे आज बैठेंगे मीना की क्लास में। अब चलो जल्दी से चलते हैं स्कूल के मैदान में, जहाँ मीना लल्ला और भोलू के साथ खाना खा रही है।
1: भोलू भैया, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो?
2: क्यों नहीं खा रहे हो? प्लेट को देखे जा रहे हो।
3: लल्ला, मुझे गाजर की सब्जी अच्छी नहीं लगती।
1: मुझे तो बहुत अच्छी लगती है।
4: भोलू भैया, बहन जी कहती है कि पालक और गाजर जैसी सब्जियों में विटामिन ए होता है, और विटामिन ए हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है।
3: वो सब मुझे नहीं पता मीना, मैं गाजर की सब्जी नहीं खाऊंगा, मतलब नहीं खाऊंगा।
4: चलो जल्दी से क्लास में चलते हैं।
5: बच्चों, आज हम सब मिलकर सीखेंगे एक अरे, ये बिल्ली की आवाज अपनी क्लास में कैसे?
6: बहन जी, सुनील अपनी कमीज में छुपा के लाया है एक बिल्ली का बच्चा। सबको दिखाओ ना सुनील।
7: कितना प्यारा है ना ये बिल्ली का बच्चा, छोटा सा सफेद रंग का।
3: अरे छोड़ो सोमा, मेरी बकरी भूरी के सामने तो ये कुछ भी नहीं है।
7: भोलू भैया, आपके भूरी से तो बहुत सुंदर है ये। इसका नाम क्या है सुनील?
1: हम तो प्यार से इसे मियाओ कहते हैं।
5: सुनील, तुम इसे क्लास में लेके क्यों आए? तुम्हें पता है ना, क्लास में कोई भी अपने पालतू जानवर को लेके नहीं आ सकता।
1: बहन जी, सब मियाओ को देखना चाहते थे तो।
5: लेकिन नियम तो नियम होते हैं, इसीलिए तुम्हें इसे क्लास से बाहर ले जाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम इसे मेरे कमरे में छोड़ाओ।
1: जी बहन जी।
0: और अगले दिन यानी रविवार की सुबह, जब मीना भोलू दीपू और सोमा के साथ खेल रही थी।
1: मीना, मीना, मीना।
4: सुनील, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए?
1: मीना, किसी ने मेरे मियाओ को चुरा लिया।
4: क्या?
1: हाँ, मेरा मियाओ।
4: सुनील, हो सकता है मियाओ घर के आसपास ही कहीं।
1: नहीं मीना, सब जगह देख लिया लेकिन कहीं नहीं मिला।
4: तुम चिंता मत करो सुनील, लल्ला के घर चल के पूछते हैं, हो सकता है उसने कहीं देखा हो मियाओ को। भोलू भैया, आप भी हमारे साथ चलिए।
3: मीना, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा।
6: मीना, सोमा, सुनील, मुझे तो लगता है भोलू भैया ने ही चुराया है मियाओ को।
4: नहीं दीपू, भोलू भैया ऐसा क्यों करेंगे?
1: लेकिन मीना, कल क्लास में भी वो मियाओ की तारीफ सुन के खुश नहीं थे।
7: सुनील, ये सब बातें बाद में।
4: हाँ, लल्ला के घर चलते हैं।
0: सुनील, दीपू, सोमा और मीना लल्ला के घर पहुँचे, जो कि सुनील के घर से थोड़ी दूर ही था। लल्ला आंगन में अपने छोटे भाई मुन्ना के साथ आम खा रहा था।
1: लल्ला, क्या तुमने मियाओ को कहीं देखा है?
8: मियाओ को नहीं, लेकिन बात क्या है?
4: लल्ला, सुनील कहता है किसी ने उसकी मियाओ को चुरा लिया। हमने सोचा शायद तुमने किसी को देखा हो मियाओ को ले जाते हुए।
8: मीना दीदी, मैं और मुन्ना रोज की तरह कल रात भी यहीं आंगन में सो रहे थे, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा।
9: मियाओ चढ़ गया पेड़ पर। मियाओ चढ़ गया पेड़ पर।
8: मुन्ना चुप, हमें तंग मत करो।
10: उसे बोलने दो लल्ला।
8: लेकिन माँ,
9: मियाओ चढ़ गया पेड़ पर।
10: कौन से पेड़ पर मुन्ना?
9: मियाओ चढ़ गया पेड़ पर, वो पेड़ पर रात को।
4: मुन्ना तो सामने वाले पीपल के पेड़ की तरफ इशारा कर रहा है, आओ वहीं चल के देखते हैं।
0: मीना और उसके दोस्त पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, और वहां जाके उन्होंने देखा कि पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाल पे बैठा है म्याओ।
1: मीना, वो देखो, मेरा म्याओ। आओ आओ, म्याओ, नीचे उतरो। ओफो, ये तो नीचे उतर ही नहीं रहा।
4: तुम फिक्र मत करो सुनील, मैं अभी पेड़ पर चढ़कर म्याओ को उतारती हूँ।
3: रुको मीना।
2: भोलू भैया।
0: भोलू तेजी से पेड़ पर चढ़ा और बड़ी सावधानी से म्याओ को नीचे ले आया।
3: ये लो सुनील, तुम्हारा म्याओ।
6: मुझे माफ कर दो भोलू भैया, मुझे लगा कि आपने ही म्याओ को कहीं ले जाकर छुपा दिया है। अभी थोड़ी देर पहले आप एकदम से चले भी गए थे, तो हमने सोचा कि
3: दीपू, मैं तो अपने दोस्तों से ये कहने गया था कि वो सब भी म्याओ को पूरे गांव में ढूंढे, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि म्याओ इस पेड़ पर चढ़ा हुआ है?
4: मुन्ना की वजह से।
3: मुन्ना की वजह से?
4: हाँ भोलू भैया, मुन्ना की नजर बहुत तेज है, जो उसने इतनी दूर से रात के अंधेरे में भी म्याओ को पेड़ पे चढ़ते हुए देख लिया।
3: अच्छा, ये तो कमाल की बात है।
5: ये कमाल तो विटामिन ए का है।
3: विटामिन ए का?
5: हाँ भोलू, लल्ला और मुन्ना दोनों की आंखें बहुत तेज हैं, क्योंकि मैं उन्हें विटामिन ए से भरपूर सब्जियाँ और फल जो खिलाती हूँ।
3: लेकिन विटामिन ए से होता क्या है चाची जी?
5: भोलू बेटा, विटामिन ए हमारे शरीर के विकास और आँखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है, और ये पीले फलों जैसे आम, पपीता या फिर लाल और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, गाजर, इनमें खूब पाया जाता है।
2: खूब पाया जाता है, मिट्ठू भी खाता है।
7: मेरी छोटी बहन पारो तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ बिल्कुल नहीं खाती। माँ कहती है कि तुम चिंता मत करो सोमा, जब पारो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अपने आप सब खाना शुरू कर देगी।
5: ऐसा सोचना गलत है सोमा, क्योंकि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए तो विटामिन ए से भरपूर सब्जियाँ और फल खाना बहुत जरूरी है, वरना उनका शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता और उनकी आँखों की रोशनी पे भी बुरा असर पड़ सकता है।
4: हाँ चाची, नर्स बहन जी कहती है कि विटामिन ए की कमी होने से हमें कम रोशनी में सब धुंधला नजर आता है।
3: ओ, आज मैं समझा हूँ विटामिन ए का महत्व। चाची जी, आज से मैं भी हरी और लाल सब्जियाँ खाया करूँगा।
0: देखा दोस्तों, है ना मीना से मिलने में फायदा, मजे का मजा और काम की बात भी पता चल गई। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक नई कविता।
4: बढ़ती है आँखों की रोशनी, सेहत मिलती पूरी,
2: 5 साल तक के बच्चों के लिए विटामिन ए जरूरी।
0: वाह वाह, क्या बात कही है अपनी मीना और मिट्ठू ने, तो इसी बात पे हो जाए गाना।

0: गाना सुन के तो सचमुच बहुत मजा आया है ना। अब चलना है खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली
2: तोड़।
1: हाँ, मैं तुम्हें तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें पूछना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो पहली कड़ी। बुझो बुझो कौन हूँ मैं, तुम नाम मेरा बतलाओ, हरे रंग से लाल हो जाती जो पानी मुझ में मिलाओ।
3: क्या हो सकता है?
4: ये पहेली तो बहुत मुश्किल लग रही है बहन जी।
5: हाँ बहन जी, इसमें तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा।
1: दीपू, मोनू, अगर पहेली बूझने में दिमाग न लगाना पड़े तो फिर मजा ही क्या। चलो चलो बच्चों, शाबाश, जल्दी से सोचो।
6: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है गोलू। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। अक्सर मैं मिल जाती हूँ तुम सब लोगों के घर में, कोई लगाए हाथ पैर पे, कोई लगाए सर में।
7: कोई लगाए सकता है?
8: और
1: फिर से बोलती हूँ। बुझो बुझो कौन हूँ मैं, तुम नाम मेरा बतलाओ, हरे रंग से लाल हो जाती जो पानी मुझ में मिलाओ। अक्सर मैं मिल जाती हूँ तुम सब लोगों के घर में, कोई लगाए हाथ पैर पे, कोई लगाए सर में।
9: इस पहेली को बूझना बहुत मुश्किल लग रहा है बहन जी, तीसरी कड़ी भी बता ही दीजिए।
1: ठीक है कृष्णा। बच्चों ये रही तीसरी कड़ी। जब होती है कोई भी शादी, दुल्हन मुझे लगाती, रंग मेरा जब चढ़ता गाढ़ा, और भी खुश हो जाती।
10: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है मेहंदी।
1: हाँ मीना, शाबाश। तो बच्चों मजा आया ना?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
11: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 22वां और आखिरी पाठ फिर चला काफिला, पृष्ठ 200। धनु का गांव। धनु की यहाँ आज दशहरे का बड़ा त्योहार मनाया जाएगा। सब रिश्तेदार अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सामान लादकर लाए हैं। धनु के बाबा परिवार में सबसे बड़े हैं, इसलिए सभी त्योहार उन्हीं के यहाँ मनाए जाते हैं। इस त्योहार पर मामी, आई यानी माँ और चाची मिलकर गुड़ और पूरण पोली बनाती हैं। पूरण पोली यानी चने की दाल की मीठी रोटियाँ, साथ में तीखी कढ़ी। दिन में गपशप चलती है, मगर शाम को माहौल कुछ बदल सा जाता है। सब औरतें और बूढ़े बच्चे सामान बांधने लगते हैं। आदमी लोग मुकादम के साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं। मुकादम यानी कर्ज वसूल करने वाले। किस परिवार के ऊपर उसका कितना कर्जा बाकी है यह भी देखते हैं। फिर शुरू होती है आगे की बातें। मुकादम सभी गांव वालों को अगले 6 महीनों में कौन से इलाके में जाना है यह भी बताता है, साथ ही देता है खर्चे के लिए कुछ पैसे। पृष्ठ 201। जब से धनु को याद है तब से यही चलता आया है। बरसात के पहले से दशहरे तक गांव के बड़े किसानों के खेतों में काम होता है। इन खेतों में धनु के परिवार जैसे ही कई परिवार काम करते हैं। इस कमाई से उनका इन महीनों का खर्चा चल जाता है, पर बाकी के कुछ महीने जब बरसात नहीं होती तब खेतों में भी काम नहीं होता, फिर उस समय गुजारा कैसे हो, इसलिए सब कर्जा लेते हैं। इस कर्जे को चुकाने के लिए वे मुकादम के लिए काम करते हैं। यह मुकादम शक्कर के कारखाने का दलाल है। वह उन्हें गन्ने के खेतों में काम दिलवाता है। बताओ, क्या धनु के गांव में सभी किसान अपनी जमीन पर काम करते थे? धनु के परिवार के पास अपने गांव में कब काम होता था और कब नहीं? क्या तुम कुछ ऐसे परिवारों को जानते हो जो खेती से जुड़े हैं और जिन्हें काम करने के लिए कुछ महीने घर छोड़ना पड़ता है? पृष्ठ 202। सोचो और पता करो। अगर धनु के गांव के लोग अपना गांव छोड़कर काम के लिए ना जाएं, तो वहां उन्हें कैसी परेशानियां हो सकती हैं? धनु के गांव में जब बारिश नहीं होती तब खेती भी नहीं हो पाती। क्या बारिश के पानी के बिना भी खेती की जा सकती है? अब आगे कुछ महीने धनु, उसके आई, बापू, चाचा, उनके दो बड़े बच्चे, मामा मामी, उनकी दो लड़कियां और गांव के 40-45 परिवार अपने घर से दूर रहेंगे। 6 महीने धनु और उसके जैसे कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। धनु के घर में उसकी बूढ़ी दादी, एक चाची जो देख नहीं सकती और 2 महीने की चचेरी बहन ही रह जाएंगे। इसी तरह गांव के अन्य कई परिवारों में भी बूढ़े और बीमार लोग रह जाते हैं। धनु को अपनी दादी की बहुत याद आती है। वे उसे बहुत प्यार जो करती हैं। धनु हमेशा सोचता है कि उसके पीछे से दादी की देखभाल कौन करेगा, पर धनु क्या करे? सोचो, जब धनु का परिवार और गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? जब धनु और उसके जैसे कई बच्चे 6 महीने तक गांव छोड़कर चले जाते हैं तब गांव के स्कूल में क्या होता होगा? तुम्हारे घर के लोग जब काम के लिए घर से बाहर जाते हैं तो बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल के लिए घर में क्या इंतजाम होता है? दशहरे के बाद परिवारों का यह काफिला अब गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहेगा। अपनी झोपड़ियां ये गन्ने के सूखे पत्तों और रस निकले गन्नों से बनाते हैं। सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में गन्नों की कटाई करते हैं। बच्चे और औरतें गन्नों के गट्ठर बांधते हैं, फिर उन्हें शक्कर के कारखानों में ले जाते हैं। पृष्ठ 203। कई बार धनु भी उनके साथ जाता है। कारखानों के बाहर कभी कभी 2-3 रातें बैलगाड़ियों पर गुजारनी पड़ती हैं। तब धनु अपने बैलों के साथ खेलता है, यहाँ वहाँ घूमता है। कारखाने पर अपने परिवार के हिस्से के गन्नों का वजन करवाकर धनु के बापू रसीद लाते हैं। जब जब मुकादम मिलने आता है तब उसे ये रसीदें दिखाकर कर्जे का हिसाब रखा जाता है। मुकादम अगले हफ्ते के खर्चे के पैसे भी दे जाता है। तब धनु की आई और मामी बच्चों को लेकर पास के गांव के बाजार से हफ्ते भर का आटा तेल खरीदते हैं। बच्चों के लिए एक आध लड्डू सेव चने भी ले लेती हैं। मामी धनु के लिए पेंसिल रबड़ या कॉपी भी खरीदती हैं। धनु मामी का लाडला जो है। पर 6 महीने तो ये चीजें धनु के काम ही नहीं आ पाती। वह स्कूल जो नहीं जा पाता। मामी चाहती हैं वह पढ़े और बड़ा होकर कुछ बने, उसे इस परिवार के साथ भटकना ना पड़े। आजकल मामा मामी धनु के आई बापू से कहते हैं, अगली बार जब दशहरे पर हम लोग गांव छोड़कर जाएंगे तब धनु अपनी दादी और चाची के साथ रहेगा। वह गांव के बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, आगे पढ़ेगा और कुछ बनेगा। पृष्ठ 204। सोचो और बताओ। मामी क्यों चाहती हैं कि धनु साल भर स्कूल जाए, पढ़े और कुछ बने? जब तुम लंबे समय के लिए स्कूल नहीं जा पाते तो क्या होता है? चर्चा करो और लिखो। धनु 6 महीनों के लिए जहां गांव वालों के साथ जाता है, क्या वहां पढ़ाई का इंतजाम किया जा सकता है? बताओ कैसे? ऐसे कुछ और भी काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। किताब से और उदाहरण ढूंढो और लिखो। अलग अलग किसानों के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या फर्क हैं? हम क्या समझे? तुमने कई पाठों में अलग अलग तरह के किसानों के बारे में पढ़ा। अब एक तालिका बनाओ और उनके बारे में लिखो। तालिका में 5 कॉलम बनाओ। पहले में लिखो किसान का नाम, दूसरे में उसकी खुद की खेती है, सही या गलत का निशान लगाओ। तीसरे कॉलम में वे क्या उगाते हैं, यह लिखो। फिर चौथे कॉलम में उन्हें क्या परेशानियां आई, यह लिखो। और आखिरी कॉलम में कुछ और बताना चाहते हैं तो वह लिखो। इस तरह से 5 कॉलम होंगे। किसान का नाम, दूसरा खुद की खेती सही या गलत, तीसरा क्या उगाते हैं, चौथा क्या परेशानियां आईं, पांचवा और कुछ। जैसे दामजी भाई, उनके बारे में लिखो, या हसमुख, उसके बारे में लिखो। फिर चला काफिला। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 22वां और आखिरी पाठ।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: शिवांशी, तुझे पता है मैं बड़े होके ना अपनी पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी।
2: हाँ, रखूंगी तो मैं भी, पर बड़ी होके तुम क्या बनोगी?
1: मैं बड़े होके ना एक अच्छी से है ना डॉक्टर बनूंगी, जो सब लोगों का अच्छे से ख्याल रखा करेगी। बिल्कुल फ्रेंडली डॉक्टर बनूंगी।
2: और मैं बड़े होके तो अपने देश के लिए कुछ करूंगी। बड़े होके क्या करेंगे, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है ना आपसे?
3: हाँ जी,
2: है ना, बार बार पूछते ना, बड़े होके क्या बनोगे क्या बनोगे। स्कूल में भी पूछते हैं, जो मिलते हैं वो भी पूछते हैं, ऐसा होता है?
3: हाँ,
2: होता है ना। तो क्या बनेंगे वो तो चलो एक बात है, लेकिन बड़े होना होता कैसा है? चलो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज देखते हैं बड़ों की दुनिया कैसी होती है। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में? ठीक है? ठीक है, चलो तो फिर एक बार बता दो आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग?
4: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ।
5: मेरा नाम हर्षिता है, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
7: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
2: ओके, तो आप लोग को क्या लगता है बड़ा होना, मतलब मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, लेकिन बच्चे होने और बड़े होने में क्या अंतर होता है, क्या लगता है आप लोगों को?
5: जब हम बड़े होते हैं तब जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, और जब हम छोटे होते हैं जिम्मेदारियाँ कम होती है। अगर हम कुछ गलती करते हैं तो वो माफ भी हो जाती है।
2: ओके,
7: नहीं, जब छोटे होते हैं ना तब मतलब खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान रहता है, ऐसा नहीं रहता कि हाँ घर का काम करना ये करना। बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना फिर ऐसे होता है हाँ अब खेलना कूदना कहाँ है, अब तो बस घर का काम ही है।
2: ओके,
4: दीदी, जब छोटे होते तो ऐसा लगता है बड़े बंदों की लाइफ आसान होती होगी, और जब बड़े होते हैं तो लगता था कि छोटे बच्चे ही होते हैं।
2: नहीं, अभी तो अभी जैसे आप छोटे हो, अभी आप बच्चे हो, ठीक है। अच्छा, बड़े होना क्या होता है, क्या लगता है कितनी एज में बड़े हो जाते, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी आप बड़े हो गए?
4: 18+।
2: ओके, आप लोगों को क्या लगता है कब बड़े हो जाते हैं?
6: दीदी, जब जॉब करने लगते हैं तो बड़े हो जाते हैं। 20।
2: ओके, जब जॉब करने लगते हैं। ओके, कब बड़े हो जाते हैं?
7: वैसे तो कभी बड़े होते नहीं अपने पेरेंट्स के लिए, पर मेरे को 25 लगता है।
2: ओके, आपको क्या लगता है?
5: मुझे 17+।
2: ओके, ठीक है, तो जब आप लोग 17, 18, 20, 25 के हो जाओगे तब कैसे होगे आप लोग, क्या क्या करोगे? ऐसी कोई चीजें हैं जो तब कर सकते हो और अभी नहीं कर सकते, या फिर आपको ऐसा लगता है अब ज्यादा चीजें कर सकते हो और तब शायद नहीं कर पाओगे?
4: दीदी, जब 18+ के हो जाते हैं तो हमारा गाड़ी का लाइसेंस बनता है, तो हम गाड़ी भी चला सकते हैं।
2: ये तो है,
5: और हम वोटिंग भी कर सकते हैं।
2: वोटिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और क्या लगता है, बड़े होना ज्यादा अच्छा है कि बच्चे होना ज्यादा अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग क्या है?
5: बच्चे रहना ज्यादा अच्छा होता है।
2: ओके,
7: बच्चे रहना ही होता है, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं तब अगर कोई गलती भी कर दे बड़ी छोटी तो माफी में। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब बच्चे होते हैं ना फिर ही हम मतलब अच्छी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं उस टाइम कोई मिस्टेक कर दें या कोई बड़ी गलती कर दें तो माफ़ी मिल जाती है या फिर डांट पड़ जाती है थोड़ा। तो अगर जब हम बड़े हो जाते हैं फिर उसके बाद अगर वही गलती रिपीट करें तो उस बात की हमें बड़ी सज़ा मिलती है।
2: ओके, शिक्षा, आपको क्या लगता है?
5: दीदी, छोटे होना ही अच्छा है, क्योंकि छोटे में ना मम्मी पापा का प्यार मिलता है कितना। बड़े हो जाते हैं फिर तो बिजी हो जाते हैं, मम्मी पापा के लिए टाइम ही नहीं होता है किसी के पास।
2: ओके, वैलिड पॉइंट है, टाइम बचपन में ज्यादा मिलता है ना मम्मी पापा के। राघव, आपको क्या लगता है बड़े होना अच्छा है कि बच्चे होना अच्छा है?
4: बच्चा होना अच्छा है।
2: क्यों?
4: क्योंकि उधर हम खेल सकते हैं और खेलते हैं तो सबको खुशी भी मिलती है।
2: खेलने में मजा तो आता है ना। तो बड़े लोग नहीं खेलते क्या?
4: नहीं, वो कभी कभी खेलते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं खेलते।
7: वो बस कोई महीने में एक दिन खेलते हैं, कोई मतलब जिस दिन छुट्टी हो या फिर कहीं उनको कहीं बाहर काम ना हो फिर ही खेलते हैं, और उस टाइम भी अगर उनको कुछ और काम अर्जेंट आ गया तो वो भी नहीं खेलते।
5: और मतलब जब उनके ग्रुप्स होते हैं फ्रेंड्स के उस टाइम पे महीने में एक बार कभी दो बार जाता है तो उस टाइम पे, या फिर उस टाइम पे कोई अर्जेंट काम आता है तो

0: तब नहीं खेल पाते हैं।
1: नहीं,
0: शिक्षा आपको क्या लगता है, बड़ों के लिए खेल होते हैं या बच्चों के लिए ही होता है?
1: दीदी, खेल तो कोई भी खेल सकते हैं, क्योंकि खेल है ना, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बनाए गए हैं। खेल तो बड़े लोग भी खेलते हैं, बस वो बिजी रहते हैं, इस वजह से नहीं खेल पाते हैं।
0: बट खेलना अच्छा लगता है बड़े लोगों को, लगता है आपको?
1: हाँ, उनको खेलना अच्छा लगता है।
2: दीदी, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ना मॉल में खेलने के लिए जगह बना रखी थी, तो सब बड़े है ना खेल रहे थे, फिर ऐसा लग रहा था कि वो अपने बचपन की लाइफ ही जी रहे हैं। मतलब वो बारी बार खेल ही रहे थे,
0: इतना मजा आ रहा था। ओके, अच्छा, आप लोगों को लगता है बड़े होने के कुछ फायदे होते हैं जो सिर्फ बड़े होके ही मिलते हैं, अभी नहीं मिलते आप लोगों को, ऐसा लगता है? बोलो।
3: बड़े होके वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, गाड़ी का लाइसेंस बन जाता है, वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, बहुत सारे कार्ड्स मिल जाते हैं जो बस हमें बड़े होने के बाद ही मिलते हैं, छोटे बच्चे में नहीं मिलते।
0: तो कुछ फायदा क्या है लेकिन इसका, फायदा क्या लगता है आपको?
3: फायदा वोटिंग का तो ये फायदा है कि हाँ, हम अपनी खुद की जो हमारा जो लीडर है, हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, हमारा लीडर ही यही होगा। और
0: पर्सनल लाइफ में कोई फायदे लगते हैं आप लोगों को बड़े होने के?
1: दीदी, बड़े होके हमारी खुद की एक आईडी बन जाती है, जैसे कि लोग जब हम छोटे होते हैं तो जानते हैं कि है ना उनकी बच्ची है, ऐसे बड़े होते हैं ना तो मतलब ऐसे बड़े हो जाते हैं तो पहचानते हैं, खुद के नाम से पहचाने जाते हैं,
0: खुद के नाम से पहचाना जाता है। हाँ,
3: और अगर हम बड़े होकर कुछ बन भी जाते हैं, जैसे कोई IAS IPS, तो मतलब पहले जब हम अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते थे तो हमारे पेरेंट्स को हमारे नाम से जाना जाता होगा,
0: कुछ बन जाते हैं।
3: हाँ, ताकि हाँ, ये उनके पापा हैं, उनकी मम्मी है,
0: तो अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है।
3: हाँ, ऐसा लगता है कि उस... क्या बताए।
0: ओके, अब बोल रहे थे
4: बड़े होने के बाद मतलब अपनी एक प्रॉपर्टी, अपना मतलब जो भी है घर में, थोड़ा बहुत अपना चलने लग जाता है। बचपन में ऐसे कुछ नहीं, ये जो मम्मी बोलती है वही करना है।
0: अपनी चलती नहीं है ना बचपन में?
4: नहीं।
0: और बड़े होके अपनी बात कह सकते हो?
4: बात कह सकते हो,
0: और जो करना है वो कर सकते हो।
4: हाँ।
0: ओके, राघव क्या लगता है आपको?
2: दीदी, बड़े होना ज्यादा अच्छा नहीं है, पर अपनी खुद की आईडी बनती है वो एक अच्छी चीज है।
0: वो एक अच्छी चीज है। ओके, और जैसा अभी हर्षिता ने भी बोला ना कि अपनी आप थोड़ी चलती है अपनी, अभी तो सिर्फ सुनना पड़ता है ना, बच्चों को तो बड़ों की बात माननी भी चाहिए क्योंकि बड़े अनुभवी होते हैं ना, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है, क्या लगता
4: है? हाँ, ये भी ठीक है कि बड़े मतलब उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, मतलब ज्यादा ये होता है सब, तो उनकी बात मानना भी अच्छी बात है।
0: लेकिन अपनी कोई बात अगर आपको सही लगती है तो उनके सामने बोलनी चाहिए या नहीं?
4: नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा करते हैं।
0: गुस्सा करते हैं
4: या फिर मम्मी डांटेगी, कैसे नहीं बोलना चाहिए था।
0: लेकिन अगर हम कायदे से प्यार से बोले तो
4: हमें हाँ। फिर ऐसे प्यार से बोले, लड़ते हुए नहीं बोलेंगे तो फिर अच्छी बात है, फिर वो कभी मतलब कभी कभी ऐसे हाँ ये भी बराबर है ऐसे
0: बोल सकते हैं ना, तो मतलब बड़ों से हम अपनी बात थोड़ा प्यार से अलग से जाके बोल सकते हैं, पर अपने दिल की बात तो बोलनी चाहिए,
4: ऐसा तो करना ही है,
0: करना है ना। बिल्कुल, और क्या लगता है आप लोगों को बड़े होने के फायदे और क्या होते हैं, पर्सनली बताओ, या नुकसान लगते हैं तो नुकसान भी बता सकते हो?
3: नुकसान तो बस यही है कि अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं बना पाते, जैसे बचपन में जैसे हम मतलब उनके साथ बैठते थे, टाइम स्पेंड करते थे, उनके साथ खाना खाते थे, फिर बड़े होके वो सब नहीं मिलता, क्योंकि बड़े होके मतलब जॉब में लग जाते हैं, किसी काम में लग जाते हैं, तब पूरे दिन तो अलग ही रहते हैं, मतलब अलग कहीं जॉब पे जा रहे तो उधर रहते हैं, रात को आते हैं तो लेट आते हैं तो पेरेंट्स खाना खा चुके होते हैं या फिर कई बार नहीं खाया होता, तो बस एक बाय चांस कोई एक दो टाइम ऐसा होगा जिससे एक साथ बैठ के खाएंगे। और छुट्टी के दिन भी कई ऐसे कई लोग होते हैं कि छुट्टी होती है तो हाँ चलो आज बाहर घूमना चल पड़ते, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाते।
0: ऐसा हो जाता है। और कोई फायदा नुकसान बड़े होने का जो लगता है?
1: दीदी, है ना, बड़े होने का नुकसान तो है कि देखो सबसे बड़ी बात तो जब छोटे थे तब पेरेंट्स के साथ कितने अच्छे से रहते थे, उनके साथ खाते थे, बड़े हो जाते तो इतनी जल्दी में रहते हैं कि साथ में बैठ के खा भी नहीं पाते हैं। अभी है ना जैसे कि मेरे पापा हैं, वो दादी से मिलने भी है ना बहुत टाइम निकालना पड़ता है उनको, या फिर है ना एक दिन वो है ना लेट चले जाएंगे अपनी दुकान पे काम के लिए। कभी कभी ऐसा दिन होता है रात को वो बहुत लेट सोने के जगह दादी से मिलने चले जाते हैं, क्योंकि वो मिल नहीं पाते हैं उनसे, इतने बिजी रहते हैं। दादी इसीलिए पापा से कभी कभी काम की भी नहीं कहती है, क्योंकि वो इतना बिजी रहते हैं कि वो फोन लगाती है तो अभी बात नहीं हो पाती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि बड़े होके अपने पेरेंट्स से भी अच्छे से बात नहीं कर पाते.
0: ये तो अच्छा नहीं लगता है, सही बात है, क्योंकि मम्मी पापा तो मम्मी पापा है चाहे कितने भी बड़े हो जाए ना.
3: हाँ, जब हम छोटे होते हैं तब हमारी पढ़ाई भी बहुत कम होती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे पढ़ाई बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है. छोटे होने के टाइम चाहे कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े चलेगा, पास हो जाते हैं, बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना तब पास से बस कुछ नहीं होता. पास हुए तो बस यही मानते कि फेल के बराबर ही माना जाता है अब तो. पहले पास तो मतलब टॉप पे था पहले के टाइम पे, अब पास मतलब फेल के बराबर है, रैंक आना चाहिए टॉप 10 में. तो अब पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा वो हो जाता है,
0: कंपटीशन बहुत आ जाता है
3: और स्ट्रेस भी बहुत बढ़ जाता है बड़ों को फिर. जैसे मतलब यूपीएससी का एग्जाम है उसमें कितना स्ट्रेस हो जाता है कि हाँ फर्स्ट पे आना है सेकंड पे आना है, बट स्ट्रेस बहुत हो जाता है, फिर कई बार हेल्थ भी खराब हो जाती है स्ट्रेस के चक्कर में.
0: तो अभी नहीं लगता आप लोगों के पास स्ट्रेस है?
3: अभी तो बस स्ट्रेस स्टार्ट हुआ है, फिर तो बढ़ता जाएगा अब तो आगे आगे चल के.
0: ओके
4: दीदी, मेरे एक मामा और मामी है, वो दोनों जॉब करते हैं, इतना स्ट्रेस है कि मेरी जो मामी की आंखें है ना वो पूरे ऐसे काजल जैसे लगाते हैं ना वैसे पूरे एकदम काली काली हो गई, उनको इतना स्ट्रेस होता है. और कभी कभी ना वो मेरे अंकल के से हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, इतना मतलब वो स्ट्रेस होता है वो जॉब का.
0: तो आपको ऐसा लगता है कि बड़े होके मतलब स्ट्रेस बढ़ जाता है ना?
4: हाँ, अगर कोई अपने को मतलब बड़े होके कुछ तो मतलब IAS बनना है या फिर DM बनना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वैसे कुछ बनना है, तो फिर बहुत स्ट्रेस आ जाता है.
0: वो कंपटीशन भी है, स्ट्रेस भी लगता है.
4: और जैसे कि उसने कहा कि बड़े होने के बाद मतलब वो टेंशन बढ़ता ही चला जाता है, 10 से शुरू होता है तो टेंशन बढ़ता है.
0: तो कभी कम होता है आपको लगता है, बड़ों का टेंशन कम भी होता है कभी?
4: हाँ, कभी कभी ऐसे हो सकता है,
0: वरना बढ़ता है ज्यादातर.
4: तो बढ़ता ही है
1: दीदी, फैमिली का टेंशन में मतलब जो जॉब वगैरह करता है उसका टेंशन तो तभी कम होता है जब अपनी फैमिली के साथ बैठे अपना स्ट्रेस वगैरह क्या उसको है ना मतलब जो बात दिल में होती है वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं तब अच्छा लगता है. मेरे पापा को इतना स्ट्रेस रहता है कि उन्हें लगता है कि अब तो उन्हें दादी के पास जाना ही पड़ेगा टाइम निकाल के, फिर वो वहाँ पे जाएंगे. जिस दिन उन्हें स्ट्रेस होगा ना वो हम लोगों से भी हंसते नहीं है सामने में, वो बस ऐसे सोचते रहेंगे कुछ ना कुछ. पापा से बोलो पापा खाना खा लो, हाँ खा रहे खा रहे. वो मतलब बिल्कुल खोए रहते हैं अपनी बात, अपने संकल्प चलते रहते हैं उनके. वो दादी के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, फिर दादी के यहाँ से बड़े अच्छे से मुस्कुराते हुए आते हैं. वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है.
0: मम्मी तो मम्मी है ना चाहे कितने भी बड़े हो जाए.
4: हाँ, जैसे कि उसने कहा कि अभी वो दादी के पास जाते हैं तो फिर उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, पर जब हम पेरेंट्स के पास जाते हैं तो फ्रीली जाना चाहिए. उनको अभी उतना सा टाइम देके जा रहे हो तो भी उनको टेंशन में भरा रहे हो, हाँ ऐसे था फिर क्या करूँ मैं अब. तो फिर पेरेंट्स के पास ऐसे जाना ही नहीं मिलता जिसमें अगर हम फ्रीली बात करें कि हाँ कैसे हो कैसे हो, वैसे नहीं टेंशन में जा रहे हम लोग. वैसे
0: तो पेरेंट्स को भी टेंशन हो जाती है?
4: हाँ, उनको भी थोड़ी टेंशन आ जाती है, मतलब वो पहले से टेंशन है उनको, मतलब वो बड़े थे उस टाइम पे भी टेंशन था, अभी उनके ये भी उनको टेंशन दे रहे. पर अगर उनको ऐसे अच्छा लग रहा है कि मतलब वो उनको अच्छा फील करवा सकते हैं, फिर उनको अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है. मतलब वो जैसे उसने कहा कि मुस्कुराते हुए आते फिर.
0: कितनी अच्छी बात है मुस्कुराना. तो अगर लेकिन फिर टेंशन तो कम करनी पड़ेगी, कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना?
4: वो तो है, कोई तरीका भी ढूंढना पड़ेगा.
0: ठीक है, तो और तरीके ढूंढ सकते हैं मतलब.
4: और टेंशन कम करने के ऐसे नहीं कि एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं. जैसे कि अगर आपका एकदम मूड सैड है, एंग्री हो आप, तो आपको मतलब कभी कभी बुरा लगता है ना, कोई बात नहीं करता है, तो फिर उससे अच्छा आप मतलब मुस्कुराते रहो तो कोई बात करेगा तो फिर अपने आप वो टेंशन भूल ही जाओगे आप.
0: ओके, मुस्कुरा के बात करोगे तो टेंशन भूल जाओगे.
3: दीदी जैसा कि अभी इन दोनों ने कहा, इसने मतलब शिक्षा ने कहा कि पेरेंट्स को बता के हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, फिर हर्षिता ने कहा कि पेरेंट्स को बताने से उनका टेंशन बढ़ जाता है. बट ऐसा कुछ नहीं है, उनका टेंशन नहीं बढ़ता, बल्कि हमें एक सजेशन मिलता है कि हाँ उस टेंशन को कम कैसे करें. वो पेरेंट्स बात अपने दिल तक नहीं लेके जाते, वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ के अपने बच्चों को बताते हैं. थोड़ा टेंशन लेंगे तो ही सॉल्यूशन बताएंगे. अब जो उनके बेटे हैं उनको इतना टेंशन है, उनको कुछ और सूझ नहीं रहा है. अब जो उनके पेरेंट्स हैं वो फ्री माइंडेड हैं, उनको थोड़ा सा टेंशन मिलेगा तो उनको सॉल्यूशन आराम से मिलेगा. तो उनको टेंशन थोड़ा सा देना ही हो, मतलब उनके लिए टेंशन वो थोड़ा सा है, बट जो उनके बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा है वो
0: सॉल्यूशन.
3: वो सॉल्यूशन देंगे फिर वो.
0: राघव आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता राघव को बड़ों के बारे में, कुछ बड़े होने के बारे में फायदा नुकसान कुछ तो लगता होगा? बड़े होकर ये करूंगा ये करूंगा कभी नहीं सोचा? कभी नहीं, बस बच्चे होना ही अच्छा है.
1: हाँ.
0: चलो वो भी अच्छी बात है.
1: दीदी बड़े होकर एक फायदा भी है कि हम जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपने पेरेंट्स की बहुत केयर कर पाते हैं. जैसे वो हमारी करते थे वैसे हम भी उनके लिए कभी कुछ लेके आते हैं तो वो कितना खुश होते हैं. फैमिली के लिए जैसे कभी कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आओ, पापा आए घर पे आपके लिए कुछ लेके आए, ऐसे मतलब वो बड़े हो जाते हैं तो वो जब उनके है ना इनकम हो जाती है, वो जब कमाने लगते हैं तो वो गिफ्ट्स वगैरह देते हैं सबको, तो उनको भी खुशी मिलती है अंदर से कि हमने कुछ तो अच्छा किया है,
0: कुछ करना है मतलब बड़े होके ना पेरेंट्स के लिए.
1: हाँ.
0: वो चीज अच्छी है.
4: हमारे ना जब फोर्थ का गैदरिंग था ना तब एक थीम थी, उसमें मेरी एंकरिंग थी. वो ना एक फर्स्ट की छोटी बच्ची थी और उसकी और मेरी एंकरिंग थी कि छोटे रहना ज्यादा अच्छा होता है, कि छोटापन कभी नहीं भूलना चाहिए. जिंदगी में तीन टाइम आते हैं, पहला है बचपन, दूसरा है जवानी और तीसरा है जो बूढ़े होते हैं वो. तो और मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं हम हमारे पेरेंट्स की केयर करते हैं जैसे वो हमारी केयर करते थे. तो वैसे ही कह सकते
0: हैं. ओके दैट्स आल्सो नाइस. तो मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, ऐसा कभी लगता है?
4: नहीं बिल्कुल नहीं लगता.
0: किसी को लगता है?
4: नहीं
3: दीदी लगता नहीं है, बस बड़े होते जाते हैं. कब पूरा साल बीत जाता है पता ही लगता है. ऐसे लगता है कि अभी तो कल नया साल शुरू हुआ था, आज खत्म भी हो गया.
4: और दीदी मतलब बचपन में ऐसे लगता है जब हम फर्स्ट सेकंड में होते कि यार वो फोर्थ के बच्चे फिफ्थ के बच्चे कितनी शाइनिंग मारते हैं, हमको भी उनके जैसे बड़े होने. पर बड़े होने का ऐसा लगता है यार अभी बच्चे ही अच्छे थे, हम क्यों नहीं बच्चे हैं.
0: ओके और शिक्षा को क्या लगता है, बड़े होने का मन करता है कि नहीं करता है?
1: दीदी मुझे नहीं होता बड़े होने का मन, क्योंकि मुझे तो है ना बस अपने मम्मी पापा के साथ रहना है. बड़े हो जाते हैं तो कॉलेज या जॉब के लिए दूर जाना होता है उनसे, मुझे उनसे दूर नहीं जाना.
0: और
2: दीदी हमको ना मतलब टाइम तो निकालना ही चाहिए. जैसे कभी हम रात को लेट आते हैं और अगर वो उठे होते हैं तो हमको उनके पास जाना चाहिए. और अगर वो सो रहे होते हैं तो हमको सुबह जल्दी उठ के जितने बजे अपने पेरेंट्स उठते हैं हमको उनके पास जाके नमस्ते करना चाहिए और उनके पैर छूने चाहिए.
0: बिल्कुल उनका आशीर्वाद तो हमें हमेशा चाहिए ना, चाहे कितने भी बड़े हो जाए. बिल्कुल सही बात है.
3: माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है.
0: हाँ क्योंकि उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो सच में कितनी प्योर होती हैं हमारे लिए, कितनी पावरफुल होती हैं, उससे ज्यादा हमारा भला और कौन सोच सकता है.
4: मेरे जो मामा मामी उनको लिटरली टाइम ही नहीं मिलता अपने पेरेंट्स के पास जाने, वो मतलब दूर रहते तो है बारामती में, पर वो मतलब एक्चुअली बारामती में रहते हैं बचपन से, पर अभी वो जॉब करने के लिए बैंगलोर पुणे ऐसे मतलब कंटिन्यूसली उनकी ये होता है मतलब इधर से उधर उधर से इधर, फिर बॉस की सुनो. वैसे लगते में तो ऐसे लगते कि बहुत अच्छा पैसा है उनके पास, पर उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना करना पड़ता है, वो नहीं लगता अपने को.
0: बहुत मेहनत होती है. बिल्कुल
2: दीदी एक बार ना मैंने यही सुना था कि ना माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, तो मैं उनके पैरों के अंदर देखने लग गया था. फिर मैंने उनसे पूछा स्वर्ग नहीं दिख रहा मुझे,
0: तो मिला नहीं मिला फिर?
2: नहीं मिला.
0: जो क्या बोलते हैं कुछ बातें ऐसी होती है ना कि वो लिटरल नहीं होती है. है ना कि वो देखने में नहीं पता चलता है लेकिन उनका मीनिंग भावना से जुड़ा होता है ना. तो अगर माता पिता का हम आशीर्वाद लेते हैं तो समझ लो हम स्वर्ग मतलब क्या, बहुत सुंदर दुनिया है ना.
1: हाँ.
0: तो उनके पास हमारी सबसे सुंदर दुनिया होती है, हमारा जिसमें भला ही भला होता है, हमारा जिसमें अच्छा ही अच्छा होता है, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता.
2: दीदी हमको बड़े होके ना कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए. मान लो कि हमको किसी ने नौकरी से निकाल दिया और हमको किसी से कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे तो हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, हमको नौकरी ढूंढती रहनी चाहिए.
0: हाँ बड़े होके कभी कभी गलत काम करने लगते हैं ना हम. बच्चे होके तो सुन लेते हैं, किसी ने डांट दिया तो मान भी लेते हैं गलती.
2: दीदी कई कई बच्चे भी चोरी करते हैं.
0: बच्चे भी करते हैं मतलब.
2: दीदी हमारे स्कूल में एक बच्चा वो भी चोरी करता था तो हमारी एक म्यूजिक मैम है, उन्होंने बोला कि पुलिस को बुलाया हमने, और पुलिस मतलब किसी काम से आई थी, तो मतलब उनको कोई डॉक्यूमेंट, तो उसको सच्ची लगा कि पुलिस आ रही है, तो वो जाके छुप गया कहीं।
0: तो बच्चों को डरा दिया जाता है ना कभी कभी, लेकिन बड़े नहीं समझते ऐसे, पर बड़ों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा आपने बताया ना, कि जॉब ढूंढते रहना चाहिए लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।
3: दीदी वो पुलिस तो काली का पेट्रोलिंग यूनिट आई थी,
0: अच्छा।
3: गर्ल्स से मिलने आई थी वो।
0: ओके, तो बच्चे को डरा दिया कि ताकि वो नहीं करे ना, इसलिए
3: बच्चे को डरा दिया, पर वो मिलने गर्ल्स से आए थे।
4: तो दीदी वो मतलब कहते हैं ना कि अगर किसी मतलब किसी पर्सन के पास मतलब सब कुछ है, एक भी कमी नहीं है उसकी जिंदगी में, पर अगर मम्मी पापा का प्यार नहीं है ना, तो उसके पास मतलब कुछ नहीं है, जैसे कि वो बेघर है ऐसे।
0: तो मतलब बड़े भी हो जाओ तो मम्मी पापा से मिलते रहना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, है ना। और आप लोग जैसे बड़े हो जाओगे ना, तो कभी कभी आप बिजी भी हो सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम टाइम नहीं निकाल सकते। जैसा आपने बताया ना, आपके पापा निकालते हैं टाइम, स्पेशली निकालते हैं, तो अगर निकालना चाहें क्यों नहीं निकाल सकते हैं, है ना। आप लोग भी देखते हो अपने घर पे निकालते हुए।
4: दीदी मतलब जैसे कि मैंने अभी कहा कि उनका जो प्यार होता है ना, वो ऐसे होता है कि जैसे हम मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ मतलब मेरी मम्मी या फिर मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते, मुझे जैसे अच्छा लगता है, वो एक अलग ही फीलिंग होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। तो चलो अभी तो वक्त हो गया है गुड बाय करने का, कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा, बड़ों को, मान लो आपको आपके बड़े वर्जन को फ्यूचर में जाके कुछ कहने का मौका मिले, तो उनको क्या बोलोगे?
1: दीदी मैं तो ये कहूंगी, कहना चाहे कितना भी है ना बिजी हो जाओ, कितना भी कितने भी दूर चले जाओ, पर कभी मम्मी पापा को नहीं भूलना, अपने पेरेंट्स को हमेशा उनकी केयर करना है दूर रह के भी।
3: पेरेंट्स को तो भूलना ही नहीं है, पर अपने बचपने को भी कभी नहीं भूलना, अगर बचपना मर गया तो जीना ही बेकार है।
4: और मतलब जो मम्मी पापा का मतलब मम्मी पापा के पास हम जब भी जाते हैं, पेरेंट्स को दूर भी रहते ना, तो एक बार दो बार कम से कम कॉल तो कर लेना चाहिए, वीडियो कॉल, एक मतलब एक महीने में नहीं, एक हफ्ते में एक बार कर लो सिर्फ।
0: आप क्या बोलोगे अपने फ्यूचर सेल्फ को, बड़े राघव को क्या बोलोगे?
1: मुझे
0: अभी आपको मान लो यहाँ पे एक विंडो मिले जिसमें से जाओगे, तो आपको बड़ा राघव मिलेगा जो 18 प्लस होगा, 20 इयर्स का होगा, तो उसको क्या बोलोगे?
2: मैं उसको बोलूंगा कि ना अपने बचपने को कभी मत भूलना, जैसे हमने बचपन में मस्ती की थी वो कभी मत भूलना, और ऐसे ही चलते रहना,
0: ऐसे ही चलते रहना, बस बचपन वाले राघव को छोड़ नहीं देना, है ना।
2: और मम्मी पापा से भी मिलते रहना।
0: मम्मी पापा को भूल नहीं जाना। ओके ठीक है।
3: कभी भी पैसों के पीछे में नहीं भागना, पेरेंट्स के साथ ही रहना, अगर पैसों के पीछे भागना शुरू कर दिया तो पेरेंट्स दूर हो जाएंगे।
0: तो पेरेंट्स के पास रहना, पैसों के पीछे नहीं।
2: दीदी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें था कि मतलब है ना, एक बंदा था और वो पैसे कमा रहा था सिर्फ, और वो पैसे कमाते कमाते बूढ़ा हो गया, मतलब उसने कभी पैसे खर्च ही नहीं किए।
0: तो इसीलिए मतलब उनको स्पेंड भी करना, क्या कहना चाहते हो आप फिर?
2: कि हमको अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट भी लेना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए।
0: तो फ्यूचर राघव अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट जरूर लेना, है ना, और उनका केयर करना, भूलना नहीं है। ओके डन। तो चलिए जब आप लोग बड़े हो जाएंगे ना, तब फिर ये सुनिएगा, तब आपको याद आ जाएगा कि आप बचपन में अपने को क्या कहना चाहते थे। तो ये वाले जो एपिसोड है ना, ये आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तब आपको सुनाएंगे, तो आपको याद हो जाएगा कि बड़े कैसे होना है आपको।
3: जैसे कि अब हम अभी रेडियो में आते हैं, वैसे हम आते रहेंगे, और 9 इयर्स बाद हम यही ऑडियो सुनेंगे।
0: अच्छा, 9 इयर्स बाद या 10 इयर्स बाद कैसे होगे आप, कैसे, क्या वैल्यूज होंगे, क्या चीज होगी जिस पे आप फोकस करोगे, कैसे होगे, क्या लगता है, क्या कर रहे होगे उस टाइम, या कैसे होगे उस टाइम?
1: दीदी ये तो पता नहीं, क्योंकि ये तो फिर फ्यूचर हो गया है।
0: फ्यूचर सोच के बताओ, क्या लगता है फ्यूचर शिक्षा कैसी होगी?
3: दीदी ये तो भविष्यवाणी हो जाएगी फिर तो।
0: आपको क्या लगता है, ताकि आप बाद में जब सुनोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा मुझे ऐसा लगता था।
1: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी, मम्मी पापा के लिए टाइम जरूर निकाल पाऊंगी।
0: ओके कैसे होगे, क्या वैल्यूज होंगे आपके अंदर, कैसे रहते होगे, कहाँ रहते होगे, क्या करते होगे, कुछ लगता है?
3: दीदी मैं तो मेरा बचपना तो कभी नहीं भूलूंगी, जैसे अभी हंसती खेलती रहती हूँ वैसे भी बड़े होके भी रहूंगी, और बड़े होके देश के लिए कुछ करूंगी।
0: ओके
2: दीदी जब भी हम दोनों फ्री होंगे तो हम तो खेलने चले जाएंगे बैट और बॉल उठा के,
0: बड़े होके भी ना। तो ये फ्यूचर सेल्फ से प्रॉमिस है भाई, बैट बॉल नहीं उठाना भूलना। हाँ
3: दीदी, फुटबॉल उठाना भी नहीं भूलेंगे।
0: पक्का?
3: पक्का, प्रॉमिस।
2: दीदी बास्केटबॉल भी नहीं तो और दीदी बैडमिंटन भी नहीं।
0: ओके, मतलब बड़े होके गेम्स खेलना जरूरी है।
2: यस, उससे स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और अच्छा भी फील होगा।
0: गेम से
2: दीदी उससे हमारी फिटनेस भी बनी रहेगी।
0: बड़े होके फिट रहना है। ओके,
2: ऐसे नहीं कि ज्यादा भी ओवरवेट हो गया या फिर एकदम पतले हो गए।
0: ओके ओके, तो कर ली हमने ढेर सारी बातें और थोड़ा फ्यूचर में भी विजिट करके आ गए। तो मुझे लग रहा है जब बड़े हो जाएंगे बच्चे तो बिल्कुल अभी जैसे रहने वाले हैं और बहुत प्यार से रहने वाले हैं और बहुत इंजॉय भी करने वाले हैं, पेरेंट्स को कभी नहीं भूलने वाले हैं और ढेर सारे गेम्स खेलने वाले हैं।
2: दीदी अभी जैसे नहीं रह सकते, तब तो बैट और बॉल भी फ्यूचर वाले आ जाएंगे।
0: हाँ, तो फ्यूचर वाले टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट वाले बैट बॉल से खेलना।
4: दीदी आपने हम सबसे तो क्वेश्चन पूछ लिया, अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी है। आपको बड़े होके कैसे लगता है और क्या कैसे लगता है कि बचपन ज्यादा अच्छा होता है फिर बड़े होना ज्यादा अच्छा लगता
0: है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आप लोगों को लगता है ना, सेम, बचपन ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि बचपन में हम बहुत केयर फ्री होते हैं, बहुत ईजी होती है हमारी लाइफ की, हमें पढ़ना है खेलना है यही दो चीजें होती हैं हमारी लाइफ में। लेकिन बड़े होके बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि हम सिंपल कर सकते हैं बट कभी कभी हम भूल जाते हैं उसको सिंपल करना, है ना।
4: और कुछ अथॉरिटीज बताइए जिसको आप बड़े होके के बाद आपको मिली है।
0: हाँ, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे आप डिसीजन ले सकते हो कि आप करियर में क्या करना चाहते हो, है ना, आप कैसे रहना चाहते हो, आप किस चीज को किस तरीके से आप रिलेशंस को अपने बनाना चाहते हो, निभाना चाहते हो, है ना, बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको। और हाँ, जैसे आप लोगों ने बात की वोटिंग राइट्स और वो सब आप डिसाइड कर सकते हो कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हो, आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो, वो भी आपको एक बेनिफिट होता है।
3: दीदी आप बड़े ही हो तभी तो आप हमारे साथ बच्चों की दुनिया में बातें कर रहे हो।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा, तो मुझे तो पीछे जाना पड़ेगा और आप लोगों को फ्यूचर में। हाँ। चलो अभी फिलहाल तो वक्त हो गया है गुड बाय कहने का दोस्तों को, क्योंकि अब भाई आगे के प्रोग्राम्स भी तो सुनाने हैं उन्हें। और हम मिलेंगे बच्चों की दुनिया की अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।

0: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, आप सुन रहे हैं अंदर है घिच पिच।
1: छोटी बड़ी बातें, इनमें छुपी है बच्चों के दिल की बात।

छोटे बच्चे अक्सर अलग अलग तरह की भावनाएं महसूस करते हैं और कई बार एक ही समय पर एक से ज्यादा बड़ी भावना भी महसूस कर सकते हैं। जैसे कि वो एक ही समय पर किसी एक चीज को लेकर खुश हो सकते हैं और किसी और चीज को लेकर उदास भी। अब कुछ दिन पहले की बात है, मेरी बेटी की सहेली शहर छोड़कर अपनी दादी के पास रहने जा रही थी। एक तरफ तो मेरी बेटी अपनी सहेली के लिए खुश थी, पर साथ ही वो उदास भी थी कि उसकी सहेली उसे छोड़कर जा रही है। ना वो खुद समझ पा रही थी, ना मुझे समझा पा रही थी कि वो क्या महसूस कर रही है। फिर मैंने उससे बात की, हमने मिलकर उसकी भावना को समझा और उसे बेहतर महसूस करवाने वाले कुछ तरीके प्रैक्टिस किए। जब बच्चे एक ही समय पर एक या एक से ज्यादा छोटी बड़ी भावना महसूस कर रहे हों, तब उनके माता पिता और देखभाल कर्ताओं के लिए जरूरी है कि वो बच्चों की उलझन कम करने के लिए उनकी हर भावना को नाम दें। साथ ही बच्चों को हौसला दें कि कभी कभी एक ही समय पर उलझी हुई या अलग अलग भावनाएं महसूस करना भी साधारण बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। उन्हें समझाएं कि वो भावनाओं को दबाने के या उनसे घबराने की जगह आपकी मदद से अलग अलग तरीकों की प्रैक्टिस करके खुद को बेहतर महसूस करवा सकते हैं। लगता है आज एल्मो भी कुछ बड़ी मिश्रित भावनाओं से जूझ रहा है। आइए सुनते हैं कि उसके माता पिता उसको अपनी अलग अलग भावनाओं को पहचानने और संभालने में कैसे मदद करते।

0: ये क्या आवाज है?
1: पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं।
2: एक, दो, तीन, उफ। एक बार फिर से। एक, दो,
0: एल्मो, तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें पैर में चोट लगी है?
2: नहीं मम्मी।
0: फिर तुम एक टांग पर क्यों कूद रहे हो?
2: मम्मी, कल जब एल्मो अपने दोस्तों के साथ एक टांग वाली रेस कर रहा था, तब एल्मो सब दोस्तों के पीछे रह गया। एल्मो से एक टांग पर कूदा ही नहीं गया। एल्मो को तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए अब एल्मो एक टांग पर कूदने की प्रैक्टिस कर रहा है।
1: एल्मो, लगता है तुम काफी देर से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्यों ना तुम थोड़ी देर रुक कर पानी पी लो?
2: ठीक है पापा।

0: एल्मो, तुमने कहा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा जब तुम अपने दोस्तों की तरह एक टांग पर कूद नहीं पाए, है ना?
1: हाँ मम्मी, एल्मो का मन किया कि वो कहीं जाकर चुप जाए।
0: लगता है तुम शर्मिंदा महसूस कर रहे थे।
1: शर्मिंदा? वो क्या होता है मम्मी?
0: जब हम अपने बारे में अच्छा नहीं महसूस करते या हमें ऐसा लगता है कि हम कोई काम उतने अच्छे से नहीं कर पाए जितना हम करना चाहते थे, तो हम शर्मिंदा महसूस करते हैं।
1: हाँ मम्मी, एल्मो को बिल्कुल ऐसा ही लगा था।
2: ऐसा महसूस करने में कोई गलत बात नहीं है एल्मो। कभी कभी शर्मिंदा महसूस करना हमें अपने आप को बेहतर बनाने में मदद करता है।
0: पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम सब अलग हैं। कोई किसी काम को बहुत अच्छे से कर सकता है तो कोई और थोड़ा कम अच्छे से, और इसमें कुछ गलत नहीं है एल्मो।
1: हाँ मम्मी, पर एल्मो एक टांग पे अच्छे से कूदना चाहता है और एल्मो ये करके ही रहेगा।
2: यानी कि तुमने ठान लिया है कि तुम एक टांग पर लगातार कूद कर ही दिखाओगे।
1: हाँ पापा, एल्मो को ये करना ही है।
2: एल्मो, कोई काम पूरा करने के लिए ठान लेना अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें अपना काम करने के लिए जोश मिलता है, पर साथ में थोड़ा रुकना भी जरूरी है।
0: हाँ एल्मो, अगर तुम थोड़ी देर ब्रेक लोगे तो तुम्हारी थकान कम हो जाएगी और फिर तुम एक टांग पर और बेहतर कूद पाओगे।
1: फिर तो एल्मो जरूर ब्रेक लेगा।
0: वेरी गुड।
2: चलो फिर थकान दूर करने के लिए हमारे साथ लो एक लंबी गहरी सांस। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर, एक बार और, सांस अंदर, सांस बाहर।
0: अब तुम्हें कैसा लग रहा है एल्मो?
1: एल्मो बिल्कुल ताजा महसूस कर रहा है मम्मी। अब एल्मो रेडी है फिर से प्रैक्टिस करने के लिए।
2: बहुत अच्छी बात है, तुम कूदो, हम गिनते हैं।
1: ओके।
2: एक, दो, तीन, चार, पाँच।
1: एल्मो ने कर दिखाया। अब एल्मो भी अपने दोस्तों के साथ एक टांग पर कूदने वाली रेस में भाग पाएगा।
3: लुई, आप दोनों ने कितनी आसानी से एल्मो की अलग अलग भावनाओं को समझने और संभालने में मदद की। एल्मो की उलझन भी दूर हो गई और उसने जो बात ठान ली थी वो भी पूरी हो गई। वाह, बहुत अच्छे।
0: थैंक यू। जब भी एल्मो कोई बड़ी, छोटी, एक या एक से ज्यादा भावना महसूस करता है, तब हमारी पहली कोशिश यही होती है कि हम उसकी भावनाओं को नाम दें और एल्मो को उन्हें पहचानने में मदद करें। इससे एल्मो को अपनी भावनाओं को समझने और संभालने में मदद मिलती है।
2: साथ ही हम उसे ये भी समझाते हैं कि कुछ भावनाएं ऐसी भी होती हैं जो हमें हिम्मत देती हैं या फिर अच्छा महसूस करने में मदद करती हैं, जैसे कुछ करने के लिए दृढ़ महसूस करना, यानी मन में कुछ ठान लेना। ऐसी भावनाओं को संभालना भी जरूरी है।
0: इसीलिए हम उसके साथ भावनाओं को संभालने के अलग अलग तरीके, जैसे शांत बैठकर किसी चीज पर ध्यान लगाना या अपने आप को गले लगाने जैसे कई और तरीके प्रैक्टिस करते हैं।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितना हम बड़ी भावनाओं के बारे में अपने बच्चों के साथ बात करेंगे, भावनाओं को नाम देकर उन्हें पहचानेंगे और खुद को बेहतर महसूस कराने के तरीके प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बच्चों के लिए भावनाओं को समझना और संभालना आसान होगा। तो चलो सुने, समझे और समझाएं बच्चों को उनकी भावनाएं।
4: सेसेमी वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, यूबीएस ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से।
1: ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है और हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि उसमें से सबसे रंग बिरंगी उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार नवरात्रि का त्योहार है। आज दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन माना गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन पर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माता ब्रह्मचारिणी ये शब्द ब्रह्म और चारिणी, ब्रह्मा का मतलब है तपस्या, इसीलिए उसको तपश्चारिणी भी कही जाती है और ये माँ उमा का दूसरा स्वरूप माना गया है। माँ तपश्चारिणी अर्थात कि जिन्होंने तप और खूब तपस्या करके अपने जीवन के अंदर शक्तियों को प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी प्रेम और वफादार का प्रतीक है। उनके एक हाथ में जप माला है तो दूसरे हाथ में कमंडल है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि वो नित्य जब परमात्मा की तपस्या में लगे रहे तो परमात्मा के प्रति अति प्रेम होने के कारण उन्होंने परमात्मा का यानी परमात्मा शिव का नाम अजपा जाप निरंतर अंदर में जपते रहे। और कमंडल, कमंडल का मतलब है कि जहाँ जीवन के अंदर जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करते हुए अपने जीवन में उसको उतारना। तो ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी माना जाता। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है जिसके अंदर अथाह शक्ति है, जिसके चेहरे पर भी खुशी आनंद प्रेम और एक ग्रेस झलकता है। वो अपने विशेष भक्त जो उनकी पूजा करते हैं वो उन भक्तों को भी आनंद और खुशी प्रदान करती है और उन्हें सदगति की ओर राह दिखाती है। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी का विशेष गायन और पूजन होता है आज के दूसरे दिन।
2: IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का खत्म हो जाए तो पृष्ठ 110 बस का सफर। आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी को देखने जा रहे थे। हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलें तो इक्का दुक्का ही नजर आ रही थीं। क्रीचक, हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। यह एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पों पों पों का शोरगुल, कितना धुआं। शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बू आ रही थी जैसे गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती है। पृष्ठ 111। यहाँ पर रेड लाइट पर खड़े हुए ट्रैफिक का चित्र दिया गया है। चित्र देखकर लिखो कौन कौन सी गाड़ियां सड़क पर दिखती हैं। इनमें से कुछ वाहनों को पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है, क्यों? जिस जिस वाहन में से धुआं नहीं निकलता उस पर लाल निशान लगाओ। कौन कौन से वाहन बिना पेट्रोल डीजल से चलते हैं ये बताओ। वाहन के तेज हॉर्न से हमें क्या क्या परेशानी होती है बताओ। क्या तुम साइकिल चलाते हो? यदि हाँ तो उससे कहाँ कहाँ जाते हो? तुम स्कूल किस तरह जाते हो? तुम्हारे परिवार के लोग घर से बाहर काम पर कैसे कैसे जाते हैं? क्या गाड़ियों में से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है?
1: किस तरह की?
2: क्या गाड़ियों के तेज हॉर्न से हमें कुछ परेशानी हो सकती है?
1: किस तरह की?
2: पेट्रोल पंप पर। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफी देर में आएगा। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे। वहां पर कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। पृष्ठ 112। एक पोस्टर था, तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें।
1: पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले भैया से ही पूछते हैं।
2: अब्राहम ने पूछा, भैया यह तेल कहाँ से मिलता है?
1: पेट्रोल डालने वाले भैया ने बताया, जमीन के बहुत नीचे से।
2: मंजू बोली, जमीन के नीचे? वहाँ कैसे बनता है?
1: भैया बोले, यह जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसे।
2: अब्राहम ने पूछा, तब तो हम खरीदने की बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह?
1: भैया बोले, यह हर जगह नहीं होता, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है। निकालने साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है।
2: पृष्ठ 113। पता करो, भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में हैं?
1: जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है?
2: सड़क पर चलने के नियम पता करो और उन पर कक्षा में चर्चा करो।
1: पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना चाहिए।
2: सोचो क्यों?
1: आगे की बातचीत।
2: दिव्या बोली, पेट्रोल खत्म होने वाला है क्या?
1: पोस्टर पर लिखा है कि भंडार सीमित हैं।
2: भैया बोले, हम जितनी तेजी से निकाल रहे हैं उतनी तेजी से वह बन नहीं रहा है।
1: वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं।
2: अब्राहम बोला, अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ी कैसे चलेंगी?
1: मंजू बोली, CNG से, मैंने TV पर देखा था, इसमें धुआं भी कम होता है।
2: भैया हंसते हुए बोले, अरे वह भी तो जमीन से ही मिलती है और सीमित ही है।
1: दिव्या बोली, बिजली से भी तो गाड़ियां चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है।
2: अब्राहम बोला, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियां कैसे चलाएंगे?
1: दिव्या बोली, अगर गाड़ियां कम चलेंगी तो मेरी दादी खुश हो जाएंगी, वे कहती हैं, तौबा चीटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा?
2: मंजू बोली, हाँ देखो ना, ज्यादातर गाड़ियों में एक दो लोग ही बैठे हैं, सब बस में क्यों नहीं जाते?
1: अब्राहम बोला, हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं।
2: मंजू बोली, मैं बड़ी होकर कोशिश करूंगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियां चला सकें, फिर खत्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितना मर्जी इस्तेमाल करो।
1: पृष्ठ 114। जमीन से खजाना। यह पता लगाना आसान नहीं कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाजा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है, इसमें घुली मिली और छिपी होती हैं बहुत सारी चीजें। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है?
2: इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन। जानते हो एलपीजी यानी खाना पकाने की गैस, मोम, कोल तार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम करने में लग जाते हैं। कभी कभी खेत में पंप भी चलता रह जाता है। कितना तेल खर्च हो जाता होगा? घर जाकर बाबा से जरूर बात करूंगा। लिखो, अगर किसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? जैसे सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बड़ों से बात करके अपने विचार लिखो। मंजू ने कहा, सब बस में क्यों नहीं जाते? सभी लोग बस में सफर क्यों नहीं करते? बताओ। बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद कर देने के क्या क्या फायदे हैं? सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाओ। पृष्ठ 115। पता करो और लिखो, कितना तेल लगे? बताओ, ये वाहन एक बार में कितना पेट्रोल या डीजल भर पाए? स्कूटर, कार, ट्रैक्टर। अब बताओ, ये वाहन 1 लीटर पेट्रोल या डीजल से कितनी दूर जाए? स्कूटर, कार, ट्रैक्टर। हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग होती है। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है। इसे देखकर प्रश्नों के उत्तर दो। पेट्रोल सन 2000 में 1 लीटर की कीमत अक्टूबर के महीने में है 29.91 रुपए। सन 2007 में 1 लीटर की कीमत अक्टूबर में है 43.52 रुपए। और सन 2014 में 1 लीटर की कीमत अक्टूबर के महीने में है 67.86 रुपए। इसी प्रकार डीजल सन 2002 में 1 लीटर डीजल की कीमत अक्टूबर के महीने में है 18.91 रुपए। सन 2007 में 1 लीटर की कीमत अक्टूबर के महीने में है 30.48 रुपए। और इसी तरह सन 2014 में 1 लीटर की कीमत है अक्टूबर के महीने में 58.97 रुपए। अब बताओ, सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत रिक्त स्थान रुपए बढ़ी और डीजल की कीमत रिक्त स्थान रुपए बढ़ी। सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर था? पता करो। तुम्हारे इलाके में आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है? पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है? तुम्हारे घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है? किस किस काम में? बताओ। पृष्ठ 116। यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है जिसमें लिखा है, मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ। तेल की बचत आपकी आ

मिट्टी के तेल और गैस के रूप में। यहाँ पर है मोटर पंप और रंग रोगन का सामान। लिखा है, मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ मशीनों में, प्लास्टिक रंग रोगन में। पोस्टर को देखकर बताओ, तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। पृष्ठ 117। दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई। पढ़ो और चर्चा करो। बताओ बताओ कौन हूँ मैं, काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। धीरे धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार। लाखों साल में बन जाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार। जब लोगों को नहीं मिलूंगा, कैसे तब सब काम चलेंगे, मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे, फिर भी जाया मुझे करेंगे। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। सोचो और चर्चा करो। तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा, तेल बचाने के तरीके सुझाओ। घर में चूल्हा कैसे जले। दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। दिन में कई घंटे उसके चूल्हे की लकड़ियां इकट्ठी करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीने से खांसी है। सीली हुई लकड़ियां जलाने में धुआं भी बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं है। जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं, तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। चर्चा करो। क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की हैं या उपले बनाए हैं? उपले कैसे बनते हैं? क्या तुम किसी को जानते हो जो चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते हैं? पृष्ठ 118। तुम्हारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर वे लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हैं तो धुएं से किस तरह की परेशानी होती होगी? क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकती है? क्यों नहीं? आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियां आदि का इस्तेमाल करते हैं, केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी। घर के अलग अलग कामों के लिए और चीजों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, LPG यानी खाना पकाने की गैस, कोयला, बिजली आदि। कांचा ने एक किताब में एक चार्ट देखा। इस बार चार्ट में दिखाया गया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज का इस्तेमाल बढ़ा और किसका घटा। चार्ट में दिया गया है 20 साल में बदलाव। यहाँ पर दिखाया है कि सन 1976 में उपले और लकड़ी 84% खर्च होते थे और 1986 में 75%। 1976 में LPG गैस और केरोसिन 10% खर्च होता था और सन 1996 में 18%। सन 1976 में 5% कोयला खर्च होता था और सन 1996 में 2%। सन 1976 में बिजली 1% खर्च होती थी और सन 1996 में 5%। देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था? 1976 में सबसे कम किसका इस्तेमाल हो रहा था? पृष्ठ 119। 1976 में LPG और केरोसिन का इस्तेमाल रिक्त स्थान घरों में

0: था जो 1996 में बढ़कर रिक्त स्थान हो गया, यानी 20 सालों में इनका इस्तेमाल रिक्त स्थान प्रतिशत बढ़ा। 1996 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था? 1996 में किसका इस्तेमाल सबसे कम था? 1976 में यह कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था? अपने घर में बड़ों से पता करो। जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता था? पिछले 10 सालों में तुम्हारे इलाके में खाना बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल बढ़ा और किस चीज का घटा है? अनुमान से बताओ अगले 10 सालों में खाना पकाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल बढ़ेगा और किसका घटेगा? हम क्या समझे? किसी कंपनी ने तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे बस, मिनी बस का डिजाइन बनाने का मौका दिया है। तुम किस तरह की बसें चलाना चाहोगे उसके बारे में लिखो और उसका चित्र बनाकर रंग भरो। बस का डिजाइन बनाते समय इन लोगों की सुविधा के लिए तुमने क्या क्या सोचा? बुजुर्ग, छोटे बच्चे, जो लोग देख नहीं पाते। तेल के बारे में छपी खबरों को अखबार में से काटो और एक चार्ट पर चिपकाकर कोलाज बनाओ। उसे अपनी कक्षा में लगाओ और अपने कुछ विचार भी लिखो।
1: मारी जगदम्बा तू जोगणी,
0: उस पर नारा भी लिखो।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के उपलक्ष्य में रेडियो मधुबन के सुनने वाले सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, 12 अक्टूबर की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज विशेष प्रदूष व्रत के साथ विश्व दृष्टि दिवस भी आज है। जी हाँ, इसके साथ में विजय मर्चेंट, शिवाजीराव पाटिल, विजयराज सिंधिया, निदा फजली, आत्माराम, कामनी राय, पेरिन बेन, शिवनाथ मिश्रा, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही राम मनोहर लोहिया, पी वेंकट सुब्बैया, इन सभी का पुण्य दिवस है। आइए, विश्व दृष्टि दिवस की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज के समय में जहाँ पर हम हर साल अक्टूबर महीने में दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है, ये दिवस धुंधली दृष्टि, खराब दृष्टि, अंधापन के साथ साथ दृष्टि संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का केंद्र बिंदु अंधेपन की रोकथाम के बारे में लक्षित दर्शकों को शिक्षित तथा विजन 2020 और विजन 2020 कार्यक्रम की गतिविधियों के बारे में सहयोग उत्पन्न करना है। इस वर्ष विश्व दृष्टि दिवस का विषय कार्रवाई करने के लिए मिलजुल कर सशक्त बन सकते हैं। तो आइए, इसके बारे में अधिक जानकारी मैं थोड़ी देर में देने वाला हूं। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत विचार के साथ। जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना जो मुझे मिला वो था कि मेरी तुमसे दोस्ती हुई। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को। और आइए, एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अभी आपके लिए सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात कर रहे थे हम लोग विश्व दृष्टि दिवस के बारे में। अब ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के समय में तेजी से नेत्रहीनता या धुंधलापन बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार विश्व भर में लगभग 285 मिलियन लोग नेत्रहीन होते जा रहे हैं। इनमें से 39 लाख लोग अंधे और 246 मिलियन लोग मध्यम या गंभीर दृष्टि दोष वाले हैं। दृष्टि दोष के मुख्य कारणों के अनुसंधान में विशेष ये पाया गया जिसमें 43% और उपवर्ग कमियां हैं और मोतियाबिंदु 33% है। अधिकांश अंधेपन लगभग 80% का बचाव यानी कि उपचार या रोकथाम की जा सकती है, ये बातें विशेष रिसर्च में सामने आई। इसके साथ में रोकथाम की बात करें तो अंधेपन की रोकथाम सभी स्वास्थ्य हस्तक्षेप में सबसे सस्ती, सुलभ और सफल हस्तक्षेप है। विश्व दृष्टि दिवस विजन 2020 एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक टालने योग्य अंधेपन को समाप्त करना है। इसका शुभारंभ 18 फरवरी 1999 में 20 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी नेत्र देखभाल संगठनों के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दृष्टिहीनता रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAPB के तौर पर किया गया था। आँखों की देखभाल के लिए आँखों के अच्छे स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जा सकता है, इसके बारे में अगर बात करें तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छी दृष्टि के लिए स्वस्थ आहार सेवन करें। संतुलित आहार का सेवन करना, अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों और गाजर को अधिक से अधिक मात्रा में शामिल करें। धूम्रपान छोड़े धूम्रपान मोतियाबिंदु, ऑप्टिक और तांत्रिक क्षति के साथ साथ दृष्टि से संबंधित कई तरह की समस्याओं को पैदा करता है। सूर्य की रोशनी के प्रत्येक प्रभाव को रोकने के लिए UV संरक्षित धूप का चश्मा पहने जो कि आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए बेहतर है। सुरक्षा चश्मा पहने यदि आप कार्यस्थल पर कुछ ऐसे पदार्थों से काम करते हैं जो आपके लिए आंखों के लिए मुश्किल कर दें, ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहे या चश्मा पहनकर अवश्य काम कीजिए। यदि आप लंबे अवधि तक कंप्यूटर पर काम करते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आप अक्सर बीच बीच में उठेंगे आंखों का सूखापन कम करने के लिए, आंखों को अधिक से अधिक बार झपकें। टेलीविजन देखते या कंप्यूटर पर काम करते हुए एंटी ग्लेम चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है। मंद प्रकाश में ना पड़े पर ये आंखों को होने वाली परेशानियों के मुख्य कारण में से एक है। आंखों के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपनी आंखों की नियमित जांच कराएं। खिड़कियों और लाइट द्वारा कंप्यूटर पढ़ने वाली चकाचौंध से बचने के लिए यदि आवश्यक हो तो एंटी ग्लेयर स्क्रीन का उपयोग करें। यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो उन्हें लंबे अवधि तक पहनने से बचें। कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हुए तैराकी या सोने से बचें। अपनी आंखों को आराम देने के लिए हर 20 मिनट में 20 फीट की दूरी पर 20 सेकंड के लिए देखें। नेत्रदान करें। आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति का ही कर्तव्य नहीं है बल्कि ये समाज की सामूहिक जिम्मेवारी है। नेत्रदान द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है। किसी को बेहतर दृष्टि देने के लिए आज ही अपनी आंखें दान करने की शपथ ले। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को, और ये थी विशेष विश्व दृष्टि दिवस की कुछ बातें। और नेत्र पर ध्यान देना, नेत्रदान करने का संकल्प करते जाएं और जितना अधिक समय आप जो है अपना देखभाल अच्छे से करें, हरी सब्जियों का, गाजर का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। आइए आगे बढ़ते हैं और बीच बीच में अपने आई डॉक्टर को यानी आँखों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाते रहें, अपने आँखों की जाँच अवश्य जरूर करें। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने दोषों पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाइयों को पहचाने और उन्हें विकसित करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए बात करते हैं आज विशेष विजय मर्चेंट के बारे में सुनते हैं। और आपने रेडियो पर इनका कार्यक्रम, अगर आप 70s या 75 के बीच में आपका जन्म हुआ होगा तो आपने ज़रूर इनकी आवाज़ सुनी होगी। और ये एक विजय सिंह माधव जी ठाकरे इनका पूरा नाम है और डॉन ब्रेडमैन के ज़माने के महान क्रिकेट खिलाड़ी थे, जितने आज सचिन तेंदुलकर हैं उनका वास्तविक नाम विजय सिंह माधव जी ठाकरे से था। यदि उनके प्रथम श्रेणी के आंकड़ों पर नज़र डालें तो वो डॉन ब्रेडमैन के बाद अगले नंबर पर आते हैं। उनका इन मैचों में औसत 71.64 रहा था। विजय मर्चेंट का जन्म आज ही के दिन 12 अक्टूबर 1911 को तत्कालीन बम्बई प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र के एक धनी परिवार में हुआ था। जब वो मात्र 15 साल के थे तब उन्हें एक मैच में 2 शतक बना दिए थे। 5 फुट 7 इंच की ऊंचाई हो जाने पर उन्होंने अपना फुटवर्क सुधारते हुए गेंद के बेहतरीन कट लगाने आरंभ कर दिए थे। उन्होंने 1929 से 1946 के बीच में बम्बई टूर्नामेंट में हिंदुजा का प्रतिनिधित्व किया और 1933 से लेकर 52 तक अपने रिटायरमेंट तक विजय मर्चेंट ने रणजी ट्रॉफी में बम्बई का प्रतिनिधित्व किया। उनके प्रथम श्रेणी मैचों के 44 शतकों में 200 से अधिक रन बने थे, जिनमें 9 भारत के स्टेडियम में बने थे। क्रिकेट में सफलता की बात करें तो ये एक ऐसे व्यक्ति रहे क्रिकेट में सफलता का पैमाना ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी डॉन ब्रेडमैन को माना जाता है, जो क्रिकेट के बादशाह समझे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1948 के बाद से हर साल हर सफल खिलाड़ी को डॉन ब्रेडमैन घोषित किया जाता है। वेस्ट इंडीज के जॉर्ज हेडली को ब्लैक ब्रेडमैन कहा जाता है। यद्यपि सुनील गावस्कर के क्रिकेट में उनके रिकॉर्ड तोड़े परंतु वह ब्रेडमैन से कुछ पीछे रह गए, लेकिन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विजय मर्चेंट ने प्रथम श्रेणी मैचों में अपना औसत 71.64 बना लिए, जो केवल डॉन ब्रेडमैन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यद्यपि विजय मर्चेंट के टेस्ट मैचों में आंकड़े काफ़ी अलग है, जिनमें उनका औसत 47.72 है। घरेलू जो पिच है उनमें हजारों रन बना डाले। उन्होंने इंग्लैंड के 2 दौर पर जो 10 वर्ष के अंतराल पर हुए बेहद शानदार खेल प्रदर्शन किया और कुल मिलाकर 4000 रन बना लिए। भारतीय घरेलू स्तर पर उन्होंने रणजी ट्रॉफी मैच में प्रथम श्रेणी मैचों से बेहतर प्रदर्शन किया और 47 पारियों में उनका 98.75 का औसत रहा। रनों का कारनामा अगर देखना हो तो विजय मर्चेंट को एक बार 359 का स्कोर बनाया था और 10 घंटे 45 मिनट की पारी में आउट नहीं हुए थे। ये रनों का कारनामा उन्होंने 1943 और 44 में मुंबई में महाराष्ट्र के विरुद्ध बनाया था। इन रनों को बनाने के दौरान उन्होंने 6 विकेट की सज्जेदारी के लिए मोदी के साथ 371 रन तथा 8वें विकेट में सज्जेदारी के साथ आरिस कुप्पर के साथ 210 रन की पारी खेली। इसके अलावा 1945 में मोदी के साथ मिलकर तीसरी क्रिकेट की सज्जेदारी के लिए पश्चिम भारत के विरुद्ध 373 रनों की सज्जेदारी की। तो इस तरह से काफ़ी रन जो है बनाते गए और 51 और 52 में दिल्ली में इंग्लैंड के विरुद्ध बनाए, तभी क्षेत्र आरक्षण फील्डिंग के दौरान उनके कंधे में गंभीर चोट लगी थी, जिसके कारण उन्हें तुरंत क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना पड़ा। इसके पहले उन्होंने 5 वर्ष पूर्व ओवल में अगस्त 1946 में 138 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। तो विजडम क्रिकेट ऑफ द ईयर विजय मर्चेंट अपनी पारियों की फिल्म बनाते थे, फिर उन्हें गौर से स्टडी करते थे। यद्यपि उन्होंने प्रारंभिक दिनों में खेलने की कोई कोचिंग नहीं ली थी परंतु वो एलबी राय की स्टाइल भारी बल्लेबाजी से प्रभावित थे और 1933 और 34 में सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट खेलना आरंभ किया था और यहीं से उनकी जो है कहानी शुरू हुई। देश विदेश में उन्होंने खेल कर अलग अलग जगह पर उन्होंने अलग अलग रिकॉर्ड बनाए। विजय मर्चेंट ने 18 वर्ष के दौरान 10 टेस्ट मैच खेले जिनमें उन्होंने 859 रन बनाए। रणजी ट्रॉफी मैचों में 47 पारी खेली जिसमें 16 बार शतक लगाए और आश्चर्यजनक औसत 98.75 से उन्होंने 3,639 रन बनाए और मीडियम फेस ऑफ स्पेन गेंद फेंकते हुए 31.87 के औसत से 65 विकेट लिए। खेलों से संन्यास लेने के पश्चात एक प्रशासक, लेखक तथा कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बन गए। वो खेल चयन समिति के सदस्य रहे और उन्होंने ही पटौती दी जूनियर के स्थान पर वाडेकर को टीम का कप्तान बनाया था। उन्होंने सामाजिक कार्य में भी भरपूर सहयोग दिया और जब प्रस्तुतकर्ता बने रेडियो पर तो क्रिकेट विद विजय मर्चेंट ये नाम से वो कार्यक्रम आता था। उनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1987 को मुंबई में 76 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। तो ये थी कुछ खास बातें विजय मर्चेंट के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो माधवन 107.8 FM पर। सफर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए थे। आइए इस बार अब बात करते हैं शिवराज विश्वनाथ पाटिल के बारे में। एक प्रसिद्ध राजनीतिक, वर्तमान पंजाब राज्य के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल सर्वसहमति से 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और जिसका गौरव बहुत कम लोगों को ही प्राप्त होता है। अपने उदार दृष्टिकोण, सौम्य स्वभाव और अनुकरणीय धैर्य और सदैव निष्पक्षता बरतने के गुण के कारण सभा की कार्यवाहियों को चलाने के लिए वह उत्कृष्ट संचालक साबित हुए। वे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में गृह मंत्री के पद पर रहे थे। शिवराज पाटिल का जन्म आज के दिन 12 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में चाकूर गांव में हुआ और उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से विज्ञान में अपनी डिग्री प्राप्त की और उसके पश्चात मुंबई विश्वविद्यालय में विधि का अध्ययन किया और विधि में डिग्री प्राप्त करने के बाद पाटिल के प्राध्यापक के रूप में जीवन शुरू हो गया था और लगभग 6 महीने तक अध्ययन कार्य उन्होंने किया। उसके बाद अपने गृह नगर लातूर में वकालत शुरू करने का निर्णय किया और कुछ समय तक वो सार्वजनिक जीवन की ओर आकर्षित हुए और 1967 में वह लातूर नगर पालिका के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए और 1969 तक इस पद पर बने रहे और 71 से 72 तक दोबारा इस पद पर बने रहे। लातूर नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में पाटिल ने नगर पालिका प्रशासन में विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, अस्पताल तथा भूमिगत जल निकासी व्यवस्था, जल आपूर्ति योजनाओं और नगर योजनाओं आदि के बारे में अनेक नवीनताओं का परिवर्तन किया और काम किया और इस वजह से लोगों के चाहते बने और धीरे धीरे उसके वजह से 1972 में फिर वो राजनीति में अपना जो है आगे बढ़े। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित हो जाने के साथ ही इनका सफ़र अलग शुरू हो गया और फिर अलग अलग राज्यों से जुड़े उसके दौरान सरकारी उपकरणों से सभापति और उपमंत्री, फिर मंत्री, इस तरह के कई जो है अलग अलग पदों पर कार्य करते रहे। लोकसभा सांसद भी बने 1980 में और उम्मीदवार के रूप में लातूर संसदीय निर्वाचित से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और फिर वहां पर उन्होंने काम किया और फिर 80 तक संसदों के वेतन तथा पदों संबंधित संयुक्त समिति सदस्य भी रहे और 8 सितंबर 1980 से लेकर 18 अक्टूबर 1980 तक इस समिति के सभापति के रूप में काम किया। फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उन्होंने अपना जो है काम किया। रक्षा मंत्रालय में उन्होंने 19 अक्टूबर 1980 से 14 जनवरी 1982 तक काम किया। वाणिज्य स्वतंत्र प्रभार में मंत्री बने रहे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी ये कारोबार देखते रहे। रक्षा उत्पादन और आपूर्ति के भी काम को उन्होंने देखा। नगर विमान और पर्यटन, स्वतंत्र आभार का पदभार उन्होंने संभाला। फिर अपनी अध्यक्षता के दौरान बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की और जहाँ भी इनको मौका मिलता अपनी सेवा प्रदान अवश्य करते थे। संसद पुरस्कार की स्थापना भी इन्होंने की। शिवराज पाटिल की संसदीय प्रणाली को मजबूत करने की इच्छा शक्ति वचनबद्ध और उस समय उजागर हुई जब भारतीय संसद दल द्वारा उत्कृष्ट संसद पुरस्कार की स्थापना की गई। ये पुरस्कार संसदीय परंपराओं को बनाए रखने और अपना योगदान देने के लिए उत्कृष्ट संसद को प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। राज्यपाल और प्रशासक के रूप में भी इन्हें याद किया जाता है। लोकसभा सांसद, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा शिवराज पाटिल वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक और शिवराज पाटिल राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और 26 अप्रैल 2010 से लेकर 28 अप्रैल 2012 तक। तो ये थी कुछ खास बातें शिवराज पाटिल के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो।

और आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को विजय राजेश सिंधिया के बारे में बात करना चाहूँगा। इनका आज जन्मदिन है तो सागर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता और इन्हें ग्वालियर की राजमाता के रूप में भी सम्मान मिला हुआ है। तो आइए राजमाता विजय राजेश सिंधिया का जन्म आज ही के दिन 1919 को सागर मध्य प्रदेश के राणा परिवार में हुआ। विजय राजेश सिंधिया ने उनके पिता श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जालौन जिला के डिप्टी कलेक्टर थे और विजय राजेश सिंधिया की माता श्रीमती बिंदेश्वरी देवी थी। और विजय राजेश सिंधिया का विवाह के पूर्व का नाम लेखा दिव्येश्वरी था और सिंधिया का विवाह 21 फरवरी 1941 को ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया से हुआ और विजय राजेश सिंधिया के पुत्र माधवराव सिंधिया, पुत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया है। पारिवारिक परंपराओं को देखते हुए राजनीति का सफर इनका ग्वालियर से ही शुरू हुआ। ग्वालियर भारत के विशालतम और संपन्नतम राजे राजवाड़ों में से एक है और विजय राजे सिंधिया अपने पति जीवाजी राव सिंधिया की मृत्यु के बाद संसद सदस्य बनी थी और अपने सैद्धांतिक मूल्यों के दिशा निर्देशन के कारण विजय राजे सिंधिया जो है जनसंघ भाजपा में शामिल हो गई। विजय राजे सिंधिया का रिश्ता एक राज परिवार से होते हुए भी अपनी ईमानदारी सादगी और प्रतिबद्धता के कारण पार्टी में सर्वप्रिय बन गई और शीघ्र ही वे पार्टी में शक्ति स्तंभ के रूप में सामने आई। 1957 की बात करें तो विजय राजे सिंधिया ने उस समय चुनाव लड़े और उन्होंने दो कोणीय मुकाबले में हिंदू महासभा के देश पांडे को 60,057 मतों से पराजित किया था और सदस्यत्व का चुनाव विजय राजे सिंधिया ने स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर लड़ा और कांग्रेस के डी के जाधव को 1,86,189 मतों से पराजित किया था। और 1989 में आम चुनाव विजय राजे सिंधिया एक बार फिर गुना से भाजपा प्रत्याशी थी। इससे पहले 22 साल पूर्व सन 1967 में राजा माता वहां से जीती थी। उनके मुकाबले कांग्रेस ने महेंद्र सिंह खालूकेड़ा को मैदान में उतारा गया था। अनुखालेकड़ा राजा राजमाता के हाथों 1,46,290 वोटों से परास्त हो गए। तो इस तरह से इनकी जो है दबदबा हमेशा बना रहा राजनीति का सफर में और सिलसिला चौथी बार भी लगातार जारी रहा और तब विशेष रूप से इन्हें जो है कोशिश तो बहुत की लेकिन कोशिश के बावजूद भी वहाँ के लोग जनता जो है इन्हें ही प्राथमिकता देते रहे। और माधवराव सिंधिया ने 5 उम्मीदवारों की मौजूदगी में अपना निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के देशराज सिंह को 2,14,428 मतों से पराजित किया था। ग्वालियर का राजवंश के राजमाता विजय राजे सिंधिया ने लोगों के दिल पर बरसों राज किया और 1998 में राजमाता का स्वास्थ्य खराब होने पर 25 जनवरी 2001 में विजय राजे सिंधिया का निधन हुआ। राजमाता त्याग और समर्पण की मूर्ति थी। राजसी ठाट बाट का मोह त्याग कर जनसेवा का अपना जो है देय बनाए। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने जनसेवा से कभी अपना मुख नहीं मोड़ा। इसीलिए राजमाता को अपने प्रेरणा सूत्र मानकर उनके पद चिन्हों पर एक आदर्श बनकर चलना चाहिए। तो ये थी कुछ खास बातें विजय राजा सिंधिया के बारे में। आप सुनाए हैं रिवाद 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ढेर सारी खुशियां आप सभी को। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: ओम शांति, मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो माधवन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। आइए बात करते हैं एक महान शायर के बारे में। आधुनिक उर्दू शायर के बहुत ही लोकप्रिय शायर है। ये शायर हिंदी के पाठकों के लिए भी उतना ही सुपरिचित है जितना उर्दू के पाठकों के लिए। इनका पूरा नाम मुक्तिदा हसन निदा फजील है, जो बाद में निदा फजली के रूप में प्रसिद्ध हुआ। निदा फजली उनका लेखन का नाम है। निदा का अर्थ होता है स्वर, आवाज, वॉइस। फजील कश्मीर के एक इलाके का नाम है जहाँ से निदा के पूर्वज उनका आकर दिल्ली में बस गए थे, इसलिए उन्हें अपना उपनाम में फजली जोड़ा है। तो निदा फजली का जन्म आज ही के दिन 12 अक्टूबर 1938 को हुआ था और इनकी स्कूली शिक्षा ग्वालियर मध्य प्रदेश में। पिता एक शायर थे, तो भारत विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए और भारतीयता के पोशाक निदा फजली भारत को छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए और आज भी इस देश को अपनी रचनात्मक प्रतिभा से समृद्ध कर रहे हैं। निदा फजील गज़लों के साथ दोहे भी बखूबी कहते हैं। नज़मों में भी उन्होंने महारत हासिल की। 1960 के दशक के दौरान अपने समकालीन शायरों कैफी आज़मी, सरदार अली जफ़र और साई लुधियानवी पर एक समीक्षक किताब मुकाबले भी निदा फजली के लिखी है। उनकी एक ही बेटी है जिसका नाम है ताहिर तारीर और निदा फजली की मृत्यु 8 फरवरी 2016 को मुंबई में हुई। अब इनके बारे में बात करें तो ये 1946 में जीविका की तलाश में निदा फजली मुंबई आ गए। मुंबई में शुरुआती दिनों में धर्मयुग और ब्रिटिश के आलेख भी लिखे। मुंबई में रहते हुए मुशायरों से भी बेहद लोकप्रियता हासिल की। फिल्म रजिया सुल्तान के निर्माण के समय शायर जानसीर अख्तर के निधन के बाद फिल्म निर्माता कमल अमरोही ने इन्हें गीत लिखने के लिए अवसर दिया। इनके लिखे गीत काफ़ी लोकप्रिय भी हुए। इसके बाद आज तक इनके फिल्मी गीत लेखन का सफ़र जारी है। भाषा शैली की बात करें तो ये एक ऐसे शायर रहे भाषा आम आदमी को समझ में आ जाए। ये कवि शायर सहज भाषा में गूढ़ से गूढ़ बातें कहने में माहिर। निदा फजली एक सूफी शायर है। रहीम कबीर मीर से प्रभावित, मीरा से प्रभावित है, तो मीर और गालिब भी इनमें रचवे बैसे जाते हैं। निदा फजली की शायरी की जमीन भारतीय है। वो छोटी उम्र में ही लिखने लगे थे। जब वो पढ़ते थे तो उनके सामने की पंक्ति में एक लड़की बैठा करती थी जिससे वो एक अनजाना अनबोला सा रिश्ता अनुभव करने लगे। लेकिन एक दिन कॉलेज के बोर्ड पर एक नोटिस दिखा, मिस टंडन मीट विथ एन एक्सीडेंट एंड हैज एक्सपायर्ड। कुमारी टंडन का एक्सीडेंट हुआ और उनका देहांत हो गया है। निदा बहुत दुखी हुए और उन्होंने पाया कि उनका अभी तक का लिखा हुआ कुछ भी नहीं उनके इस दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, ना ही उनको लिखने का जो तरीका आता था उसमें वो कुछ ऐसा लिख पा रहे हैं जिससे उनके अंदर का दुख की गहरे राज खुले। एक दिन सुबह एक मंदिर के पास से गुजरे जहाँ पर उन्होंने किसी के सूरदास का भजन मधुबन तुम क्यों रहत हारे, बिहार वियोग श्याम सुंदर के टाड़ क्यों न जारे, वो गाते हुए भजन सुना जिससे कृष्ण के मधुर और मथुरा से द्वारका चले जाने पर उनके वियोग में डूबी राधा और गोपियां फुलवारी से पूछ रही होती है, ये फुलवारी तुम हरी क्यों नहीं बनी हुई हो, कृष्ण के वियोग में तुम खड़े खड़े क्यों नहीं जल गई। वो सुनकर निदा को लगा कि उनके अंदर दबे हुए दुख की गिरहे खुल गए हैं। फिर उन्होंने कबीरदास, तुलसीदास, बाबा फरीद इत्यादि कई अन्य कवियों को भी पढ़ना शुरू कर दिया और उसमें उन्होंने पाया कि इन कवियों की सीधी सादी बिना लाग लपेट की दो टुक भाषा में लिखी रचनाएं अधिक प्रभावकारी है। जैसे सूरदास की ही उदो मन न भाए दास बीस, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आरा देते इस, तब से वैसे ही सरल भाषा सदैव के लिए उनकी अपनी शैली बन गई और फिर धीरे धीरे उन्होंने ऐसी ही शैलियों को पकड़कर लिखना शुरू कर दिया। निधा फिजली की कुछ मुख्य साहित्य कृतियाँ, एक बहुत बड़ा संसार है उनका, आंखों पर आकाश, मौसम आते जाते हैं, खोया हुआ सब कुछ, लफ्जों के फूल, मोर नाच, आंख और ख्वाब के दरमियान, सफर में डूब तो होगी, ये सारी चीज़ें जो है इनके काव्य संग्रहों की बात मैंने की। आत्मसमर्पण और आत्मकथा भी उन्होंने लिखी, दीवारों के बीच, दीवारों के बाहर, और कुछ संस्करण इन्होंने लिखे, मुलाकातें सफर में डूब तो होगी, तमाशा मेरे आगे, और कुछ चीज़ों का उन्होंने संपादन भी किया, और कुछ फिल्मी गीत, गज़ल, तेरे हिज मेरा नसीब है, तेरा गम मेरी हयात है, आई जंजीर की जंकार खुदा खैर कर, फिल्म रजिया सुल्तान का ये गीत है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, फिल्म सरफिरोशी का ये गीत। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलती, आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का ये गीत। तू इस तरह मेरी ज़िंदगी में शामिल है, फिल्म आहिस्ता आहिस्ते का ही। तुम चुप, तुम रहो चुप, हम रहें, इस रात की सुबह नहीं होगी, इस फिल्म का ये गीत। दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना, गज़ल, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, ये गज़ल, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, ये भी गज़ल निधा फजली की रचनाओं में से एक है। तो चलिए, ये सारी खूबसूरत गज़लें और गीत आपने बहुत बार सुनी होगी। आइए उनके सम्मान की अगर बात करें तो 1998 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, 2003 में स्टार स्क्रीन पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए उनके गीत के लिए, फिल्म सुर के लिए। 2003 में बॉलीवुड मूवी पुरस्कार इनको मिला श्रेष्ठ गीतकार के रूप में। मध्य प्रदेश सरकार का मीर ताकी मीर पुरस्कार इन्हें मिला। मध्य प्रदेश सरकार का खुजरू पुरस्कार भी इनको मिला। महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी का श्रेष्ठतम कविता पुरस्कार, बिहार उर्दू अकेडमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का पुरस्कार और हिंदू उर्दू संगम पुरस्कार लखनऊ से इनको प्राप्त है। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें निधा फजल के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूँ सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूँ। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी खुशियों के साथ। निदा फजील की कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा और ढेर सारी जो है उनकी जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारे गीत आप आज भी पसंद करते होंगे। कई बार कुछ चीज़ें जो है आत्मीयता से लिखी गई चीज़ें जो है बिल्कुल सभी को पसंद आता है, उसमें ना हिंदू ना मुस्लिम, वो सिर्फ आत्मा तक पहुंचती है, तो इसलिए उर्दू हिंदी जानने वाले सभी लोग उन्हें पसंद करते थे। आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं जो गांधीवादी वैज्ञानिक कहा जाता है इन्हें, डॉक्टर आत्माराम की बात मैं आपसे करना चाहूँगा। वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के पक्षधार एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका चश्मे के कांच के निर्माण में सराहनीय योगदान रहा है। इनकी स्मृति में केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा आत्माराम पुरस्कार दिया जाता है। आत्माराम जी विज्ञान की शिक्षा अपनी भाषा में देने पर जोर देते थे। उनके जीवन में इतनी सादगी थी कि लोग सम्मान के साथ उन्हें गांधीवादी विज्ञानी भी कहा करते थे, है ना कमाल की बात। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में बात करें तो ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ताओं महानिदेशक डॉक्टर आत्माराम का जन्म 12 अक्टूबर 1908 में उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिले में पिलाना नामक स्थान पर हुआ। आत्माराम जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा के अंतर्गत बीएससी की डिग्री कानपुर से, एमएससी और पीएचडी इलाहाबाद से किया। शोध कार्य की बात करें तो ये विज्ञान की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद कांच और सेरोमिक्स पर शोध आरंभ किया। ऑप्टिकल कांच अत्यंत शुद्ध कांच होता है और उसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी और विविध प्रकार के सैन्य उपकरण बनाने में काम आता है। भारत में

0: कांच जर्मनी से आयात होता था। इस पर प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा चली जाती थी बाहर। डॉक्टर आत्माराम ने बड़ी लगन के साथ शोध करके भारत में ही ऐसा कांच बनाने का विधि का आविष्कार कर लिया। इससे न केवल देश की आत्मनिर्भरता बढ़ी बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में उसके सम्मान में भी वृद्धि हुई। 1967 में आत्माराम जी को देश की मुख्य वैज्ञानिक संस्थान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का महानिदेशक बनाया गया। और डॉक्टर आत्माराम जी शिक्षा दीक्षा में हिंदी को बड़ा जोर देते थे और विद्यार्थी जीवन में अंग्रेजी का अभ्यास कम होने के कारण केमिस्ट्री मेरी समझ में नहीं आती थी, परंतु जब एक बार डॉक्टर फुलदेव साय वर्मा ने रसायन विज्ञान को मूल बातें हिंदी में समझा दी तो मेरी गाड़ी चल पड़ी। तो ये उनका कथन था। उनके अनुसंधान को देखते हुए सोवियत रूस के टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने उन्हें डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की उपाधि से नवाजा। डॉक्टर आत्माराम के जीवन में इतनी सादगी थी कि लोग सम्मान के साथ उन्हें गांधीवादी विज्ञानी कहा करते थे। 1959 में विशेष इनको जो है अपने कार्य के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इनको दिया गया और 1959 में ही पद्मश्री भी मिली इनको। और 1983 में 6 फरवरी के दिन को देश के महान वैज्ञानिक आत्माराम जी का निधन हो गया। तो ये थी कुछ खास बातें आत्माराम जी के बारे में। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक मैसेज के साथ। हम लोग कार्यक्रम पूरा करते हैं तो सावन की बूंदों का बूंदों सा है यार मेरा, सावन की बूंदों सा है यार मेरा, जो मेरी मायूसी को जड़ से मिटा देता है। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।
1: अभी बजे हैं शाम के 5।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अक्टूबर को ग्लोबली साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, ताकि सिटीजन्स को बढ़ते साइबर रिस्क के बारे में अवेयर किया जा सके और सेफर डिजिटल हैबिट्स को इनकरेज किया जा सके। और आज साइबर जागरूकता दिवस भी है, जो हर महीने के पहले वेंसडे को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य साइबर सेफ्टी को लेकर रेगुलर अवेयरनेस क्रिएट करना और स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटीज तक साइबर अवेयरनेस पहुंचाना है। लेकिन साइबर अवेयरनेस सिर्फ एक दिन या एक महीने तक सीमित नहीं है। जिस तरह स्कैम्स लगातार बढ़ रहे हैं, उसी तरह सिटीजन्स के लिए रेड फ्लैग्स पहचानना, सस्पिशियस एक्टिविटी को वेरीफाई करना और साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत एक्शन लेना भी ज़रूरी है। तो आज इस खास मौके पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक खास एक्सपर्ट, श्री निशांत कुमार, डायरेक्टर ऑफ I4C, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
2: थैंक यू।
1: और व्यूअर्स, अगर आपके पास साइबर अवेयरनेस, स्कैम्स या ऑनलाइन सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। हम कोशिश करेंगे सेशन के दौरान या सेशन के बाद इसका जवाब जरूर दे सकें। सर, टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, आजकल कई तरह के साइबर फ्रॉड्स होते हैं, आपकी नज़र में कौन से दो ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम्स हैं जिससे लोगों को खास सावधान रहना चाहिए?
2: आपने सही कहा, कई तरीके के स्कैम्स हैं या नए नए तरीके से स्कैम्स की कोशिश की जाती है, लेकिन दो ऐसे स्कैम्स हैं जिनके बारे में मैं ख़ास तौर पे आगाह करना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को। एक है डिजिटल अरेस्ट और दूसरा है इन्वेस्टमेंट स्कैम। तो ये दो ऐसे स्कैम्स हैं जिनके बारे में आई थिंक काफ़ी दिनों से बात भी हो रही है, और स्टिल डिजिटल अरेस्ट के भी केसेस आ रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट स्कैम वो स्कैम है जिसमें लोगों के काफ़ी ज़्यादा जो भी पैसे मतलब लोग साइबर क्राइम में गंवा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट स्कैम में लोग गंवा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन दो स्कैम्स के प्रति लोग विशेष रूप से अलर्ट रहें।
1: सर, आपने डिजिटल अरेस्ट का नाम लिया, तो मैं पूछना चाहूँगी कि इस स्कैम के बारे में काफ़ी बात होने के बाद भी लोग इसका अभी भी शिकार हो रहे हैं, ऐसा क्यों है?
2: देखिए, डिजिटल अरेस्ट नेचुरली काफ़ी इसके बारे में बातें हुई हैं, मीडिया में भी हुई है, और सबसे बढ़कर बात यह है कि ऑनरेबल प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात कार्यक्रम में एक नहीं बल्कि दो दो बार डिजिटल अरेस्ट की बात की, और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि कभी भी कोई सरकारी अधिकारी, पुलिस, CBI, कस्टम, जज ये वीडियो कॉल के ऊपर इंटरोगेट नहीं करते हैं। तो जो ये एक इसके बाद एक व्यापक जो मीडिया में भी इस पर चर्चा हुई, हम लोग नेचुरली लोगों को बताते हैं, बैंक और पुलिस ये सब लोगों को बताते हैं, नागरिकों को। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में लोगों को पता अब नहीं है, इसके मामलों में काफ़ी कमी देखी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें भी इस बात का मतलब आश्चर्य है कि अभी भी ऐसे केसेस हो रहे हैं, और जो विक्टिम्स हो रहे हैं इसमें वो प्रति व्यक्ति या एक व्यक्ति ही अधिक पैसे गंवा रहा है। तो अगर संख्या में विक्टिम्स कम है, फिर भी जो मनी डिफ्रॉडेड है वो चूंकि एक व्यक्ति ज्यादा पैसा दे रहा है, तो वो एक कंसिडरेबल अमाउंट बन जाता है। तो और इसमें एक ट्रेंड ये भी देख रहे हैं हम लोग कि जो जागरूकता नहीं पहुंची है जिन लोगों तक, या जिनको पता नहीं है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, खास तौर पे वैसे लोग जो अकेले रहते हैं अपनी फैमिलीज में, कहीं उनके बच्चे कहीं और काम कर रहे हैं और वो अकेले रह रहे हैं किसी फ्लैट में या मकान में, उनके साथ इस तरह के जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस हैं वो ज़्यादा अभी हो रहे हैं। 90% से ज़्यादा जो विक्टिम्स हैं वो ऐसे लोग हैं। मैं कुछ बातें ज़रूर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग आमतौर पे जो एड्स हमारे चलते हैं मीडिया में या न्यूज़पेपर या जहाँ भी, हम बताते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर है जो एक वीडियो कॉल कर रहा है, तो वो एक्चुअली पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो एक स्कैमर है जो पुलिस की वर्दी ऐसे एम्बियंस बना करके वहाँ पे वीडियो कॉल पर लोगों को डराता है। तो लोगों के मन में एक ऐसी धारणा है कि भाई वीडियो कॉल जब आएगा किसी पुलिस का तो वो डिजिटल अरेस्ट होगा। मैं थोड़ा सा बताना ये चाहूँगा कि दो तीन चीज़ें हैं, जैसे ज़रूरी नहीं कि डिजिटल अरेस्ट के केसेस में आपको पहला एक वीडियो कॉल ही आएगा। आमतौर पे ये क्या होता है, एक नॉर्मल लैंडलाइन कॉल से भी ये डिजिटल अरेस्ट केसेस शुरू हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल्स को पता नहीं होता, वो विक्टिम्स को स्कैन करते हैं कि कौन पोटेंशियल विक्टिम है हमारा, तो वो एक लैंडलाइन कॉल पर और कई बार आपके मोबाइल पर ऑटोमेटेड वॉइस कॉल्स भी आते हैं, और पहले वो लोग किसी मे बी किसी मोबाइल कंपनी का जो आपके सिम के मिसयूज़ होने की, या किसी बैंक कंपनी जो किसी क्रेडिट कार्ड के आपके मिसयूज़ होने की बात कहते हैं, जब आप उनसे अधिक थोड़ी बात बहुत बातें करने लगते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद इस व्यक्ति को पता नहीं है, फिर आपको पोटेंशियल विक्टिम मानते हुए फिर वो आपके कॉल को एक तथाकथित सो कॉल्ड पुलिस वाले के पास स्थानांतरित करता है। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है कि ऐसे कॉल्स को इंटरटेन ही नहीं करना है, अगर वो शुरू क्योंकि शुरुआत इसकी एक मोबाइल कॉल या एक लैंडलाइन कॉल या एक बैंक के कॉलर या एक मैं बोल रहा था आपको किसी टेलीफोन कंपनी के कॉलर एजेंट के रूप में भी शुरुआत हो सकती है, बाद में दो तीन स्टेप्स के बाद एक वीडियो कॉल पर पुलिस वाला आपके सामने वहां दिखाई देता है। एक और बात बोलूंगा, जैसे आमतौर पे मैंने कुछ कई एड्स देखे हैं जहां वीडियो कॉल पे पुलिस वाले कहते हैं इतने पैसे दोगे, मतलब वो पुलिस वाले नहीं है बेसिकली, दे आर द स्कैमर जो पुलिस की वेस में कहते हैं इतने पैसे दोगे तो तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो अमूमन जो हमें विक्टिम से बात होती है हमारी, तो वो ऐसा नहीं बोलते कि आप हमको पैसे दोगे तो आपको हम छोड़ देंगे। वो नॉर्मली आपको क्या कहते हैं, एक आपके प्रति वो सहानुभूति भी दिखाते हैं, आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं, तो वो आपसे ये भी कहते हैं कि मुझे पता है आप क्रिमिनल नहीं है बट आपका आधार कार्ड या आपका मोबाइल नंबर मिसयूज हुआ है, तो वो बोलते हैं कि आप जो अमाउंट है आपके बैंक में जो भी है, पहले आपके पूरे बैंक डिटेल्स वो निकलवा लेते हैं, फिर कहते हैं आप इस अकाउंट को एक फला फला एक मैं आपको अकाउंट नंबर दे रहा हूं उसमें ट्रांसफर कीजिए, वो आरबीआई का अकाउंट है या समथिंग है जहां पर आपके पैसों की वेरिफिकेशन की जाएगी और फिर आधे घंटे एक घंटे में आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से वो पैसे आपका दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कराते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि डिजिटल अरेस्ट के केसेस में आपसे जो पुलिस स्कैमर पुलिस बनकर बैठा है वो डायरेक्ट पैसे की मांग नहीं करता, वो आपके पैसे को किसी थर्ड अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात करता है। तो इन थोड़ी थोड़ी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं इनको समझना होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे मिले जो कह रहे थे कि हमें पता तो है कि ऐसे डिजिटल अरेस्ट होता है, मगर जब हमारे सामने हुआ तो चूंकि वो लैंडलाइन पे कॉल आया था या वो पैसे डायरेक्ट नहीं मांग रहा था, तो हम समझ नहीं पाए कि ये वही वाला स्कैम है जो हमें आप बताते हैं एड्स पे आता है। तो आपको बहुत ध्यान देना है, कोई इंटरोगेशन कोई सरकारी या पुलिस अधिकारी वीडियो कॉल पर नहीं करता, और कोई बैंक ऑफिशियल बनकर या टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का एजेंट बनकर करता है। आप इंटरटेन न करें, आप डायरेक्ट अपने बैंक या टेलीफोन कंपनी में कॉल बैक करके उनके ऑथराइज कस्टमर केयर पे वहां बात कर लें।
1: सर, आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में काफी ऐसी जानकारी हमसे शेयर करी जो बहुत लोगों को पता ही नहीं होगी, क्या इन्वेस्टमेंट स्कैम के बारे में भी कुछ ऐसी बातें आप बता सकते हैं? हमें लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए काफी यूजफुल होंगी।
2: जी देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो भी साइबर फ्रॉड में पैसे जा रहे हैं आज के दिन आज की तारीख में, उसमें से करीब 60-70% जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट स्कैम का है। और इन्वेस्टमेंट स्कैम की अगर रूट पे जाएं हम, उनके मूल में जाएं उसके, तो रीजन है हमारा लालच। हमें जो स्कैमर है वो तरह तरह से पैसे बढ़ाने का जो एक तरह से प्रलोभन देता है, हमें अट्रैक्ट करता है। लोग भी अपने को समझदार समझते हैं, तो वो समझते हैं कि भाई मैं ऐसे तो फंसूंगा नहीं, मैं जांच करूंगा, मैं चेक करूंगा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जो स्कैमर स्कैम कर रहा है, एक्चुअली उसे पता है कि अब मैं जिसको स्कैम करने जा रहा हूं वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ही इज अ वेल एडुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन, उसको भी स्कैम्स के बारे में पता है। तो स्कैमर एक अवेयर पर्सन को कैसे मैं स्कैम में लूं या कैसे उसको मैं बेवकूफ बनाऊं, उसकी तैयारी के साथ आता है। तो उनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो बार बार बदलता भी रहता है, कुछ इनोवेशन वो भी लाते हैं, ताकि मुझे पता है कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाऊंगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेडिंग टिप्स कुछ लोग देंगे और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पैसे बहुत बढ़ रहे हैं और मैं पैसे लगाऊंगा। लोग क्या करते हैं, थोड़े बहुत पैसे देकर चेक भी करते हैं, वो थोड़ा पैसा बढ़ाकर वापस भी कर देते हैं। अब मुझे पता है ऐसे होता है स्कैम, तो हो सकता है वो मेरे साथ ये स्ट्रेटजी ना लगाएं। तो आजकल बहुत अलग अलग तरीकों से इन्वेस्टमेंट स्कैम हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया पे डेटिंग एप्स में कोई आपका फ्रेंड बनता है, एक आध हफ्ते 10 दिन आपसे तरह तरह की बातें करता है और फिर आपका ट्रस्ट जीतने के बाद वो व्यक्ति आपको मे बी वो मेल या फीमेल हो सकता है, जो आपको एक ऐप के बारे में बताएगा या किसी बिजनेस आइडिया के बारे में बताएगा, किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताएगा. इन्वेस्टमेंट स्कैम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हमेशा किसी शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ही पैसा बढ़ाने की बात की जाएगी. वो किसी भी तरीके से आपके पैसे इन्वेस्ट कराने की बात होगी और आपको एक हाई रिटर्न की गारंटी दी जाएगी. तो वो पर्सन जो आपका ट्रस्ट जीत चुका है वो आपको बताएगा और फिर आपको एक फेक ऐप या फेक वेबसाइट की तरफ ले जाया जाएगा. तो आपको बहुत अलर्ट रहना है कि आइदर इट इज अ गवर्नमेंट स्कीम और इट इज, जैसे किसी को तो बोला गया कि एक ऐसे डेटिंग ऐप पे फेसबुक फ्रेंड बने और उन्होंने कहा कि वॉलमार्ट में इन्वेस्टमेंट का ऑफर है, आपको सुबह सुबह पैसे देने हैं और शाम में आपको पैसे बढ़ के वापस वॉलमार्ट से मिलेगा, उसके लिए आपको वॉलमार्ट का ये ऐप डाउनलोड करना है. और वो पर्सन उन्होंने कर लिया, इट वॉज नाइदर अ ट्रेडिंग नॉर अ क्रिप्टो, ये एक अलग ही तरह का स्कीम था. उसी तरह से अब स्कैमर्स जो है, चूंकि आपने पूछा है कि और क्या तरीके हैं, स्कैमर्स जो हैं सोशल मीडिया एड्स, सबको पता है कि ये स्कैमर्स जो हैं हम तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जिस मीडियम का सहारा लेते हैं वो है सोशल मीडिया एड्स. अब कई लोगों को पता है भाई सोशल मीडिया एड में मैं नहीं आऊंगा, फंसूंगा, मैं उसको जांच करूंगा. बट जब आपके सामने कोई डीप फेक वीडियो आ जाता है जहां पर कोई बड़ा ही ऑथोरिटेटिव पर्सन आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई मैंने इन्वेस्ट किया है, तो कुछ लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एक सेगमेंट है जो उनकी बातों में आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है यार ये तो फलां व्यक्ति बोल रहे हैं. वो समझ नहीं पाता कि क्योंकि वो एआई जनरेटेड भी इतने रियल लगते हैं, पता नहीं चलता. और कई बार हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स और उनको उनके जैसे पार्लियामेंट में स्पीच देते हुए डीप फेक वीडियो बनाया जाता है, जहां कोई हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर बोलते हैं गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, तो लोग सोच ही नहीं पाते कि ये एक ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्कैम हो रहा है और वो पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं. तो सिंपल रूल मैं यही कहूंगा कि किसी भी तरह का निवेश कहीं भी कर रहे हो आप और वहां आपको गारंटीड या बहुत जल्दी पैसे ग्रो करने की बात की जा रही है, वो टू गुड टू बी ट्रू है, आप हमेशा उस जो भी ऐड है उसके ऑफिशियल सोर्स पे जाएं. अगर सपोज फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कोई बात कही जा रही है, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट पे जाकर देखें ऐसी कोई स्कीम है क्या. तो हमेशा आपको जो ऑनरेबल पीएम ने कहा था स्टॉप थिंक टेक एक्शन, वो ध्यान में रखना है, रुकना है, सोचना है, मतलब वेरीफाई करना है और तभी आगे बढ़ना है, खासतौर पर अगर ऑफर बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव या लुभावना लग रहा है. तो
1: सर आपने बताया कि कैसे स्कैमर्स लोगों की प्रोफाइलिंग करके उनको टारगेट करते हैं, अलग अलग तरीकों से उनको रीच करते हैं. सर अगर कोई सिटीजन अपने फैमिली और फ्रेंड्स को साइबर सेफ रखना चाहता है तो वो डेली में कौन सी चीजें ध्यान रख सकते हैं.
2: देखिए पहले तो मैं यही बोलूंगा कि जो मैंने बताया आपको कि तीन चीजें हैं आपको, क्योंकि देखिए जो क्रिमिनल्स हैं वो साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करते हैं. आज मैं आपको बता रहा हूं कि शेयर ट्रेडिंग में होगा, कल को वो किसी और तरीके से आपका निवेश करा सकते हैं. तो जो बेसलाइन हम बताते हैं सबको कि कोई भी ऑफर आपको ऑनलाइन अगर आ रहा है और वहां आपको लगता है कि आपकी लालच को एक्सप्लॉइट किया जाए, बिकॉज हम सबके मन में लालच होती है ना, लालच इन द सेंस कि मेरे पैसे जल्दी बढ़ जाए, जैसे क्लिक करें और पैसे कमाएं, घर बैठे पैसे कमाएं, बिना वेरिफिकेशन के लोन पाएं, तो लोगों को लगता है यार पैसे बड़े इजी मनी, तो इजी मनी जो बोलते हैं उस तरह का अगर आपको लालच है या 10 रुपए लगाकर एक महीने में वो 50 रुपए हो जाएंगे, तो आपको सोचना है, तो आपको अलर्ट हो जाना है. दूसरा है डर, जो डिजिटल रिस्क के केसेस में हम लोग देखते हैं, जहां पर कि आपको कोई पुलिस वाला धमका रहा है या कोई आपको ऐसा कॉल आ रहा है कि आपका बच्चा कहीं अरेस्ट हो गया है, मतलब वहां आपके डर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. और इससे ही जुड़ा हुआ है एक डर के साथ एक अर्जेंसी. नॉर्मली ये लोग जैसे जो हमने बोला स्टॉप थिंक, अब थिंक करते हैं मतलब आपको थोड़ा टाइम चाहिए. स्कैमर्स जानते हैं कि इनको टाइम देंगे तो ये समझ जाएंगे या मे बी पता चल जाएगा, तो दे क्रिएट अर्जेंसी. जैसे वो बोलेंगे कि 2 घंटे में सिम बंद हो रहा है, 1 घंटे में आपकी बिजली कट रही है, तो लोग बिना सोचे या कोई ऑफर है जहां लालच भी है और अर्जेंसी भी है, मतलब बोलेंगे ये मोबाइल आपको 1 लाख रुपए का 10,000 में मिल रहा है, और उनको पता है कि सामने वाला सोचेगा तो वो कह देते पीछे एक स्क्रैच है इसलिए 10,000 में मिल रहा है, और ऑफर वैलिड ओनली फॉर 1 आवर, तो अर्जेंसी हो गई आपके लिए, तो आप जल्दी से पैसे देते हैं, तो अर्जेंसी क्रिएट होती है. और तीसरा है थोड़ा सा हमारी जो लापरवाही होती है, जैसे अननोन वीडियो कॉल्स वगैरह आते हैं और आप उसको अचानक से उठा लेते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और जो भी है, और वहां पर आपको फिर एक आपका स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है या छोटी सी बाइट बनाकर आपको सेक्सटॉर्शन या ब्लैकमेलिंग

0: का शिकार बनाया जाता है। तो इस तरह से लालच, डर और इस तरह की लापरवाही से हमें थोड़ा बचना है। अगर हम इस तरह अलर्ट रहेंगे तो हमें ये बात अपने सारे फ्रेंड सर्किल में बतानी है, और सबसे बढ़कर ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा जिस पर हम बातें कर रहे हैं, साइबर दोस्त,
1: जी
0: अगर आप साइबर दोस्त को फॉलो करते हैं, बिकॉज हम वहाँ इतनी बातें ऐसे भी बताते हैं और बड़े ही इंगेजिंग जो स्क्रीन आपके इंफोग्राफिक्स और वीडियोस रील्स के फॉर्म में बताते हैं, आप उन रील्स को उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर
1: जी
0: करें, अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स को भी बोलें कि वो साइबर दोस्त को फॉलो करें। इससे क्या होगा, ये जो पर डे हम नई नई चीज़ें लोगों को बताते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी। तो हमें खुद भी अलर्ट रहना है, अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड से बात करनी है। दूसरा, कोई भी ऐसा आपके साथ अगर घटना घट रही है, कोई पुलिस बनकर आपको कॉल कर रहा है या कोई अननोन मैसेज आ रहा है, आप जरूर अपनी फैमिली में बात करें। आप अपने बड़ों को, अपने बच्चों को, सबको बताएं कि भाई आपको कुछ भी ऐसा ऑनलाइन लगता है तो आप जरूर हमसे शेयर करें,
1: जी
0: बिकॉज जहां एक से दो लोग मिलते हैं वहां पर आपको वो चीज़ों को एनालाइज करना ईजी हो जाता है। तो जरूर बात करें, खासतौर पर ऑनलाइन ऑफर्स और उसके बारे में। तीसरा है, अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, सेक्सटॉर्शन का शिकार बना रहा है, आपको लग रहा है मैं पुलिस के पास कैसे जाऊं या ना जाऊं, आप कंप्लेन करूं, आप कम से कम अपने घर में, अपने घर का एक इन्वायरमेंट ऐसा रखिए कि हर कोई बात एक दूसरे से कर
1: जी
0: सके। तो जरूर डिस्कस करें, तो घर के लोग जो हैं वो मिलकर आपको एक एडवाइस देंगे और आप सही कदम उठा पाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान हमें एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड सर्कल रखना है।
1: सर, जैसे आपने बताया कि अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में चीज़ों के बारे में डिस्कशन कॉन्स्टेंटली रखनी चाहिए, ताकि ऐसा स्पेस भी बने फैमिली में जहाँ पे अगर आप ऐसी किसी चीज़ में फंस जाए तो इमिडिएटली बात कर सके। तो क्या हर फैमिली में कुछ बेसिक साइबर सेफ्टी रूल्स तय होने चाहिए, और सिटीजन्स को कौन से ऐसे सिंपल से साइबर सेफ्टी हैबिट्स घर में बिल्ड करनी चाहिए?
0: देखिए, सिंपल है, जो कहते हैं ना कि हैबिट्स लर्न्ड अर्ली लास्ट अ लाइफ टाइम। तो जो बच्चे हैं, जैसे स्कूल्स में भी हम लोग स्कूल्स को भी बोल रहे हैं, और अभी
1: जी
0: हमारा एक पूरे पैन इंडिया एक स्कूल्स का कैंपेन चल रहा है जहाँ पर हम स्कूल के बच्चों को भी बता रहे हैं कि जैसे गुड टच और बैड टच बताते हैं, वैसे ही गुड क्लिक एंड बैड क्लिक भी हो सकते हैं। सो
1: जी
0: वी हैव टू टेल आवर चिल्ड्रेन, और बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने दादाजी को भी ट्रेन कर सकते हैं, अपने माता पिता को भी ट्रेन कर सकते हैं। तो स्कूल्स के थ्रू हम बच्चों को बता रहे हैं कि उनको अर्ली सीखना है कि हमें जो है किसी भी ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करना। कोई आपको ऑनलाइन अगर ब्लैकमेल कर रहा है, डरा रहा है, तो आपको उसकी कंप्लेन अपने टीचर से बात करनी है, जैसे फैमिली में करते हैं।
1: जी
0: वहां से लेकर के जो भी इस तरह के केसेस होते हैं या आपने कुछ ऑब्जर्व किया, जरूर अपने, ऐसा नहीं कि अपने तक रखना है, अपने घर में भी बताना है कि आज एक ऐसा कॉल आया था जिसको मैंने डिसकनेक्ट किया, है ना। इसके अलावा जो हमारा एक I4C की तरफ से भी कई ऐसी सुविधाएं दी गई हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चेक एंड रिपोर्ट सस्पेक्ट है, वहां
1: जी
0: पर जाकर उनको सस्पेक्ट की रिपोर्ट करनी है, वो भी बताना चाहिए सब लोगों को। और OTP या पासवर्ड शेयर मत करें, ये बातें जो हैं अब आई थिंक, मतलब
1: सबको
0: जो मैं
1: पता
0: बोलूँ
1: है।
0: तो बच्चों बच्चों को ही
1: जी
0: पता है। तो स्कैमर्स का तरीका अब क्या होता है, वो आपसे OTP मांगते नहीं है, निकलवा लेते हैं किसी तरीके से। तो आपको लोगों को यही बताना है, जो भी आपको पता चलता है कि भाई लिंक पे क्लिक नहीं करना, कोई कॉल फॉरवर्डिंग वाले जो मैसेजेस हैं उनको डायल नहीं करना। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, हम डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, हमारा बहुत ही टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो हमें डरना नहीं है। कई बार मैंने देखा है ऐसे एड्स आते हैं सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे, ऐसे मैसेजेस मतलब बल्क में सर्कुलेट होने लगते हैं कि मैंने एक फोटो को टच किया, मेरा फोन हैक हो गया, मैंने एक कॉल का आंसर नो लिखा और मेरा फोन हैक हो
1: जी
0: गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अनलेस कि देखिए हर लेवल पे कुछ सिक्योरिटी इनबिल्ट होती है। ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल फोन में आपने एक नो लिख दिया और आपका मोबाइल फोन हैक हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे पैनिक भी क्रिएट नहीं करना है, इसलिए मैं लोगों को सलाह देता हूँ साइबर दोस्त फॉलो करें, बिकॉज यहाँ पर हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। अदरवाइज कई बार लोग पैनिक या क्यूरियोसिटी क्रिएट करके मेरा कैसे वायरल हो जाए, तो वो ऐसे मैसेजेस भी सर्कुलेट करते हैं। तो हमें एज अ फैमिली, एज अ वो लोगों को ये भी बताना है कि क्या र्यूमर भी हो सकता है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई भी ऐसा मैसेज आता है खारिज कर दें,
1: जी
0: लेकिन एनालाइज जरूर करें पैनिक होने के बजाय, और फिर इंटेलिजेंटली हमें यूज करना है और खूब यूज करना है, सो दैट कि जो डिजिटल इंडिया हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक मिला है उसको हम बेस्ट वे में लिवरेज कर पाए,
1: जी
0: है ना, उसके एडवांटेजेस को ले पाए, बट एट द सेम टाइम हम किसी ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार न बने।
1: सर, जैसे आपने बताया, हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि साइबर दोस्त एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हम रेगुलरली साइबर स्कैम से रिलेटेड न्यू अपडेट शेयर करते हैं। हम कई प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और आप हमें ज़रूर फॉलो करें। I4C के पर्सपेक्टिव से किन ग्रुप्स तक साइबर अवेयरनेस सबसे अर्जेंटली पहुंचने की ज़रूरत है और उनके लिए अवेयरनेस के तरीके अलग कैसे होने चाहिए?
0: देखिए नेचुरली जो भी आपका टारगेट ग्रुप है, हर सेगमेंट का एक अलग, जैसे मैंने, जैसे मुझे पता है कि जो यंगस्टर्स हैं वो इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, मे बी वो जिस तरह के प्रोग्राम्स देखते होंगे वो बुज़ुर्ग लोग नहीं देखते
1: जी
0: होंगे. बुज़ुर्ग हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, मे बी वो यूट्यूब या मे बी फेसबुक ज़्यादा देखते हैं. तो हर एक टारगेट ग्रुप का एक अलग इंटरेस्ट होता है.
1: जी
0: अगर हम उस उनका जो इंटरेस्ट ग्रुप है या उनका जो एक अपना सोशल नेटवर्क है उसके थ्रू अगर मैसेजिंग करें तो वहां तक पहुंचेगा. और अगर आप ये बोलें कि कहां तक पहुंचाना है, तो मैंने आपको दो सबसे बड़े जो स्कैम्स बताए, डिजिटल एरेस एंड इन्वेस्टमेंट स्कैम, अगर मैं उनको ही ध्यान में रखूं तो डिजिटल एरेस्ट, जैसा मैंने बोला, सीनियर सिटीजन ज्यादा शिकार हमारे हो रहे हैं, तो हमें सीनियर सिटीजन्स तक बात को जरूर पहुंचानी
1: जी
0: है. और मैं यंगस्टर्स, बच्चों को बोलूंगा, अगर वो कोई हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बात उन तक जा रही है, कि वो अपने भी फैमिलीज में अपने दादा दादी माता पिता को जरूर बताएं कि इस तरह के स्कैम्स होते हैं. तो सीनियर सिटीजन का मतलब है एक कैंपेन तो ऐसे होने चाहिए सीनियर सिटीजन तक सीधे पहुंच पाए. एट द सेम टाइम जो यंगस्टर्स तक बात जा रही है उनको भी अपने चैनल से कम अपनी फैमिली के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको तो वो सिक्योर कर सकते हैं. तो वो है. इसके अलावा जो घर में महिलाएं रह रही हैं या जो लोग मिडिल इनकम एज ग्रुप के लोग हैं, आईटी सेवी हैं, वो भी जो लोग इन्वेस्टमेंट में यकीन रखते हैं, मतलब जो मे बी 40 से लेकर के और 55-60 तक के लोग हैं, तो उन सबको सावधान रहने की ज़रूरत है. तो मैं कहूँगा सीनियर सिटीजन, यूथ और हाउसवाइफ्स, इनको तो स्पेशली हमें अवेयर करने की ज़रूरत है ही. और इन्वेस्टमेंट से भी जो भी हैं, पैसे निवेश करना चाहते
1: जी
0: हैं, हमेशा ऑथराइज प्लेटफॉर्म से ही करें, वेरिफिकेशन के बाद करें, ये मैसेज होना चाहिए.
1: सर, देखने में आया कि काफ़ी यंग लोग भी आजकल इन्वेस्टमेंट बहुत अर्ली एज पे स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक अगर वो हमें फॉलो करते हैं जैसे इंस्टाग्राम जैसे
0: बिल्कुल
1: चैनल्स पर, तो वो डेफिनेटली अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं कि ये चैनल्स भी फॉलो करें, साथ साथ में कैसे ये चीज़ों का ध्यान रखें इन्वेस्टमेंट करते
0: बिल्कुल
1: वक्त।
0: चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन, ये हम सब जानते हैं. तो अगर बच्चों या यंगस्टर्स जो हमारे आजकल जो जेन जी की बात की जा रही है, अगर वो इस पे अलर्ट होते हैं, तो आई थिंक दे कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. वो इस बात को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं.
1: जी
0: सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द यंगस्टर्स, स्कूल किड्स जो हमारे 8th 9th 10th में पढ़ रहे हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को जरूर अपनी, कम से कम अपनी फैमिली तक तो ले ही जाएं, और उसके अलावा और जहां भी और ले जा सकते हैं, तो आई थिंक बात जाएगी एंड पीपल विल बी मोर सिक्योर.
1: सर, स्कैम्स लगातार नए फॉर्म्स में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सिटीजन्स को हर स्कैम का नाम याद रखने की बजाय कौन से कॉमन रेड फ्लैग समझने चाहिए जो किसी भी तरह के ऑनलाइन स्कैम्स में उनको अलर्ट कर सकता है?
0: आई थिंक मैंने पहले इस क्वेश्चन का आंसर अभी दिया है कि जो लालच, देखिए होता क्या है, स्कैम्स के रूप बहुत हो सकते हैं. जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट स्कैम, इन्वेस्टमेंट स्कैम ही 50 तरीकों से लोग कर रहे हैं, ठीक है. इवन मैं आपको बोलूं, जो क्लिक करें और पैसे कमाएं, ऐसा लगता है शुरू में आपको 150 रुपए दिए जाते हैं.
1: जी
0: मैं एग्जैक्टली अमाउंट बताऊं तो अभी 150 ही चल रहा है, 150 दिए जाते हैं, और थोड़ी देर बाद आपको प्रीपेड टास्क की तरफ ले जाया जाता है, जहां से पहले पैसे ले लिए जाते हैं और बोला जाता है बाद में आपको ज्यादा पैसा मिलेगा. धीरे धीरे वो भी इन्वेस्टमेंट में ही कन्वर्ट हो जाता है. तो अल्टीमेटली गोल है कि आपका लालच, तो वही मैंने बोला है आपको कि लालच, डर, और डर यानी डर के साथ अर्जेंसी, है ना, अर्जेंसी और थोड़ी सी लापरवाही. तो हमें बेसिकली देखना है किसी भी ऑनलाइन ऑफर में, अगर अभी मैं स्पेशली बोलूंगा फेस्टिव सीजन आ रहे हैं,
1: हाँ
0: आपको
1: जी
0: एक से एक ऑफर्स आएंगे, बिग बिलियन सेल आएंगे, आपको ये आएगा. अब आपको पता ही नहीं कि आप अमेजोन की साइट पे हैं या अमेजान की साइट पे हैं, जहां ओ को ए बनाया गया है,
1: जी
0: आपको वो एक फिशिंग साइट होगी एंड यू विल नेवर नो. बिल्कुल दिखेगी वैसे, वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सस्ती डील आ गई, आपको लगेगा शायद ये बिग बिलियन सेल की वजह से है, आप पैसे दे लेंगे. तो आपको बहुत अलर्ट रहना है कि हमें ऐसे कोई भी टेम्पटिंग ऑफर्स आते हो जहां आपको लालच दिया जा रहा है, अर्जेंसी क्रिएट की जा रही है या डराया जा रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, मतलब वेरी यू नो केयरफुल अबाउट दैट. तो आपको ये ध्यान रखना है, बेसलाइन यही है, स्कैम का रूप कुछ भी हो उसके अंदर में लालच, डर, अर्जेंसी, लापरवाही और अर्जेंसी, ये तीन चार चीजें होती हैं. आपको लापरवाही से बचना है और स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन, ये वाले जो गोल्डन रूल हमारे ऑनरेबल पीएम ने दिया है
1: जी
0: उसको फॉलो करना है.
1: सर, जैसे हमने बिगनिंग में डिस्कस किया था, आज साइबर जागरूकता दिवस है और अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज अ साइबर अवेयरनेस मंथ। तो ऐसे इनिशिएटिव्स को सिटीजन सिर्फ ऑब्जर्व ना करें बल्कि इनका पार्ट भी बने। तो इसी से रिलेटेड हमारे व्यूअर का सवाल आया है,

0: जो आप जानते हैं अगर आप दूसरे के साथ शेयर करेंगे तभी वो बात आगे जाएगी। तो अगर हमें स्कैमर्स को हराना है तो आपस में बातचीत करके जागरूकता फैलानी है। तो मैं जो भी हमारे लिसनर जिन्होंने व्यूअर जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है हमारे दर्शक उनसे मैं यही कहूँगा कि आपने जो भी यहाँ पर सीखा है उसे अपने स्कूल, मुझे नहीं पता क्या आयु इस एज के हैं वो, बट अपने जो भी उनके पीयर्स हैं वहाँ तक ले जाएँ, अपनी फैमिली में बताएँ, अपने सर्कल में इसको शेयर करें। साइबर दोस्त आज ही फॉलो करें। आपने पूछा आई4सी क्या योगदान दे सकता है, सबसे बड़ा उनके लिए एक माध्यम साइबर दोस्त है, सोशल मीडिया हैंडल, जो आपकी सुविधा के लिए अगर आप यंगस्टर हैं इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टा पे फॉलो करें और अपने सर्कल में इसको सर्कुलेट करें कि बाकी लोग भी फॉलो करें। एक तो यही है। दूसरा मैं बोलूंगा आप आई4सी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पे एक हमने 2 घंटे 2.5 घंटे का एक कोर्स बनाया हुआ है, विच इज एन ऑनलाइन ई लर्निंग कोर्स। आपको वहां जाना है, रजिस्टर होना है, 1 मिनट का टाइम लगेगा, और रजिस्टर होने के बाद आपको एक कोर्स है जो आपको जिसमें कि क्वेश्चंस भी हैं, सेल्फ पेस्ड कोर्स है, आपको मॉड्यूल्स पढ़ते जाने हैं और कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। आपको एंड में एक एमएचए आई4सी का एक सर्टिफिकेट भी
1: जी
0: जनरेट होगा। सो इट इज अ सर्टिफिकेट कोर्स विच इज फॉर ऑल सिटीजन्स,
1: ओके
0: उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो आप खुद भी इस कोर्स को करें, सर्टिफिकेट जनरेट करें, साइबर दोस्त पे हमें शेयर करें और अपने फैमिली मेंबर्स को भी बोलें कि दे ऑल्सो शुड इनरोल एंड कंप्लीट दैट कोर्स एंड जनरेट अ सर्टिफिकेट फॉर देमसेल्व्स। इसके अलावा 2 मिनट और देने हैं उनको, हमारी वेबसाइट i4c.mha.gov.in, उस पर उनको एक छोटा सा हमने प्लेज डाला हुआ है, वो हार्डली इट विल टेक 1 to 2 मिनट। उनको अपना डिटेल डालना है, वो प्लेज पढ़ के उनको सबमिट करना है, सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी जनरेटेड और वो सर्टिफिकेट भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं प्लेज लेने के बाद, और वो लोगों को मोटिवेट करे वो भी प्लेज लें। वहाँ हम बेसिक सारी बातें हमने बताई हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जैसे शेयरिंग इज केयरिंग होता है, आप जो भी सीख रहे हैं साइबर के बारे में अलर्ट रहने के लिए साइबर दोस्त पे सीख रहे हैं हमसे, अगर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वहां से सीख रहे हैं, आप इसको जिन जिन लोगों का केयर करते हैं उनके साथ शेयर करें और सबको प्रेरित करें साइबर दोस्त फॉलो करने के लिए। आई4सी ने कोर्स बनाकर रखा है, वो कोर्स आप कर लें, आराम से करें, आप जितने जितनी देर जब जब करना है करते हुए हफ्ते भर में पूरी करें, 2 घंटे का कोर्स है, कोई इशू नहीं। आप प्लेज लें, और एक साइबर लैडर गेम हमने बनाया है, जो लोग ई ऑनलाइन गेम्स खेलने के शौकीन हैं, वो जो बचपन में हम स्नेक एंड लैडर का गेम खेलते थे उसको ही साइबर का एक
1: जी
0: उसमें फ्लेवर दिया गया है, साइबर अवेयरनेस का, आप वो करें, अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर खेलें, इट्स अ मल्टी प्लेयर गेम तो आप खेल सकते हैं, ये भी एक अच्छा हमने ऑप्शन दिया है। इसके अलावा बहुत सारे हमने कॉमिक बुक्स किताबें बनाई हैं, बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, कॉमिक के फॉर्म में हैं, तो आप चाचा चौधरी के कैरेक्टर पर बेस्ड है, आप उनको हमारे वेबसाइट से ही डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, तो इस रूप में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो आई4सी ने मेहनत की है आपके लिए, मटेरियल अवेयरनेस मटेरियल तैयार किया है और साइबर दोस्त हैंडल जो हम लोग चलाते हैं
1: जी
0: उसका भरपूर फायदा उठाएं, सबको अपने दोस्तों साथियों तक फैलाएं, ये आप योगदान दे सकते हैं बिना अधिक समय दिए हुए अपना।
1: हम साइबर अवेयरनेस कोर्स और प्लेज और जो साइबर लैडर गेम है उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड करेंगे। थैंक यू सर। आज के सेशन से एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है, साइबर अवेयरनेस सिर्फ साइबर सिक्योरिटी मंथ या साइबर जागरूकता दिवस तक सीमित नहीं रह सकता। स्कैम्स बदलते रहेंगे लेकिन कुछ बेसिक हैबिट्स हमें इस सफर में सेफ रखेंगी। फेक सोशल मीडिया स्कैम्स से बचने के लिए या अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को वेरीफाई करना पड़े, पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करना और फ्रॉड होने पर तुरंत रिपोर्ट करना। साथ ही आई4सी की वेबसाइट पर अवेलेबल साइबर अवेयरनेस कंटेंट को यूज़ करके आप खुद को और अपने आसपास सभी लोगों को साइबर जागरूक कर सकते हैं। फिर भी अगर आप स्कैम का शिकार हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। साइबर अवेयरनेस तभी इफेक्टिव है जब इंफॉर्मेशन हमारी एवरी डे डिजिटल हैबिट्स का हिस्सा बन सके। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और इसी बीच हमारे एक व्यूअर आयुष का कमेंट आया है कि उन्हें साइबर दोस्त का ये इनिशिएटिव साइबर सेफ लाइफ काफ़ी हेल्पफुल लगा। थैंक यू आयुष फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग दिस फीडबैक। व्यूअर्स आप भी ऐसे सेशन से जुड़ें, हर वेंसडे हमारे को साइबर दोस्त पे यूट्यूब और फेसबुक पे देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले रहे हैं उसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जैसे आज सर ने हमें बताया कि सबसे पहला रूल है, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है टू स्टॉप थिंक एंड देन टेक एक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत। आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अभी बजे हैं शाम के 6।

0: रुके रुके रुके, हाँ जी थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के हैं।
1: जी कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई है? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: क्या होता है?
1: अरे टिकुनी पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर का माय तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: चल दोस्तों, आप सुन रहे हैं उड़ान कार्यक्रम और बेहतरीन कुछ गीत। माँ दुर्गा का दिन आ चुका है, हम कहें नवरात्रि का दिन शुरू हो चुका है। आज है द्वितीया और द्वितीया के दिन ब्रह्मचारिणी माता जी को याद करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस गीत के बाद सीधे उन्हीं के विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं।
1: नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के उपलक्ष्य में रेडियो मधुबन के सुनने वाले सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं।

दुर्गा मैया ने 9 दिन तक मैं पढ़ूं तेरी पैया, दुर्गा मैया 9 दिन तक मैं पढ़ूं तेरी पैया, तुम आई हो मेरे द्वार, माँ मैं करूं तुम्हारा सेवा सत्कार, तुम दुष्टों को करे संहार, तुम ही माँ जग के तारणहार, तुम ममतामयी माँ तुम करुणामयी माँ, दिन दुखियों के दुख हर लेती हो, भोजन को भूखे को भोजन खिलाती हो, अपने भक्तों को सत्य की राह पर चलाती हो, अपने भक्तों का कठोर इम्तिहान भी लेती हो, जो सत्य मार्ग के को न छोड़े उसे अपना बना लेती हो। बिल्कुल, जो सत्य मार्ग पर चलते हैं और परमात्मा की याद में रहते हैं, माँ दुर्गा भी उन्हें प्यार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं उड़ान रेडियो मधुबन पर और मैं हूँ आपकी दोस्त मोना, और एक छोटी सी कहानी थोड़ी देर में जरूर लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले आई गिरी नंदिनी, सुन लेते ये विशेष गीत उड़ान में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: पवित्र नगरी काशी में विद्याधर नाम के एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे शास्त्रों के गहरे ज्ञाता थे और अपने ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन ज्ञान के साथ साथ उनका स्वभाव भी बेहद दयालु था। एक सुबह जब वे अपनी रोज की पूजा समाप्त करके घर के अंदर आए, तो अचानक उनके मन में अपने बचपन के मित्र मूकचंद की चिंता होने लगी।
1: भाग्यवती, बहुत समय हो गया है, मेरे बचपन के दोस्त मूलचंद की कोई खबर नहीं मिली। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैं कल सुबह ही उससे मिलने अवंती नगर जाऊंगा।
2: स्वामी, आज सुबह से मेरी दाहिनी आंख बार बार फरक रही है। शास्त्र कहते हैं कि ये किसी बड़े संकट का इशारा है। कृपया आज आप अपनी यात्रा स्थगित कर दीजिए।
1: प्रिय, मूकचंद बेचारा बोल नहीं सकता, अपाहिज है। हमारे अलावा इस दुनिया में उसका है ही कौन। जब कोई अच्छे काम के लिए निकल रहा हो तो ऐसे टोका टोकी नहीं करते। तुम जल्दी से सफर का खाना पैक कर दो।
2: जैसी आपकी आज्ञा स्वामी, मैं आपके रास्ते के लिए खाना पानी बांध देती हूँ।
0: अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही विद्याधर अपने मित्र से मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। वे शांत और सुनसान मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में चलते हुए अचानक उनकी नजर एक लंबे चौड़े और मजबूत शरीर वाले यात्री पर पड़ी।
3: प्रणाम यात्री, आप कौन हैं और इस सुनसान रास्ते पर कहां जा रहे हैं?
4: प्रणाम दोस्त, मेरा नाम विद्याधर है।
5: मैं अपने बचपन के दोस्त से मिलने अवंती नगर जा रहा हूं। आप कौन हैं?
3: लोग मुझे कालदेव कहते हैं। मुझे भी उसी तरफ जाना है। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं?
4: बिल्कुल, दो लोग साथ चलेंगे तो इतना लंबा सफर आसानी से कट जाएगा। चलिए।
0: विद्याधर को कालदेव नाम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे एक सामान्य नाम समझकर उस बात को नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद वे पहले गांव में पहुंचे।
6: मित्र विद्याधर, आप थोड़ा आगे बढ़े।
7: मुझे इस गांव में एक व्यक्ति को एक जरूरी संदेश देना है। मैं बस एक मिनट में आया।
5: ठीक है कालदेव भाई, मैं आगे बरगद के पेड़ और कुएं के पास आराम करता हूँ।
0: विद्याधर कुएं के पास बैठकर कालदेव का इंतजार करने लगे। तभी अचानक गांव की ओर से चीख पुकार की आवाज सुनाई दी। एक बड़े बाज ने चपट्टा मारकर गांव के एक आदमी की जान ले ली। ये सुनते ही पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उसी समय कालदेव वहां वापस लौट आया। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वो बेहद शांत भाव से विद्याधर के पास आकर खड़ा हो गया।
6: आप तो बड़ी जल्दी वापस आ गए कालदेव जी।
7: हाँ, जिसे संदेश देना था वो मुझे गांव के द्वार पर ही मिल गया। मेरा काम हो गया, अब आगे चलते हैं।
0: शाम ढलने लगी और सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे डूब गया। दिन भर की पैदल यात्रा से विद्याधर बहुत थक चुके थे। तभी उन्हें सामने एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। उन्होंने उसी मंदिर में रात बिताने का निर्णय किया।
6: कालदेव जी, अंधेरा हो गया है, क्यों ना आज रात हम इसी मंदिर में रेस्ट कर लें? थोड़ा खाना खाकर सुबह जल्दी निकल जाएंगे।
7: आप शुरू कीजिए, मैं अपना उत्तरदायित्व पूरा करके आता हूँ।
0: कालदेव के जाते ही बस्ती की ओर से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। देखते ही देखते गांव में भयानक आग लग गई। ये देखकर विद्याधर उनके मन में एक सवाल उठ

0: को जहरीले सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ये सुनकर विद्याधर के मन में डर और संदेह दोनों बढ़ गए। जब कालदेव वापस लौटा तो आखिरकार विद्याधर के सब्र का बांध टूट गया।
1: कालदेव जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक गंभीर सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जिस भी गांव में जाते हैं वहां तुरंत किसी की मृत्यु क्यों हो जाती है? सच बताइए, आप कौन हैं?
2: विद्याधर जी, मैं आपको समझदार मान रहा था। क्या आप अब तक मेरी असली पहचान नहीं समझ पाए?
3: आभास तो हो रहा है,
1: पर आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ।
2: मैं साक्षात यमराज का दूत हूँ। प्रभु के हुक्म से उन लोगों के प्राण लेने आता हूँ जिनका समय पूरा हो चुका होता है।
1: अगर ऐसा है तो हे यमदूत, कृपया बताइए कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है?
2: अगली मृत्यु आपके उसी दोस्त मूकचंद की है जिससे मिलने आप जा रहे हैं। और सबसे कड़वा सच ये है कि उसकी मौत की वजह आप खुद बनेंगे।
1: ये आप क्या कह रहे हैं? मूकचंद मेरा मासूम दोस्त है, मैं उसकी मृत्यु की वजह कभी नहीं बनूंगा। अगर मेरी वजह से ये होगा तो मैं अभी यहीं से वापस काशी लौट जाऊंगा।
2: हे ज्ञानी मनुष्य, आपके वापस लौटने से भगवान का लिखा नहीं बदलेगा, नियति अपना रास्ता खुद बनाती है। आपका दोस्त आपके पैरों में ही दम तोड़ेगा।
0: विद्याधर जैसे ही वापस मुड़े, उन्होंने देखा कि धूल उड़ाता हुआ उनका मित्र मोक्षचंद बहुत तेजी से उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। मोक्षचंद बोल नहीं सकता था, लेकिन विद्याधर को देखते ही उसके चेहरे पर अपार खुशी छा गई। ऐसा लग रहा था मानो वह कई किलोमीटर दूर से केवल अपने प्रिय मित्र को खोजता हुआ यहाँ तक दौड़ा चला आया हो। मोक्षचंद जैसे ही विद्याधर के पास पहुँचा, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। वो लड़खड़ा कर विद्याधर के कदमों में गिर पड़ा। विद्याधर कुछ समझ पाते उससे पहले ही मूकचंद बेहोश हो गया और फिर कभी नहीं उठ सका। अपने प्रिय मित्र की ये हालत देखकर विद्याधर का हृदय टूट गया। वह मूकचंद को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा।
1: मूकचंद, ये क्या हो गया? मेरी वजह से तुम चले गए?
2: कालदेव, अगर मूकचंद की मृत्यु निश्चित थी तो तुम मेरे साथ क्यों चल रहे थे?
4: मैं तो हर इंसान के साथ ही चला करता हूँ, पर लोग अपनी दुनिया में भटकते रहते हैं। अब सुनो, आपकी मौत आज से ठीक 6 महीने बाद पड़ोसी देश देवगिरी में फांसी से होगी। और मजे की बात यह है कि आप खुद खुशी खुशी उस फांसी को स्वीकार करोगे।
0: विद्याधर ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया और भारी मन से काशी लौट आए। मृत्यु का भय बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वानों को भी भीतर से तोड़ देता है। मोक्षचंद की मृत्यु ने विद्याधर के मन को गहरे तक झकझोर दिया था। काशी लौटने के बाद विद्याधर सीधे राजा वीरसेन के दरबार में पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी पूरी आपबीती राजा को सुनाई।
5: पंडित जी, यमदूत के मुताबिक आपकी मौत तभी हो सकती है जब आप देवगिरी की सीमा पार करेंगे। अगर हम आपको अपने राज्य से बाहर ही ना जाने दें तो यमदूत की भविष्यवाणी विफल हो जाएगी।
6: महाराज सही कह रहे हैं, पंडित जी को 6 महीने के लिए राजमहल के अतिथि गृह में पूर्ण सुरक्षा के साथ रखा जाए। वो सीमा पार ही नहीं करेंगे।
0: 6 महीने आराम से बीत गए। आखिरकार वो आखिरी रात भी आ गई। विद्याधर बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कल का सूरज उनके मन से मृत्यु का भय हमेशा के लिए मिटा देगा। इसी खुशी में वे जल्दी सो गए। लेकिन विद्याधर को एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में वे स्वयं भी अनजान थे। अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण उन्हें नींद में चलने की समस्या थी। उस रात अचानक उन्हें नींद में चलने का दौरा पड़ा और वे अनजाने में बिस्तर से उठकर चलने लगे। नींद की हालत में ही विद्याधर महल के अस्तबल में जा पहुंचे। उन्होंने एक घोड़े पर सवार होकर यात्रा शुरू कर दी। किसी भी सुरक्षा कर्मी ने उन्हें नहीं रोका और वे अनजाने में पड़ोसी राज्य देवगिरी की सीमा में प्रवेश कर गए। नींद में चलते चलते विद्याधर सीधे देवगिरी के राजमहल तक जा पहुंचे। वहां पहुंचकर

0: वे महारानी के कक्ष में गए और वहीं गहरी नींद में सो गए। सुबह जब देवगिरी के राजा चंद्रभान ने विद्याधर को महारानी के कक्ष में देखा तो यह देखकर उनका क्रोध भड़क उठा।
1: कौन सा निर्लज्ज इंसान है ये? सैनिकों, इसे तुरंत पकड़कर फांसी पर लटका दो।
2: क्षमा महाराज, भगवान की कसम, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। मैं कोई चरित्रहीन इंसान नहीं हूँ। आज मेरा छठा महीना पूरा हो रहा है। मैं आपको यमदूत की पूरी कहानी सुनाता हूँ।
0: विद्याधर ने राजा चंद्रभान को पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। राजा चंद्रभान ने तुरंत काशी के राजा के पास अपना दूत भेजकर इस बात की सच्चाई की जांच करवाई। जब ये साबित हो गया कि विद्याधर पूरी तरह निर्दोष है और अपनी नियति के कारण ही इस परिस्थिति में यहाँ पहुँचा है, तो राजा चंद्रभान गहरे धर्म संकट में पड़ गए।
3: अगर मैं इसे फांसी देता हूँ तो मासूम की हत्या का पाप लगेगा, और छोड़ता हूँ तो राज्य का नियम टूटेगा। क्या करें?
4: महाराज, नियम भी बच जाए और जान भी। इसके लिए पंडित जी को कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए। धागा टूट जाएगा और इनकी जान बच जाएगी।
5: बहुत ही न्यायपूर्ण निर्णय महाराज। कच्चा धागा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं खुशी खुशी इसे स्वीकार करता हूँ।
0: विद्याधर खुशी खुशी फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए। यमदूत कालदेव की भविष्यवाणी सच साबित हुई। विद्याधर ने खुद फांसी का फंदा स्वीकार किया था, लेकिन जैसे ही फांसी का फंदा कसा गया, वो कच्चा धागा टूट गया। पर टूटने से ठीक पहले उस पतले से धागे ने विद्याधर के गले की श्वास नली और खून की नस को काट दिया था। विद्याधर तड़पने लगे और कुछ ही पलों में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि एक कच्चा धागा भी किसी की मौत का कारण बन सकता है।
1: खौफनाक किस्मत के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। इंसान चाहे कितनी भी सुरक्षा लगा ले, भगवान की बनाई योजना एक इंच भी नहीं बदलती। इसीलिए भगवान ने इंसान को भविष्य देखने की शक्ति नहीं दी, ताकि वो आज को शांति से जी सके।
0: राजा चंद्रभान ने विद्याधर के शरीर,
6: ये बात सत्य है, तभी परमात्मा शिक्षित करते हैं कि अपने कर्मों को अभी सुधारो और मुझे याद करके, परमात्मा को याद करके, उनको सही रूप पहचान कर उनको याद करके अपने विकर्मों को विनाश करो। आगे बढ़ते हैं, नवरात्रि का खूबसूरत मौका है, चलिए ये गीत जरूर सुनते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं सिंगर साइरा मैयर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता।
2: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
3: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
2: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
4: मैं हूँ सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूँ। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया। खूबसूरत त्योहार का दिन चल रहा है, आपके क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ उमंग उत्साह के साथ लोग बाग चहलकदमी कर रहे हैं गरबा के लिए भी। तो दोस्तों, जरूर इस खूबसूरत मौसम का, इस खूबसूरत त्योहार का आनंद उठाइए, पर खास ध्यान रखिए अपनी सुरक्षा का भी। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप सभी खेल सकते, घूम सकते, डांस कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य, जो हेल्थ इशू है, उसका भी विशेष ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे, तब तक के लिए उड़ान से कहना चाहूंगी गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: बहू, मुझे लड़का ही चाहिए।
2: माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
3: माँ, अब तो बस करो।
1: बहू, क्या सोच रही हो, घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो,
4: कोख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। सही में अपना गांव और अपना अंचल में जब त्यौहार आता है तो धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि त्यौहार हमें रिलैक्स मूड में लाता है और आध्यात्मिकता आस्था विश्वास और भक्ति में ओतप्रोत कराता है। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए खासकर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए त्रिवेणी दीदी ने तो उनको स्वागत करते उनको स्वागत करने का पहले हमारा सभी ग्रामवासी श्रोता मित्र और आस्था विश्वास और भक्ति में जो ओतप्रोत है जो तल्लीन रखते हैं और भावना को लेकर आगे बढ़ते उन सभी को आज का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। तो हम सबको विदित है किस तरह त्यौहार मनाते हैं हर साल और इस साल थोड़ा सा हट के भी मना रहे हैं, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हम सतर्क और सुरक्षित महसूस करते हुए सरकार का जो दिशा निर्देश गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ तो इस कार्यक्रम में सुंदर रूप में सजाने के लिए त्रिवेणी दीदी को स्वागत करते हैं। दीदी जी, आज किस देवी पर हम आलोकपात कराएंगे? हमारे सभी श्रोता मित्र ग्रामवासियों को कुछ आध्यात्मिकता का साथ साथ भक्ति भावना में उनका बढ़ोतरी हो उसको ऊपर में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे।
1: आज हम विशेष नवरात्रि का द्वितीय दिवस मना रहे हैं और इस द्वितीय दिवस में हम माँ ब्रह्मचारिणी का आध्यात्मिक रहस्य सुनेंगे। इस रहस्य में हम आज अनोखे रूप से सुनेंगे। रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? आज हम नौ दिन नव दुर्गा के रूप में मना रहे हैं, लेकिन इस नव दुर्गा पर्व को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो रात्रि शब्द का प्रयोग या रात्रि के त्योहार किस बात को प्रेरित करता है, इसके बारे में आज हम सुनेंगे। साथ ही साथ हम ये भी सुनना पसंद करेंगे कि जिस देवी की हम आराधना करते हैं उसका सही स्वरूप माँ के रूप में किस प्रकार से है, कैसे माँ के रूप में वे सारी सृष्टि का पालन करती है। पालना के साथ माँ ब्रह्मचारिणी देवी जो पूजनीय है, गायन योग्य है, उस देवी के सत्य स्वरूप को हम पहचानेंगे, उनके जन्म तथा उनके आचरण के बारे में, उनके कर्तव्य के बारे में हम सुनेंगे। और इससे सुनते हुए जो कथाओं के रूप में हमने आज तक हर साल सुना है, लेकिन ये कथाओं से हमें क्या बोध होता है? प्राचीन संस्कृति में हमने जो भी कथाएं सुनी वे कथा के रूप में ही लेना नहीं है, लेकिन उस कथा के पीछे भावार्थ क्या है, इस भावार्थ को जब हम समझते हैं, इस समझ के आधार से हमें जीवन में क्या सीख मिलती है, उस सीख के जरिए हम किस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, किन सिद्धियों को हम अपना सकते हैं, इससे एक हमें जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आज हम नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के साथ मनाएंगे। आज तक जो कल का हमने रहस्य सुना उसमें यही सुना है कि भारत में परंपरागत तरीके से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि का भावार्थ है नव दुर्गा के नौ रूपों की नौ दिनों तक हम पूजा अर्चना करते हैं रात्रि में। आध्यात्मिक अर्थ से अगर देखा जाए तो नव या नए युग में प्रवेश करने का ठीक पहले का कुछ समय, जिसे घोर अंधेरी रात्र कही जाती है, इस रात्रि में ऐसे कल का निकलने वाला सूरज हमें प्रेरित करता है नए दिन, नए उमंग, नए उत्साह को। तो इसीलिए भारत के प्राचीन जो ऋषि मुनियों थे, उन ऋषि मुनियों ने रात्रि के साथ साथ तुलना करते हुए दिन की अपेक्षा में अधिक महत्व रात्रि को दिया है। इसलिए आज अगर हम कुछ इतिहास के पन्नों पर अगर नजर डाले तो देखेंगे कि जो भी त्योहार आज तक हम परंपरागत रूप में मनाते आ रहे हैं, इस परंपरा को हमने दीपावली, होलिका, शिवरात्रि, नवरात्रि, ये सारे उत्सव रात्रि में ही मना रहे हैं। रात्रि में मनाने की ये परंपरा, रात्रि में ऐसा क्या रहस्य है, ऐसी क्या परंपराएं हैं जो हम ये त्योहार रात्रि में मनाते हैं। नवरात्रि के दिन को हम नव दिन नहीं कहते हैं, नवरात्रि का बोध शब्द रात्रि इस शब्द से प्रयोग किया गया है। तो बताया जाता है साधना की दृष्टि से शरदीय नवरात्रि में ज्यादा महत्व माना गया है, जो शरद पूर्णिमा के रूप में हम इसे मनाते हैं। तो इस रात्रि में हम आध्यात्मिक मानसिक शक्ति के संचय को इकट्ठा करते हैं। इस रात्रि में संचय करने के लिए, इस एनर्जी के ग्रोथ के लिए रात्रि शब्द का प्रयोग करते हुए इस साधना को आगे बढ़ाया जाता है। तो संचय करने के लिए अनेक प्रकार के साधनों को भक्त यूज करते हैं। अनेक भक्तगण अपनी भावना के अनुसार व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन और योग साधना आदि करते हैं। ऋषि मुनियों ने ये जो रात्रि का प्रयोग किया हुआ है या उसके जो रिसर्च है, वे बहुत ही सूक्ष्म है। इस सूक्ष्मता को अगर हम पहचानते हैं तो मैं समझती हूँ हम अधिक से अधिक अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। और इसमें एक साइंस भी है, एक ऋषि मुनियों के रिसर्च और साइंस के रिसर्च को मिलाते हुए हमने कुछ अनुभवों के आधार पर आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार दिन में सूर्य की किरणें, आवाज, तरंगे, रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने में रोक देती है। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। कम शक्ति के रेडियो स्टेशनों को दिन में पकड़ना अर्थात सुनना मुश्किल होता है, जबकि सूर्यास्त के बाद छोटे से छोटा रेडियो स्टेशन भी बहुत आसानी से हम सुन सकते हैं। तो विज्ञान सिद्धांत ये कहता है कि सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार से रोकती है, इसी प्रकार से मंत्र जाप के विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावटें आती हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने रात्रि को ज्यादा महत्व दिया है। मंदिरों में भी जब घंटे, शंख की आवाज के कंपन जो हम सुनते हैं रात्रि के समय दूर दूर तक वातावरण में फैलते हैं, और ये कंपन कीटाणुओं सहित छोटी छोटी नेगेटिव वाइब्रेशंस को, उन प्रकंपनों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। विज्ञान तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रि में संकल्प और उच्च अवधारणाओं के साथ अपने शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। उनकी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि हर एक भक्त के शुभ संकल्पों के अनुसार उचित समय और ठीक विधि के अनुसार करने से उसकी प्राप्ति हमें ज्यादा होती है। इसलिए रात्रि का समय चुना गया है। तो इस रात्रि में हम अपने पावरफुल वाइब्रेशंस के साथ संपूर्ण कंसंट्रेशन को बनाए रखते हुए मंत्र जाप या योग साधना से कम समय में अधिक रीति से हम इस एनर्जी को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए रात्रि शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है।
0: दीदी जी, आपने यथार्थ रूप में सही बात बताई, क्योंकि हम तो नवरात्र मनाते हैं, किंतु रात्रि का साथ इस त्यौहार का क्या रहस्य है वो भी बात बताएं। और रात्रि में जब हम इस त्यौहार को मनाते हैं व साधना करते हैं व भक्ति करते हैं तो दिन का अपेक्षा रात्रि में ज़्यादा प्राप्ति होती है। जिस तरह आपने यथार्थ रूप में सटीक रूप में इस बात को क्लैरिफाई किए हैं, मैं समझता हूँ इससे हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी कुछ फायदा लिए होंगे, क्योंकि भक्ति भावना आस्था का साथ जब यथार्थ आध्यात्मिकता मिल जाता है तो हमें बहुत कुछ सीख देता है। जिस तरह आज इस कार्यक्रम का माध्यम से नवरात्रि क्यों, नव दिन क्यों नहीं, इसका अर्थ भी हमको समझ में आई और कुछ जानकारियां लेंगे। एक अल्प विराम का बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल पर नवरात्रि स्पेशल पर खास खास बातें।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। आज नवरात्रि का द्वितीय दिन में माँ ब्रह्मचारिणी का ऊपर में सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं त्रिवेणी दीदी ने, तो उनको स्वागत करते हैं। खासकर दीदी जी आप बताइए, माँ ब्रह्मचारिणी का साथ, इस शब्द का यथार्थ भावार्थ क्या है, माँ किस का प्रतीक है और माँ क्यों कहा गया है, इस सब देवियों को माँ शब्द का जो उपाधि मिली है इसका राज क्या है, तो इसका ऊपर में हमारा सभी श्रोता मित्र ग्रामवासियों को नवरात्रि स्पेशल में आप उनका आस्था और विश्वास को और चार चांद लगाइए और इसका यथार्थ भावार्थ बताइए माँ ब्रह्मचारिणी का ऊपर में।
2: माँ शब्द पालनकर्ता का बोध करती है। आज हम देखते हैं कि ज्यादा तो शक्तियों की ज्यादा पूजा अर्चना होती है पूरे साल भर में, और प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो धरती भी एक माँ के रूप में हम पूजन या गायन करते हैं, ये धरती भी एक माता है। तो आर्थिक रूप से भी प्राकृतिक रूप से भी माँ का रोल बहुत बड़ा है। तो माँ अर्थात इस जगत सृष्टि की स्थापना और पालना के कार्य में निमित्त बनी है, इसीलिए माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। माँ ये सिर्फ जन्मदाती नहीं है, लेकिन वे एक पालना के लिए भी निमित्त बनती है। वे पालना दो प्रकार से होती है, एक सूक्ष्म पालना जो अपने वाइब्रेशंस स्नेह के साथ जुड़ी हुई है, और दूसरी स्थूल पालना जो शिक्षाओं के साथ जुड़ी हुई है, जो अपने कर्म के द्वारा शिक्षा देती है, वे माँ आदर्श माँ कहलाती है। और जहां देवियों की बात आती है, शक्तियों की बात आती है, एक ऐसा एनर्जी फील्ड तैयार हो जाता है जिसके वाइब्रेशन से, उनके संग में, उनके सानिध्य में आने से हम खुद के वाइब्रेशंस को नील करते हैं और उनके पावरफुल वाइब्रेशंस के अंदर अपनी क्षमता को खत्म करते हुए उस दिव्य शक्ति के संचार को ग्रहण करने की एक कैपेसिटी हमारे अंदर आती है। इसलिए देवियों के पूजन और गायन में माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन भगवती दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की उपासना, आराधना या प्रविधान किया जाता है। इन देवियों का स्वरूप अलौकिक, तेजस्वी और भव्य है, क्योंकि इसमें ब्रह्म की शक्ति है, एक माँ की शक्ति के साथ साथ ब्रह्मांड की शक्ति भी इसमें है, इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी शब्द का प्रयोग किया है। सिर्फ शब्द का प्रयोग ही नहीं, लेकिन इसकी अलौकिकता, इसका तेज, इसको अनुभव करते हुए इस शब्द का एक उपाधि इस देवी को दी गई है ब्रह्मचारिणी नाम से।
1: सही बात आपने जो बात बताई, कम से कम हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी इससे बहुत कुछ सीख ली होगी, क्योंकि माँ शब्द का जो भावार्थ है, जो यथार्थ भावना है, स्वरूप है, उसको हम जब दिल दिमाग में रखेंगे तो जरूर माँ से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज का जो त्यौहार है माँ ब्रह्मचारिणी का ऊपर में आपका पास हम रख रहे हैं, और जैसे माँ ब्रह्मचारिणी क्यों कहा गया है और माँ उपाधि जो दी गई, माँ शब्द में कितना मिठास है और कितना प्राप्ति होता है, अपनापन आता है। तो आज इस कार्यक्रम का माध्यम से हमारा सभी श्रोता मित्र और ग्रामवासियों को, खासकर जो आस्था विश्वास और भक्ति में रुचि रखते हैं, उनको जरूर फायदा होगा। इन शुभ भावना के साथ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खासकर आज का जो त्योहार मना रहे हैं ब्रह्मचारिणी का ऊपर में और कुछ यथार्थ परिचय, जैसे कि उनका आभूषण, उनका परिधान क्या क्या है और किस का ये प्रतीक है, वो सब आपके पास रखेंगे। लेकिन कहाँ जाइए मत, वॉल्यूम को तेज रखते हुए एक सुंदर सा भजन सुनिए। इसका बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते, राम राम। अल्प विराम का बाद हम आपसे मिल रहे हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं त्रिवेणी दीदी ने। तो त्यौहार का ऊपर में जो चीज़ हमको सुनने को मिल रहा है, जानकारियाँ प्राप्त हुई तो आप तक हम पहुँचा रहे हैं, क्योंकि त्यौहार में जब हम समझ जाएंगे किस तरह त्यौहार को मनाना चाहिए और जो त्यौहार में जो कुछ होता है उससे हमें बहुत कुछ सीख प्रदान करता है। तो आज इस कार्यक्रम में खास खास बातें, खासकर आध्यात्मिकता को लेकर हम आपका पास रख रहे हैं। हमें बहुत खुशी है इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से हमारा सभी श्रोता मित्र, ग्रामवासी और भक्तजन को कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिला होगा। और जो हम त्यौहार मनाते हैं अपने जीवन में सुंदर, सरस और जीवन को सरल बनाने के लिए इस तरह जो त्यौहार मनाते हैं, इस त्यौहार से ही हमें और कुछ आध्यात्मिकता भी प्राप्त हो रहा है इस कार्यक्रम का माध्यम से। तो चलिए, देर किस बात की, त्रिवेणी दीदी ने जो कुछ बताए और कुछ बताने के लिए हमारा साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित है, तो उनको पुनः स्वागत करते हैं। तो दीदी जी, आपको स्वागत करते हुए आज का जो ब्रह्मचारिणी माँ का ऊपर में आप जो आलोकपात किए हैं, जो ज्ञान वर्धक बातें सुनाए, ये काम बात नहीं है, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए फायदेमंद है। तो खासकर आज का जो त्यौहार माँ ब्रह्मचारिणी का बारे में और कुछ रोचक रोचक बातें बताइए, जैसे कि उनका स्वरूप कैसे है और कौन सा वस्त्र वो पहनते हैं ब्रह्मचारिणी देवी, और इससे हमें क्या सीख लेना चाहिए, तो क्यों मनाते हैं और किस तरह मनाना चाहिए, और इस त्यौहार से हमारा जीवन में क्या फायदा होगा, वो चीज़ आप हमारा श्रोता मित्र और भक्तजन का सामने रखिए।
1: और इस ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप में उनके वेशभूषाओं के तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो उनके बाएं हाथ में कमंडल है एवं दाएं हाथ में जप की माला सुशोभित रहती है। कहा जाता है देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है तथा उनके ध्यान से, आराधना करने से मनुष्य को सर्व सिद्धियां और विजय की प्राप्ति होती है। तो हम एक ध्यान की क्रिया को अगर फॉलो करते हैं तो ध्यान लगाने से उनके इन शक्तियों को हम अपने अंदर समाते हैं। ध्यान एक ऐसी क्रिया है, ऐसी एक साधना है जो संकल्प के साथ उस देवी शक्ति से जब हम कनेक्ट होते हैं तब हम संयम, सदाचार और उनकी असीम शक्तियों को अपने अंदर महसूस करते हैं। इसके पीछे का रहस्य भी यही कहता है कि ब्रह्मचारिणी माँ ने जो कठोर तपस्या की है उस तपस्या का बल वातावरण में भी परिवर्तन लाने की क्षमता को रखता है। कहते हैं हजारों साल ब्रह्मचारी माँ ने तपस्या की है और वो हजारों साल एक यादगार के रूप में वातावरण में ऐसा वाइब्रेशंस तैयार हुआ है कि सिर्फ उनके याद करने से वो वाइब्रेशंस हम महसूस करते हैं। इसीलिए जब हम ध्यान के द्वारा मन बुद्धि से जब ब्रह्मचारिणी देवी से जुड़ जाते हैं तब हम उनकी शक्तियों को बहुत सहजता के साथ अनुभव करते हैं। इसलिए कहा जाता है माँ ब्रह्मचारिणी देवी के स्मरण से ही हमें असीम सिद्धियां और विजय का बल प्राप्त होता है। आज हमने इस सीक्रेट को समझ लिया है कि किस प्रकार से हम अपने मन बुद्धि के द्वारा इन शक्तियों के साथ जुड़ने से असीम शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों ना हम उनकी साधना, उनके ध्यान में एकाग्रता से इस शक्तियों को अनुभव करें। देवी के नाम में ही उनकी विशेषता तथा तप का दर्शन भी होता है। ब्रह्मचारिणी नाम का अर्थ ही है तप का आचरण करने वाली। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है, ब्रह्मचारिणी देवी पूर्व जन्म में हिमालय के राजा के घर में जन्म लिया था और महान तपस्वी देवता शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने वो घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी के नाम से अलंकृत किया जाता है। उनके नाम में उनका कर्तव्य और साधना की विशेषता जुड़ी हुई है। इनके याद से, उनके स्मरण से संघर्ष की सीख हमें प्राप्त होती है। किस प्रकार से हम संघर्ष से सीख ले सकते हैं? इस देवी स्वरूप से हमने संघर्ष की सीख को प्राप्त किया है। ये द्वितीय स्वरूप में संयम की सीख समाहित होती है। हमें अगर किसी बड़े लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो हमारे जीवन में संयम को अपनाना होगा। जहां संघर्ष है वह संयम की आवश्यकता है और जहां संयम है वह सफलता निश्चित ही है। देव पुराण में मां ब्रह्मचारिणी सभी विद्याओं की ज्ञाता भी मानी जाती है। उसे दूसरे शब्दों में विद्या की देवी के रूप में याद करते हैं। कहते हैं, मां की इस रूप की आराधना या

0: मेरे जीवन में हमेशा हर कदम में सफलता मिले। तो सफलता के लिए हमें चाहिए एक समझ, एक प्रॉपर ज्ञान की आवश्यकता। इस ज्ञान को, इस समझ को जब हम प्राप्त करते हैं तो सफलता हमारे से दूर नहीं है, परंतु इसे पाने के लिए हमें अपने कार्य को, अपने कर्म को सही रीति से समझना होगा। इसकी समझ ही हमें एक सकारात्मक सोच की ओर ले जाती है, और यही सकारात्मक सोच हमें हर कर्म में सफलता दिलाएगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में यथार्थ, सटीक और सरल रूप में समझाए हैं। त्यौहार का पालन करने से हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में एक आनंद, उत्साह आता है और सामूहिक रूप में एकता प्राप्त होती है। और जब हम यथार्थ रूप में मनाते हैं, सही रीति से मनाते हैं, विधि पूर्वक मनाते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीख मिलता है और प्राप्ति भी बहुत होता है। जिस तरह आपने आज का जो कार्यक्रम में सुंदर रूप में माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में बताए, माँ ब्रह्मचारिणी का वस्त्र और उनका जो कहानी स्वरूप, जो कथा है, जो मान्यता है, वो चीज़ आज आपने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खास खास बातें और कुछ जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते हैं और कुछ बातें, क्योंकि नवरात्रि का द्वितीय दिन में आप सुन रहे हैं ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप, उसकी पूजन भक्ति भावना कैसे किया जाएगा और इससे हमें क्या सीख प्राप्त होती है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए त्रिवेणी दीदी को पुनः स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और दीदी जी, आप बताइए, वर्तमान परिस्थिति में हम जो त्यौहार मनाते हैं, भाई कोई भी परिस्थिति हो, हम त्यौहार क्यों मनाते हैं, इससे हमें क्या सीख लेना चाहिए, त्यौहार हमारा जीवन में जो चीज़ लाता है उससे और क्या हम आशा रखते हैं, और हमारा जीवन को सुंदर सरस और सफलता मूर्त बनाने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए किस तरह त्यौहार को मनाना चाहिए, इसका ऊपर में थोड़ा सा आलोकपात कराइए।
2: तो ये बीज हमने अगर अच्छे डाले हैं अपने कर्म में, अच्छी सोच और अच्छे संकल्पों के साथ, अच्छे दिशा निर्देशन के साथ अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो बीज हमें अच्छे रूप में ही प्राप्त होता है। एक अच्छे सक्सेसफुल लाइफ को हम जी सकते हैं। लेकिन अगर हम अहंकार वश, ईर्ष्या वश, दुष प्रवृत्ति के साथ अगर कर्म करते हैं तो उसका नतीजा, उसका फल हमें दुख, अशांति या अनेक परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ेगा। और इन चीजों से अगर हम छूटना चाहते हैं तो सक्सेस का राज यही है कि तीनों कालों को समझें, अपने कर्म को समझे और उस कर्म को समझते हुए सही ज्ञान को अपने जीवन में हम प्राप्त करते हुए उसे फॉलो करें। दूसरी सीख माता के इस स्वरूप से हमें प्राप्त होती है। हमें अपने दिव्य चेतना का बोध होता है। अपनी दिव्य चेतना अर्थात आत्मा की पहचान, अपनी आंतरिक दिव्य शक्ति की पहचान जो हमें चारित्रिक पतन से, दूषित प्रवृत्ति से मुक्त करती है। पवित्रता दिव्य गुणों से परिपूर्ण जीवन जीने की एक कला सीखने को मिलती है माँ ब्रह्मचारिणी के रूप से। देवी की वेशभूषा सफेद है अर्थात पवित्रता का दर्शन होता है। एक क्लियर माइंड, मन की स्वच्छता यहाँ पर स्पष्ट होती है। कोई सीख को अगर हम ग्रहण करते हैं तो उस सीख के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए हमारी मन की स्थिरता का होना अत्यंत आवश्यक है। मन की स्थिरता के साथ साथ मन की स्वच्छता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे मन में सकारात्मक विचार है या विचारों में एक अच्छी क्वालिटी को अगर हमने बनाए रखा है, या जैसे कहा जाता है साफ सुथरा मन, इसमें हम इस चेतना को अनुभव कर सकते हैं। माँ का ये दिव्य स्वरूप समस्त शक्तियों को एकाग्र कर बुद्धि, विवेक, धैर्य के साथ सफलता की राह पर बढ़ने की सीख देती है। इसलिए हमें इन ब्रह्मचारिणी माँ के साथ जुड़े रहने के लिए, इन असीम शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है इसके पूरे इस महत्व को समझते हुए, अनुभव करते हुए इसे ग्रहण करना। और जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन एक सुखद, शांतिमय, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में, कंपटीशन के इस युग में, जब हम इस साधना को अपनाते हैं, हम बहुत सहज कम समय में अधिक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यही सीख मिली है आज के इस द्वितीय नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी दीदी को, क्योंकि आज का जो त्योहार में हमारे सभी श्रोता मित्र ग्रामवासी और खासकर श्रद्धा भक्ति और आस्था में जो तल्लीन रहते हैं, उनके लिए एक संजीवनी बूटी जैसे समझ मिली है। क्योंकि आज का जो त्यौहार में खासकर माँ ब्रह्मचारिणी का ऊपर में और रात्रि में इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं और ब्रह्मचारिणी माँ का शब्द का जो यथार्थ परिचय, उसका शब्द का बोध कराए, इसका साथ साथ जिसे उपासना आराधना और अलौकिकता कितना प्राप्त होता है। क्योंकि हम हमेशा त्यौहार तो मनाते हैं, लेकिन त्यौहार का साथ साथ सही समझ से कुछ सीख लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त होता है और गांव के लिए, अंचलों के लिए, और एक सामूहिक रूप में जब हम त्यौहार मनाते हैं वो त्यौहार में हमें बहुत कुछ फायदा प्राप्त होता है। जीवन को शांति, खुशी, आनंद और पवित्रता प्राप्त होती है। जिस तरह आज दीदी ने अपना अनुभव का आधार से त्यौहार का महत्व का साथ साथ ब्रह्मचारिणी माँ के ऊपर में यथार्थ रूप में समझाए, और हमें आशा और विश्वास है हमारा ग्रामवासी और अंचलवासी इससे जरूर कुछ फायदा लें। हर साल तो मनाते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा हट के आप लोग मना रहे हैं और इसका फायदा भी आज रेडियो मधुबन का माध्यम से आपको मिल रहा है। क्योंकि जब समझ मिलेगा तो हम अच्छी से अच्छी बात को भी अपना जीवन में ला पाएंगे। और जिस तरह आज ब्रह्मा कुमारी त्रिवेणी दीदी ने अपना बात को त्यौहार में किस तरह रंग लाए, किस तरह सजाए, आप भली भांति समझ गए होंगे। तो आज के लिए हमें और त्रिवेणी दीदी को दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे और एक देवी का स्वरूप का बारे में समझाने के लिए। लेकिन नवरात्रि चल रहे हैं, आप सब घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और त्यौहार में अपना जीवन को सुंदर, सरस और सुखदायी बनाइए। इन शुभ भावना का साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन नवरात्रि स्पेशल में द्वितीय दिन में। आज आप सभी को पुनः शुभकामनाएं और बधाइयां। अच्छा, धन्यवाद।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की केन हो। जी हाँ दोस्तों, वापस मैं आ गया हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों, बात एक और है कहने की कि मैं सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि जी हाँ, बहुत दिनों तक मैं नहीं आया। पिछले पूरे हफ्ते में मैं नहीं था। उसका कारण है कि मैं कहीं बाहर गया हुआ था और बहुत सी चीज़ें चल रही थी। जी हाँ, लेकिन अभी हम लौट आए हैं और आपके पास है, आपके साथ है। और आज नवरात्रि, यानी कि ये हफ्ता नवरात्रि का शुरू हो चुका है। कल पहला दिन नवरात्रि का और आज दूसरा दिन नवरात्रि का। और आज नवरात्रि के इस पावन दूसरी रात पर चारों ओर एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति छाई हुई है। आज का दिन समर्पित है माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मा यानी तपस्या, और चारिणी यानी आचरण करने वाली। देवी माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, अगर हमारे इरादों में निष्ठा, धैर्य और तपस्या का भाव है तो सफलता और मानसिक शांति अवश्य मिलती है। आज की इस खूबसूरत रात जब हवाओं में भी भक्ति का मिठास भरा हुआ गुला हुआ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही मन को छू लेने वाले भक्ति गीत, सुरीले नगमे और ढेर सारी सकारात्मक बातों जो आपके दिल को सुकून से भर देगी। तो चलिए माँ ब्रह्मचारिणी के पावन चरणों में नमन करते हैं, भक्ति और संगीत के सफर की शुरुआत करते हैं। और आज आपके लिए भी अगर मन में कोई ऐसे गाने हैं जो आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि के पावन पर्व पर, अवसर पर कुछ आप सुनना चाहते हैं, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और कि नवरात्रि के दिन, आज के दिन हम जब भी गरबा खेलने जाते हैं, गरबा गाने जाते हैं, तो आज के दिन आप क्या करते हैं या इस पूरे नवरात्रि में आप किस तरह से नवरात्रि को मनाते हैं, आप हमसे उस चीज़ के बारे में भी शेयर करें। मैं भी हमारी कुछ नवरात्रि जो मैंने हम जाते थे गरबा खेलने नवरात्रि के इन नौ रातों में, तो कैसे हम करते थे, क्या सेलिब्रेट होता था, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले आज ब्रह्मचारिणी देवी के, माता ब्रह्मचारिणी की जी ऊपर उपलक्ष पर एक गाना हम सबसे पहले सुनते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के उपलक्ष में रेडियो मधुबन के सुनने वाले सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: वो पहाड़ देख रहे हो?
2: हाँ, कितना सुंदर है।
1: और उनको देख रहे हो?
2: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
1: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
3: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों। और अभी हम सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा एक गाना कि ऊंचे ऊंचे मंदिरों में मैया तेरी जोत जगे। जी हाँ दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि मंदिर, जब भी हम किसी मंदिर या ऐसे जगह जाते हैं तो कई जगह पे ऐसे हाइट में ऊंची ऊंची जगहों पे होती है मंदिर है, जहाँ पे जैसे हम गब्बर की भी बात कर लें, हमारे यहाँ पे अम्मा जी माता के मंदिर की बात करें, गब्बर मंदिर की बात करें, या फिर हम कहीं पे भी जाते हैं, मोस्टली जगह पे हमने देखा है, सभी जगह पे नहीं बट मोस्टली जगह पे होते हैं जहाँ पे, और हम कहते हैं कि ऊंची ऊंची पहाड़ों पर है मैया तेरे ये मंदिर, और हम वहाँ पहुँचते हैं, पैदल चलते हैं, पैदल पहुँच करके जाते हैं, कईयों की अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएँ होती है। तो अभी ये जो हमने गाना सुना सुरेश वाडकर जी और अनुराधा पौडवाल जी के आवाज़ में, और हमने देखा है अनुराधा जी ने भी कई गाने, कई ऐसे भक्ति वाले गाने माता के, देवी के ऊपर या शिव जी के ऊपर, कई ऐसे भक्ति भाव वाले गाने गाए हैं, और ये भी एक उनकी प्यारी सी आवाज़ में, सुरेश वाडकर जी की आवाज़ में हमने गाने सुने हैं, जिसका नहीं है कोई उसे प्यार तू करे माँ, मन का हर एक सपना साकार तू करे माँ। जी हाँ सही बात भी है बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे, चलो सबसे पहले करते हैं उनसे बातें। हेलो
1: सर नमस्ते, गुड इवनिंग सुरेश जी, बोलते हैं।
0: गुड इवनिंग सुरेश जी, नमस्कार, हम ठीक है, आप कैसे हैं? हैप्पी नवरात्रि।
1: हम भी बहुत बढ़िया है, और नवरात्रि की शुरुआत है कल से, आज तीसरा दिन है
0: जी,
1: आज ये ब्रह्मचारी माता का दिन है, सभी को एक कहता है कि नवरात्रि का आनंद तो सबको छोटे या बड़े हो या
0: बिल्कुल
1: हो या चाहे कुछ भी हो,
0: बिल्कुल
1: सबको एक नवरात्रि का आनंद सबको ही रहता है,
0: बिल्कुल।
1: तो एक नवरात्रि ही एक अच्छा त्योहार है सर, की सभी एक आनंद खुशी और बताने के माता के पूरे 9 दिन तक आराधना करना, पूजा करना, इच्छा 9 दिन खास होता है फिर,
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे भी नवरात्रि का प्रारंभ हो गया इधर कल से, और क्या शुरुआत करते एक दो दिन तो ऐसा रहेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी लोग करेंगे
0: जी
1: हमन करेंगे,
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत से गरबारा खेलते थे, लेकिन अब भी खेल सकते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे जो गांव के लोग हैं शहर की तरफ चले गए हैं।
0: हाँ, सबसे बड़ी बात यह है,
1: गांव में लोग बिल्कुल कम हो गए,
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए गांव में भी बिल्कुल कम हो रही है।
0: ये बात तो देखी सुरेश भाई, हमने भी देखी कि गांव के लोगों का आजकल शहर की तरफ उड़ना, और गांव में जो नवरात्रि की जो रमजम होती थी वो हल्की सी कम हो गई, बिल्कुल।
1: और पहले तो क्या था सर, जब यही नवरात्रि का त्योहार आता था तो शहर से गांव में लोग आते थे
0: जी,
1: खास नवरात्रि के दिन के लिए, 9 दिन के लिए
0: जी,
1: हो गया है आज लोग बाहर ही जाते हैं खेलने के, और गांव का धीरे धीरे,
0: बिल्कुल
1: कहते हैं कि भावना तो गांव में होती है,
0: बिल्कुल,
1: शहर में तो खाते, शहर में तो जो नवरात्रि होता है भाव होता है।
0: आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सुरेश भाई, पता नहीं शायद नेटवर्क मेरा ठीक नहीं है, आपका ठीक नहीं, आवाज ब्रेक।
1: मैं भी 3-4 बार ट्राई किया तब कॉल लगा है अभी।
0: अच्छा अभी भी,
1: अभी भी हाँ, तो सब तो ट्रक में वहाँ पता नहीं अभी ठीक है आवाज,
0: पता नहीं अभी भी आवाज मतलब हल्की आ रही है, हल्की कट रही है, और ऐसा
1: नेटवर्क। चलो कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा शायद अच्छा ठीक हो जाए
0: जी,
1: बस अभी तो क्या है
0: आपकी कोई आज कोई गाना सुनना पसंद करेंगे, कोई फरमाइश आपकी?
1: कोई गाना बताए
0: नहीं, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है
1: कोई भी गाना सुना आपको,
0: चलिए कोशिश करते हैं हम आपको कोई भी, हाँ बिल्कुल पसंद की कोई भी गाने,
1: ठीक है, नमस्ते
0: जी। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश भाई, आज शायद नेटवर्क ठीक नहीं है, उस वजह से बातें ठीक से नहीं हो पा रही है, नेटवर्क कट रहा है, बार बार उन्होंने जो फरमाइश दी मैं सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन जी हाँ दोस्तों बात तो ये बिल्कुल सही कही है सुरेश भाई ने कि आज के समय में लोग गांव से शहर की तरफ मुड़ गए, और शहरों की जो नवरात्रियाँ होती है बड़े बड़े गार्डन्स में, पार्टी प्लॉट्स पे, और ये होने लगे हैं, पासिस के साथ लोग जाते हैं, पैसे खर्च करके जाते हैं, बात ये नहीं है कि पैसे खर्च करके जाते हैं और गरबा, लेकिन चीज़ ये है कि जो गांव की जो रौनक होती थी कि हाँ एक चौराहे पे पूरे माता का मंदिर को बना करके उसके चारों ओर को हम गरबा खेलते थे, और सभी आपस में मिलते थे, भोजन पानी होता था, कम्युनिटी जो भी उस एरिया के प्लेसेस होते थे वहाँ पे उनका खाना पीना होता था जी। मैं अपनी बात करता हूँ, जहाँ मैं था, मैं जब हमारे यहाँ पे गाँव में जब होता था तो इसी तरह से पूरे कम्युनिटी साथ में इकट्ठा होती थी, और अपने अपने एरिया का एक बनाते थे गरबे के लिए, और वहाँ पे रोज़ शाम को डेढ़ घंटा गरबा करने के बाद एक छोटा सा स्नैक के रूप में, नाश्ते के रूप में रखा जाता था, फिर उसे खाते थे और फिर वापस शुरू होते थे गरबे की, और रात को 12-12 एक एक बजे तक हम गरबा करते थे। और वो समय था, अभी यहाँ पे जब मैं हूँ इस गांव में, मतलब आबरोड में हूँ, तो अभी कोई एरिया का कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ है नहीं, मैंने देखा नहीं, आज कल के भी दिन में भी मैंने देखा, आज भी मैंने देखा, कोई ऐसा पर्टिकुलर कुछ है नहीं कि हाँ वहाँ पे माता का ये बनाया हो और वहाँ गरबे खेल रही है, कोई कम्युनिटी कर रही है, ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा। जी हाँ, तो पार्टी प्लॉट्स हो गए, स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर में पासिस के रूप में लोग जाते हैं गरबा करते, तो ये सारी चीज़ें होने लगी। तो अभी नए दौर में नई चीज़ें चेंज होती रहती है, तो आप अपने यहाँ का अपनी कोई राय हो, अपनी कोई सजेशन हो, अपने कुछ सुझाव हो, आप हमसे बिल्कुल से शेयर कर सकते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है, कॉल करना है 9414151415 पे, यानी कि 9414151415 पे आपको कॉल करना है, अपने जानकारी आप दे सकते हैं, गरबा आप कैसे करते हैं, नवरात्रि के समय में आपके वहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे और भी जो लिसनर्स हैं वो सुन सके और अपनी चीज़ें शेयर कर सके। चलिए सुनते हैं अगला नगमा रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत। आप सुन रहे रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गाना सुना, आए नवरात्रे महारानी। जी हाँ दोस्तों, देवियों को हम इन्हीं नामों से भी पुकारते हैं। बहुत से नाम हैं, माँ दुर्गे, माँ अम्बे, ये तो है ही। इसके अलावा भी जब हम नवरात्रों में नौ देवियों की जो अलग अलग बातें करते हैं, जैसे कि आज हम माँ ब्रह्मानी की बात कर रहे हैं, तो महारानियाँ भी इन्हीं देवियों के भी एक नाम ही है। और ये जो एल्बम है आए नवरात्रे, ये एक जगराता एल्बम बनी थी माता की भेंट के नाम से। इसमें दो वॉल्यूम्स हैं और इसमें लता मंगेशकर जी की भी आवाज़ है। लता मंगेशकर जी ने इसे गाया है, सुरेंद्र कोहली जी ने इसे कंपोज किया है और बलबीर निर्दोष जी इसके जिसने इसे लिखा है। ये गाना अभी हमने सुना। और जी हाँ दोस्तों, बात यही है कि हम किस तरह से नवरात्रे बनाते हैं या इस वक्त किस तरह से नवरात्रे बनने चाहिए, बनाने चाहिए, इसकी बात चल रही थी। चलिए देखते हैं अगला एक गाना, बहुत ही प्यारा सा ये गाना है, मेरा खास फेवरेट है। नवरात्रे के ऊपर तो नहीं है लेकिन मेरा एक फेवरेट गाना है, और शायद सुरेश भाई ने भी बाद में ये कहा कि अपना एक कोई भी आपको जो पसंद है गाना सुना दीजिए। तो आशा करते हैं सुरेश भाई आपको ये गाना पसंद आए। तो सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: यहाँ दोस्तों वेलकम बैक और

सजनी। जी हाँ दोस्तों, ये भी गाने आजकल नवरात्रों में मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी हम माँ के गर्भों की बात करते हैं या देवियों के गर्भों की बात करते हैं तो वो गाने तो बजते ही बजते हैं, लेकिन साथ में आजकल का एक नया ट्रेंड हो गया है डीजे, जिसमें कुछ पुराने फिल्मी गानों को डीजे की धुन में बजाया जाता है और उस पर भी लोग गरबा करते हैं। कुछ इस तरह के गाने भी होते हैं जिस पर डीजे को बनाया जाता है, डीजे बजाया जाता है और उस पर भी गाने बजते हैं। तो ये है आजकल के कुछ ट्रेंड्स, धीरे धीरे धीरे धीरे हमारे को कुछ जो जो चीज़ें मुझे याद आती जा रही मैं वो चीज़ें करता हूँ। मुझे भी याद है कि जब हम गाँव में थे तो पहले सिंगर्स को बुलाते थे, वो स्पेसिफिकली आते थे और गरबा गाते थे और वो गरबे भी प्योर हमारे जो माता की भक्ति के ऊपर या आरती भजन जो भी हम बात करते वो गरबे होते थे। लेकिन आजकल ये चीज़ें हो गई कि डीजे बुलाया जाते हैं, डीजे पे गाने बजते हैं, कोई सिंगर नहीं होता है और डीजेस पे ये गाने बजते हैं, आरतियाँ भी होती है, भजन्स भी होते हैं, साथ में कुछ फिल्मी गाने भी होते हैं और इनको मिक्सअप करके रिमिक्स बना करके गाए जाते हैं। आज के समय में आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है तो आप ज़रूर से मुझे कॉल कीजिए, चाहे आज चाहे कल, जब भी आपको वक्त मिले आप हमें ये चीज़ें कॉल करके बता सकते हैं कि ऐसा चीज़ें आपके साथ होता है कि नहीं होता। चलो चलते हैं अगले नगमे की और तब तक सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आया होगा। यहाँ वो तो गई थी रे मेले, मन मा उड़ी गई रानी, मेल मरमी गयो, क्या बात है, ये क्या गाने की बोला। और यही एक जोश हुआ करता था जब भी हम गरबा गाने जाते थे, और नवरात्र की 9 रातों में जब भी ये गाने बजते, तो जो एक एनर्जी होती है वो गरबा खिलाड़ियों की, जो गरबा खेलते हैं, जो गरबा गाते हैं, उनकी जो एक एनर्जी होती है, पूरा 3-4 घंटे तक कंटिन्यू डांस करना, और उसके बाद जो थकान होती थी, रिटर्न घर पे आते थे, और जब पाँव दर्द होते थे, और जब सोते थे रात को, आह वो नींद याद भी, मेरे को भी अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे ये गाना सुन रहा था ना, ये गाना सुनते सुनते भी मेरे पांव इसी तरह से धड़क रहे थे, इसे जो जो से थिरक रहे थे कि हाँ यस चलो मुँह तो गई थी। या दोस्तों ये पूरा गाना मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार सुनना ज़रूरी है, और कोशिश करूंगा कि अभी मैं जाऊँगा तो कहीं ना कहीं जहाँ भी गरबे चल रहे होंगे वहाँ जाऊँगा, वहाँ खड़ा रहूँगा, ये गाना ज़रूर से सुनूंगा, और एक दो हाथ गरबे के राउंड लगा ही लूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक और ऐसे ही प्यारे से गाने की तरफ, अगला जो नगमा है सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा एक चीज और थी, सॉरी मैं भूल गया, मैंने दिमाग में चला के रखा था कि अभी अभी हमने जो गाना सुना है, मैं चाहता हूं कि आप इसके गायक का मुझे नाम, किसने गाना गाया है उसका आपको मुझे नाम बताना है, कॉल करना है 9414151115 पे। तो जल्दी से जिसे भी पता है इसके ओरिजिनल सिंग, ये जो ओरिजिनल गाना था, ओरिजिनल गाना किसने गाया है, उस गाने के सिंगर का आपको नाम मुझे बताना है, तो जल्दी से फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। तब तक सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। सर
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: यार दोस्तों वेलकम बैक। और अभी हमने बैक टू बैक दो गाने प्यारे प्यारे सुने, एक तो गीता रबारी जी की आवाज में, और मैं जानता हूँ गीता रबारी जी इन्हीं कुछ समय में या कुछ ही, मतलब मुझे नहीं मालूम है कितने हैं, बट हाँ मैं जानता हूँ जहाँ तक कि काफ़ी प्यारे प्यारे गरबे, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने इन्होंने गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी गाए हैं, नॉर्मल भजन भी गाए हैं, एल्बम्स भी इनके बहुत से हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हैं। जी हाँ, और बहुत ही अच्छे अच्छे। और आज का ये जो दिन है ना, मैं सच्ची कह रहा हूँ, नवरात्रि जब से शुरू हो रही है, 9 दिन जब भी हम माता के भजन गाने आरती या इस तरह से जो भी गाने में सुनते हैं, तो इतना प्यारा मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है सुनने के लिए कि क्या बात करें। और आज हमारे कॉलर हमसे एक और जुड़ रहे, चलिए सुनते हैं उनसे वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो जी, नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
1: जी नमस्कार मदन भाई जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया हूँ, बस
1: जी।
2: क्या चल रहा है अभी?
1: बिल्कुल, बस देखिए नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों के गाने भक्ति आरती भजन चल रहे हैं,
2: पूरे विश्व में जगमगा रही है।
1: जी बिल्कुल, आप सुनाइए आपके वहाँ पे क्या हालचाल है मेहसाणा में।
2: जी जी जी, बहुत तो आज नवरात्रि है, नवरात्रि के रेडियो मधुबन को पूरी पूरी अनेक अनेक शुभकामना
1: जी,
2: और हमारे सभी दोस्तों को। बस अभी नवरात्रि शुरू होगी, आज दूसरा दिन हो गया।
1: जी बिल्कुल,
2: और नवरात्रि का ही गीत गाते हैं। तूने मुझे बुलाया शेरवालिये, मैं आया शेरवालिये, ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिये, मैं आया शेरवालिये। आप
1: चलिए कोशिश करते हैं,
2: हम सब सुनेंगे, और अगर समय है तो वरना क्या कि फरमाइश और भी होती है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और कोशिश करेंगे आपके लिए ये गाना हम अगर प्ले कर सके आज, तो हम बिल्कुल से शेयर करेंगे आपके लिए।
2: जी,
1: नमस्कार, ओम शांति। शुक्रिया सो मच मदनलाल जी आपका कॉल करने के लिए हमें। और जी हाँ, ये गाने भी हमें बड़े पसंद है जो भी इन्होंने भी हमें अभी दिया है, तो चलिए सुनते हैं ये नगमे और करते हैं फिर ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: वेलकम बैक दोस्तों, और अभी अपने बहुत ही प्यारे प्यारे नगमे सुन रहे, आरती सुन रहे, गाने सुन रहे हैं, और अभी हम आप सभी से लेंगे विदाई। फिर कल मिलेंगे ठीक इसी समय 8 बजे, और इसी तरह से नवरात्रि के इन दिनों को हम नवरात्रि गरबों के गानों को सुनते हुए दिन बिताएंगे। और आशा करते हैं आपको आज का ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया होगा, और हम फिर आपसे मिलेंगे कल। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, आप बने रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। तो तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, खम्मा गणी।

0: नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के उपलक्ष में रेडियो मधुबन के सुनने वाले सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, रेडियो मधुबन का जो टैगलाइन है वो है सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। और हम अक्सर ये याद दिलाते हैं कि आप जब रेडियो सुन रहे हैं तो आप मुस्कुराइए। वैसे भी आप कभी लखनऊ जाएंगे तो आप इस बोर्ड को पढ़ेंगे कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। यानी व्यक्ति को मुस्कुराना अनिवार्य है या वो खुश रहे इसके लिए चीज बताई जाती। व्यक्ति के खुशी के द्योतक के रूप में भी, सूचक के रूप में भी मुस्कुराहट को देखा जाता है। क्या हम हमेशा मुस्कुरा सकते हैं? अगर हम सुखी हैं, हम अंदर से खुश हैं, तो हम मुस्कुरा सकते हैं। जो व्यक्ति व्याधि में है, दुख में है, किसी प्रकार से परेशान है या किसी रोग ने उसे ग्रसित किया है, तो ऐसा व्यक्ति कष्ट में कैसे मुस्कुरा सकता है? उसके लिए जरूर मुश्किल होती है। अब हम ये सोचें कि क्या ये जो रोग आते हैं हमारे पास, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? प्रायः हम समझते हैं कि रोगों का निदान चिकित्सकों के पास, डॉक्टर्स के पास, हमारे चिकित्सा कर्मियों के पास है। वो बात तो सत्य है, मगर क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हम खुद अपने आप को रोगों से ग्रसित करने के लिए कर रहे हैं? पिछली बातचीत में हमने ये समझा था कि रोगों के कारण क्या हैं। हम बैक्टीरिया, वायरसेस इत्यादि कीटाणुओं को समझते हैं कि वो रोग को पैदा करने वाले हैं। उनके इन्फेक्शन हो जाने से, उनके संक्रमण होने से हमें रोग होते हैं। मगर ये भी बात समझ में आई थी कि सिर्फ ये जीवाणु या कीटाणु ही नहीं है, हमारे अपने शरीर का स्वास्थ्य यानी हमारी अपनी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। क्या ऐसे में हम रोगों से बच सकते हैं? क्या ऐसा काम तो हम नहीं कर रहे जिससे हम रोगों को न्योता दे रहे हैं? आइए आज ऐसे ही एक विषय पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पे उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, ओम शांति।
1: सर्वप्रथम तो मैं यही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हम ये समझते हैं कि भाई व्यक्ति सुखी रहे, मुस्कुराता रहे, उसके लिए वो अनेक प्रयास करता है। हम कहते भी हैं कि भाई रोगों के कारण हमारे हाथ में नहीं है। हालांकि हम ये बात समझते हैं कि बहुत सारे कीटाणु, रोगाणु हमें रोगग्रस्त बनाते हैं, हमें अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। कभी हम देखते हैं कि भाई मौसम बदला तो बीमार हुए, कुछ और हुआ तो बीमार हुए। कभी कभार लोग ये भी कह देते हैं कि भाई बीमारी तो आती रहती है, इसमें हमारा हाथ कहाँ है, इसमें हमारा कंट्रोल क्या है। अब प्रश्न उठता है कि क्या वास्तविकता में रोगों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है? क्या रोग आना ये सब कुछ स्वाभाविक चीज है, या रोगी होने के पीछे यानी स्वयं को रोगग्रस्त करने के पीछे हमारा भी कोई हाथ है?
2: हम कल जैसे जब बात कर रहे थे कि हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उससे हम रोगी हो सकते हैं। जैसे बारिश के समय अगर हम छतरी लेके जाएं तो हम नहीं भीगेंगे, अगर हम नहीं भीगेंगे तो शायद बीमार न पड़े। बारिश के समय हमें बाहर की चीजों को नहीं खाना चाहिए। आप गर्मी के समय, कहा जाता है गर्मी बहुत पड़ रही है, कृपया हाथ धोइए, सफाई से रहिए। बहुत बार बोला गया कि गन्ने का रस अगर आप सड़क पे पी रहे हैं तो मशीन साफ होनी चाहिए, जो गन्ना साफ होना चाहिए, मक्खियों उसके ऊपर ना बैठे, ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो हम बहुत बड़ी जनसंख्या और बहुत सारी बीमारियां बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होती हैं जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। मगर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो यदि एक व्यक्ति को होती है तो उससे दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकती है, इस जो लंबे समय तक रहती हैं। और क्रॉनिक डिजीजेस में, जैसे हमने कहा कि कम्युनिकेबल डिजीज बैक्टीरिया जरूरत है, कि हम गंदगी से बचें, हमें अगर कहीं चोट लग गई है तो हम उसका पट्टी करें, हम उस पर मरहम लगाएं, उसको खुले में न रखें, ये सारी चीजें हमें करने की जरूरत पड़ती है। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत कुछ आपके अपनी जीवन शैली की वजह से आपको मिलती है। जैसे मोटापा, आप बहुत अच्छे से खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, आपका जो बिहेवियर है कि आप बहुत सिगरेट पी रहे हैं, आप बहुत शराब पी रहे हैं, या आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, आप बहुत पॉल्यूशन है आपके अगल बगल, बहुत वातावरण प्रदूषण है, तो ये सारी चीजें आपको बीमार कर सकती हैं, क्योंकि ये आपके सारे अंगों पे इसका धीरे धीरे असर पड़ने लगता है और इसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। इस समय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक ज्यादा बड़ा चैलेंज है डॉक्टर्स के लिए दैन कम्युनिकेबल डिजीज, और ये हमारे जो सबसे कॉमन सुने जाने वाली चार बीमारियां हैं वो इसमें आती हैं। पहला ओबेसिटी या मोटापा, दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर जो आपके हृदय की वजह से है, तीसरा डायबिटीज जो आपके पैंक्रियास के ठीक से काम करने की वजह से नहीं हो रहा है, और जो चौथा है वो अस्थमा जो आपके फेफड़ों की वजह से नहीं हो रहा। और इन सबको मिला के जो सबसे बड़ा राक्षस है बीमारियों का वो है मोटापा, क्योंकि वो सबको असर दे देता है, वो सारे जोड़ खराब कर देता है, वो सारे ऑर्गन्स को खराब कर देता है, वो हृदय को, मतलब सारे के सारे आपके अंदरूनी अंगों को मोटापा आपका नुकसान दे सकता है।
1: यानी मोटे रूप में ये बात समझ में आ रही है कि आपने बीमारियों को दो अलग अलग हिस्सों में बांट के रख दिया। पहले एक हिस्से में वो बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती हैं, संक्रामक बीमारियां हैं, संक्रमण हो सकता है जिससे वायरस बैक्टीरिया इत्यादि ये चीजों की वजह से ये चीजें बीमारियां हो रही हैं, और ये दूसरी प्रकार की बीमारियां हैं जो संक्रामक नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न फैलने वाली बीमारियां हैं ये एक बहुत बड़ा समस्या का रूप है, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, दूसरे बीमारियों के मुकाबले ये बीमारियां ज्यादा हैं। क्या मैं इस बात को सही समझ रहा हूं?
2: आप एकदम सही समझ रहे हैं भैया। आप देखिए सुपर स्पेशलिस्ट के नाम, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट, डीएम गैस्ट्रोएंटोलॉजिस्ट, एमसीएच न्यूरोसर्जरी, एमसीएच कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, एमसीएच गैस्ट्रोसर्जरी, एमसीएच नेफ्रोलॉजी, मतलब जितनी भी सुपर स्पेशलिटी जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर बनी है वो उसमें सबसे बड़ा रोल इन्हीं बीमारियों का है। और मैं, अगर मेरे श्रोतागण सुन रहे हैं तो सबसे बड़ी बीमारी मोटापा है। आप एक बड़ी सीधी बात समझिए कि अगर हम और आप दोनों सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, हम आज जो सूटकेस इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पहिया लगा हुआ है, व्हील्स लगी हुई है, यदि हमें वो सूटकेस उठाना पड़े तो हमें बहुत परेशानी होगी, और खासकर अगर वो हमें सूटकेस उठा के सीढ़ी चढ़नी पड़े तो बहुत परेशानी होगी। और हम लोग अमूमन एक 5 से 10 किलो का एक बैग भी अपने कंधे पर टांगते हैं, 15 किलो का सूटकेस, मतलब 25 किलो उठा के अगर हमको किसी रेलवे स्टेशन पे या बस अड्डे पे या एयरपोर्ट पे चलना पड़ता है तो हम थकने लगते हैं। सोचिए कि इतना वजन आपके शरीर के अंदर है, कितना ज्यादा प्रेशर अपने हृदय पे दे रहे, कितना फेफड़ों सकती, कोई मोटे व्यक्ति के बगल में आप बैठ जाइए तो उसका मोटापा आपको नहीं मिल सकता, ये आपके पास नहीं आ सकती। तो इसीलिए मैं सबको ये बोलता हूं कि, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम लोग अपने भोजन से, एक्सरसाइज से एकदम ठीक कर सकते हैं। तो अपने आप को बचा के रखने की जरूरत है और बचाने से ज्यादा कि अपने एक लाइफस्टाइल की जरूरत है जिससे हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हम ग्रसित ना हो सके। कुछ जेनेटिक्स है, कुछ लोगों के परिवार में वो चीजें चली आ रही हैं जो आज मेडिकल साइंस बोलता है कि जीन्स है या आपके ये अंदर आपके जो बनावट है उसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। मगर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं अगर हम अपने आप को ठीक रखें तो हमें वो परेशान नहीं करेंगी।
1: आपने बहुत ही मजेदार बात कही कि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है। यहां पर मैं दो चीजें कहूंगा। पहली तो बात यह है कि अगर आप एक मोटे व्यक्ति के बगल में बैठे हैं तो आप मोटे नहीं होंगे, उनके साथ रहने से आपको मोटापा नहीं मिल सकता। अक्सर मोटे लोग पतले लोगों को देख के कहते हैं, जब उनका बोझ ज्यादा हो गया होता है शरीर का, कहते हैं भाई मेरे से 5-10 किलो ले लो, मैं थोड़ा हल्का हो जाऊंगा। तो ये महसूस होता है कि मोटा व्यक्ति अपने शरीर के बोझ को महसूस करता है। दूसरी बात, जब आप मोटापे को एक बीमारी के रूप में कहते हैं तो प्रायः लोग ये कहते हैं, हम सुनते भी आए हैं कि भाई खाया पिया करो, लोग तो चाव से खिलाते हैं, ज्यादा खिलाते हैं, और कहते भी हैं कि भाई खाते पीते घर के लगने चाहिए, अगर तुम खाओगे नहीं तो क्या समझेंगे लोग, ये भी चीज सुनने को मिलता है। तो ऐसे में आप मोटापे को एक बीमारी कह रहे हैं, ये इसे हम कैसे समझें?
2: भैया एक बड़ा हास्यपद एग्जाम्पल अभी मेरे साथ हुआ। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब पूड़ी तो बड़ी हल्की होती है। तो मुझे हंसी आई, हमने कहा अरे आप ये कैसे कह सकते हैं, ये तो भाई घी और तेल में बन रहा है। बोले डॉक्टर साहब आपने ध्यान दिया है, पूड़ी तेल के ऊपर तैरती रहती है, तो तेल से हल्की हो गई ना, क्योंकि हमें सिखाया गया कि हल्की चीज ऊपर तैरती है, भारी चीज बैठ जाती है। मैं कुछ बोलने लायक नहीं रहा। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप तेल को अगर पानी के ऊपर डालेंगे तो जो तेल है वो भी पानी के ऊपर तैरता रहेगा।
1: बिल्कुल तैरता है।
2: तो सबसे भारी चीज क्या है? सबसे भारी चीज है पानी, और पूड़ी तो देखिए पानी से भी हल्की है। अब इस मानसिकता के व्यक्ति को आप क्या सिखाएंगे और आप क्या समझाएंगे? क्योंकि अच्छा, और मोटापा का जो व्यक्ति है अगर उसमें हार्मोनल चीजें को हटा दिया जाए तो 90% व्यक्ति सिर्फ अपनी जिह्वा के वजह से मोटे हैं, वो खा ज्यादा रहे हैं और उसको खर्च कम कर रहे हैं, इसीलिए वो मोटे होते चले जाते हैं और उनको सब तरह की परेशानी हो जाती है। त्वचा पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, हृदय की परेशानी हो जाती है, सांस फूलती रहती है, उनको सांस लेने में परेशानी होती है, जोड़ों में दर्द होता रहता है। और अच्छा, लोगों को लगता है मोटा व्यक्ति मजबूत है जबकि वो ज्यादा कमजोर रहता है, क्योंकि वो एक इतना भारी वजन अपने शरीर से उठा रहा है जो काम बहुत लंबे समय तक नहीं करना चाहता। हम आप जितने श्रोतागण हमारी बात सुन रहे हैं, अगर किसी ने भी 2-4-5 किलो वजन कम किया होगा तो उसे बड़ा अच्छा लगा होगा। वो बोलते ना, अरे थोड़ा वजन कम हुआ, हल्के लग रहे हैं। मैंने अपने अस्पताल में ये तक सुना है कि अरे 3-4 दिन बुखार हो गया, एकदम पड़े हुए थे, या 3-4 दिन दस्त हो गया, उठे हैं तो बड़ा शरीर हल्का लग रहा है, वजन कम हो गया। लोग सोचिए बीमारी के बाद भी इसको एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। तो अगर हम और आप मोटापा कंट्रोल कर लें, और हम ये देखिए ना, फिट हम सहज स्वास्थ्य की बात क्यों कर रहे हैं, और एक बोला जाता है मोटापा बीमारियों का घर है। तो इसीलिए प्लीज जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं वो अपने वजन और अपने भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखें।
1: ये बात समझ में आती है जब आप कहते हैं कि मोटापा रोगों का घर है। जब जवान व्यक्ति मोटा है तो उस समय पर तो लगता है कि भाई इसको तो क्या ही रोग होंगे, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि भाई ये तो हट्टा खट्टा इंसान है, ये तो चल फिर भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, ऐसा लगता है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि एक मोटा व्यक्ति जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसके शरीर में धीरे धीरे रोग आने लग जाएंगे?
2: अगर आप मोटे व्यक्ति हैं तो आपका भोजन जो है वो बहुत ही नेचुरोपैथी आयुर्वेद के हिसाब से कहा जाए तो आप भारी भोजन कर रहे होंगे, जिसमें बहुत सारा तेल, बहुत सारा मसाला और बहुत सारा तला हुआ भोजन होगा नॉर्मली। और अगर हम मॉडर्न इसको बात किया जाए तो इसमें बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक होगा, बहुत सारे फास्ट फूड होंगे। तो जब तक आपका शरीर यंग है, और यंग का मतलब 30-35 साल तक जब तक आप हैं, तब तक आपके शरीर में ऊर्जा बहुत होती है। भैया मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि वजन एक आदमी का एकाएक 25-26 साल के बाद बढ़ना शुरू होता है। बहुत सारे छोटे बच्चों का भी वजन बहुत ज्यादा रहता है, बट एकाएक क्योंकि जब लंबाई रुक जाती है तब आदमी का भोजन पता चला वही खा रहा तो चौड़ाई बढ़ने लगती है। दूसरा, जब आदमी कॉलेज वगैरह में रहता तो चल रहा होता है, क्लास अटेंड कर रहा होता है, ऊपर नीचे उसको मूव करना रहता है, और जो हम लोग के समय में कंप्यूटर और मोबाइल उतना नहीं था तो एक फोन अटेंड करने के लिए भी दौड़ के जाना पड़ता था। हम लोग बाहर क्रिकेट, फुटबॉल और ये सारी मैदान भी बहुत थे भारत में। मैं ये भी बात बोलूंगा कि बहुत सारे गार्डन थे, मैदान थे, खुली हवा थी, प्रदूषण कम था, हम लोग खेल रहे थे, कूद रहे थे, इसलिए वजन जो था वो बढ़ ही नहीं पा रहा था। और हमें उतना खाने को भी नहीं मिलता था क्योंकि उस अवेलेबिलिटी उतनी नहीं थी। मगर अब जब आप जैसे ही 30-35 साल के होते हैं और आपका वजन बढ़ने लगता है और आप कोई भी एफर्ट नहीं करते उसको कम करने के लिए, तब आपका हृदय, आपके फेफड़े और आपकी पैंक्रियास धीरे धीरे जवाब देने लगते हैं। आपको ब्लड प्रेशर की समस्या, अस्थमा की समस्या और डायबिटीज की समस्या होने लगती है, और कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सारी चीजें होने लगती है। तो इसीलिए आपको जरूर अपने आप को देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या भोजन कर रहे हैं, और अपने आप को कैसे उस भोजन को पचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं।
1: मैं एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जब एक व्यक्ति मोटापे की हम बात करते हैं तो लोग फूले हुए नजर आए तब हम उन्हें मोटा कहें, या वो वजन कांटे पे अपने को तोले तब उनको मोटा कहें। एक व्यक्ति अपने आप को मोटा हूं ये वो कैसे समझे? कभी कभार लोग ये कह देते हैं कि भाई हमारे घर में तो सभी मोटे हैं, हमारे घर में तो हम खाते पीते घर के हैं, ये भी लोग समझ लेते हैं। तो ऐसे में अपने मोटापे के प्रति जागरूकता के लिए व्यक्ति क्या करे, कैसे वो मेजर करे कि हाँ मैं मोटा हूं?
2: अबे आप इंटरनेट बहुत सारे पैरामीटर्स आप देख सकते हैं कि आपकी वेट और आपकी हाइट के हिसाब से आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए, आपकी लंबाई और आपकी उम्र के हिसाब से आपका क्या आइडियल या क्या आपका बेस्ट वजन होना चाहिए, इसके आपको बहुत सारे टेबल्स मिल जाएंगे। BMI बॉडी मास इंडेक्स भी एक बहुत कॉमन पैरामीटर है। ये माना जाता है कि आपका BMI 30 से थोड़ा सा ऊपर है तो आप क्लास 1 ओबेसिटी में आ जाएंगे, 35 के ऊपर है तो क्लास 2 में आ जाएंगे, और 40 के ऊपर है तो क्लास 3 में आ जाएंगे, और 50 के ऊपर है तो आप सीवियर मोटे माने जाएंगे। और जितने लोग हैं, मैं सबको बोलता हूं कि आप अगर शीशे के सामने खड़े हैं और आप सामने ना हो कि अगर आप मतलब 90 डिग्रीज पे शीशे पे खड़े हैं और आप अपना आपका मोटापा है, आप शर्ट का बटन अगर बंद कर रहे हैं वो खींच रहा है पेट के पास, तो इसका मतलब कि आपका वजन जो है वो थोड़ा ज्यादा है। तो इसीलिए सबसे ईजी तरीका है अपना वजन लीजिए, और आपकी उम्र और आपकी लंबाई के हिसाब से अगर वो आपका वजन ज्यादा है तो प्लीज अपना ख्याल रखना शुरू करिए।
1: आज बहुत ही सुंदर सी बात समझ में आई है कि मोटापा रोगों का घर है, आप खाते पीते घर के लोग नहीं हैं, अगर आप मोटे हैं तो आप रोगों के घर हैं। तो इसलिए अपने आप को देखें कि आपका वजन कितना है, आपकी उम्र और आपके हाइट के हिसाब से, आपकी लंबाई के हिसाब से आपका शारीरिक वजन कितना है, उस पर ध्यान दें। अपने आप को स्वास्थ्य का तोहफा खुद देना शुरू करें, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर के एक एक अंग जवाब देना शुरू करेंगे, और उन रोगों को आप आने से पहले ही रोक सकते हैं। अगर आप युवा हैं, अगर आप मोटे हैं और आप में कोई समस्या नहीं है तो अभी से सुधार शुरू करें, ताकि आप अपने आप को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन दे सकें और हमारे चिकित्सा कर्मियों पर, स्वास्थ्य जगत पर जो बोझ है उसको कम कर सकें। दोस्तों, आज की चर्चा में यही विराम लेते हैं। बहुत ही सुंदर आज की चर्चा रही है, और भी प्रश्न हैं मगर समय इतना ही इजाजत देता है, तो इसलिए यहां रुकते हैं। आज हमारे सभी के प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया, तो आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
2: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में बस इतना ही। स्वस्थ रहने के लिए अपने मोटापे को कम करें, स्वस्थ बने और स्वास्थ्य के इस तोहफे को अपने को पहले दें और अपने परिवार और अपने समाज को स्वस्थ बनाने की ओर एक कदम उठाएं। रेडियो मधुबन पर यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: हेलो बच्चों, नवरात्रि के दिन शुरू हो गए हैं तो चलो मज्जा नी लाइव, डांडिया खेलो।
3: हाँ, और सपनों की सैर में होगा मचे का धमाल, क्योंकि परी के साथ हम करेंगे गरबा डांडिया और अच्छे अच्छे सॉन्ग्स पे डांस।
2: हाँ बच्चों, अकेला डांडिया और गरबा नहीं खेलना, लेकिन उसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए।
3: सही कहा परी, और इसीलिए मनी दीदी और परी आपको बताएंगे नवरात्रि का महत्व, ये क्यों मनाया जाता है।
2: हाँ, देवियों के बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी।
3: हाँ, तो नवरात्रि के 9 दिन की विशेष 9 देवियों के बारे में भी अब हम जानेंगे इस अक्टूबर में।
2: तो आज हम बातें करने वाले हैं माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी।
3: हाँ बच्चों, पता है ना, जब धरती पर अंधकार बढ़ गया था और देवताओं की शक्ति कम हो गई और असुरों की शक्ति बढ़ने लगी, और सभी जो देवताएं थे वो चिंतित होकर पहुंचते हैं भगवान शिव के पास, और जहां पर ब्रह्मा विष्णु शंकर की शक्तियां मिलाकर प्रकट होती है माँ दुर्गा और उनके स्वरूप भी अस्तित्व में आते हैं। तो सबसे पहले आती हैं माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी, जो कि नवरात्रि के प्रथम 2 दिनों में पूजा होती है जिनकी।
2: बच्चों, माँ शैलपुत्री पर्वत राजा हिमालय की पुत्री है। वे हमें सिखाती है कि जीवन में दृढ़ और स्थिर रहना चाहिए, और माँ ब्रह्मचारिणी तप और साधना की देवी है, जिनसे हमें धैर्य, संयम और दृढ़ संकल्प सीखने को मिलता है।
3: हाँ बच्चों, तो देखा, हमारी ये देवियाँ हमें कुछ न कुछ तो सिखाती ही हैं, तो ऐसे ही हम रोज जानेंगे नई नई देवियों के बारे में।
2: तो चलो बच्चों, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
3: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
2: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर,
3: सपनों की सैर को।

0: नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के उपलक्ष में रेडियो मधुबन के सुनने वाले सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बच्चों आ जाओ रेडियो के पास, परी आ गई है कहानी सुनाने। आज एक ज्योतिष

आपका भविष्य बता रहे हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। मैं काल्पनिक कहानियां नहीं कहता। सम्राट ने कहा, समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप निर्भीक होकर के मेरा भविष्य बताइए। तो बच्चों, ज्योतिषी ने सम्राट के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू किया तो राजा का चेहरा तो आनंद से खिल उठा। फिर भविष्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। फिर क्या हुआ सोचो बच्चों। फिर ज्योतिषी ने राजा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में बताना शुरू किया और बच्चों, इन बातों को सुनकर राजा तो दुखी हो गया। एक बार तो उसके मन में इतनी ठेस लगी कि उसे गुस्से में आकर कहा, बंद करो अपनी ये वाहियात बातें। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे ग्रहों की सूचना के अनुसार तुम्हारी मौत कब होने वाली है। तो बच्चों, ज्योतिष तो बड़ा चतुर था ना, वो समझ गया कि राजा को गुस्सा आया है। तो उसने कहा, महाराज मेरी मृत्यु आपकी मृत्यु के एक दिन पहले होने वाली है। सम्राट बहुत गुस्से में था तो ज्योतिषी को मृत्यु दंड देने ही वाला था, पर उसने ज्योतिषी के मुख से अपनी मौत की भविष्यवाणी सुनकर अपना इरादा बदल दिया। उसका गुस्सा शांत हो गया। सम्राट ने ज्योतिषी की बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर की बहुत सराहना की। उसने ज्योतिषी को मूल्यवान उपहार दिए और सम्मान पूर्वक विदा किया। तो देखा बच्चों, ये कहानी हमें बताती है ना कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो हमें बुद्धि से, समझ से काम लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो आप भी बिल्कुल डरना नहीं और बहादुर होके उस परिस्थिति का सामना करना। तो चलो बच्चों, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, फिर मनी दीदी आएगी दूसरी कहानी लेकर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन न खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तेनाली रामा की अनोखी दुनिया की किताब का सप्तद्वीप नौखंड नाम का अध्याय, जिसमें कि पड़ोसी राज्य सप्तद्वीप नौखंड का महाराज विचित्र भानु विजयनगर में आक्रमण के लिए प्लानिंग कर रहा है और गुप्तचर भी भेजे हुए हैं। महाराज कृष्णदेव राय ने मध्य रात्रि में ही सुरक्षा अधिकारी और कारागर अधिकारियों से मीटिंग की और बातें की और सुरक्षा प्रहरी को एक अतिरिक्त घोड़े के साथ तेनालीराम के घर जाकर उन्हें यथाशीघ्र बुला लाने के लिए कहा। और थोड़ी देर में ही तेनालीराम भी उस गुप्त मंत्रणा कक्ष में आ गए और महाराज अपने आसन पर विराजमान थे और उनकी आंखें भी लाल थी और तेनालीराम ने भी थकी दृष्टि से उन्हें देखा। और तेनालीराम एक आसन पर जैसे ही बैठा तो महाराज अपने आसन पर खड़े हो गए और तेनालीराम के कंधों पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा अनुमान सही था। तुम्हारे द्वारा पकड़े गए लोग गुप्तचर संगठन के ही सदस्य हैं और उन्होंने ही गांव में यह अफवाह फैलाई है कि मवेशियों को महामारी हो रही है और स्वस्थ गायें मर रही हैं, और उनका उद्देश्य यही था कि लोग इस अफवाह से घबरा जाएं और कम कीमत में अपनी गायों को बेचने के लिए तैयार हो जाएं। और विजयनगर के सीमा क्षेत्र में भी सैन्य गतिविधियां चिंताजनक रूप से बढ़ गई है, तो मुझे परामर्श दो कि हमें क्या करना चाहिए। विजयनगर के इतिहास में युद्ध का अस्तित्व नहीं है। हम शांति प्रिय हैं, किंतु हम अपनी अस्मिता की रक्षा करना भी जानते हैं। अब महाराज कृष्णदेव राय की गंभीर और चिंताजनक वाणी से तेनालीराम भी उद्वेलित हो गया। उसने कहा, महाराज आप वहाँ के महाराज विचित्र भानु को एक पत्र भेजे जिसमें लिखा हो कि सप्तद्वीप नौखंड के ऐसे सभी गुप्तचर गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो अराजक गतिविधियों में संलग्न थे। इन पर कड़ी कार्यवाही होगी। यदि आपने इनकी गतिविधियां नहीं रोकी तो हम अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। ऐसे में पड़ोसी राज्य होने की मर्यादा का ध्यान रखना हमारे लिए आवश्यक नहीं रह जाएगा। और साथ ही ये भी होना चाहिए कि यदि ये जो गतिविधियां हैं रोकी नहीं गई तो हमें भी अपना शक्ति और सामर्थ्य प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके पश्चात तो तेनालीराम घर लौट गया। फिर बच्चों, आगे क्या हुआ वो हमें पता चलेगा अगली कड़ी में। इसमें तो काफी गंभीर मुद्दे पर तेनालीराम महाराज की मदद कर रहा है ना बच्चों? तो आगे क्या होगा वो भी मैं बहुत उत्सुकता से जानना चाहती हूँ और आप भी जानना चाहते होंगे, है ना? तो चलो वो हम जानेंगे अगली कड़ी में। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: फॉरेस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: हेलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। आ गए हैं फिर से मनी दीदी और परी। पिछली कड़ी में जो पहेली पूछी थी उसका सही जवाब भी तो जाना है ना। पिछली कड़ी में परी ने पूछा था, मीठा रस भरा है इसमें, गर्मी में सबको भाता है, भारत का राष्ट्रीय फल, वही नाम बताओ जो कहलाता है। तो बताओ परी बच्चों को इसका सही जवाब।
2: हाँ बच्चों, आसान सी पहेली पूछी थी इसीलिए काफी सारे बच्चों ने सही जवाब भेजा है, और सही जवाब है आम, मैंगो।
1: हाँ बच्चों, गर्मी में तो आम आम ही आम, हर चीज में आम, मैंगो आइसक्रीम और क्या क्या, मैंगो जूस, मैंगो शेक, है ना।
2: तो चलो बच्चों जल्दी से नोट कर लो आज की पहेली। थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन आप तो स्मार्ट हो, नोट कर लो। सागर में रहता बड़ा है महान, पानी उगलता बनता है गान, सबसे बड़ा जीव धरती पर कौन, बताओ जल्दी से उसका नाम।
1: हाँ बच्चों, इस पहेली के द्वारा फिर से आपकी जनरल नॉलेज की परीक्षा हो रही है कि सबसे बड़ा जीव कौन सा है जो कि सागर में रहता है और सबसे बड़ा है। और परी ने तो बता ही दिया सवाल इस पहेली के माध्यम से। तो जल्दी से 9414141415 पर अपना जवाब हमें वॉइस नोट या मैसेज के द्वारा भेज दो।
2: बिल्कुल बच्चों, तो चलो अब हमें करना है गुड नाइट, क्योंकि नवरात्रि जो शुरू हो रही है इसलिए जल्दी से हम करते हैं गुड नाइट।
1: स्लीप टाइट,
3: गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर दर्द और बॉडी पेन है तो देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। और बच्चों को जैसा माहौल मिलेगा वो वैसे ही बनेंगे, तो इस पर चर्चा जरूर करेंगे। और आज बनाएंगे टमाटर पनीर पिज्जा, तो आप सभी तैयार होना बनाने के लिए, तो जरूर आप सीखेंगे और हम आपको सिखाएंगे। प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: अरे तू बाहर क्यों बैठा है? अंदर क्यों नहीं आया?
1: खा रहा हूँ ना।
0: अच्छा, नाम क्या है तेरा?
1: बबलू।
0: बबलू हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ता है तू?
1: पांचवी तक पढ़ता था, लेकिन अब छोड़ दिया।
0: क्यों?
1: माँ बहुत बीमार है ना, उठ ही नहीं सकती, मैं ही घर संभालता हूँ।
0: अच्छा एक बात बता, तू रहता कहाँ है?
1: यहाँ बिरवाड़कर चौल में, एक घंटा दूर।
0: बिरवाड़कर चौल, वो जुहू वाला क्या?
1: हाँ।
0: चल चल भाग, माँ इंतजार कर रही होगी, जा।
2: अरे बबलू, देख तेरे से कोई मिलने आया है।
3: ये बबलू है?
2: हाँ वही बबलू है।
3: अच्छा तू बबलू है?
1: आप कौन?
3: मैं डॉक्टर हूँ, बड़ी जान पहचान है तेरी। चल तेरी माँ को देखते हैं।

0: ओए रुक रुक, ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पे चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, जरूर सुनेंगे आप। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। पुनः दोहरा रही हूँ आज के विचार को कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। एक राजा की तीन लड़कियां थी, वह तीनों ही बहुत ही लाड़ प्यार से उनको पालना मिली थी। धीरे धीरे तीनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन भोजन करते समय राजा ने तीनों से पूछा कि आप किसके भाग्य का खा रही हो, किसके द्वारा आपको यह भाग्य वैभव आदि प्राप्त हो रहा है। प्रथम और द्वितीय लड़की ने कहा कि यह सब प्राप्तियां हमें आपके आधार पर ही हो रही है। लेकिन तीसरी लड़की ने उत्तर नहीं दिया। राजा ने उससे पुनः प्रश्न किया, तब उसने कहा कि मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ, मेरे भाग्य में जो सुख संतोष वैभव आदि है उन्हें ही मैं भोग रही हूँ। मेरे कर्म अच्छे हैं और मेरे जीवन में पुण्य कर्मों का फल जो निश्चित है वही मुझे प्राप्त हो रहा है, अर्थात मेरे भाग्य का फल ही मैं खा रही हूँ ना, कि अन्य किसी के भाग्य का। यह उत्तर सुनकर के राजा बड़े क्रोधित हुए। राजा ने कहा कि यदि आपकी प्राप्तियों में मेरा सहयोग नहीं है तो आपका इस राजभवन पर कोई अधिकार नहीं है, आपका विवाह एक गरीब व्यक्ति के साथ कराएंगे, तब आप क्या करेगी। लड़के ने उत्तर दिया कि मेरे भाग्य में वही है तो मैं उससे छूट नहीं सकती, यदि भाग्य श्रेष्ठ है तो झोपड़ी में भी खुशी से रह सकती हूँ। इस प्रकार का उत्तर सुनकर के राजा को और भी क्रोध बढ़ गया। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह एक गरीब बुढ़े व्यक्ति के साथ करवा दिया। लड़की ने राजभवन छोड़कर के जाते समय राजा से कहा कि पिताजी, मेरे मन में आपके प्रति बहुत सम्मान है, किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अपनी छोटी बेटी को नहीं भूलना। जिस गरीब बुढ़े व्यक्ति से राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह किया था वास्तव में वह एक राजकुमार था। वह बहुत अच्छे व्यक्तित्व का धनी एवं धैर्यवान व्यक्ति था, परंतु शापग्रस्त होने के कारण गरीब और बुढ़ा हो गया था। कुछ समय बाद राजभवन में राजा का स्वास्थ्य बिगड़ना प्रारंभ हुआ। चिकित्सकों ने जंगल से एक बूटी ले आने की सलाह दी। छोटी लड़की के पति ने बहुत ही कष्ट उठा करके राजा को जंगल से वह बूटी ला करके दी, जिससे राजा का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया और छोटी लड़की का पति श्राप से मुक्त हो गया एवं राजा बन करके पुनः राजा ही करने लगा तथा छोटी लड़की रानी बन गई। राजा को अपनी गलती की अनुभूति हुई और उसने अपनी छोटी लड़की से क्षमा मांगी। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए सुन लेते पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। जी हाँ, अगर दर्द और बॉडी पेन हो तो क्या करेंगे? कितनी बार देखिए, अभी तो दीपावली का काम चल रहा है, साफ सफाई करते हैं तो साफ सफाई करते करते बॉडी पेन होने लगता है, थकान आ जाती है, ऐसा लगता है कि अरे रे रे कब दीपावली का काम पूरा होगा। तो ऐसी स्थिति में आप है ना, रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पीजिए, सारी थकान भी दूर हो जाएगी, बॉडी पेन भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप रोज ही हल्दी वाला दूध पीजिए। जब तक भले आपको भाता हो चाहे नहीं भाता हो, चाहे आप पीते हो नहीं पीते हो, लेकिन जब तक आप ये जो दीपावली की साफ सफाइयाँ कर रहे हैं, भाई त्यौहार आते हैं तो त्योहारों के वेलकम, दीपावली तो ऐसा त्यौहार है कि उसके वेलकम करने के लिए पहले से हम अपने पूरे घर को चमका देते हैं, तो थकान तो आती है, स्वाभाविक है। भले हम माइयों से काम लेते हैं, लेकिन माइयाँ भी तो एक इंसान है ना, वो भी थक जाती है। तो सभी के लिए हल्दी वाला दूध बहुत ही फायदेमंद है। रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पी लीजिए, इससे बॉडी पेन ठीक हो जाएगा। अगला नुस्खा सुनेंगे आप ध्यान से, दांतों में सुराख हो तो क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, कपूर को महीन पीस करके दांतों पर उंगली से लगाइए, ठीक है, और उसे थोड़ा सा मलिए हल्के हल्के, सुराख हो कि आप अच्छी तरह मतलब साफ करिए पहले सुराख को, ठीक है, फिर मलिए उस पर, फिर सुराख के नीचे कपूर को कुछ समय तक दबा करके रख दीजिए, दांतों का दर्द निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर दांत में सुराख है तो कपूर को महीन पीस करके दांत पर उंगली से हल्के हल्के से आप मलिए लगा करके, ठीक है, और तो इस तरह सुराख अच्छी तरह साफ हो जाएगा। फिर सुराख में कपूर को कुछ समय तक दबाइए, ठीक है, दबा करके रख दीजिए, इससे दांतों का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको और भी अगला नुस्खा सुना रही हूँ। देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं, मीठा मीठा खाना पसंद करते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे, साल भर के, सवा साल के बच्चे, कोई कोई बच्चे इतना मीठा खाते हैं कि फिर कभी कभी उनको वो खरवा भी खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खरवा क्या होता है, तो गुदे की जगह पर ऐसी मीठी मीठी खुजली चलती है कि बच्चे चिल्लाते हैं, रोते हैं, और हम समझ ही नहीं पाते कि बच्चे को क्या हो रहा है, क्योंकि वो बोल तो नहीं सकता है ना, इसलिए हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन मीठा ज्यादा खाते हैं ना, तो इस तरह गुदे की जगह पर खुजली चलती है मीठी मीठी। तो बहुत ही सरल उपाय है इसके लिए कि आप केरोसिन का फोहा भर करके वहां पर लगा दीजिए, थोड़ा सा दबा करके, फोहे को नहीं लगाना है, वहां घिस करके फिर फोहे को हटा दीजिए, तो खुजली तुरंत ही बंद हो जाएगी। केरोसिन का फोहा भर करके गुदे पर और थोड़े से अंदर की साइड में लगा करके फोहे को निकाल दीजिए, केरोसिन लगा दीजिए, तो तुरंत ही खुजली ठीक हो जाएगी। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो धतूरे के पत्ते का रस निकाल करके उसे गर्म करके गुदा पर लगाइए, इससे भी जो चुन्नी काटते हैं ना, क्योंकि खुजली क्यों चलती है, मीठी मीठी खुजली क्यों चलती है, चुन्नट काटते हैं, है ना, मीठा ज्यादा खाया है तो चुन्नट काटते हैं, इसलिए मीठी मीठी खुजली चलती है। तो धतूरे का पत्तों का रस निकाल करके उसे गर्म करके गुदा पर लगा दीजिए, इससे भी बच्चों को आराम मिलेगा, ठीक है। और अगर पेट के केचुए और कीड़े हैं तो एक बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस और शहद बराबर मात्रा में मिला करके सुबह सुबह और दिन में और शाम को पीजिए। केचुए तथा कीड़े 4-5 दिन में मर करके बाहर निकल जाएंगे। देखिए बच्चों का है ना पेट भी बड़ा दर्द होता है, अब बोल नहीं पाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चों के क्या हो रहा है, तो इस तरह केचुए काटते हैं, कीड़े काटते, बच्चे चिल्लाते रहते हैं। तो एक बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस और शहद दोनों बराबर मात्रा में मिलाइए और सुबह दिन में और शाम को पीजिए, मतलब बच्चों को पिलाइए, ठीक है। बड़ों को काटते हो तो भी कर सकते हो आप, और बच्चों को इस तरह काटता है पेट दर्द करता है तो भी पिला सकते हो, तो इसे केचुआ कीड़े 4-5 दिन में मर करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत अच्छे हैं, आजमा सकते हो और अपने बच्चों का स्वास्थ्य, स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हो। चलिए प्रश्न पूछ लेती हूँ आज का, बहुत सुंदर प्रश्न है कि धात्री माता किस तरह का खाना खाए और अपने बच्चों को भी खिलाए। धात्री माता जिसके समझ लीजिए साल भर का बच्चा है, स्तनपान करता हो तो स्वयं किस तरह का भोजन करे और बच्चे को किस तरह का खिलाए, ये प्रश्न है, जवाब आपको देना है। नंबर हमारे है 9414-1514-15 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं गीत की ओर, बने रहिएगा आशियाना में। यूं गई और यूं आई, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आप खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे कि भाई बच्चों को किस तरह का माहौल मिलना चाहिए। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि बहन जी।
1: जी जय माता दी, जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका।
2: बराबर स्वागत तो बराबर किया है, और दीपावली भी आ रही है
1: जी,
2: ऐसे मौके पे तो पटाखे छूट रहे हैं तो स्वागत तो होना ही चाहिए
1: जी। बोलिए आज के।
2: और सबसे पहले तो आपको कहना चाहूंगा, आपने सुविचार भी बहुत सुंदर दिया आज का,
1: धन्यवाद,
2: उसके लिए थैंक्स तो बनता ही है, बहुत ही सुंदर सुविचार था
1: जी, थैंक यू।
2: और देखिए वो तो चलो विषय चला गया, अभी ये आपने बच्चों की बात रखी है ना, तो बचपन याद आ गया है बिल्कुल
1: जी।
2: देखिए घर में जैसा होता है ना, और आस पड़ोस में मतलब जैसा माहौल होता है ना, वैसे बच्चे ग्रहण करते हैं
1: जी।
2: जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले ही एक बात बताई थी, बच्चों माता पिता और बच्चों की
1: जी,
2: तो मतलब जैसा आप अपने माता पिता के साथ में कर रहे हो, वो अपने बच्चे देख रहे हैं, तो वो ही सलूक अपने साथ में होने वाला
1: जी।
2: क्योंकि प्रभु ने भी यही कहा है कि देखिए जैसा तुम खुद आचरण करो, जैसा तुम अपने परिवार के साथ में सलूक करोगे ना, वैसा ही तुम्हारे साथ भी होने वाला है
1: जी।
2: तो इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि तुम अच्छा कर्म कीजिए और अच्छा किसी के साथ में सलूक कीजिए, ताकि आपके साथ में भी बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा सब
1: जी।
2: तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा देखिए सबसे पहले बच्चों की गुरु होती है माँ
1: जी,
2: सबसे पहली गुरु वो है
1: जी।
2: तो घर में जो बच्चे सीखते हैं ना, वो ही सब कुछ करते हैं। जैसे कि एक बच्चा अपने स्कूल में जाके मतलब पढ़ने जाता था, तो पेंसिल वगैरह चुराता था
1: जी,
2: तो उस समय उसकी माँ ने नहीं रोका, तो उसको बढ़ावा मिल गया
1: जी।
2: तो धीरे धीरे बड़ा होके वो बहुत बड़ी चोरियां करने लगा
1: जी,
2: तो उस समय उसको पुलिस ने पकड़ा, और अंतिम इच्छा
1: फांसी पर
2: तो बोला मेरी
1: जी, फांसी की सजा दी गई उसको, तो उसने माँ को याद किया।
2: हाँ, तो माँ का कान उस समय काटा, किस लिए काटा वो आप समझ सकते हो ना
1: जी,
2: क्योंकि उस समय उसकी माँ ने रोक दिया होता
1: जी,
2: तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर, आभार आपका।
2: बस यही मैं कहना चाहता हूँ सभी को कि अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दीजिए, ताकि वो बड़ा होके आपका नाम रोशन कर सके
1: जी। जी
2: जी, ये उसका बच्चा है
1: जी। बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत ही सुंदर विषय है, और बहुत ही अच्छे बात सुनने को मिली है कि देखिए प्रथम गुरु तो बच्चों की माई होती है, घर का माहौल अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप भी इस विषय में चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, बहुत ही सुंदर विषय है कि बच्चों को किस तरह का माहौल मिला, जैसा माहौल मिलेगा वैसे बच्चे बनेंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है, प्रश्न का भी जवाब जरूर दीजिएगा कि धात्री माता को किस तरह का खाना खाना चाहिए और अपने बच्चे को भी खिलाना चाहिए। हमारी बहनें सुन रही हैं तो भी जरूर जुड़े, भाई लोग जो अनुभवी है वो भी जरूर जवाब देवे, और विषय बहुत अच्छा है, उसमें आप चर्चा कर सकते हो कि किस तरह बच्चों को माहौल मिलना चाहिए। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार उषा बहन जी, प्रणाम।
1: हाँ जी नमस्कार दयाराम जी, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनने को मिली।
3: हाँ काफी दिन हो चुके हैं बहन जी, जो पहले कार्यक्रम चलता था तब कॉल किया था, और अभी जो हमारे रेडियो मधुबन में कुछ तकनीकी वजह की प्रॉब्लम आई थी, उस वजह से कॉल भी नहीं लग रहा था, बात भी नहीं रही हो पाती थी, रेडियो मधुबन की कवरेज भी पूरी सही तरह से नहीं आ पा रहा था। तो 4-5 दिन से अब बिल्कुल सही रेगुलर आ रहा है, तो अब सुनाई अच्छी दे रहा है हमें।
1: क्या बात है।
3: और जी, और सवाल भी बहुत ही अच्छा किया है, और बातें भी खुशनुमा जीवन की अच्छी की है। और रेडियो मधुबन में सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाई मेरे, उसको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और काफी दिनों के बाद रेडियो में आया हूँ, तो इसलिए मेरे भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ। बहन जी आपको प्रणाम, पूरे रेडियो मधुबन परिवार को।
1: थैंक यू भैया, आपको भी नमस्कार।
3: उनका जवाब प्रश्न का जो आपने प्रश्न पूछा है, तो मैं मेरे हिसाब से उसका जवाब देता हूँ।
1: जरूर,
3: जो सही है गलत है वो तो आप ही
1: कोई नहीं
3: जानते हैं।
1: अरे नहीं, ये तो जनरल बात है।
3: महिलाएं जो धात्री बच्चे जो बच्चा सुनिए से जो ऊपर का होता है, उसको दूध पिलाने वाली महिलाओं को हरी पत्तेदार सब्जियों खानी चाहिए, और पीले फल भी खाने चाहिए, और घी और तेल में जो बनाई अच्छी सी पकवान है वो भी खानी चाहिए, और बच्चे को बड़े प्यार से भी खिलानी चाहिए, तो ये सबसे बढ़िया है।
1: जी जी,
3: और नमस्कार सभी श्रोताओं को। फिर से
1: विषय में आप चर्चा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, किस तरह का माहौल मिलना चाहिए कि उनके ऊपर अच्छा असर पड़े, क्या कहेंगे आप?
3: बच्चों के साथ तो माता पिता और उनके घर में ऐसा भी प्यार से रहना चाहिए, बच्चों को प्यार देना चाहिए, बच्चों को अच्छी से अच्छी जानकारी देनी चाहिए। जैसे शाम का समय जो पहले माताएं होती थी, दादी होती थी, वो अच्छी अच्छी कहानी भी सुनाया करती थी, अच्छी अच्छी बातें भी, तो बच्चे उनके अच्छी वो समझ पाते थे, उनमें सोच भी अच्छी होती थी। तो अब तो क्या है, तो माता पिता जो बच्चों की तरफ को ज्यादातर तो ध्यान ही नहीं देती है, या ये मोबाइल

0: बच्चे अपने अच्छे बनेंगे और सुदृढ़ और संस्कारी बच्चे है तो वो स्कूल में माता पिता का और टीचर का अपने गांव का सभी का नाम रोशन करेंगे और अच्छा बनेगा।
1: बहुत खूब आभार आपका दयाराम जी, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है इस विषय को, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर विषय है और बच्चों को किस तरह का माहौल देना चाहिए ये हमारे हाथ में है। हम चलो बच्चे नहीं हुए उसके पहले आप किसी भी तरह रह रहे हो, लेकिन बच्चे होने के बाद आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप पहले की तरह झगड़ा कर रहे हैं, चिल्ला कर बात कर रहे हैं, पड़ोस पड़ोस के साथ अगर झगड़ा कर रहे हैं तो उसका असर तो बच्चे पर पड़ना ही है। हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग कंचन जी।
1: वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार कंचन भाई जी। तो आज का प्रश्न है कि धात्री माता किस तरह भोजन करे और अपने बच्चे को भी कराए। साल सवा साल का बच्चा है, माँ का दूध भी पीता है और ऊपर से भी उनको देना पड़ता है, तो वो धात्री माता किस तरह का भोजन करे और कैसे अपने बच्चे को भी कराए। प्रश्न है ये, फिर विषय बाद में बता।
2: हाँ जी, तो ये हरे शाकाहारी का और प्रोटीन इसमें ज्यादा भोजन करे तो बच्चे को भी दूध का सेवन करे, ये सब करे तो बच्चे को भी इसमें से जो ये दूध तो माता का पिलाना ही चाहिए, बाहर का खुराक लेकिन माता का दूध जरूरी है।
1: अच्छा, और आज का विषय ये है कि बच्चों को किस तरह का माहौल मिलना चाहिए कि बच्चे संस्कारिक बने।
2: बच्चों के तो माता पिता के संस्कार हो गए तो बच्चों में आएंगे बेंदी
1: जी,
2: जो बुरी कमाई करके घर में लाएंगे तो बच्चे बड़े बच्चे देखेंगे उसको पता चल जाएगा कि ये कौन सी कमाई आई है। और दूसरी एक बात करूँ तो मोबाइल
1: जी,
2: मोबाइल का माता पिता ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो बच्चे भी जरूर करेंगे
1: जी।
2: ये एक आजकल का माहौल है तो इसमें खास माता पिता को ध्यान रखना है और कैसी बात करनी है घर में, बच्चे न सुने ऐसे कोई संस्कार इसमें न आए ऐसी हमें घर में रहना है
1: जी। चले, बहुत बहुत आभार कंचन भाई आपका
2: जी। सभी दोस्तों का
1: जी। तो देखिए, विषय बहुत ही अच्छा है कि बच्चों को किस तरह का माहौल देंगे। जरूरी नहीं कि घर का माहौल ही खराब हो, कितनी बार अड़ोस पड़ोस का माहौल भी खराब होता है। हमारे घर में अच्छा माहौल है लेकिन अड़ोस पड़ोस में अगर माहौल खराब है तो उसका भी असर बच्चों पर पड़ता है ना, क्योंकि बच्चे तो बच्चों में ही खुश रहते हैं तो कंपनी ढूंढते हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं और जब बच्चे जब उनके घर पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि झगड़े हो रहे तो भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे किसको कहते हैं, बच्चे तो महात्मा की उपाधि बच्चों को मिली हुई है, इनोसेंट होते हैं, उनके ऊपर जल्दी से असर होता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो घर पर भी आकर के क्योंकि बात तो पूरी समझ नहीं पाता है, अधूरी बात करता है, तो माहौल सिर्फ अपने ही घर का नहीं अड़ोस पड़ोस का भी अच्छा होना चाहिए। हेलो,
3: हाँ दीदी नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो आप?
3: बहुत अच्छे दीदी, बहुत अच्छी बातें भी सुन रहे हैं
1: जी।
3: और पहले तो मैं बताऊँ दीदी, जो आपने कर्मों का विचार दिया बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा लगा
1: जी, थैंक यू।
3: क्योंकि वो हम देखते हैं कई बार
1: जी,
3: इसी विषय पर जरूर एक बार चर्चा जरूर बताइए क्योंकि ये बहुत जरूरी है
1: जी,
3: एक बार वो विषय जरूर लीजिए
1: जी,
3: अच्छा विचार वाला
1: जरूर जरूर।
3: और आप दो बात बहुत अच्छी बताई, आज तो बच्चों की बात बताई, तो बच्चों के तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि बच्चे जैसे पड़ोस में कई बार दीदी क्या होता है कि पड़ोस के बच्चे इतना तूफानी, मैं बताओ हमारे मोहल्ले की बात कर रहा हूँ मैं
1: जी।
3: एक बच्चा इतना दीदी तूफानी, इतना तूफानी कि बहुत हमारे, तो दूसरा बच्चा बहुत सीधा था, अच्छा था, लेकिन इसके साथ मिल गया तो आज वही भी ऐसा हो गया है
1: जी, जी,
3: तो माँ बाप बोलते हैं तो कुछ समझते नहीं है, बस ऐसे करते बोलते रहते, छोटा सा बच्चा है फिर भी, तो जैसा माहौल वैसा बच्चा होता है। आज हम देखते हैं
1: जी।

0: बार ऐसा है कि अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे को हम अच्छे बच्चे के साथ रखेंगे तो वही अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बच्चा ऐसा हो तो इसके पास रहेगा तो वो भी ऐसा हो जाएगा।
1: जी जी। और आज का प्रश्न भी है कि धात्री माता को किस तरह का भोजन करना चाहिए और अपने बच्चे को भी कराना चाहिए।
0: तो धात्री माता को वो समझा नहीं देती, मैं कब से समझना।
1: जैसे नन्हे बच्चे होते हैं ना, नन्हे बच्चे होते हैं वो माँ का फीड करते हैं, है ना, 8 महीने के, साल भर के बच्चे माँ का दूध लेते हैं वो, तो माँ को किस तरह का भोजन करना चाहिए ऐसे समय में और अपने बच्चे को भी कराना चाहिए।
0: वो तो दीदी क्या है, भोजन में तो उसको जरूरत है, तो जो हमारे यहाँ दाल भात बोलते हैं, अच्छी खुराक जो हल्की खुराक,
1: जी जी,
0: ज्यादा भारी खुराक खाना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे के लिए भारी पड़ता है,
1: जी जी,
0: हल्की खुराक खाए, लीला शाक भाजी खाए, दूध मात्रा में लेना भी जरूरी है क्योंकि दूध से भी बच्चा थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो बच्चों को भी दूध पिलाना जरूरी है। अभी तो क्या दीदी पाउडर आ गया है, मैंने बताया कई लोग को पाउडर पिलाते हैं बच्चों को, तो बच्चा इतना मोटा हो जाता है, मैं मेरे परिवार की बात करूं
1: जी,
0: तो इतना पहले दुबला पर किया था वो पाउडर का एक डब्बा उससे पिला दिया था, आज देखो तो इतना बॉडी का हो गया था, मैंने बोला इतना बारीक हो गया कि हमने पाउडर पिलाया है।
1: जी जी।
0: ऐसा पाउडर तो नहीं पिलाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए। जी
0: नहीं, बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, इससे शरीर भारी हो गया है बहुत।
1: जी।
0: तो कभी कभी माता ऐसे पिलाती है तो, लेकिन नहीं पिलाना चाहिए उसको अच्छा दूध। पहले तो दीदी क्या था, हम तो जब छोटे थे तो हम तो बकरी के दूध पीते थे,
1: बहुत अच्छा है बकरी का दूध, तो सबसे बेस्ट है।
0: हमारे घर पे ही बकरियां थी, जब हम छोटे थे तब हमारा दो बकरियां थी, तो हम सभी भाई बहन बकरी का दूध पीते, बड़े हुए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बकरियां का दूध सभी वनस्पति के मिला हुआ आता है
1: जी,
0: तो वही अच्छा रहेगा, लेकिन आजकल वो नहीं है, तो बस जो आता है वही दूध पिलाता है, छेली रहता है वो प्लास्टिक
1: जी जी जी
0: बस, लेकिन हल्का खोरा खाएंगे तो बच्चा भी अच्छा रहेगा और माता पिता भी, माँ भी अच्छी रहेगी।
1: जी जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत बहुत आभार जी। चलिए यहीं पर सुनेंगे एक गीत, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा जरूर करेंगे, जुड़िएगा, नंबर हमारे है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो, आज के विषय में आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हो। आइए सुनते हैं एक गीत।

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: बचपन में पैसा जरूर कम था, बचपन में पैसा जरूर कम था, पर यकीन मानो उस बचपन में दम था, पर यकीन मानो उस बचपन में दम था। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि जैसा माहौल होगा वैसे ही बच्चे उसमें ढलेंगे और उस अनुसार ही वो बनेंगे। क्या कहेंगे आप? आपका विचार क्या है, किस तरह का माहौल बच्चों को मिलना चाहिए? जुड़िएगा इस विषय में, चर्चा जरूर आप करिएगा। हम भी आपकी राय सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और इस सुंदर से विषय में आप भी अपनी चर्चा अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। बात चल रही थी माहौल की कि बच्चों को माहौल कैसा मिलना चाहिए। देखिए, घर की बात तो पहले ही होती है और आप सभी ने कही ही है कि भाई सबसे पहले तो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, उसके बाद बाहर का। लेकिन बच्चे क्या है, या तो अपने अड़ोस पड़ोस के साथ खेलेंगे या अपने रिश्तेदार जो काका ताऊ इनके बच्चों के साथ खेलेंगे। तो कितनी बार क्या है कि भले भाई भाई है लेकिन एक भाई के घर का माहौल अलग और दूसरे भाई के घर का माहौल अलग। अब बच्चे तो खेले बिना नहीं रहेंगे, जाए बिना नहीं रहेंगे, उसका भी असर पड़ता है। जैसे कुछ शिकायतें सुनने को मिलती है कि ताऊ के बच्चे है, अंकल के बच्चे है, अब वो आपस में खेलते है, लड़ते झगड़ते है, फिर उसको अकेला कर देते है कि जा तू यहां से, हमारे घर से जा। जैसे बच्चे जाते हैं अपने बड़े पापा के यहाँ पर तो बड़ी मम्मी है बाहर निकाल देती है, गेट बंद कर देती है कि जाओ तुम यहाँ से, अभी नहीं आओ। बच्चे मैंने देखा है, बच्चों को रोते हुए भी देखा है। अब 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे क्या समझते हैं, वो तो अपने भाई बहनों के साथ खेलेंगे। लेकिन महिलाएं पुरुष इस तरह का व्यवहार भी करते हैं, नहीं आना है अभी, जाओ यहाँ से, भले बच्चा रो रहा है लेकिन फिर भी दरवाजा बंद कर देते हैं कि नहीं आना है, जाओ यहाँ से। तो वो बाल मन पर बहुत असर पड़ता है बच्चों का। वो रोते रोते भले अपने घर में आता है, भले उसके मम्मी पापा प्यार से उसको समझाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के कहीं ना कहीं अंदर से लग जाता है। फिर भी बच्चा तो बाल मन होता है ना, फिर जैसे जाने देते हैं तो खुश हो जाते हैं क्या, अरे वाह आज तो मुझे आने दिया घर में। क्योंकि अब एक भाई के एक ही बच्चा है, बड़े भाई के 2-3 बच्चे हैं, तो अब वो अकेला बच्चा क्या करेगा, अपने भाई बहनों के साथ ही खेलेगा ना, बड़े पापा के उधर ही जाएगा। तो इस तरह का माहौल भी बच्चों को मिलता है, इससे बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। और आजकल हर माता पिता यही चाहते कि एक बच्चा या फिर ज्यादा से ज्यादा दो, दूसरे का भी कम सोचते हैं। एक बच्चा हो गया बहुत हो गया, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, बहुत हो गया। लेकिन जब उनको कंपनी चाहिए तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बड़े जब हम बाहर जाते हैं तो हमको भी हमारे बरोबरी के चाहिए कि भाई हमारे को भी कोई कंपनी मिले तो अच्छा लगे। बच्चों का भी वही हाल है, बच्चे भी बच्चे के साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि पड़ोस में हो चाहे अपने ही परिवार में हो 2-3 बच्चे है लेकिन उस बच्चे को आने ही नहीं देते हैं, तो क्या मतलब उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसलिए माहौल अच्छा बना के रखना है, सिर्फ अपने बच्चे का ही नहीं सोचना है, हमारे अड़ोस पड़ोस के बच्चों का भी सोचना है कि अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे है वो भी है तो एक परमात्मा के ही संतान है ना, तो उनको भी प्यार दो और घर में उनको आने दो। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। गोपाल राम जी कैसे हो?
2: बहुत अच्छे विचार आपके सुन रहे हैं
1: जी।
2: घर बैठे वो गंगा आती है
1: जी,
2: वो वाली बात है। अलग अलग भाइयों की बहनों के सुझाव आते हैं, सुनते रहते हैं
1: जी जी जी।
2: और मेरे पास एक बहन आई थी थोड़े दिन पहले
1: जी,
2: वो कुछ ये कॉफी पीने की ऐसा कोई रखते हैं
1: जी,
2: वो लोग मालूम तो पड़ ही जाता है
1: जी।
2: फिर मैंने उनको कहा मैं बाबू तुम्हारे दालदर मेरे को दूर हो जाएंगे, अब पैसों की कमी नहीं रहेगी
1: जी।
2: तो उसने क्या जवाब दिया था, नहीं नहीं एक कूपी के पीछे के 10 रुपए मिलते हैं।
1: अच्छा
2: एक अच्छा एक बात, दूसरी बार अभी मैं एक दुकान पर बैठा, एक स्कूल ड्रेस में लड़का 10वीं 11वीं का होगा
1: जी,
2: उसने पूछा कि भाई सिगरेट है अंदर?
1: ओहो,
2: क्या पता था, व्यापारी ने मुझे देख के मना किया, वो जाना फिर वो तो गया। मैंने कहा मार साहब के लिए लेने आया क्या? नहीं नहीं, ये तो पीते है, और को मौका मिला तो वो पी भी लेते हैं क्या?
1: अरे रे,
2: ऐसा माहौल भी बन रहा है
1: जी।
2: और दूसरा संस्कार का आपने बात बताई, जो बच्चों में क्या होता है कि दो प्रकार के संस्कार होते हैं। अब उसके माता पिता के यहाँ का अलग संस्कार होते हैं और ननिहाल मामा की माँ के अलग होते हैं
1: जी।
2: ये दोनों का तालमेल बिठा के आगे बढ़ना पड़ता है। पहले ऋषि जो थे ना
1: जी,
2: वो ये विचार देने का ही काम करते थे, गांवों में घूमते और जगह जगह जा करके
1: जी।
2: आज भी कई कई है, ऐसी बात नहीं है
1: जी,
2: लेकिन ये बहुत कम हो गया है
1: जी।
2: वो माँ बाप कमाने में लगे कि बच्चा पढ़ रहा है मेरा और अच्छी स्कूल में एडमिशन लेगा, वो मालूम नहीं कि सिगरेट पी रहा है ना
1: जी,
2: और क्या क्या कर रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: उसका ध्यान नहीं रखते है। थोड़ा हंसी मजाक जैसा भी बताऊँ आपको, एक भाई नया नया शादी करके आया, उसके घर वाली अड़ोस पड़ोस में झगड़ा करने लगी
1: जी।
2: लोग आके उसको बोलने लगे, अरे तुम्हारी घर वाली ऐसी क्या मतलब झगड़ा करती है? तो उसने कहा भाई मेरे को क्यों बोल रहे हो, मेरी सासू जी के पास में जाओ ना।
1: अच्छा क्या बात है बहुत अच्छी बात है कि भाई मेरे को क्यों बोल रहे हो, सास ने शिक्षा संस्कार दी है बेटी को तो उनके पास जाओ। सही है, जब कुछ बातें हो जाती है तो माँ तक, चाहे बेटा बिगड़े चाहे बेटी बिगड़े, पिता के पास कोई नहीं भेजेंगे, माँ के पास ही भेजेंगे कि जाओ अपनी माँ के पास, जबकि माँ तो अच्छी शिक्षा संस्कार ही देती है अपनी बेटियों को चाहे अपने बेटों को, लेकिन फिर भी नाम माँ का आता है। और जब कोई अच्छे नंबर से पास होता है या फिर कोई अच्छा काम करता है तो उस समय पिता बड़े फक्र से कहते कि वाह मेरा नाम रोशन कर दिया, और बिगाड़ा है तो माँ का नाम कि तुम्हारा बेटा है तुम्हारी बेटी है तुम जानो, ऐसा भी होता है। खैर बात चल रही थी बच्चों के संस्कार की, तो ऐसे देखो एक घर की बात नहीं कह रही हूँ मैं, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो चाहे परिवार वाले हो, बच्चे को आने नहीं देते हैं घर में, तो उसका भी बच्चों बाल मन पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए देखिए अपने बच्चे हैं वो ही पड़ोस के बच्चे हैं, वो ही अपने परिवार के बच्चे हैं, तो उनको भी आने दीजिए। जबकि देखिए आप दूसरा के घर में बच्चे जाएंगे ना तो बिल्कुल मस्ती नहीं करेंगे, वो चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने जो भाई बहन है अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चे उनके साथ कम्फर्टेबल महसूस करेंगे कि अरे वाह मेरे दोस्त है या मेरे भाई है, ये फीलिंग उनके अंदर आएगी। अपने घर में चाहे कितने भी मस्ती करती हो करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है माताएं परेशान हो जाती है, लेकिन दूसरों के घर में वो चुपचाप बैठे रहते हैं। हेलो
3: हेलो बहन जी, परिवार के?
1: हाँ जी कंचन भाई।
3: ऑफलाइन ऑनलाइन?
1: ऑन एयर।
3: परिवार के जो बच्चे के वो साथ अपना बच्चा खेले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहन जी क्या है कि जो परिवार के बच्चे है न वो परिवार के पड़ोसी जी हर रोज झगड़ा करते हैं, ये संस्कार बच्चों में आया है
1: जी।
3: और बच्चे भी गालियां, ये बच्चा गालियां देना शुरू कर देता है
1: जी।
3: तो ये अभी मैं ही बताऊ, मेरे बेटी का बेटा था दिव्यांशु, तो ये हमारे यहाँ आया तो कुछ गालियां देने लगा, तो मैंने बोला कि ये कहाँ से सीखा
1: जी।
3: तो ये बोले, मेरी बेटी बोली कि भाई ये पड़ोस वाला एक है वो बच्चा वो रोज खेलने के लिए आता है, इससे सीखा है
1: जी।
3: तो ये थोड़ी सावधानी रखने की थोड़ी जरूरत
1: है, बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सही बात है।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है
1: जी जी, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। तो ऐसा भी होता है कि जब अपनी उम्र के बच्चे गाली गलौज करते हैं तो बच्चे सीखते ही हैं, इसलिए माताओं को पिताओं को चाहिए कि भाई अपने बच्चे को किस तरह का माहौल देवे। बहुत सारे देखो बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे कि माहौल अच्छा नहीं होता है ना तो माता पिता वो घर छोड़ करके दूसरे घर में भले किराए पर चले जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य देखते हुए वो लड़ाकू माहौल झगड़ा वाले माहौल में रहना पसंद नहीं करेंगे। वो यही सोचते कि हमारा तो जीवन बीत गया लेकिन हमारे बच्चों को ऐसा माहौल नहीं देंगे। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे माता पिता उस माहौल को छोड़ करके अच्छे माहौल में चले जाते हैं, चाहे भले वो किराए पर रहेंगे खुद का घर हो फिर भी वो छोड़कर चले जाएंगे, किराए पर चढ़ा देंगे या बेच देंगे, इसलिए देखिए बच्चों को माहौल देना बहुत जरूरी है। एक अच्छा माहौल मिलेगा तो बच्चा का मन स्वस्थ रहेगा, संस्कारिक बनेंगे और उनके ऊपर सकारात्मक असर पड़ेगा और वो बच्चे भविष्य में कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, आगे बढ़ेंगे और आपका नाम भी करेंगे। इसलिए माहौल अच्छा दीजिए, घर का भी, अड़ोस पड़ोस का, साथ का, उन किस तरह के बच्चों के साथ बच्चे रह रहे हैं ये भी ध्यान देना जरूरी है। संग का रंग जरूर लगता है, बड़े होने के बाद वो कहते ना कि जब घड़ा पक जाता है फिर उस पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन कच्चा घड़ा होता है तो उसको जिधर आप मोड़ेंगे उधर वो मुड़ जाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छा माहौल दीजिए और हमेशा घर का माहौल अच्छा बना के रखिए, यही खुशनुमा जीवन का राज है। और आइए सुनते हैं गीत, परंतु प्रश्न आज का है कि धात्री माता किस तरह का आहार लेवे और किस तरह का आहार अपने बच्चे को देवे। प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, नंबर हमारे है 94 14 15 14 15। और आइए सुनते हैं गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

बहुत गाने मैंने हिंदी में भी गाया था, लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, सिंहली, सुवरिया, सो मेनी लैंग्वेजेस मैंने गाई थी। मैं यश जानकी प्लेबैक सिंगर बोल रही हूँ। एफएम रेडियो नाम है मधुबन, इसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम्स आता है, आप जरूर सुनना चाहिए, प्रेम से सुनिए। आप सुनते रहना, मुस्कुराते रहना।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आशियाना के किचन में आज बनाएंगे टमाटर पनीर पिज्जा। भाई पिज्जा तो बच्चे बड़े पसंद करते हैं। खैर कहते हैं कि पिज्जा है, ब्रेड की कोई भी चीज है, वैसे बहुत कम खानी चाहिए, लेकिन कभी कभार खाने में कोई नुकसान नहीं। 6 महीने में 5 महीने में एक बार तो आप बना करके खा सकते हो और बच्चों को भी खिला सकते हो। और ऐसी चीजें तो बच्चे बड़े ही पसंद करते हैं। घर में नहीं मिलते तो फिर बच्चे लोग क्या करते हैं, बाहर जा करके खा लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम घर में ही बना करके खिला देवे, ताकि हमारे नजरों के सामने तो बच्चे रहे और हमें पता तो चले कि बच्चे कितना पसंद करते हैं या नहीं करते इन चीजों को। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर क्या है कि माताएं कंट्रोल करती है या बनाती नहीं है, कोई कोई को आता भी नहीं है बेचारे को, कैसे बनाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चे बाहर जा करके खा लेते हैं, जो स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो। लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ जाएंगे, 5 साल के 6 साल के बच्चे भी ये चीजें बहुत पसंद करते हैं। देखते हैं बाहर तो या फिर अड़ोस पड़ोस में तो जिद करते हैं कि हमें भी पिज्जा खाना है। तो पिज्जा भी तरह तरह के बनते हैं, लेकिन आपको क्या है, पौष्टिक पिज्जा बनाना सिखा रही हूँ टमाटर और पनीर का। ठीक है, तो जरूर बना करके खाइएगा और जरूर अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। माताएं अक्सर क्या है कंफ्यूज हो जाती है, हर एक के घर में तो ओवन नहीं होते ना, तो माताएं कैसे बनाएगी। फिर वो यही सोचती है कि कैसे बनाऊं, ओवन ही नहीं है घर में। तो बच्चे जिद करते तो यही कहते जाओ बाहर जाकर के खा लो। लेकिन अगर ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, बाटी का कुकर तो हर एक के घर में होता है ना। भाई राजस्थान है, राजस्थान में तो दाल बाटी का ज्यादा ही क्रेज है, तो कुकर तो घर घर में रहते हैं। बस उस कुकर में भी आप बना सकते हो, ओवन की जरूरत नहीं। ठीक है, और है अगर ओवन तो फिर ओवन में बनाइए, साधन है तो यूज करिए, नहीं है तो कंफ्यूज मत होइए। अगर बाटी का कुकर भी नहीं है तो छलना तो सभी के घर में रहता है ना, बस नीचे तवा और ऊपर छलना रख दो और जो भी आप जैसे बेकरी आइटम बनाते हो उसमें बना दीजिए। तो अब मैं आपको सामग्री बता रही हूँ टमाटर पनीर पिज्जा के, कि आप लीजिए 1 बड़ा चम्मच तेल, ठीक है, 2 बड़ा चम्मच लेना है मक्खन, 6 टमाटर ले लीजिए, 200 ग्राम पनीर ले लीजिए गोल गोल कतले में कटा हुआ, ठीक है, 1 बड़ा चम्मच सोया साग की नरम पत्तियां लेनी है, और फिर स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च या लाल मिर्च जो भी आपको पसंद है ले सकते हो। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, ध्यान दीजिएगा, अगर रिफाइंड तेल है तो वो लीजिए, नहीं तो कोई सा भी जो भी तेल आप घर में खाते हो ले लीजिए 1 बड़ा चम्मच। फिर 2 बड़े चम्मच ले लीजिए मक्खन, 6 टमाटर लेना है, 200 ग्राम पनीर लेना है और 1 बड़ा चम्मच सोया साग की नरम पत्तियां लेनी है। फिर स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च या फिर लाल मिर्च, वो आप पर छोड़ा है कि आप क्या पसंद करते हैं, काली मिर्च पसंद करते हैं लाल मिर्च। ठीक है, अब बनाने का तरीका भी मैं आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, ओवन गरम करिए, अगर ओवन है तो, नहीं है तो कुकर रख दीजिए गैस पर। फिर आप पहले पिज्जा का बेस इसके ऊपर तेल चुपड़ करके 5 मिनट इसको आप कुकर में थोड़ा सा बेक करें, ओवन है तो ओवन में बेक करें, नहीं तो कुकर में, फिर निकाल दीजिए बेक करके। ठीक है, अब टमाटर और पनीर को बेस पर सजा करके ऊपर से पिघला हुआ मक्खन फैला दीजिए, सब के ऊपर ये नमक काली मिर्च व सोया साग की पत्तियां को बुरक करके पिज्जा को इतनी देर तक आप बेक करें कि पनीर पर सुनहरापन आ जाए। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीका है, आप बाटी के कुकर में ये रख सकते हैं या छलने पर रख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई चिपके नहीं, और दूसरी बात है कि ये जले नहीं, आंच इस तरह आपको रखना है। ठीक है, ओवन में तो हमको पता होता है भाई 80 डिग्री पे कर ले तो हो जाएगा, लेकिन गैस पर आप अगर आप बाटी के कुकर में या छलने में बना रहे हैं तो आंच हमेशा मध्यम रखिए और बीच बीच में देखते रहिए कि सुनहरा हुआ या नहीं, तैयार हुआ या नहीं, फिर इस तरह आप निकाल सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा तरीका है कुकर और छलने में बनाने का, लेकिन छलना डायरेक्ट नहीं रखना है गैस पर। ठीक है, नीचे तवा जरूर रखिएगा, तवा थोड़ा सा मोटा होता है ना, तो आग को इतना डायरेक्ट पहुंचाता नहीं है, नहीं तो फिर वो तो बनेंगे ही नहीं, जल जाएंगे। डायरेक्ट छलना रखेंगे तो डायरेक्ट आग पहुंचेगी तो वो जल जाएगा, और कुकर तो वैसे ही हाइट पर होता है, तो कुकर रखने के बाद तो कुछ भी रखने की जरूरत नहीं होती, स्लो कर दीजिए गैस को और आप डायरेक्ट इस तरह बेक कर सकते हो। ठीक है, फिर से दोहरा रही हूँ विधि, ध्यान दीजिएगा,
कि आपके पास कुकर है, छलना है, जो भी है रखिए गैस पर और गैस चालू करिए। अगर छलना रख रहे हैं तो नीचे तवा, फिर छलना रखिए, कुकर रख रहे हैं तो डायरेक्ट कुकर रखिए, ओवन है तो ओवन को गर्म करिए। पहले पिज्जा बेस पर आप तेल चुपड़िए और तेल चुपड़ करके 5 मिनट तक इसको बेक करिए, ठीक है। फिर निकाल करके आप टमाटर और पनीर को बेस पर सजा करके ऊपर से पिघला हुआ मक्खन फैला दीजिए। सब के ऊपर से आप नमक, काली मिर्च और सोया साग की पत्तिया भी बुरक करके पिज्जा को इतनी देर तक बेक करिए कि पनीर पर सुनहरापन आ जाए। इतनी देर आपको बेक करना है लेकिन जलाना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, टमाटर पनीर पिज्जा तैयार है। तो देर किस बात की, भोग लगा देते हैं भाई, बच्चे तो भाई इंतजार कर रहे हैं और कंट्रोल नहीं होता है। तो आइए लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप टमाटर पनीर पिज्जा रखिए, और भी जो कुछ बनाया है आपने वो रखिए, और तुलसी पत्र रखिए, जल की स्वच्छ ग्लास भर के रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो, कौन से पिज्जा का, पनीर टमाटर पिज्जा का, ठीक है। और देखिए, आपको भी अगर रेसिपी आती है सात्विक रेसिपी तो जरूर आप भी दे सकते हो, और एक दिन पहले आप बता सकते हो कि रेसिपी आप देंगे, ठीक है। आइए सुनते हैं गीत, परंतु प्रश्न बड़ा अच्छा है कि धात्री माता किस तरह का भोजन करना चाहिए, धात्री माता को और अपने बच्चे को भी किस तरह का आहार देना चाहिए, जवाब जरूर देंगे। नंबर है 94-14-15-14-15 और सुनेंगे गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: ये ले बहु, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
2: जुबान चलाती है,
0: एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
3: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
3: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना?
4: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम काफी अच्छे रहे हैं और बहुत ही सुंदर आपको विचार भी दिया है कर्मों के ऊपर, और नुस्खे भी बहुत अच्छे दिए हैं। छोटे बच्चों का अगर चुन्नट काटते हैं तो क्या करना चाहिए, तो बहुत अच्छे उपाय बताए हैं, जरूर आप करिएगा। और रेसिपी भी बहुत अच्छी आपको सिखाई है, पिज्जा पनीर टमाटर वाला पिज्जा जरूर बनाइएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बड़ी अच्छी हुई है कि बच्चों को माहौल अच्छा देंगे तो बच्चों संस्कारिक बनेंगे, और जरूरी भी है क्योंकि पहले के समय में तो तीन तीन चार चार बच्चे होते थे, पांच पांच छह छह बच्चे होते थे, तो चलो वो नहीं, वो कपूत निकला तो दूसरा सपूत निकल जाएगा। माता पिता निश्चिंत थे कि कोई न कोई तो हमारी सेवा कर ही लेंगे, लेकिन आज के समय को देखते हुए तो बच्चे एक या दो ही होते हैं, और पहले का और अभी के माहौल में बहुत फर्क है। पहले कैसा भी था लेकिन माहौल अच्छा मिलता था, आज हम कितने भी स्टैंडर्ड का जीवन जीते हैं फिर भी माहौल अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए बच्चों को अच्छा माहौल देवे तभी बच्चे संस्कारिक बनेंगे, ठीक है। और आज का प्रश्न यही था कि धात्री माता किस तरह का खाना खाए और बच्चों को भी खिलाए, तो जवाब दिया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, दयाराम जी लाखनी से, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई झोटाना से और कुपाराम जी कोजरा से। किसी ने कहा कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो उससे खून बढ़ेगा और बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। फिर किसी ने कहा है कि भाई लगभग तो सभी ने यही कहा है कि हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाए। फिर किसी ने कहा कि भाई महिलाएं तो नहीं जा सकती है, पति ला करके देंगे तभी तो महिलाएं खा सकेगी, तो पतियों को चाहिए या जो भी सब्जी लेने जा रहे हैं उनको चाहिए कि वो कंजूसी ना करे और फल फ्रूट हरी पत्तेदार सब्जियां लाए। तो देखिए सभी का जवाब सही है, सभी के लिए मैं एक बार तालियां बजवाना चाहूंगी। तो बिल्कुल जरूरी है कि जो धात्री माता है, जो बच्चा स्तनपान कर रहा है और बच्चे को भी खुराक की आवश्यकता है, क्योंकि साल भर के बच्चे 9 महीने 10 महीने के 12 महीने के बच्चे खाली माँ के दूध से अगर पेट नहीं भरता है तो उनको भी हल्का आहार देना पड़ता है, और अगर माँ के दूध से चल जाता है तो फिर तो ऊपर से कुछ नहीं देना चाहिए साल भर के बच्चों को, क्योंकि वो माँ के जो खुराक है, माँ का जो फिट करता है बच्चा, उस दूध में सारे ही पौष्टिक तत्व आ जाते हैं। इसलिए माँ को अपना ऊपर पूरा ध्यान देना है धात्री माता को कि वो हरी पत्तेदार सब्जियां खाए, थुल्ली खिचड़ी ज्यादा खाए, उसमें अच्छा सा घी डाल करके खाए, है ना, और थोड़ा सा नवसे का खाए, ठंडा होने के बाद नहीं खाए, नहीं तो सर्दी खांसी की तकलीफ होगी तो बच्चों पर भी असर होगा। और दूध जरूर पिए और फल फ्रूट भी खाते रहे, और अगर बच्चे फिर भी आपके दूध से बच्चों को पूरा नहीं पड़ता है तो बच्चों को भी आप, जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो उनके दांत तो नहीं है, तो आप उपमा अगर बना रही है तो उपमा में कुछ मत डालिए, खाली घी में सेक करके हल्का सा नमक और हल्दी डाल करके एकदम ढीला ढीला बनाइए। चाहे तो आप उसमें थोड़े से छाछ या नींबू डाल सकते हैं और ढीला ढीला बना करके एकदम राबड़ी की तरह, राजस्थान में राबड़ी बोलते हैं, ऐसे ढीले ढीले राबड़ी की तरह बना करके बच्चों को चम्मच से खिलाइए तो आसानी से खा लेंगे और सूजी नुकसान भी नहीं करती है। फिर आप जैसे कि फ्रूट, बच्चों को फ्रूट के जूस पिला सकते हो थोड़ा बहुत, और अगर जैसे बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे केला है तो केले को तो आप हाथ से मैश करके भी खिला सकते हो। ड्रैगन फ्रूट है उसको भी आप मैश करके खिला सकते हो। तो जो मैश हो जाते हैं हाथ से उसका आप हाथ से खिलाइए। और अगर बच्चे नहीं खा सकते जैसे अनार के दाने नहीं खा सकते क्योंकि दांत नहीं है तो चबेंगे नहीं, तो उसका जूस पिला करके आप दे सकते हो। तो इस तरह धात्री माता को भी ध्यान रखना है और अपने बच्चे का भी खाने का पूरा ध्यान रखना है, संतुलित आहार खाना है, ना कि ऐसे भारी भारी भोजन, ऐसे समय में दाल बाटी या मक्की की रोटी इस तरह भारी खाना नहीं खाना है क्योंकि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, हो सकता है उनके पेट में दर्द शुरू हो जाए। ठीक है, और अब मैं आपको एक प्यारी सी बच्चों पर ही कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। कविता का शीर्षक है झूला। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नबको छूले। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नबको छूले। हे बाहर सावन की आई, हे बाहर सावन की आई, देखो शाम घटा नब छाई। अब फुहार पड़ती है भाई, अब फुहार पड़ती है भाई, ठंडी ठंडी अति सुखदाई। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर के नब को छूले। कुहुक कुहुक कर गाने वाली, कुहुक कुहुक कर गाने वाली, प्यारी कोयल काली काली, बड़ी सुरीली भोली भाली, गाती फिरती है मतवाली। हम सब भी गाकर झूले, पेंग बढ़ाकर नब को छूले। मोर बोलता है उपवन में, मोर बोलता है उपवन में, मस्त हो रहा है नर्तन में। चालक भी चातक भी बोला वन में, चातक भी बोला वन में, आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नब को छूले, पेंग बढ़ाकर नब को छूले।

0: जब कबूतर को पता चलता है कि बिल्ली उसके पास आ गई है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है जैसे बिल्ली गायब हो गई है, पर ऐसा होता नहीं है बापू। वैसे हम लोग कभी कभी यही तरीका अपनाते हैं, समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या इससे वो खत्म हो जाती है? घर ऑन एयर के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राठौड़ परिवार बड़ी मुश्किल से नाश्ते की टेबल पर बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर होती है एक नॉक। कौन पूछने पर गेट से जवाब आता है, पुलिस। अब यहाँ कबूतर है राठौड़ परिवार और बिल्ली है पुलिस। चलिए देखते हैं कि अब कबूतर करता क्या है।
1: बड़े भैया गेट मत खोलिए, मैंने सीरियल में देखा है, पुलिस एकदम से आती है अंदर और बिना कुछ बताए हथकड़ी लगाकर ले जाती है और फिर बहुत मारती है।
2: अरे अरे तो आप गेट मत खोलिए, आपको ले गए तो हमारा क्या होगा?
3: अरे पुलिस वालों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि किसी को भी ले जाएं, और मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैंने क्या किया है?
4: एक काम करते हैं, तुम लोग सब चुप हो जाओ, उनको लगेगा घर पे कोई नहीं है तो सब वापस चले जाएंगे।

0: है, हमें विजय की तलाश है।
1: आपका मतलब विजय दीनानाथ चौहान है?
0: आप पुलिस वाले से मजाक कर रहे हैं?
1: सॉरी सर, मैं नर्वस होता हूँ तो मजाक निकल जाता है।
0: ठीक है ठीक है, आप मेरी बात का ठीक से जवाब दीजिए, विजय कहाँ है?
2: जी विजय नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता।
0: देखिए, हमें पता चला है यहीं रहता है। एक आरोपी को छुपाना कानूनन जुर्म है, इसलिए जल्दी बताइए विजय कहाँ है।
2: सर हम सच कह रहे हैं, यहाँ कोई विजय नहीं रहता।
0: देखिए हमारे पास प्रूफ है, विजय कुशवाहा आधार कार्ड डिटेल्स है, उसमें यहीं का एड्रेस दिया हुआ है।
3: अरे ये तो अपना विजय है।
0: हाँ, पकड़े गए, मतलब हमसे झूठ बोल रहे थे। कौन विजय, अब कहते हो अपना विजय?
2: नहीं नहीं सर, मतलब क्या है ना, ये हमारे परिवार का मेंबर नहीं है, ये तो हमसे पहले इस मकान में रहता था, तो इसलिए ये एड्रेस पड़ा होगा। इसकी पोस्ट आती है कभी कभी यहाँ, तो लेने आ जाता है बस।
0: कोई और आपके एड्रेस पे 5 साल से अपनी पोस्ट पार्सल मंगा रहा है, आपने कुछ नहीं कहा?
1: ये लोग यहाँ 5 साल से रह रहे हैं।
4: सर मुझे लगता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं।
2: नहीं सर, हमें लगा वो तो हमारा दोस्त है।
5: सर हुआ क्या है ये तो बताइए।
0: देखिए विजय ने बड़ा बैंक फ्रॉड किया है।
6: कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में कोई नहीं फंसना चाहता, लेकिन अगर मुसीबत आ ही जाए तो फिर समझदारी ही तो काम आती है। आपका आईडी प्रूफ आपका प्रमाण है। ध्यान रखिए कि आपके नाम, नंबर या एड्रेस का कोई और इस्तेमाल ना करे। अब पुलिस अपने विजय, मेरा मतलब है कि विजय को तो पकड़ ही लेगी, बैंक में जो फ्रॉड किया है। लेकिन क्या राठौड़ परिवार की समस्या कम होगी? अब ये तो बाद में पता चलेगा।
7: मर्दों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। हमसे हंस खेल के बात करने वाला वो विजय फ्रॉड निकला।
8: रागिनी दीदी, पहली बार सही बात बोली है आपने।
7: पहली बार तो क्या कहना चाहती है शांति, क्या मैं हमेशा गलत बात कहती हूँ?
5: भैया ये हमारी बहने ही है ना, कहीं मंदिर से तो उठा कर नहीं लाए थे इन दोनों को?
7: किशन तू तो पिटेगा मुझसे।
8: दीदी आपसे और मुझसे दोनों से।
7: रुक अभी बताती हूँ।
8: पकड़ो दीदी पकड़ो इसको, बहुत मजाक बनाता है हमारा।
5: अरे कोई बचाओ मुझे इन दोनों से, कोई छोड़ के आओ इनको वापस मंदिर में।
7: तुझे तो मंदिर में भी नहीं रखेंगे, रुक
8: मारो दीदी मारो मारो।
9: अरे क्या कर रहे हो तुम तीनों, बच्चों की तरह लड़ रहे हो।
10: थोड़ा लड़ने तो इन्हें अंबिका, बड़े होकर भी बचपन जी लेना चाहिए कभी कभी। घर की रौनक इस मीठी प्यार वाले झगड़े से ही तो है। और देखो ये लोग इस बहाने एक तो हो गए ना।
11: इसलिए तो मैं भी प्यार से झगड़ती हूँ ताकि आप लोग खुश रहें।
9: बड़ी बहू तू तो इतना खुश कर देती है कि खुशी के साथ मेरा बीपी भी बढ़ जाता है।
12: वैसे चंद्रावती तुम तो बचपन में बड़ी शांत थी, तुम्हारी माताजी ने बताया था मुझे, कहीं शादी के लिए झूठ तो नहीं कह दिया था?
11: मैं तो सच में बड़ी शांत थी, अपने छोटे भाई पर कभी हाथ नहीं उठाया मैंने। और ये आपकी बहनों को देख लीजिए।
5: बड़े भैया आप तो बहुत लकी हैं।
10: हाँ बिल्कुल, हमारी बड़ी बहू ने आते ही इस घर को संभाला, इस घर को एक करके रखा। जब इन दोनों की शादी हुई थी तो चंद्रावती 23 साल की थी और गजेंद्र 26 का, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी बहू पर ज्यादा थी। शादी होते ही एक लड़की से सब ऐसे उम्मीदें लगा लेते हैं जैसे एकदम से वो बदल जाए, अपनी उम्र से भी बड़ी होकर व्यवहार करने लगे और वही लड़के को छूट दे देते हैं, बस इसलिए कि वो एक लड़का है। इसलिए मैं तो सच में मानता हूँ मेरी बहू तो बहुत सयानी है।
11: थैंक यू पिताजी।
6: चलिए कोई तो समझा कि बहू भी एक आम लड़की ही तो है, जिसे अपनी सहेलियों से बात करना पसंद है, जिसकी आंखों में अपने भी कुछ सपने हैं।

0: उसी लड़की को शादी की रस्मों के बाद एकदम से सब जिम्मेदारियों से लाद दिया जाता है और कहीं चूक हो जाए तो उसे बुरी बहू का खिताब दे दिया जाता है। उसकी गलतियों पर ताने कसने की जगह प्यार से समझा कर गले लगाकर तो देखिए, देखिए कि कैसे वो बहू बेटी बन जाती है। हाँ, वैसे बहू से याद आया कि राठौड़ परिवार की छोटी बहुरानी राजकुमारी जी नजर नहीं आ रही। ओहो, समझ गया, राजकुमारी जी किचन में है।
1: कुमारी, ये क्या कर रही हो? अरे, ये कढ़ाई जमीन पर क्यों गिरी हुई है और ये दो तरफ से मुड़ी हुई क्यों है?
2: मासा, मैं तो आपने जो कहा था बस वही कर रही थी।
1: मैंने क्या कहा तुझे?
2: आपने ही तो कहा था मासा कि राजकुमारी, हमें कढ़ाई की जरूरत नहीं है, जा इसे बदल कर कुकर ला।
1: तो तूने कढ़ाई को हथौड़े से तोड़ दिया?
2: हाँ, मैं तो इसे कुकर बना रही थी मासा।
1: राजकुमारी बेटा, मैंने कढ़ाई को दुकान से बदल कर लाने को कहा था।
2: ओ, तभी मैं सोचूं कि मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ, फिर मासा ने मुझे कुकर बनाने को क्यों बोला? लेकिन फिर मैंने सोचा, मासा ने बोला है कि कढ़ाई को बदल के कुकर ला, तो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।
3: आपको क्या लगता है भाभी, इंजीनियर बर्तन बनाते हैं?
2: हाँ, मतलब वो पास वाली दुकान पे जो छोटू है ना, वो इंजीनियर ही तो है, बर्तन ठीक करके देता है सारे वो।
3: भाभी, वो उसके पापा की दुकान है और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है।
2: ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में शुरू में ही सिखा देते हैं बर्तन बनाना।
1: बेटा, अच्छा हुआ तू इंजीनियर नहीं बनी, वरना सारे इंजीनियर दरिया में कूद जाते।
4: हमारी भाभी कितनी भोली है ना?
5: हाँ, भोली भी है और भाली भी,
3: जैसी भी है हमारी है।
4: मैं बहुत लकी हूँ मासा कि इस परिवार का हिस्सा हूँ।
0: ऐसा आज्ञाकारी देखा है आपने कि कोई कढ़ाई को कुकर बनाने की कोशिश करने लगे? वैसे हर परिवार में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, पर यही तो जिंदगी का मजा है। जैसे चाट होती है ना, थोड़ी खट्टी, आहा, थोड़ी मीठी और थोड़ी तीखी, हर स्वाद होता है। ऐसे ही जिंदगी में हर कोई हमारे जैसा सोचने, बोलने और करने लगे तो फिर बोरिंग ना हो जाएगी लाइफ, हाँ? तो चलिए, आप और हम लोगों में छुपी हुई खूबसूरती को देखते हैं और उन्हें सराहते भी हैं। आखिर अपने तो अपने होते हैं। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, आपका साथ निभाने और राठौड़ परिवार की कहानी सुनाने फिर आऊंगा अगले एपिसोड में। इंतजार कीजिएगा हमारा, क्योंकि भाई ये राठौड़ परिवार है, बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है यहाँ।
6: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। सही में अपना गांव और अपना अंचल में जब त्यौहार आता है तो धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि त्यौहार हमें रिलैक्स मूड में लाता है और आध्यात्मिकता आस्था विश्वास और भक्ति में ओतप्रोत कराता है। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए खासकर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए त्रिवेणी दीदी ने तो उनको स्वागत करते उनको स्वागत करने का पहले हमारा सभी ग्रामवासी श्रोता मित्र और आस्था विश्वास और भक्ति में जो ओतप्रोत है जो तल्लीन रखते हैं और भावना को लेकर आगे बढ़ते उन सभीों को आज का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। तो हम सबको विदित है किस तरह त्यौहार मनाते हैं हर साल और इस साल थोड़ा सा हट के भी मना रहे हैं, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हम सतर्क और सुरक्षित महसूस करते हुए सरकार का जो दिशा निर्देश गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ तो इस कार्यक्रम में सुंदर रूप में सजाने के लिए त्रिवेणी दीदी को स्वागत करते हैं। दीदी जी, आज किस देवी पर हम आलोकपात कराएंगे? हमारे सभी श्रोता मित्र ग्रामवासियों को कुछ आध्यात्मिकता का साथ साथ भक्ति भावना में उनका बढ़ोतरी हो उसको ऊपर में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे।
1: आज हम विशेष नवरात्रि का द्वितीय दिवस मना रहे हैं और इस द्वितीय दिवस में हम माँ ब्रह्मचारिणी का आध्यात्मिक रहस्य सुनेंगे। इस रहस्य में हम आज अनोखे रूप से सुनेंगे रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। आज हम नौ दिन नव दुर्गा के रूप में मना रहे हैं, लेकिन इस नव दुर्गा पर्व को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो रात्रि शब्द का प्रयोग या रात्रि के त्योहार किस बात को प्रेरित करता है, इसके बारे में आज हम सुनेंगे। साथ ही साथ हम ये भी सुनना पसंद करेंगे कि जिस देवी की हम आराधना करते हैं उसका सही स्वरूप माँ के रूप में किस प्रकार से है, कैसे माँ के रूप में वे सारी सृष्टि का पालन करती है। पालना के साथ माँ ब्रह्मचारिणी देवी जो पूजनीय है, गायन योग्य है, उस देवी के सत्य स्वरूप को हम पहचानेंगे, उनके जन्म तथा उनके आचरण के बारे में, उनके कर्तव्य के बारे में हम सुनेंगे। और इससे सुनते हुए जो कथाओं के रूप में हमने आज तक हर साल सुना है, लेकिन ये कथाओं से हमें क्या बोध होता है? प्राचीन संस्कृति में हमने जो भी कथाएं सुनी वे कथा के रूप में ही लेना नहीं है, लेकिन उस कथा के पीछे भावार्थ क्या है, इस भावार्थ को जब हम समझते हैं, इस समझ के आधार से हमें जीवन में क्या सीख मिलती है, उस सीख के जरिए हम किस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, किन सिद्धियों को हम अपना सकते हैं, इससे एक हमें जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आज हम नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के साथ मनाएंगे। आज तक जो कल का हमने रहस्य सुना उसमें यही सुना है कि भारत में परंपरागत तरीके से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि का भावार्थ है नव दुर्गा के नौ रूपों की नौ दिनों तक हम पूजा अर्चना करते हैं रात्रि में। आध्यात्मिक अर्थ से अगर देखा जाए तो नव या नए युग में प्रवेश करने का ठीक पहले का कुछ समय, जिसे घोर अंधेरी रात्र कही जाती है, इस रात्रि में ऐसे कल का निकलने वाला सूरज हमें प्रेरित करता है नए दिन, नए उमंग, नए उत्साह को। तो इसीलिए भारत के प्राचीन जो ऋषि मुनियों थे, उन ऋषि मुनियों ने रात्रि के साथ साथ तुलना करते हुए दिन की अपेक्षा में अधिक महत्व रात्रि को दिया है। इसलिए आज अगर हम कुछ इतिहास के पन्नों पर अगर नजर डालें तो देखेंगे कि जो भी त्योहार आज तक हम परंपरागत रूप में मनाते आ रहे हैं, इस परंपरा को हमने दीपावली, होलिका, शिवरात्रि, नवरात्रि, ये सारे उत्सव रात्रि में ही मना रहे हैं। रात्रि में मनाने की ये परंपरा, रात्रि में ऐसा क्या रहस्य है, ऐसी क्या परंपराएं हैं जो हम ये त्योहार रात्रि में मनाते हैं। नवरात्रि के दिन को हम 9 दिन नहीं कहते हैं, नवरात्रि का बोध शब्द रात्रि इस शब्द से प्रयोग किया गया है। तो बताया जाता है साधना की दृष्टि से शरदीय नवरात्रि में ज्यादा महत्व माना गया है, जो शरद पूर्णिमा के रूप में हम इसे मनाते हैं। तो इस रात्रि में हम आध्यात्मिक मानसिक शक्ति के संचय को इकट्ठा करते हैं। इस रात्रि में संचय करने के लिए, इस एनर्जी के ग्रोथ के लिए रात्रि शब्द का प्रयोग करते हुए इस साधना को आगे बढ़ाया जाता है। तो संचय करने के लिए अनेक प्रकार के साधनों को भक्त यूज करते हैं। अनेक भक्तगण अपनी भावना के अनुसार व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन और योग साधना आदि करते हैं। ऋषि मुनियों ने ये जो रात्रि का प्रयोग किया हुआ है या उसके जो रिसर्च है, वे बहुत ही सूक्ष्म है। इस सूक्ष्मता को अगर हम पहचानते हैं तो मैं समझती हूँ हम अधिक से अधिक अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। और इसमें एक साइंस भी है, एक ऋषि मुनियों के रिसर्च और साइंस के रिसर्च को मिलाते हुए हमने कुछ अनुभवों के आधार पर आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार दिन में सूर्य की किरणें, आवाज, तरंगे, रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने में रोक देती है। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। कम शक्ति के रेडियो स्टेशनों को दिन में पकड़ना अर्थात सुनना मुश्किल होता है, जबकि सूर्यास्त के बाद छोटे से छोटा रेडियो स्टेशन भी बहुत आसानी से हम सुन सकते हैं। तो विज्ञान सिद्धांत ये कहता है कि सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार से रोकती है, इसी प्रकार से मंत्र जाप के विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावटें आती हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने रात्रि को ज्यादा महत्व दिया है। मंदिरों में भी जब घंटे, शंख की आवाज के कंपन जो हम सुनते हैं रात्रि के समय, दूर दूर तक वातावरण में फैलते हैं और ये कंपन कीटाणुओं सहित छोटी छोटी नेगेटिव वाइब्रेशंस को, उन प्रकंपनों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। विज्ञान तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रि में संकल्प और उच्च अवधारणाओं के साथ अपने शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। उनकी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि हर एक भक्त के शुभ संकल्पों के अनुसार उचित समय और ठीक विधि के अनुसार करने से उसकी प्राप्ति हमें ज्यादा होती है। इसलिए रात्रि का समय चुना गया है। तो इस रात्रि में हम अपने पावरफुल वाइब्रेशंस के साथ संपूर्ण कंसंट्रेशन को बनाए रखते हुए मंत्र जाप या योग साधना से कम समय में अधिक रीति से हम इस एनर्जी को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए रात्रि शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है।
0: दीदी जी, आपने यथार्थ रूप में सही बात बताई, क्योंकि हम तो नवरात्र मनाते हैं, किंतु रात्रि का साथ इस त्यौहार का क्या रहस्य है वो भी बात बताए। और रात्रि में जब हम इस त्यौहार को मनाते हैं व साधना करते हैं व भक्ति करते हैं तो दिन का अपेक्षा रात्रि में ज़्यादा प्राप्ति होती है। जिस तरह आपने यथार्थ रूप में सटीक रूप में इस बात को क्लैरिफाई किए हैं, मैं समझता हूँ इससे हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी कुछ फायदा लिए होंगे, क्योंकि भक्ति भावना आस्था का साथ जब यथार्थ आध्यात्मिकता मिल जाता है तो हमें बहुत कुछ सीख देता है। जिस तरह आज इस कार्यक्रम का माध्यम से नवरात्रि क्यों, नव दिन क्यों नहीं, इसका अर्थ भी हमको समझ में आई और कुछ जानकारियां लेंगे। एक अल्प विराम का बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल पर नवरात्रि स्पेशल पर खास खास बातें।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। आज नवरात्रि का द्वितीय दिन में माँ ब्रह्मचारिणी का ऊपर में सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं त्रिवेणी दीदी ने, तो उनको स्वागत करते हैं। खासकर दीदी जी, आप बताइए माँ ब्रह्मचारिणी का साथ, इस शब्द का यथार्थ भावार्थ क्या है, माँ किस का प्रतीक है और माँ क्यों कहा गया है, इस सब देवियों को माँ शब्द का जो उपाधि मिली है इसका राज क्या है, तो इसका ऊपर में हमारा सभी श्रोता मित्र ग्रामवासियों को नवरात्रि स्पेशल में आप उनका आस्था और विश्वास को और चार चांद लगाइए और इसका यथार्थ भावार्थ बताइए माँ ब्रह्मचारिणी का ऊपर में।
2: माँ शब्द पालनकर्ता का बोध करती है। आज हम देखते हैं कि ज्यादा तो शक्तियों की ज्यादा पूजा अर्चना होती है पूरे साल भर में, और प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो धरती भी एक माँ के रूप में हम पूजन या गायन करते हैं, ये धरती भी एक माता है। तो आर्थिक रूप से भी, प्राकृतिक रूप से भी माँ का रोल बहुत बड़ा है। तो माँ अर्थात इस जगत सृष्टि की स्थापना और पालना के कार्य में निमित्त बनी है, इसीलिए माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। माँ ये सिर्फ जन्मदाती नहीं है, लेकिन वे एक पालना के लिए भी निमित्त बनती है। वे पालना दो प्रकार से होती है, एक सूक्ष्म पालना जो अपने वाइब्रेशंस स्नेह के साथ जुड़ी हुई है, और दूसरी स्थूल पालना जो शिक्षाओं के साथ जुड़ी हुई है, जो अपने कर्म के द्वारा शिक्षा देती है, वे माँ आदर्श माँ कहलाती है। और जहां देवियों की बात आती है, शक्तियों की बात आती है, एक ऐसा एनर्जी फील्ड तैयार हो जाता है जिसके वाइब्रेशन से, उनके संग में, उनके सानिध्य में आने से हम खुद के वाइब्रेशंस को नील करते हैं और उनके पावरफुल वाइब्रेशंस के अंदर अपनी क्षमता को खत्म करते हुए उस दिव्य शक्ति के संचार को ग्रहण करने की एक कैपेसिटी हमारे अंदर आती है। इसलिए देवियों के पूजन और गायन में माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन भगवती दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की उपासना, आराधना या प्रविधान किया जाता है। इन देवियों का स्वरूप अलौकिक, तेजस्वी और भव्य है, क्योंकि इसमें ब्रह्म की शक्ति है, एक माँ की शक्ति के साथ साथ ब्रह्मांड की शक्ति भी इसमें है, इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी शब्द का प्रयोग किया है। सिर्फ शब्द का प्रयोग ही नहीं, लेकिन इसकी अलौकिकता, इसका तेज, इसको अनुभव करते हुए इस शब्द का एक उपाधि इस देवी को दी गई है ब्रह्मचारिणी नाम से।
1: सही बात आपने जो बात बताई, कम से कम हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी इससे बहुत कुछ सीख ली होगी, क्योंकि माँ शब्द का जो भावार्थ है, जो यथार्थ भावना है, स्वरूप है, उसको हम जब दिल दिमाग में रखेंगे तो जरूर माँ से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज का जो त्यौहार है माँ ब्रह्मचारिणी का ऊपर में आपका पास हम रख रहे हैं, और जैसे माँ ब्रह्मचारिणी क्यों कहा गया है और माँ उपाधि जो दी गई, माँ शब्द में कितना मिठास है और कितना प्राप्ति होता है, अपनापन आता है। तो आज इस कार्यक्रम का माध्यम से हमारा सभी श्रोता मित्र और ग्रामवासियों को, खासकर जो आस्था विश्वास और भक्ति में रुचि रखते हैं, उनको जरूर फायदा होगा। इन शुभ भावना के साथ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खासकर आज का जो त्योहार मना रहे हैं ब्रह्मचारिणी के ऊपर में और कुछ यथार्थ परिचय, जैसे कि उनका आभूषण, उनका परिधान क्या क्या है और किस का ये प्रतीक है, वो सब आपके पास रखेंगे। लेकिन कहाँ जाइए मत, वॉल्यूम को तेज रखते हुए एक सुंदर सा भजन सुनिए। इसका बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते, राम राम। अल्प विराम का बाद हम आपसे मिल रहे हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं त्रिवेणी दीदी ने। तो त्यौहार का ऊपर में जो चीज़ हमको सुनने को मिल रहा है, जानकारियाँ प्राप्त हुई, तो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। क्योंकि त्यौहार में जब हम समझ जाएंगे किस तरह त्यौहार को मनाना चाहिए और जो त्यौहार में जो कुछ होता है उससे हमें बहुत कुछ सीख प्रदान करता है। तो आज इस कार्यक्रम में खास खास बातें, खासकर आध्यात्मिकता को लेकर हम आपका पास रख रहे हैं। हमें बहुत खुशी है इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से हमारा सभी श्रोता मित्र, ग्रामवासी और भक्तजन को कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिला होगा। और जो हम त्यौहार मनाते हैं अपने जीवन में सुंदर सरस और जीवन को सरल बनाने के लिए, इस तरह जो त्यौहार मनाते हैं इस त्यौहार से ही हमें और कुछ आध्यात्मिकता भी प्राप्त हो रहा है इस कार्यक्रम का माध्यम से। तो चलिए, देर किस बात की, त्रिवेणी दीदी ने जो कुछ बताए और कुछ बताने के लिए हमारा साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तो उनको पुनः स्वागत करते हैं। तो दीदी जी, आपको स्वागत करते हुए आज का जो ब्रह्मचारिणी माँ का ऊपर में आप जो आलोकपात किए हैं, जो ज्ञान वर्धक बातें सुनाए, ये काम बात नहीं है, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए फायदेमंद है। तो खासकर आज का जो त्यौहार माँ ब्रह्मचारिणी का बारे में और कुछ रोचक रोचक बातें हैं बताइए, जैसे कि उनका स्वरूप कैसे है और कौन सा वस्त्र वो पहनते हैं ब्रह्मचारिणी देवी, और इससे हमें क्या सीख लेना चाहिए, तो क्यों मनाते हैं और किस तरह मनाना चाहिए, और इस त्यौहार से हमारा जीवन में क्या फायदा होगा, वो चीज आप हमारा श्रोता मित्र और भक्तजन का सामने रखिए।
1: और इस ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप में उनके वेशभूषाओं के तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो उनके बाएं हाथ में कमंडल है एवं दाएं हाथ में जप की माला सुशोभित रहती है। कहा जाता है देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है तथा उनके ध्यान से, आराधना करने से मनुष्य को सर्व सिद्धियां और विजय की प्राप्ति होती है। तो हम एक ध्यान की क्रिया को अगर फॉलो करते हैं तो ध्यान लगाने से उनके इन शक्तियों को हम अपने अंदर समाते हैं। ध्यान एक ऐसी क्रिया है, ऐसी एक साधना है जो संकल्प के साथ उस देवी शक्ति से जब हम कनेक्ट होते हैं तब हम संयम, सदाचार और उनकी असीम शक्तियों को अपने अंदर महसूस करते हैं। इसके पीछे का रहस्य भी यही कहता है कि ब्रह्मचारिणी माँ ने जो कठोर तपस्या की है उस तपस्या का बल वातावरण में भी परिवर्तन लाने की क्षमता को रखता है। कहते हैं हजारों साल ब्रह्मचारी माँ ने तपस्या की है और वो हजारों साल एक यादगार के रूप में वातावरण में ऐसा वाइब्रेशंस तैयार हुआ है कि सिर्फ उनके याद करने से वो वाइब्रेशंस हम महसूस करते हैं। इसीलिए जब हम ध्यान के द्वारा मन बुद्धि से जब ब्रह्मचारिणी देवी से जुड़ जाते हैं तब हम उनकी शक्तियों को बहुत सहजता के साथ अनुभव करते हैं। इसलिए कहा जाता है माँ ब्रह्मचारिणी देवी के स्मरण से ही हमें असीम सिद्धियां और विजय का बल प्राप्त होता है। आज हमने इस सीक्रेट को समझ लिया है कि किस प्रकार से हम अपने मन बुद्धि के द्वारा इन शक्तियों के साथ जुड़ने से असीम शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों ना हम उनकी साधना, उनके ध्यान में एकाग्रता से इस शक्तियों को अनुभव करें। देवी के नाम में ही उनकी विशेषता तथा तप का दर्शन भी होता है। ब्रह्मचारिणी नाम का अर्थ ही है तप का आचरण करने वाली। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है, ब्रह्मचारिणी देवी पूर्व जन्म में हिमालय के राजा के घर में जन्म लिया था और महान तपस्वी देवता शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने वो घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी के नाम से अलंकृत किया जाता है। उनके नाम में उनका कर्तव्य और साधना की विशेषता जुड़ी हुई है। इनके याद से, उनके स्मरण से संघर्ष की सीख हमें प्राप्त होती है। किस प्रकार से हम संघर्ष से सीख ले सकते हैं? इस देवी स्वरूप से हमने संघर्ष की सीख को प्राप्त किया है। ये द्वितीय स्वरूप में संयम की सीख समाहित होती है। हमें अगर किसी बड़े लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो हमारे जीवन में संयम को अपनाना होगा। जहां संघर्ष है वहां संयम की आवश्यकता है और जहां संयम है वहां सफलता निश्चित ही है। देव पुराण में माँ ब्रह्मचारिणी सभी विद्याओं की ज्ञाता भी मानी जाती है। उसे दूसरे शब्दों में विद्या की देवी के रूप में याद करते हैं। कहते हैं, माँ की इस रूप की आराधना या ध्यान करने से हमारे जीवन में आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ, ईर्ष्या जैसे जो दूषित प्रवृत्तियां हैं वे दूर हो जाती हैं। सिर्फ उनके स्मरण से जब हम इतनी प्राप्तियां कर सकते हैं तो आज कौन नहीं चाहेगा कि हमारे जीवन में सफलता मिले। कोई भी व्यक्ति हो, छोटा से छोटा व्यक्ति ही क्यों न हो, हर कोई चाहता है कि मुझे मेरे जीवन में हमेशा हर कदम में सफलता मिले। तो सफलता के लिए हमें चाहिए एक समझ, एक प्रॉपर ज्ञान की आवश्यकता। इस ज्ञान को, इस समझ को जब हम प्राप्त करते हैं तो सफलता हमारे से दूर नहीं है, परंतु इसे पाने के लिए हमें अपने कार्य को, अपने कर्म को सही रीति से समझना होगा। इसकी समझ ही हमें एक सकारात्मक सोच की ओर ले जाती है और यही सकारात्मक सोच हमें हर कर्म में सफलता दिलाएगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में यथार्थ, सटीक और सरल रूप में समझाए हैं। त्यौहार का पालन करने से हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में एक आनंद, उत्साह आता है और सामूहिक रूप में एकता प्राप्त होती है। और जब हम यथार्थ रूप में मनाते हैं, सही रीति से मनाते हैं, विधि पूर्वक मनाते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीख मिलता है और प्राप्ति भी बहुत होता है। जिस तरह आपने आज का जो कार्यक्रम में सुंदर रूप में माँ ब्रह्मचारिणी का बारे में बताए, माँ ब्रह्मचारिणी का वस्त्र और उनका जो कहानी स्वरूप, जो कथा है, जो मान्यता है, वो चीज आज आपने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खास खास बातें और कुछ जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते हैं और कुछ बातें, क्योंकि नवरात्रि का द्वितीय दिन में आप सुन रहे हैं ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप, उसकी पूजन भक्ति भावना कैसे किया जाएगा और इससे हमें क्या सीख प्राप्त होती है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए त्रिवेणी दीदी को पुनः स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और दीदी जी, आप बताइए, वर्तमान परिस्थिति में हम जो त्यौहार मनाते हैं, वह कोई भी परिस्थिति हो, हम त्यौहार क्यों मनाते हैं, इससे हमें क्या सीख लेना चाहिए, त्यौहार हमारा जीवन में जो चीज़ लाता है उससे और क्या हम आशा रखते हैं, और हमारा जीवन को सुंदर सरस और सफलता मूर्त बनाने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए किस तरह त्यौहार को मनाना चाहिए, इसका ऊपर में थोड़ा सा आलोकपात कराइए।
2: तो ये बीज हमने अगर अच्छे डाले हैं अपने कर्म में, अच्छी सोच और अच्छे संकल्पों के साथ, अच्छे दिशा निर्देशन के साथ अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो बीज हमें अच्छे रूप में ही प्राप्त होता है। एक अच्छे सक्सेसफुल लाइफ को हम जी सकते हैं। लेकिन अगर हम अहंकार वश, ईर्ष्या वश, दोष प्रवृत्ति के साथ अगर कर्म करते हैं तो उसका नतीजा, उसका फल हमें दुख, अशांति या अनेक परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ेगा। और इन चीजों से अगर हम छूटना चाहते हैं तो सक्सेस का राज यही है कि तीनों कालों को समझें, अपने कर्म को समझें और उस कर्म को समझते हुए सही ज्ञान को अपने जीवन में हम प्राप्त करते हुए उसे फॉलो करें। दूसरी सीख माता के इस स्वरूप से हमें प्राप्त होती है, हमें अपने दिव्य चेतना का बोध होता है। अपनी दिव्य चेतना अर्थात आत्मा की पहचान, अपनी आंतरिक दिव्य शक्ति की पहचान, जो हमें चारित्रिक पतन से, दूषित प्रवृत्ति से मुक्त करती है। पवित्रता,

0: गुणों से परिपूर्ण जीवन जीने की एक कला सीखने को मिलती है माँ ब्रह्मचारिणी के रूप से। देवी की वेशभूषा सफेद है, अर्थात पवित्रता का दर्शन होता है। एक क्लियर माइंड, मन की स्वच्छता यहाँ पर स्पष्ट होती है। कोई सीख को अगर हम ग्रहण करते हैं तो उस सीख के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए हमारी मन की स्थिरता का होना अत्यंत आवश्यक है। मन की स्थिरता के साथ साथ मन की स्वच्छता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे मन में सकारात्मक विचार है या विचारों में एक अच्छी क्वालिटी को अगर हमने बनाए रखा है, या जैसे कहा जाता है साफ सुथरा मन, इसमें हम इस चेतना को अनुभव कर सकते हैं। माँ का ये दिव्य स्वरूप समस्त शक्तियों को एकाग्र कर बुद्धि, विवेक, धैर्य के साथ सफलता की राह पर बढ़ने की सीख देती है। इसलिए हमें इन ब्रह्मचारिणी माँ के साथ जुड़े रहने के लिए, इन असीम शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। इसके पूरे इस महत्व को समझते हुए, अनुभव करते हुए इसे ग्रहण करना, और जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन एक सुखद, शांतिमय, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में, कंपटीशन के इस युग में, जब हम इस साधना को अपनाते हैं, हम बहुत सहज, कम समय में अधिक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यही सीख मिली है आज के इस द्वितीय नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी दीदी को, क्योंकि आज का जो त्यौहार में हमारे सभी श्रोता मित्र ग्रामवासी और खासकर श्रद्धा भक्ति और आस्था में जो तल्लीन रहते हैं उनके लिए एक संजीवनी बूटी जैसे समझ मिली है। क्योंकि आज का जो त्यौहार में खासकर माँ ब्रह्मचारिणी का ऊपर में और रात्रि में इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं और ब्रह्मचारिणी माँ का शब्द का जो यथार्थ परिचय, उसका शब्द का बोध कराए, इसका साथ साथ जिसे उपासना आराधना और अलौकिकता कितना प्राप्त होता है। क्योंकि हम हमेशा त्यौहार तो मनाते हैं, लेकिन त्यौहार का साथ साथ सही समझ से कुछ सीख लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त होता है और गांव के लिए, अंचलों के लिए, और एक सामूहिक रूप में जब हम त्यौहार मनाते हैं वो त्यौहार में हमें बहुत कुछ फायदा प्राप्त होता है। जीवन को शांति, खुशी, आनंद और पवित्रता प्राप्त होती है। जिस तरह आज दीदी ने अपना अनुभव का आधार से त्यौहार का महत्व का साथ साथ ब्रह्मचारिणी माँ के ऊपर में यथार्थ रूप में समझाए, और हमें आशा और विश्वास है हमारा ग्रामवासी और अंचलवासी इससे जरूर कुछ फायदा लें। हर साल तो मनाते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा हट के आप लोग मना रहे हैं और इसका फायदा भी आज रेडियो मधुबन का माध्यम से आपको मिल रहा है। क्योंकि जब समझ मिलेगा तो हम अच्छी से अच्छी बात को भी अपना जीवन में ला पाएंगे। और जिस तरह आज ब्रह्मा कुमारी त्रिवेणी दीदी ने अपना बात को त्यौहार में किस तरह रंग लाए, किस तरह सजाए, आप भली भांति समझ गए होंगे। तो आज के लिए हमें और त्रिवेणी दीदी को दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे और एक देवी का स्वरूप का बारे में समझाने के लिए। लेकिन नवरात्रि चल रहे हैं, आप सब घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और त्यौहार में अपने जीवन को सुंदर, सरस और सुखदायी बनाइए। इन शुभ भावना के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन नवरात्रि स्पेशल में द्वितीय दिन में। आज आप सभी को पुनः शुभकामनाएं और बधाइयां। अच्छा, धन्यवाद।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के उपलक्ष में रेडियो मधुबन के सुनने वाले सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, यानी संगीत का कार्यक्रम, यानी दिल से कनेक्ट करने का एक साधन है ये कार्यक्रम, क्योंकि वो गीत जो हमें अपनी ही भावनाओं से मिलाते हैं, वो गीत जो जीवन को एक नया रूप दे देते हैं, वो पुराने नगमे हो या नए बने रैप सॉन्ग्स, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और आज बहुत कुछ एक साथ, यानी एक पैकेज में लेकर आ रहे हैं आपके लिए। बहुत सारे फ्लेवर्स आपको मिलने वाले हैं और हमारे साथ बहुत नन्हे नन्हे से दो प्यारे से कलाकार हैं, जिनकी मौसिकी, जिनका संगीत बहुत बड़ा है। हमारे साथ हैं साहिली और ऋत्विक, दोनों तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर गीत भी गाते हैं। और क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, सब कुछ आइए उनसे ही जानते हैं। साहिली, ऋत्विक, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। कैसे हो आप लोग?
2: परमानंद।
1: हाँ, अरे वाह। तो अच्छा, तो हमारे लिसनर्स को थोड़ा अपने अपने बारे में बताओ क्या आप?
2: यस,
1: बताइए ऋत्विक, पहले ऋत्विक से शुरू करें।
2: मैं अम्बाला शहर से आया हूँ, हरियाणा के अंदर है। मेरे को सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, ड्राइंग, स्केच बनाना बहुत पसंद है, उनमें मैं माहिर भी हूँ।
1: वाह, क्या बात है। और साहिली, आप?
3: मैं भी अम्बाला से आई हूँ, हरियाणा में। मैं 8 साल की हूँ और मैं ऋत्विक से 1 महीना बड़ी भी हूँ, बड़ी बहन। और मेरे को म्यूजिक, डांस में इंटरेस्ट है और मैं पढ़ाई में मैथ्स और साइंस में ज्यादा मार्क्स लाती हूँ, बाकी सारी चीजों में अच्छे मार्क्स लाती हूँ, सिंपल।
1: ओके, तो आप दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो, है ना? कैसे रिलेटेड हो एक दूसरे से?
2: जैसे अब इसके जो पापा है वो मैं उनको बड़े पापा बुलाता हूँ, पर वो मेरे लगते हैं ताऊ।
1: ताऊ जी हैं आपके।
2: और जो मेरे पापा हैं वो इसके चाचा लगते हैं, पर ये उनको बुलाती है आशु पापा से।
1: क्या बुलाते हो?
3: आशु पापा।
1: अच्छा, अरे ओके। तो आप दोनों एक साथ रहते हो?
3: एक घर में रहते हैं।
1: खूब मस्ती करते हो? कम करते हैं। अच्छा, कौन कौन रहता है आपके घर में, कौन कौन है?
2: हमारे एक जॉइंट फैमिली है, उसमें ताऊ, ताई, चाचा, चाची
3: और
2: दादू, दादी।
3: हम 4 बहन भाई हैं।
1: हाँ,
2: हमने अपना एक स्टूडियो भी खोलेंगे अभी हम,
3: उसका नाम होगा
2: साधक गुरु, क्योंकि एस से साहिली, आर से ऋत्विक, डी से धनविक और के से केश।
1: वाओ, तो आप लोगों ने ये सोच के भी रखा हुआ है?
2: नहीं, अभी बस खोल देंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, सबसे बड़ा कौन है आप चारों में?
2: साहिली।
1: साहिली बड़ी है। हाँ, तो और बाकी वो, और फिर आप हो और फिर बाकी वो दोनों छोटे छोटे हैं, तो वो दोनों भी गाना गाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है?
2: हमने लाइन वाइज रखा हुआ है ना, एस से साहिली सबसे बड़ी, उससे छोटा मैं ऋत्विक, उससे छोटा धनविक मेरा छोटा भाई, उससे छोटी केशवी छोटी बहन।
1: तो धनविक और केशवी को भी पसंद है क्या गाना गाना, म्यूजिक?
3: केशवी तो वो बोल नहीं सकती, लेकिन
1: अच्छा, वो बहुत छोटी है,
2: बहुत अच्छा गा लेते हैं वो,
3: लेकिन वो कार गा लेती है।
1: अच्छा, सिखाते हो आप लोग उसको?
3: नहीं, वो उसका इंटरेस्ट है इन चीजों में।
1: अच्छा,
2: ऐसा नहीं कि वो रोते हुए आकार वगैरह, ऐसा नहीं, वो सिंपली जब भी हम उसको कहते हैं कुछ गा के दिखाओ तो वो ऐसे करती।
1: और कितनी बड़ी है वो, कितनी उम्र है उसकी?
2: उसकी
3: 3 साल।
1: अच्छा,
2: बस हुई थी नवम्बर में।
1: तो सबसे छोटे आर्टिस्ट आपके घर में वही है?
2: वो हमसे भी बड़ी आर्टिस्ट है।
1: अरे वाह।
3: और जो धनविक हमारा छोटा भाई है ना, उसे साइकिलिंग, ऐसे ऐसे गेम्स में बहुत मजा आता है,
2: स्पोर्ट्स।
1: अच्छा,
2: वो आगे भी है, पर
3: साइकिलिंग में वो बहुत सारे स्टंट भी कर देते
1: हैं। साइकिलिंग भी बहुत अच्छी चीज है वैसे, लेकिन हाँ, केयरफुल रह के ध्यान से, है ना, करना चाहिए।
2: उसको आ गया ना, मैंने सिखाया था उसको, तो उसको अब आ गया। पहले तो मैं उसके साथ होता था ना जब सिखा रहा था, अब उसको आ गया,
3: वो सबसे पहले सीखा है। सबसे पहले सीखा वो साइकिलिंग.
1: अच्छा,
2: सबसे ज्यादा
3: हम दोनों
2: 4 ईयर्स की उम्र में और वो 3 साल की उम्र में सीखे.
1: अच्छा,
3: एक दिन में ही सीख गया था वो तो.
1: क्या बात है. स्पोर्ट्स भी वैसे बहुत अच्छी चीज है ना, स्पोर्ट्स में भी आगे जाना चाहिए, अच्छा खेलना चाहिए. पता है स्पोर्ट्स में ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें आप अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो.
2: उसमें जाएगा.
1: और आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें पसंद है ना. पर आप लोग सेम क्लास में सेम स्कूल में पढ़ते हो?
2: यस
3: यस.
1: है तो मजा आता होगा, साथ साथ जाते होगे, साथ साथ पढ़ते होगे.
2: यस
1: है ना. कभी झगड़ा नहीं होता?
2: बहुत कम.
1: बहुत कम
3: होता है.
1: ओके, तो अगर होता है तो क्या करते हो, एक दूसरे को कैसे मनाते हो फिर, अगर मान लो हो गया तो?
2: वो तो हम खुद ही मन जाते हैं आधे घंटे बाद.
1: हाँ, बस अपने आप. हाँ सहेली,
3: कभी मैं मना लेती हूँ इसे, कभी ये इसको मना लेता है. लेकिन इसे मनाना बहुत मुश्किल है.
2: इसे जाकर मना लेती हूँ.
1: क्या कर, मनाते कैसे हो, क्या करते हो?
2: जैसे मैंने इसको अपनी कोई टॉय दे दिया, बॉल दे दी, स्टिकर दे दिया.
3: जैसे कोई हमारा फेवरेट चीज और वो एक दूसरे के पास हो तो दे देते हैं.
1: ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, तो बड़े भी कर सकते हैं. स्टिकर आपको अच्छा लगते होंगे ना?
3: मेरे को स्टिकर अच्छे लगते हैं.
1: मुझे भी अच्छे लगते हैं.
2: मैं जैसे फंक्शन में जाता हूँ डांस वाले, तो मेरी अपने पर्सनल मेकअप सेट है, तो मैं उसमें से थोड़ा बहुत सामान निकाल के दे देता हूँ मेकअप का.
3: हमारी छोटी बहन को भी मेकअप में बहुत शौक है. छोटी उम्र में ही बहुत अच्छा मेकअप करती है.
2: जैसे अब शुरू में फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं,
3: उसको सारा पता है. वो पहले फाउंडेशन लगाती है, उसके बाद वो आईज का कहती है, आईज का करो. उसके बाद वो लिप्स का,
2: और वो लगा भी बहुत अच्छा लेती है. जैसे अब छोटे बच्चे,
1: वो तो 3 साल की है ना, उसको भी मालूम है.
2: जैसे अब
3: वो हम फंक्शंस में जाते हैं ना, इसलिए जब मैं चली जाती हूँ ना तो वो पीछे से करवाती है.
2: जैसे अब छोटे बच्चे लिपस्टिक बाहर निकाल देते हैं, वो नहीं निकालते वो.
1: अच्छा, ओ क्या बात है. तो यानी आपसे सीख लिया होगा उसने. साइली से है ना?
3: मेरे से तो नहीं सीखा, लेकिन जो मेरी मम्मा है ना, वो ना मेकअप में बहुत अच्छा लगता है, मेकअप इसलिए.
1: अच्छा, अरे वाह. ओके, ये भी एक कला है ना, आर्ट है करना. और वही आगे जाके तो बहुत सारी चीजें हैं.

0: थोड़े से बड़े थे, बहुत थोड़े बड़े हो गए थे. अच्छा, तो हनुमान चालीसा किसने सिखाई आपको?
1: हमारे बड़े पापा, ताऊ,
0: ताऊ जी ने, यानी आपके पापा ने. ओके, तो आपको ऐसा, जैसे आप तो हनुमान चालीसा गाते थे, फिर और गाने गाने लगे, तो कभी आपको लगने लगा कि ऐसा गाना सीखना कब शुरू किया आपने, कि मतलब ऐसा सुर होता है, ये ताल होती है?
1: ये हमने
2: चार तीन साल में शुरू किया था.
0: अच्छा, तीन साल में
1: हमको सिखा दिया था, हमें पता था कि सुर क्या होता है, ताल क्या होता है, इसका वो क्या होता है.
0: किसने सिखाया आपको ये?
1: दादू ने हमको करवाया. और फिर बाद में जो हमारे पहले सर आए थे, उसके बाद ढोलकी और हारमोनियम के लिए एक मैम आए थे, उसके बाद फिर से सर.
3: अब हमारे पास टोटल सर गिटार है,
1: ये
3: कीबोर्ड है, हारमोनियम है, ढोलकी है, अभी हम ऑक्टोपैड लेंगे साइली के लिए, बांसुरी है.
0: वाओ, ऑक्टोपैड भी और बांसुरी भी. बांसुरी कौन बजाता है?
1: बांसुरी दादू.
0: वाओ, क्या बात है.
3: अभी हम भी सीखेंगे, हमें आती है थोड़ी थोड़ी.
0: हाँ, ये तो बहुत अच्छा लगता है. तो दोस्तों, चलिए, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन इन नन्हे कलाकारों की कला को सुनते हैं. बहुत सुंदर से एक गीत को सुनते हैं, लौट कर आएंगे कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड पर.

0: कारण कुरुक्षेत्र की भूमि में भारी भरकम विध्वंस देखा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, ये रैप आपने सुना नन्ही सी 7 साल की साहिली और ऋत्विक की आवाज में, और सोचिए ये बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, कितना मजा आ रहा है इनसे बात करते हुए और ये एक्सप्लोर करते हुए कि इन्हें संगीत से इतना प्यार आखिर क्यों है। आइए इनसे और बातचीत करते हैं।
2: अच्छा, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आप लोग सब कुछ सीखना चाहते हो या कोई पर्टिकुलर है जो आपको लगता है कि?
3: इसमें आधे से ज्यादा तो आते हैं।
2: आधे से ज्यादा आते हैं आपको?
3: बस बांसुरी और बस बांसुरी नहीं आती, और डफली भी हमारे पास, वो भी मैं अच्छी बजा लेता हूँ।
2: अच्छा, क्या बात है, वाह, आप लोग तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हो, तो इसीलिए स्टूडियो बनाने वाले हो क्या? हाँ, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट रखोगे?
3: जब हम 9 इयर्स के हो जाएंगे तब बन जाएगा।
2: क्या करोगे उसके अंदर?

0: हमारा रूम होगा रिकॉर्डिंग का, हम रिकॉर्डिंग करेंगे
1: और साथ में हमारा छोटा भाई जो है ना स्पोर्ट्स में वो थोड़ा बहुत कर लेता है, जैसे कि वो डांस बहुत,
0: जैसे अब हमारे पास हम कंप्यूटर लेंगे अच्छी क्वालिटी का तो उसको रिकॉर्डिंग के लिए रखेंगे सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपने।
1: हमारा छोटा भाई रिकॉर्डिंग करेगा और ये बजाएगा, मैं और मेरी छोटी बहन गाएंगे, हमने ऐसा सोचा था।
2: मतलब सब मिलके करने वाले हो?
0: हाँ। गाएंगे भी सब, बजाएंगे भी सब।
1: हमारा छोटा भाई ज्यादा अच्छी वीडियोस बना लेता है, मतलब उसे ये भी पता है कि डिलीट कैसे करें।
2: अच्छा, वो कितना बड़ा है?
1: वो 5 years का है।
2: 5 years का, उतना कुछ आता है उसको इतनी कम उम्र में?
0: डिलीट तो हमें भी करना नहीं आता होगा, अब आ गया,
2: अब आ गया है,
1: अब आ गया है। वो गेम्स में भी बहुत अच्छे से करते हैं।
2: अच्छा,
1: गेम्स खेलते हैं ना।
2: अच्छा, आप चारों लोग जब साथ में होते हो तो क्या खेलते, क्या करते हो?
0: हम ज्यादातर तो
1: छोटी बहन की मान लेते हैं क्योंकि वो फिर बाद में ना भाग जाती है, तो हम घर घर खेल लेते हैं।
0: सोने उठने वाला गेम घर बना लेते हैं।
2: सोने उठने वाला गेम क्या होता है?
0: मतलब जैसे हम सारे हट बना लिए तो उसमें जैसे हम खाते हैं पीते हैं वैसे
1: मेकअप करते हैं, फंक्शन में जाते हैं, स्कूल जाते हैं।
2: अच्छा,
1: पसंद है ऐसी चीजें करना।
0: वैसे अगर वो नहीं होती, कहीं गई होती है तो हम जैसे स्पोर्ट्स वाली गेम खेल लेते हैं, म्यूजिक कर लेते हैं।
2: स्पोर्ट्स वाली गेम कौन सी?
1: जैसे कि साइकिल कर देते हैं।
2: अच्छा, ओके, घर के बाहर जाके फिर खेलते हो गए
1: वगैरह, रनिंग वगैरह।
0: हमारा बरांडा भी बड़ा है तो उसमें ही खेल,
2: बरांडे में खेल लेते। अब तो चारों ही काफी एक साथ ही खेल लेते हो गए, है ना? अरे वाह,
0: केशवी बॉलिंग करवा देती है अच्छी।
2: अच्छा,
1: उसे बॉलिंग आती है
0: और जब उसका मन नहीं होता तब हम वही खेलते हैं
2: जो उसको पसंद है।
1: हाँ।
2: सबसे छोटी की बात सबसे ज्यादा मानी जाती है, यानी है ना?
0: हाँ। इसकी बात सब, साइली की बात सबसे कम मानी जाती है,
2: वो सबसे बड़ी है।
0: हाँ। मेरी उससे, मतलब मेरी थोड़ी ज्यादा धन की, उससे ज्यादा केशवी की सबसे ज्यादा।
2: जो सबसे
1: छोटे बहन भाई है ना, वो जवाब दे देते हैं, बड़ों के सामने भी जवाब दे देते हैं वो।
2: अच्छा,
1: ऐसे अगर हम
0: जो जिसकी मैं बात कर रहा था धर्मिक, वो उसके पास ऐसे ऐसे सवाल है, उसको उसके आंसर भी पता है पर बड़े नहीं दे पाते।
2: ऐसे कौन से सवाल है?
0: बहुत है। एक बार उसको ना दादू ने कहा था ऐसे पैरों को हाथ लगाते हैं, उसने कहा क्यों
1: लड़के पैर ना।
2: अच्छा
0: नहीं, फिर उसने कहा कि क्यों लगाने, फिर दादू ने कहा क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, तो उसने कहा सबसे बड़े तो बाबा होते हैं, फिर हम उनको क्यों लगाएं, फिर दादू चुप।
2: ओ, ऐसे ऐसे सवाल पूछता है वो तो
0: इससे भी खतरनाक, हमें याद नहीं अभी पर बहुत ज्यादा
2: ऐसे पूछता है कि बड़ों को भी सोचना पड़ता है कि अब क्या जवाब दिया जाए इसका। वाह, इतने सारे क्वेश्चन तो होने चाहिए वैसे हमारे माइंड में, है ना? अपनी बात तो पूछना चाहिए, है ना? क्या लगता है आप लोग?
1: लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसका कोई आंसर नहीं दे सकता,
2: कोई आंसर ही नहीं दे सकता, इतना डिफिकल्ट होता है।
0: गूगल भी नहीं,
2: गूगल भी नहीं। आप लोग के पास होते हैं उसके सवालों के जवाब?
0: नहीं
1: उसके पास ही होते हैं।
2: उसके पास ही होते हैं, हाँ ये भी ठीक है, उसी से पूछ लिया करो कि भाई इसका जवाब क्या है, आप तुम ही बता दो, है ना?
1: वो बता भी देता कई बार।
2: अच्छा,
0: जब उसने इसको पता तो होता है पर जब वो कहता है, जब वो थोड़ा गुस्से में रहता है तो वो तब नहीं बताता,
2: तब नहीं बताता, बाद में बताएगा। अच्छा, जैसे आप लोगों ने आज
1: उसने हमको आंसर बताया था कि बाबा बड़े होते हैं तो हमको उसके उनके पैर छूने चाहिए, तो जो बड़े लोग होते हैं उनके पैर इसलिए नहीं छूने चाहिए क्योंकि वो बाबा से तो बड़े नहीं है।
2: अच्छा, उसने ये बताया था। लेकिन जैसे हमसे जो बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट करने का एक तरीका है दिखाने का।
0: उसने कहा था कि रिस्पेक्ट करने का तरीका हम उनको, मतलब उनकी सेवा करके कर सकते हैं।
2: हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: बस
2: ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ों की सेवा करनी चाहिए। वेरी नाइस, मतलब वो बहुत अच्छा सोचता है ना? उसके पास
0: सोच बहुत
2: बहुत अच्छी है, और आप लोगों की भी, क्योंकि आप लोग भी इतना अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हो। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं एक और गीत की ओर जो गाया है साइली और ऋत्विक ने। लौट कर आएंगे मधुबन अनप्लग्ड पर।

0: बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बनें, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: दोस्तों, इन बच्चों ने इतना प्यार से ईश्वर को याद किया कि सच में इनके सुर और इनके दिल की आवाज जरूर परमात्मा तक पहुंची होगी। वैसे ये नन्हे नन्हे कलाकार हैं, लेकिन इनकी बातें बड़ी बड़ी हैं। तो आइए इनसे और बातें करते हैं और सुनते हैं इनके संगीत का सफर।
5: अच्छा, जैसे गाना आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे गाने जो सुनाए, अब इनमें से कोई एक गाना लेते, जैसे रैप सॉन्ग आप लोगों ने गाया, तो उसमें क्या प्रैक्टिस कर, कैसे शुरू किया, प्रैक्टिस कैसे करी, उसके बारे में थोड़ा बताओ। लेकिन साथ में भी तो करना होता होगा, सिंग करके गाना एक दूसरे के साथ गाना।
6: वो हम क्रोकेल गा लेते हैं।
5: क्या कर लेते हो?
6: क्रोके।
5: वो क्या होता है?
6: मतलब वो सिर्फ पीछे की ट्यून होती है, वो
7: उसमें बोलते नहीं है वो शब्द, वो हमको बोलने होते हैं।
5: अच्छा, ओके ओके,
6: वो लिखा हुआ आ जाता, बस वो
7: पढ़ के गाओ।
5: पढ़ के गाओ। तो प्रैक्टिस कैसे करते हो, मतलब साथ में शुरू करते हो गाना कि प्रैक्टिस अलग अलग करते हो फिर एक साथ गाते हो? एक साथ शुरू करते हो। तो एक दूसरे को करेक्ट कौन करता है कि अभी तुमने ये ठीक करा, ये इसको ऐसे करना, ऐसे कौन करता है?
6: ऐसे तो
5: दादू।
6: एक बार बस मैंने से कहा था कि ये सेकंड बीट से स्टार्ट होएगा, उस टाइम ने हम मैंने सर को ज्यादा देखा था ना, तो उन्होंने सेकंड बीट से स्टार्ट किया था। और एक बार ही हुआ था कि इसने थोड़ी ट्यून ऑफ बीट वगैरह बहुत पहले की थी, थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा ही गलत कर दी थी, तो मैंने थोड़ा टोका था।
5: तो आप लोग एक दूसरे को भी करेक्ट कर लेते हो, मतलब जहाँ आपको लगता है?
6: कर लेते हैं।
5: तो किसी को बुरा तो नहीं लगता ऐसा?
6: नहीं, हम उसको ठीक कर लेते हैं।
5: ओके, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हम कोई भी आर्ट होती है तो उसमें बहुत अच्छा करने का स्कोप तो हमेशा ही रहता है, तो सीखते ही रहना होता है उसको। तो करेक्शन अगर कोई देता है तो बहुत अच्छी बात है ना हमारे लिए, और आप लोग तो ये जानते हो, कमाल है। तो आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो कितना समय लगता है आपको एक गाना तैयार करने में?
6: एक गाना तैयार करने में एक कई बार 4-5-6 दिन भी लग जाते हैं,
7: अगर ज्यादा लंबा हो।
5: लंबा हो तो
6: वैसे आधे घंटे में भी कर लेते हैं।
5: ओके,
7: आधे घंटे में हम आधा गाना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं,
5: सीख लेते हो। लिरिक्स याद भी हो जाते हैं?
6: हो जाते हैं यार, दादू प्रिंट निकाल देते हैं उसकी, फिर हो जाते
5: हैं। फिर हो जाते
7: हैं। हो जाते हैं, थोड़े बहुत जो रह जाते हैं वो हम पढ़ लेते हैं।
5: ये भी अच्छा है। अच्छा, आप दोनों स्कूल जाते हो, स्कूल में क्या अच्छा लगता है करना?
6: स्कूल में गेम पीरियड भी होता है और ज्यादातर पढ़ाई में जो टीचर्स समझाते हैं वो भी अच्छा लगता है।
7: जैसे मेरे को
6: स्कूल में हिंदी वाले मैम है, बहुत अच्छा समझाते हैं, मतलब जैसे अब रीडिंग करवानी है तो वो बहुत अच्छी करवाते हैं, तो
7: वो तो कई बार कहानियाँ भी सुनाते हैं।
5: हाँ, कहानियाँ अच्छी लगती हैं आप दोनों को?
7: अच्छी लगती है।
5: ऋत्विक को नहीं अच्छी लगती? मुझे
6: अच्छी लगती है।
5: अच्छा, ओके, तो अच्छा, तो मतलब स्कूल जाना अच्छा लगता है आप दोनों को?
6: बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे फ्रेंड्स भी होते हैं।
5: हाँ, ये बात तो करेक्ट है, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे स्कूल में, अच्छा लगता होगा ना रोज उनसे मिलना। ऋत्विक आपके दोस्त है?
6: मेरा एक ग्रुप है।
5: अच्छा,
6: मतलब सारे जितने भी बॉयज हैं उन सबको एक कला आती है। एक बॉय है उसको बहुत अच्छी ड्राइंग आती है,
7: ज्यादातर तो बॉयज को
6: जैसे मैं टीम का मतलब हम लीडर वगैरह नहीं बनाते हैं टीम के, हम सिंपल टीम रखते हैं फ्रेंड्स वाले।
5: अच्छा, तो उसमें क्या करते हो आप लोग?
6: उसमें मैं ऑलराउंडर, ऐसे ऐसे रखते हैं बस।
5: अच्छा, ऐसी टीम बना लिया आपने?
6: हमारे टीम में 24 होंगे।
5: 24? ओह,
7: 24 बॉयज है और मेरे ख्याल से 10 या फिर 10
6: बॉयज के बीच में जो हमारे क्लास के बॉयज हैं उसमें उनमें झगड़ा कभी नहीं होता।
5: अच्छा,
7: गर्ल्स में हो जाता है कई बार, लेकिन
6: गर्ल्स में हो जाता है।
5: क्यों?
7: यार मैं उनके बीच में जाती नहीं, उनका अपना ही झगड़ा होता रहता, पता नहीं कैसे।
6: हम आ रहे बीच में, किसी ने झगड़ा शुरू कर दिया तो कोई ना कोई चुप करवा ही देता है, क्योंकि पता है फिर टीम कट जानी है।
4: हाँ, और टीम इम्पोर्टेंट है ना,
6: इसलिए अगर कई बार मेरे को दिखता तो मैं भी करवा देता हूँ।
4: कैसे करवाते हो? मान लो झगड़ा हो गया
6: तो वो सबसे पहले तो बोलना ही शुरू करते हैं, पहले बोलना, तो मैं उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर देता हूँ। जैसे वो कहते हैं ये अच्छा है ये अच्छा है, तो हाँ। मैं उनको मिक्स करके सही करवाता
4: हूँ, दोनों ही अच्छा है करके, मतलब उन दोनों को अलग अलग पसंद आ रहा होता है कुछ, इसलिए झगड़ा होता है।
6: पसंद आ रहा होता है, मैं एक पेज लेता हूँ उसको दोनों के ड्राइंग में हल्का हल्का लेके एक ड्राइंग बना के दिखा देता हूँ, फिर वो पसंद कर।
4: दोनों की ड्राइंग मिक्स कर देते हो आप, और आप क्या बोल रहे थे?
7: जैसे कि मेरी फ्रेंड और मेरे में झगड़ा हो गया तो ना एक मैं बोलती हूँ उसे कि, जैसे कि वो फिर बाद में रूठ जाती है मेरे से, तो मैं उसे कहती हूँ मैं तेरे को अपनी ज्योमेट्री दे दूंगी, आज फ्रेंड बन जाते हैं तो हम बन जाते हैं।
4: मतलब आप जल्दी जल्दी मना लेते हो?
7: एक बार फिर फ्रेंड्स जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स पसंद करती है और सब इरेजर को नेल आर्ट बना लेती है।
4: अच्छा,
7: एक बार
4: ये कैसे होता है इरेजर को नेल आर्ट? वाह।
6: एक बार ना इसकी फ्रेंड नाराज हो गई थी तो इसने मेरे को बताया था, इसने कहा था कि फिर तेरे को मेरी जैसी दोस्त तो नहीं मिलेगी, वो उसी वक्त फ्रेंड बन गया।
4: ये अच्छा है कि भाई मेरी जैसी मैं अच्छी दोस्त हूँ तुम्हारी, तो फिर तुम्हें ऐसी दोस्त तो नहीं मिलेगी दोबारा, याद दिलाना पड़ता है ना कभी कभी। ये भी सही बात है,
7: अच्छे पेपर्स के नए उस बना लेते हैं, उनको दिखाते हैं फिर दोस्त को। हाँ। उसके बाद उतार लेते हैं।
4: अच्छा, फिर वो वापस दोस्त बन जाते हैं। यानी आप लोग को स्कूल जाना दोनों को पसंद है,
7: पसंद है ना?
4: तो इसी बात पर एक और गीत हो जाए, बहुत सुंदर सा, प्यारा सा, प्यारी प्यारी आवाजों में।

0: नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के उपलक्ष में रेडियो मधुबन के सुनने वाले सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड और हमारे साथ बने हुए हैं नन्हे कलाकार साइली और ऋत्विक। बहुत सच्चाई से दिल से ये गाना गा रहे हैं और अभी से प्रैक्टिस करते हैं, म्यूजिक का सम्मान करते हैं, उसका मतलब समझते हैं। ये बड़ी बात है, यानी हमारा जो भविष्य है वो बहुत ही म्यूजिकल और सुरक्षित है। चलिए आइए और बातें करते हैं इन नन्हे कलाकारों से।
2: छुट्टियां जब होती हैं तब क्या करते हो?
3: तब हम दादू हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस कर देते हैं। वैसे हमारी चल रही है म्यूजिक और डांस क्लास, पर दादू फिर जिम्नास्टिक वगैरह लगवा देते हैं।
2: जिम्नास्टिक भी सीखते हो आप दोनों?
3: सीख लेते हैं।
2: अच्छा,
3: हम पहले अलग से क्लासेस जाते थे, पर जब स्कूल शुरू होते हैं फिर छुड़वा देते हैं वो।
2: हाँ, मतलब छुट्टियों में सीखते हैं।
4: छुट्टियों में दादू सेंटर पे योगा भी करवाते हैं।
3: सेंटर पे जैसे अभी सेंटर है कोई, उसमें कोर्स वगैरह सब कुछ
2: अच्छा
3: करवा देते हैं जब छुट्टियां होती हैं।
2: छुट्टियों
3: उसके बाद स्कूल आ जाते हैं, फिर डांस वगैरह भी होता है।
2: डांस भी सीखते हो आप दोनों? कौन सा डांस सीखते हो?
4: कथक।
2: कथक सीखते हो आप दोनों? क्या बात है,
4: हरियाणवी भी आता है।
2: कथक तो मैंने भी सीखा है, पता है मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग के साथ। अब मैं आप लोग को देख देख के करूंगी, फिर आप लोग का स्टूडियो बन जाएगा ना। फिर
4: हमारा चैनल भी है वैसे यूट्यूब पे।
2: हाँ, कौन सा चैनल है बताओ?
4: बजाज किड्स।
2: अच्छा, इस नाम से यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पे क्या होता है वहाँ पे आपके?
4: हम सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं,
3: डांस या ओल्ड वीडियोस।
2: अच्छा,
4: हमारी छोटी बहन
3: जैसे अब जो हम स्टूडियो की बात कर रहे थे वो हमारे नए मकान में होगा। उसमें 3 फ्लोर्स है, नीचे वाला तो सबके रूम वगैरह है, ऊपर वाले में हमारा है, रिकॉर्डिंग रूम, डांसिंग रूम, पेंटिंग रूम, सारा कुछ ऊपर वाले में। उससे ऊपर हमारा प्लेग्राउंड, जैसे अब स्विमिंग पूल की भी बात कर रहे थे, नेट वाला, क्रिकेट, ऐसे ऐसे,
2: मतलब जहाँ पे आप खेल सको है।
4: ऊपर छत है, उसमें बनाएंगे।
2: अच्छा, ऊपर छत है तो उसमें भी तो थोड़ा सनलाइट आएगी, उसमें आप लोग खेलोगे है ना।
3: ऊपर जैसे जिस साइड हम है वहाँ उस साइड ना थोड़ी अच्छा मौसम बना रहता है, मतलब इतनी धूप नहीं गिरती।
2: अच्छा, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे आप लोगों ने बताया ना बच्चों के प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते हो, अगर मान लो बड़ों में लड़ाई हो जाती है, वो उनको एक दूसरे की बात अच्छी लगती है, तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे एक दूसरे को मनाना चाहिए, कोई तरीका बताओ।
3: जैसे अब कई बातों पे झगड़ा होता है, मैं एक का बता रहा हूँ। हम जैसे अब लड़ाई हो गई, उसमें या तो जो कर रहा हो उस जिसने शुरुआत की हो वो सॉरी बोल दे, या टीचर को जाके बोल दे।
2: और अगर टीचर ना हो तो? वो दोनों है केवल।
4: और टीचर का हो तो हम ज्यादातर उन्हें बोल देते कि एक दूसरे को सॉरी बोल दो
2: है ना,
3: या माफी मांग लो।
2: मतलब माफी मांगने से झगड़ा ठीक हो जाता है ना। माफी मांग लेनी चाहिए बड़ों को भी, बड़े कभी कभी नहीं मांगते ना, फिर झगड़ा बड़ा हो जाता है।
3: अगर वो हमसे ज्यादा बड़े हैं तब हम नहीं जाते, तब उनके क्लासमेट उनको समझाते हैं, तब हम नहीं जाते,
2: तब आप नहीं जाते। ओके, चलो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। आप लोग को बहुत गाना, क्या आप लोग हमेशा गाते रहोगे बड़े हो जाओगे तब भी? हमेशा?
3: वैसे जब मैं बड़ा हूंगा मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है।
2: एस्ट्रोनॉट बनना है आपको? वाह, बहुत सारी, वो तो उसमें तो बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है। लेकिन
3: नहीं, मैं पढ़ाई में तो आगे हूँ।
2: पढ़ाई भी अच्छी लगती है आपको ना? अच्छा करते हो आप, पढ़ाई में भी आगे हो, वेरी गुड। और आपको सहेली?
4: डॉक्टर बनता है बड़े होके।
2: डॉक्टर बनना है, ये तो डबल फायदा हो जाएगा फिर। जो आपके पास इलाज के लिए आएगा उसको बहुत सारा अच्छा गाना भी सुनने को मिलेगा और ट्रीटमेंट भी मिलेगा।
3: ये कह रही है मैं फ्री में करूंगी।
2: हाँ, ऐसा क्यों?
4: क्योंकि जो ज्यादा उनके जिनके पास पैसे नहीं होते वो भी करवा सकते हैं अपना।
2: ये भी सही बात है ना, उनकी हेल्प भी, जिनके पास नहीं है, किसी के पास कम है, तो उनकी भी सहायता।
3: जब ये छोटी
2: थी, बहुत अच्छी सोच है आपकी।
3: जब ये छोटी थी इसके पास ना डॉक्टर सेट था, तो ये घर में जितने भी सारे होते थे उन सबका चेकअप करती थी।
2: अच्छा लगता था आपको?
3: और जैसे रियल डॉक्टर करते हैं एकदम सेम वैसे।
2: इसीलिए उनको शुरू से डॉक्टर बनना है ना,
3: सबको पेशेंट बनना पड़ता था।
2: कौन पेशेंट बनता था?
3: पापा, मम्मा, मैं भी बनता था।
2: अच्छा,
3: तब छोटा भाई और बहन नहीं थे ना अभी, तब छोटे थे।
2: अभी वो लोग बनते हैं पेशेंट, छोटे भाई बहन?
3: अब तो नहीं। कोई भी किसी को भी डॉक्टर का शौक नहीं, अभी ये बस पढ़ाई पे जाना चाहते,
2: पढ़ाई पे जाना,
3: क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई,
4: डॉक्टर बनना
2: उसके लिए पढ़ाई होती है।
4: साइंस और मैथ में ज्यादा ध्यान दे रही हूँ।
2: अच्छा, एक एक चीज बताओ, चलो आपके घर में जो बड़े हैं उनकी एक कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लगती है? कोई भी।
4: अपनी मम्मा का नेचर अच्छा लगता है।
2: ओके okay.
4: और सब क्वालिटी अच्छी लगती है
2: सारी। एक जो आपको लगता है कि मैं भी वैसे ही बनू, मैं भी वैसे करूँ, ऐसा कुछ लगता है
3: कि जैसे अब कोई, जैसे अब आ गया कि कोई खाना मांगने वगैरह के लिए आ गया तो उसको दे देते हैं, जैसे अब गाय के लिए स्पेशल एक बड़ी रोटी बना के रखते थे उसको दे देते।
2: तो बहुत अच्छी बात है, तो हमको भी करना चाहिए ना जब हम बड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने बोली।
4: हम ऐसे या फिर छोटे से थे, थोड़े से छोटे थे, तो हम सोचते थे, हम ना वीडियोस देखते थे, तो उसमें ना लोग ना ज्यादातर गरीब लोगों की मदद करते थे, तो हम भी ऐसा ही सोचते थे।
2: वेरी गुड।
3: हम बड़े होके डॉक्टर और एस्ट्रोनॉट तो बनेंगे, पर साथ ही साथ एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम खोलेंगे।
2: वृद्धाश्रम क्यों?
3: जो सड़क पे भीख वगैरह मांगते हैं उनको जो वगैरह दिलवाएंगे,
2: उनकी मदद करोगे आप, है ना? बहुत अच्छा ख्याल है आपका, एंड हम बहुत सारी विशेस करते हैं कि आप दोनों बहुत अच्छा अच्छा करो, जो आप सोचते हो वो जरूर जरूर कर पाओ। अच्छा, लास्ट में जाते जाते एक दूसरे की एक अच्छी बात बताओ, साथ साथ प्रैक्टिस
3: करती है।
2: अच्छा,
3: सहेली मेरी, जैसे अब मैं, मेरे को चोट लगी हुई है, ये मेरे को मेरी सब बातें मानेगी, पानी लेके, खाना, मैं बेड पे ही होता हूँ ना, तो
2: बहुत केयर करती है।
3: एक बार मैं साइकिल चलाते चलाते थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चला रहा था, गिर गया, पत्थर साइड में थे, तो बहुत बड़ी चोट आई थी, तो मैं रूम में था, तो ये लाती थी, मम्मा भी ले आते थे, पर ये भी लाती थी।
2: ये भी लाती थी, बहुत केयर है।
3: तो कोड़ा पूरा ये छिल गया था, पूरा फ्रैक्चर फ्रैक्चर नहीं आया था, कोड़ा बड़ा आया था, और ये यहाँ पे एल्बो पे थोड़ा बड़ा चोट आई थी।
2: अच्छा,
4: ये भी केयरिंग करता है मेरी, जैसे कि मेरे को, हम दोनों ना जैसे कि रनिंग कर रहे थे तो मेरा पैर फिसल गया, तो मेरे दोनों यहाँ पे चोट लगी और दोनों घोड़े छिल गए थे। तो हमारे घर में ना कोई आया हुआ था, तो मम्मा तो बाहर थे, इसलिए उन्होंने वो फटाफट से आ नहीं पाया, और ये मेरे पास में ही था, तो इसने मेरे को उठाया, बल्कि इसके चोट लगी हुई थी, फिर भी इसने मेरे को उठा के अंदर ले गया था।
2: मतलब आप दोनों एक दूसरे की केयर करते हो, है ना? आप दोनों बहुत बहुत अच्छे से ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, एक दूसरे की हमेशा केयर करना, सबकी केयर करना, और हमारी बहुत सारी जो रेडियो मधुबन है यहाँ पे और जो लिसनर्स आपको सुनेंगे ना, सबकी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी गुड विशेज आप लोग के साथ हैं। तो खूब अच्छा अच्छा गाओ, हम लोग आपका यूट्यूब चैनल भी देखेंगे और आपके गाने सुनते रहेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें और इतने प्यारे प्यारे गाने सुनाने के लिए। थैंक यू साइली, थैंक यू रित्विक। अगली बार जब आओगे तो मिलोगे वापस हमसे? पक्का? प्रॉमिस?
4: प्रॉमिस।
2: तो चलो, इस प्रॉमिस के साथ दोस्तों फिलहाल लेते हैं इजाजत। इन नन्हे कलाकारों को सुन के आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9914151415, यानी कि 9414151415। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते इन नन्हे कलाकारों यानी ऋत्विक और साहिनी की आवाज में सुनते हैं बहुत खूबसूरत सा गाना, तेरी मर्जी।

0: वो पहाड़ देख रहे हो?
1: हाँ, कितना सुंदर है।
0: और उनको देख रहे हो?
1: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
0: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
2: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

शांति। आज है 13 अक्टूबर 2026 और आज बाबा हम बच्चों को मुरली से पहले बजे गीत के ऊपर बहुत सुंदर समझाने देते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। बाबा कहते हैं ये नैनहीन जब कहते हैं तो किसको कहते हैं कि हमें राह दिखाओ? बेहद के बाप परमात्मा को कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हम नैनहीन अर्थात अज्ञानता के अंधकार में आ गए हैं, तो हमें दिव्य चक्षु दो जिससे हम जो राह भटक गए हैं उस राह पर वापस सहजता से आ सके और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। तो आज बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में आगे से आगे बढ़ते जाना है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को समझते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। कर्म श्रेष्ठ करने हैं, जितना व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है तो उसका फल भी श्रेष्ठ होता है। तो इसीलिए आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दी है। सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। अब जाना है, हर एक की मंजिल है तो मंजिल बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा कहते जितने मंजिल बुद्धि में रहेगी उतना पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ होगा। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे जब तुम वाइसलेस थे यानी पवित्र थे तो बहुत सुखी थे, तुम्हारे जैसा शाहूकार दूसरा कोई नहीं था, तुम अपार सुखी थे, धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाप तुम्हें फिर से शाहूकार बनाने आए हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने गीत सुना, किसने कहा नैनहीन है, ये किसने कहा और किसको कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। क्या कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चे, ये किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा, बाबा उनको ईश्वर भी कहा जाता है, परमात्मा को ईश्वर भी कहा जाता, तो पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता। बाप है दो, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। बाबा का नाम है शिव, वह शिव निराकारी पूजा जाता है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता है, ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है, सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती है। आत्माओं के बाप को निराकार पिता को याद करती है। आत्माएं ये भूल गई है कि हमारा बाप कौन है, पुकारते हैं ओ गॉड फादर, हम नैनहीन को नैन दो, दिव्य चक्षु दो तो हम अपने बाप को पहचाने। हर आत्मा पारलौकिक पिता को भूल गए हैं अज्ञानता के कारण, तो इसीलिए पुकारते हैं कि हम नैनहीन को नैन दो यानी ज्ञान के चक्षु दो तो हम अपने बाप को पहचाने। बाप ही कल्प कल्प आकर
भारत को हेवन बनाते हैं। अब कलयुग है, सतयुग आने वाला है। कलयुग और सतयुग के बीच को संगम कहा जाता है। यह है पुरुषोत्तम संगम। बेहद का बाप आकर सबको क्या बनाते हैं? जो भ्रष्टाचारी बन गए हैं उन्हों को श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज्य था। ये बाप आकर स्मृति दिलाते हैं कि भारत पहले क्या था और लक्ष्मी नारायण कितने उच्च थे। ये सारी स्मृति बाप आकर दिलाते हैं। तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब नर्कवासी हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा है। बाबा कहते भारत की बहुत महिमा थी। सोने हीरे के महल थे, अब कुछ नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी थे। सतयुग में भारत में सिर्फ सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। बाप समझाते हैं तुम ही सूर्यवंशी थे। अब तक लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे राज्य पाया, ये किसको भी पता नहीं है। पूजा करते हैं परंतु जानते नहीं, तो क्या कहेंगे? पूजा करते हैं लेकिन जानते नहीं तो क्या कहेंगे? ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी कोई नहीं जानते। भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं। हे पतित पावन बाबा, आओ आकर हमको दुखों से, इस रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही राज्य था। बापूजी भी यही मांगते थे, महात्मा गांधी बापू यही मांगते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अब नर्कवासी का क्या हाल है देख रहे हो? इनको कहा जाता है हेल, डेविल वर्ल्ड। यही भारत डीटी वर्ल्ड था, अब क्या बन गया है? एकदम तमो प्रधान पतित डेविल वर्ल्ड बन गया है। बाबा समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, न कि 84 लाख। बाकी शास्त्र में तो बहुत सी बातें लिखी है। बाबा कहते आज से 5000 वर्ष पहले सदगति मार्ग था। वहां न भक्ति न दुख का नाम निशान था। उनको सुखधाम कहा जाता है। बाप समझाते हैं तुम असल में शांति धाम के रहने वाले हो। तुम यहां पाठ बजाने आए हो। पुनर्जन्म 84 होते हैं, न कि 84 लाख। अब बेहद का बाप आया है, तुम बच्चों को बेहद का वर्षा दे रहे। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं और सत्संगों में मनुष्य मनुष्य को भक्ति की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प जब भारत स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था। अब एक भी पावन नहीं है। यह है पतित दुनिया। बाप समझाते हैं गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। अब कृष्ण का शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो आकृष्ट करने वाला, तो आकृष्ट करने वाली मूर्तियां दो है, एक निराकार एक साकार। तो इसीलिए बाबा कहते गीता किसने सुनाई? जो निराकार आकृष्ट करने वाली मूर्ति है उसने ही तो गीता सुनाई, जिसके लिए कहा कि मैं अजन्मा हूं, ये अर्जुन तुम मुझे इन आंखों से देख नहीं सकते हो। यह लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते,
अपने धर्म को भी भूल गए हैं। धर्म मुख्य है चार। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म सूर्यवंशी, पीछे चंद्रवंशी, दोनों को मिलाकर कहते हैं देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहते हैं देवी देवता धर्म। वहां दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तुम सुखधाम में थे, फिर रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू होता है। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात होती है, भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं, तब परमात्मा बाबा आते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं। कितने धक्के खाते रहते हैं, तीर्थों पर जाओ, फेरा लगाओ, लेकिन प्राप्ति क्या हुई? दिनों दिन तमो प्रधानता की ओर ही आगे बढ़ते गए। बाप कहते, मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूं। पुकारते हैं कि हमको सुखधाम और शांति धाम की राह बताओ। बाप कहते, आज से 5000 वर्ष पहले हमने तुम्हें बहुत शौकर बनाया था, इतना धन दिया, फिर कहां गवाया? तुम कितने शाहूकार थे, भारत कौन कहलावे? भारत ही सबसे ऊंचे से ऊंचा खंड था। वास्तव में सबका यह तीर्थ है, सारी दुनिया का तीर्थ है भारत, क्योंकि पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। जो भी धर्म वाले हैं, सभी की बाप आकर सदगति करते हैं। अब रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं है। जब सूर्यवंशी राज्य था, तब ये विकार नहीं थे। भारत वाइसलेस था, अब विशस है, सब नरकवासी है। सतयुग में जो दैवी संप्रदाय थे, बाबा कहते सतयुग में जो दैवी संप्रदाय थे, वही फिर 84 जन्म भोग धीरे धीरे नीचे उतरते आए और आसुरी संप्रदाय बने हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनने हैं। भारत बहुत शाहूकार था, अब गरीब बना है, इसलिए भीख मांग रहे हैं। धीरे धीरे अब भारत की चढ़ती कला हो रही है। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम कितने सुखी थे, तुम्हारे जैसा सुख किसको मिल नहीं सकता, धरती आसमान सब तुम्हारे हाथों में था। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी बताकर सभी अज्ञानता की आसुरी नींद में सो गए हैं, इसीलिए दिखाते कि कुंभकर्ण की आसुरी नींद दिखाई गई है। तो दिखाया गया है कुंभकर्ण की आसुरी नींद। ये भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहां पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवता राज्य करते थे। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। यह ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही देते हैं। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, अर्थात सोल कॉन्शियस बनो। मुझ अपने परम पिता को याद करो, याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम यहां आते हो इसलिए मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बनने। अब ये है रावण राज्य। भक्ति में रावण राज्य शुरू होता है, तो धीरे धीरे सब रावण के पंजे में है। सारी दुनिया 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है, शोक वाटिका में है। बाप आकर सबको लिबरेट कर गाइड बन साथ ले जाते हैं। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं जिनको धन बहुत है वो स्वर्ग में है, अभी है ही नरक।
पतित पावन बाप को कहा जाता है, न कि कोई नदी को। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है, न कि कोई नदी को। यह सब है भक्ति मार्ग। यह बातें बाबा ही आकर बताते हैं। अब यह तो जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक और तीसरा है अलौकिक। अब पारलौकिक बाप शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी राम सीता त्रेता में थे। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांति धाम और सुख धाम की स्थापना बाप ही करते हैं। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते, वह सब है अनेक भक्ति मार्ग के गुरु। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हो। ये राजधानी स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत बननी है, कोटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, अब है कांटों का जंगल। रावण राज्य बदल रहा है, विनाश होना है। ये ज्ञान अब तुमको मिल रहा है। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं रहता, एक बार सदगति में चले जाते तो फिर वहां ये ज्ञान नहीं रहता, लुप्त हो जाता, प्राय लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बाप को कोई भी यथार्थ नहीं जानते। बाप है रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षे का हक खत्म हो जाता है, अर्थात अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया तो फिर ईश्वर का जो वर्षा है वो कैसे प्राप्त होगा। तो वर्षे का हक खत्म हो जाता है, बाबा आकर सबको वर्षा देते हैं। 84 जन्म वही लेते जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियन लोग करके 40 जन्म लेते होंगे। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं, अब तुम धक्के नहीं खाएंगे। एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है यात्रा, यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, साधु संत कह देते आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेती है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। इस समय कलयुग में मनुष्य के कर्म कैसे हैं, तो बाबा कहे इस समय कलयुग में तुम्हारे कर्म विकर्म होते हैं, सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। महाविकर्म होता नहीं, वह विकार ही नहीं तो विकर्म होता नहीं, वह है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया। सतयुग है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। दूसरी पॉइंट, बाप ने जो स्मृति दिलाई है उसे स्मृति में रख अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है,
स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है, तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत का है। आज का स्लोगन है, संकल्प स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। संकल्प स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, टाइटल है मनुष्य की एम ऑब्जेक्ट क्या है, उसे प्राप्त करने का यथार्थ तरीका क्या है। हर एक मनुष्य को ये सोचना जरूर है अपनी अच्छी जीवन बनाने के लिए क्या उचित है। कितनी सुंदर बात मम्मा ने कहा कि अपने अच्छी जीवन बनाने के लिए क्या उचित है। मनुष्य की लाइफ किस लिए है, उसमें क्या करना है। अब अपने दिल से पूछो कि वो मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। ऊंची जीवन बनानी है तो वो परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य जीवन में पहले तो नॉलेज चाहिए, फिर इस जीवन की एम ऑब्जेक्ट क्या है। यह तो जरूर मानेंगे कि इस जीवन को सर्वदा सुख और शांति चाहिए। क्या अभी वो मिल रही है, स्वयं में देखना है क्या अभी वो मिल रही है। इस घोर कलयुग में तो दुख शांति के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अब सोचना है सुख शांति मिलेगी कैसे। सुख और शांति ये दो शब्द जो निकले हैं वो जरूर इस दुनिया में कब हुए होंगे। सुख और शांति ये दो शब्द जो निकले हैं वो जरूर इस दुनिया में कब हुए होंगे, तभी तो इन चीजों की मांगनी करते हैं। अगर कोई मनुष्य ऐसे कहे कि हमने ऐसी दुनिया देखी ही नहीं, तो फिर उस दुनिया को तुम कैसे मानते हो। इस पर समझाया जाता है कि दिन और रात जो दो शब्द है, तो जरूर रात और दिन चलता होगा। ऐसे कोई नहीं कह सकते कि हमने देखी ही रात है तो दिन को मानू कैसे। लेकिन जब दो नाम है तो उनका पाठ भी होगा। वैसे हमने भी सुना है कि इस कलयुग से कोई ऊंची स्टेज भी थी जिसको सतयुग कहा जाता है। अगर ऐसा ही समय चलता रहे तो फिर उस समय को सतयुग नाम क्यों दिया जाता। तो ये सृष्टि अपनी स्टेज बदलती रहती है, जैसे किशोर बाल युवा वृद्ध बदलते रहते हैं, मनुष्य जीवन में भी ये विभिन्न स्टेजेस हैं, वैसे सृष्टि भी बदलती रहती है। आज की जीवन और उस जीवन में कितना फर्क है, तो उस श्रेष्ठ जीवन को बनाने का प्रयत्न करना है। लक्ष्य होगा तो वैसा स्वयं को बनाने का प्रयत्न करेंगे। दूसरी मम्मा की क्लास है जिसका टाइटल है निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर तीन दुनियाएं हैं, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी, तीसरी है साकारी। अब यह तो जान लिया कि निराकार सृष्टि में तो आत्माएं निवास करती है और साकार सृष्टि में साकार मनुष्य संप्रदाय निवास करते हैं। बाकी है आकारी सूक्ष्म सृष्टि। अब विचार चलता है
क्या ये आकारे सृष्टि सदा ही है या कुछ समय उनका पाठ चलता है। दुनियावी मनुष्य तो समझते हैं सूक्ष्म दुनिया तो ऊपर है, वहां फरिश्ते रहते हैं, उसको ही स्वर्ग कहते हैं, वहां जाकर सुख भोगेंगे। लेकिन अब यह तो स्पष्ट है कि स्वर्ग और नरक इस सृष्टि पर ही होता है। बाकी यह जो सूक्ष्म आकारी सृष्टि है जहां शुद्ध आत्माओं का साक्षात्कार होता है, वो तो द्वापर से लेकर शुरू हुए। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो इससे सिद्ध है कि निराकार सृष्टि और साकार सृष्टि सदा है ही है, बाकी सूक्ष्म दुनिया सदा तो नहीं कहेंगे। उसमें भी खास ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार इसी समय हमको होता है, क्योंकि इसी समय परमात्मा तीन कर्तव्य करने के लिए तीन रूप को रचते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारी पर भी उपकार करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो, अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखो, संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा स्व परिवर्तन अथवा स्व के श्रेष्ठ कर्मों द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले कर्म हो, तब कहेंगे परोपकारी, तब कहेंगे परोपकारी। अच्छा, ओम।